नदिया हो जाते। चलो विवेक जी, नाम जप करने से फायदा क्या होता? बड़े पागल दिखाई पड़ रहे थे। हर काम तुम फायदे के लिए ही करोगे, बिना फायदे के कुछ नहीं करोगे। तुम गुटखा खाते हो, उससे क्या फायदा है? दारू पीते लीवर खराब हो जाता है, पर उससे क्या फायदा? लेकिन नाम जप से तुम फायदा चाहते हो। बड़े उल्लू नजर आ रहे हमें तुम, बड़े पागल नजर आ रहे। तुम भगवान की भक्ति में भी फायदा चाहते हो। अरे एक बात नोट कर लो तुम, भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। पहला फायदा लिखिए, पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा वो प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो मंगल होगा, मंगल होगा अमंगल मिट जाएगा। ये हम कोई अप्रमाणित बात नहीं कर रहे विवेक जी, रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। जो भी नाम जप करेगा दसों दिशाओं में मंगल होगा। क्यों मंगल क्यों होगा विवेक जी? राम जी का नाम मंगल करने वाला है, क्योंकि राम

जप से क्या होगा? अरे जिनका नाम है वो मंगल करते हैं। राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। नाम जप करने वाले को मंगल हो, अमंगल मिट जाता है। दूसरी बात, अगर तुम हनुमान जी के नाम का जप करते हो तो हनुमान जी भी मंगल करते। मंगल मूर्ति, हनुमान जी भी मंगल करते। तो पहला फायदा है प्रसन्नता मिलती। दूसरा फायदा क्या? जो भी नाम जप करता उसके विकार मिट जाते, विचार शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज को बार बार रटेंगे तो अन्य विकार दिमाग में, अन्य थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, अन्य विचार परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि दिमाग एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एक जगह ही स्थित रहेगा। और विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा उसका आईक्यू लेवल भी हाई होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके ध्यान करने की, स्मरण करने की बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। नाम जप करने से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉन्शियस माइंड जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होता है और उस आदमी का ध्यान बहुत प्रबल होने लगता है। वो कोई भी चीज देखता है, पढ़ता है या सुनता है, वो उसे याद होने लगती है और उसका आईक्यू लेवल हाई हो जाता है। तो तीसरा ये फायदा है। चौथा क्या फायदा? कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। हमने नहीं कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा।

ये चौथा फायदा है। विवेक जी, आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता? ठटरी के बरे नक कटा, इलू इलू करने से क्या होता है? अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम क्वेश्चन केवल यही करोगे सनातन के ऊपर। पर कोई बात नहीं, तुम नाला सुपारा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां ऐसा प्रभाव चलता है। पर उत्तर सुनो, पांचवा नाम जप करने से क्या फायदा होता? पांचवा फायदा, हम आपको इतने फायदे बताएंगे कि तुमको अपनी ही, अब हम क्या कह दें, राम राम राम, चलो हमारे मुंह से बुरा नहीं निकलना चाहिए। पांचवा क्या फायदा? वाणी सिद्ध होती है। क्या होता है? वाक्य की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवान का नाम जब प्रतिदिन प्रतिपल बार बार करेगा, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। ये पांचवा फायदा, ये कोई आप प्रमाणित बात नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक घटना सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा। आगरा के पास फतेहपुर, और फतेहपुर के पास अवलेंडा नाम का एक गांव है। अकबर के समय में एक नाम जपी महात्मा का बड़ा प्रचार था। अकबर ने उन महात्मा का सत्य का परीक्षण लेना चाहा। एक चबूतरा में बकरी, जीवित बकरी को दबा दिया और महात्मा को बुला करके कहा कि आप इस पर बैठो। महात्मा आए, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों? इसमें तीन जीवित जीव दबे हुए हैं बकरी रूप में। अकबर ने कहा कि महाराज बकरी तो सही है, पर तीन नहीं है, एक ही बकरी है, बाकी तो झूठ बोल दिया आपने। महात्मा बोले नहीं, तीन है। अकबर बोले अगर तीन नहीं निकले तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। महात्मा बोले अब हमारे मुंह से निकल गया, हनुमान जी की कृपा से अब तीन ही जीव निकलेंगे। महात्मा ने माला ले ली, चबूतरा को पुनः खोदा गया, बकरी बेहोश जैसी हालत में हो गई थी। पर एक ही बकरी मिली, तीन नहीं मिली। अकबर ने कहा देखा एक बकरी है, तुम फेल हो गए हो, झूठे हो। महात्मा बोले नहीं, हमने कह दिया तो तीन होंगे, कहां होंगे, यहां तो एक ही है। महात्मा बोले ये बकरी गर्भस्थ है, इसके पेट की चीरा फाड़ी की जाए, और जब पेट की चीरा फाड़ी की गई तो दो छोटे छोटे बच्चे उसके गर्भ में पाए गए। भगवान की कृपा से वो बकरी बच गई और महात्मा की वाणी से निकली हुई वाणी सत्य हो गई। विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा, भगवान का नाम सदैव स्मरण करेगा, उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो अपने मुंह से जो भी बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। और सुनो दूसरी घटना। एक राजा के गुरुजी दर्शन देने आए, गांव के लोग दर्शन करने चले गए। एक सीधा साधा गांव का आदमी गुरुजी की दीक्षा नहीं ले पाया, तो उसने शाम के समय गुरुजी से कहा महाराज हमको दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा ने कहा कि भाई अब इस बार तो हमें जाना है, कल हम चले जाएंगे, दीक्षा का समय नहीं बचा है, आज रात हो गई है, कल हमें चले जाना। एक काम करो, अगली बार तुम दीक्षा ले लेना। वो बोला महाराज अगली बार तक जिंदा रहे ना रहे, आप महात्मा आदमी अभी कृपा कर दो। महात्मा ने डांट के भगा दिया, नहीं नहीं अभी नहीं हो सकती, अगली बार आना। गांव का सीधा साधा आदमी रात भर इंतजार में बैठा रहा। सुबह से गुरुजी लोटा लेकर के जंगल गए, समझ जाओ लोटा लेके पेट खाली करने, नित्य क्रिया करने गए महात्मा जी, ये पीछे पीछे चल दिया और धीरे से हाथ जोड़ के बोला गुरुजी मंत्र दे दो।
महात्मा बोले यहां मंत्र दे दे कि हम तो पेट खाली करने आए। अब गुरु जी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। गुरु जी सोचे कि चेला भगे तो हम बैठे कहीं, और चेला कहे कि गुरु जी मंत्र दो तो हम भगे। 2-3 किलोमीटर तक गुरु जी चले गए, गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। इसने कहा गुरु जी मंत्र दे दो। गुरु जी ने लोटा दिखा के कहा मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, एक लोटा मारेंगे खपड़िया फूट जाएगी। इसको लगा यही मंत्र है। सीधा साधा आदमी, इसको लगा यही मंत्र है। घर आया, माला ली और माला लेकर के कहने लगा मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, यही मंत्र जप करने लगा। गुरु जी तो चले गए। 1 महीने बाद राजा के बालक राजकुमार को भूत ने पकड़ दिया। बड़े बड़े ओझा, तांत्रिक, जानकार, धूला भभूति वाले लोग आए, सब फेल हो गए। इसने सुना कि राजा के बेटे को भूत ने पकड़ लिया और कोई ठीक नहीं कर पा रहा। तो इसने सुन रखा था कि गुरुजी ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि गुरु मंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि वो यम राजों को भी भगाने की क्षमता रखता है। इसने सोचा जब जमराज भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते हैं, जब यम दूत भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते। ये गया सबसे, बोला हम ठीक कर देंगे। तो बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक जानकार ओझा हंसने लगे, बोले तुम क्या खाक ठीक करोगे, हम लोग हार गए जिनके पास देवता हैं, सिद्धियां हैं, तुम क्या खाक ठीक करोगे। इसने कहा हम ठीक कर देंगे। माला ली, राजकुमार लेटा था महल में जमीन पर। ये कान के पास गया और कान में राजकुमार के बोला मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। भूत को लगा कि ये हमें पहचान आ गया है। जो राजकुमार में भूत प्रीत था उसको लगा ये हमें पहचान गया है, तब तो कह रहा है कि मारूंगा लोटा तो खपाड़ फूट जाएगा। खपाड़ मतलब सिर। आ भूत भग गया। अब भूत भागा तो राजकुमार ठीक हो गया। अब तो ये बाबा जी बनकर पूजने लगे। बड़े बड़े तांत्रिक बोले भाई हमने तो हम हार गए पर गजब के हो, ये भी हाथ से आशीर्वाद। अब राजा का लड़का ठीक हो गया तो पूरे राज्य में प्रचार हो गया। लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन की। और ये रोज भभूति दे, रोज ताबीज बना दे, और मंत्र एक ही है। कोई कहे गुरु जी हमारा पेट दर्द कर रहा, तुरंत कान में कहे मारी हो लोटा खपाड़ फूट जाए। कोई कहे महाराज लड़का नहीं हो रहा है, इधर कान में बोले मारी हो लोटा खपाड़ फूट जाए। अब इनके जो गुरुजी थे, जो राजा के गुरुजी जिनकी इन्होंने दीक्षा ली थी, उनको खबर लगी कि हमारे जो शिष्य राजा हैं उनके यहां एक ऐसे महात्मा हुए जो बड़ा चमत्कार कर रहे। उनने सोचा चलो हम ही दर्शन कर ले। तो अब वो गुरुजी लाइन में दर्शन करने लगे तो इसने देख लिया, अरे गुरुजी, लंबी लाइन, तुरंत गुरुजी के चरणों में। अब गुरुजी चौंक गए कि इतनी भीड़ में हम जिसके दर्शन करने आए वो हमारा ही चेला निकला। लेकिन गुरुजी पहचानते नहीं थे तो कोने में ले गए। बोले भाई तुमने हमारी दीक्षा ली? बोले आपकी दीक्षा ली। गुरुजी बोले बेटा कब ली? बोले आप याद करो एक बार जंगल में जा रहे थे लोटा लेके, पेट साफ। अब महात्मा खूब याद करें, उन्हें याद नहीं आवे, गुरुजी को याद नहीं आवे। बोले बेटा एक बात बताओ, हमने मंत्र कौन सा दिया था? गुरुजी ने सोचा अगर हमारा चेला होगा तो हमारे जो मंत्र दिया वो बताएगा। हमने बेटा मंत्र कौन सा दिया था? बोले वाह आपने कहा, सबके सामने मंत्र नहीं बताना चाहिए। गुरुजी बोले अकेले में चल। अकेले में गए, गुरुजी बोले बेटा बता कौन सा मंत्र दिया था? बोले वाह आपने कहा था ना, जब हमने कहा था गुरुजी मंत्र दे दो, आपने कहा था मारूंगा लोटा खपाड़ फूट जाएगा। अरे गुरुजी को याद आई, अरे बोले मार लिया, ऐसा भी मंत्र हो सकता है। लेकिन उस दिन गुरुजी ने एक बात कही कि कोई भी नाम बड़ी शिद्दत से बड़े भाव से जपा जाए
तो आम शब्द भी मंत्र बन जाता है। ये इस कथा का मतलब है। इसलिए तो वेद आचार्य शास्त्रों में हमारे गुरुओं के लिए कहा,

देख जी, आपने पूछा कि नाम जप का फायदा क्या, ये पांचवा फायदा है, जो भी नाम जप करेगा उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम, शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर भेजें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: गणेशोत्सव का आज 8वां दिन, बापा के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। अनंत अंबानी और रोहित शर्मा ने परिवार के साथ किए लाल बादशाह राजा के दर्शन। गोरखपुर की गीता वाटिका में भव्य उत्सव, दही और हल्दी से उत्सव मनाने की परंपरा, मंदिर में गूंजा राधा रानी का जयकारा। चित्तौड़गढ़ की सांवलिया सेठ के दरबार में अनोखी भेंट, एक भक्त ने किलो 200 ग्राम चांदी से बना सीमेंट प्लांट मॉडल अर्पित किया, 2,40,000 रुपए कीमत है। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शनी, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का देखने को मिल रहा है अनोखा संगम। आर्ट गैलरी में 28 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। कटक में ओडिशा प्रो टी20 लीग का आगाज। सीएम मोहन चरण मांझी ने बाराबती स्टेडियम में उद्घाटन किया। ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। अब वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का, लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज सामने आई है। आपको बता दें, एशियन गेम्स के दूसरे दिन भी भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत ने टेबल टेनिस और सेप कटकरा में जीत की साथ शुरुआत की है। आपको बता दें, वेमेन्स टेबल टेनिस के ग्रुप मुकाबले में सुतीर्था मुखर्जी ने पाकिस्तान की अलीना खान को हरा दिया है। तो वहीं आपको बता दें, सेप कटकरा में भारत की पहली टीम ने जापान के खिलाफ सीधे सेटों में जीत दर्ज की है। यह शानदार खबर सामने आई है एशियन गेम्स से। आज दूसरा दिन है और शानदार शुरुआत। तो वहीं आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी, शूटिंग में भारत को तीसरा मेडल मिल चुका है। तीसरा मेडल भारत ने अपने नाम कर लिया है। तो एशियन गेम्स से जुड़ी हुई यह गुड न्यूज, भारत ने एक शानदार शुरुआत की है, कई पदक अब तक अपने नाम कर लिए हैं और अब टेबल टेनिस में पाकिस्तान को मात दी है। विमेन्स टेबल टेनिस के ग्रुप मुकाबले में सुतीर्था मुखर्जी ने पाकिस्तान की अलीना खान को हराया है और शूटिंग में अब तीसरा मेडल भी अपने नाम किया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: मुंबई में शिव डीजे राजा का भव्य अवतार, अंडरवाटर द्वारका की अद्भुत थीम, गणपति पंडाल की शानदार सजावट। शिव डीजे राजा गणपति पंडाल के 75 साल पूरे होने पर जश्न। शिव डीजे राजा में पानी के अंदर सजी द्वारका नगरी, समुद्री जीव और रोशनी ने बढ़ाई भव्यता। होलोग्राफिक प्रस्तुति बनी खास आकर्षण, भव्य नजारे में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पानी के अंदर भगवान श्री कृष्ण की नगरी का रिक्रिएशन, जलमग्न नगरी की थीम ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबाग चौराहा के दर्शन में लगाई हाजिरी, पत्नी और पति ने यहां पर दर्शन किए। तो वहीं रितिका सजदेह के साथ बप्पा के दर्शन किए, दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। दर्शन के दौरान दिखा खास भक्तिमय अंदाज, दोनों ने बप्पा के साथ में पूजा अर्चना की। दर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लालबाग चौराहा के दरबार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर धवल कुलकर्णी, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में लालबाग चौराहा की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए बप्पा के भक्त। पुणे में असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने गणपति आरती की। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में बप्पा का आशीर्वाद लिया। जालना में रामायण की थीम पर अनोखा गणपति पंडाल, हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाते हुए नजर आई। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश में आने का प्रसंग दिखाया। गणपति पंडाल में दिखा रामायण का जीवन दृश्य, रामायण का प्रसंग देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अनोखी प्रस्तुति ने भी खींचा श्रद्धालुओं का ध्यान।
7: गच्छितावस्थेत गेलेला लक्ष्मण
1: अमरावती में गणेश उत्सव के दौरान बप्पा का श्री कृष्ण रूप और रुक्मिणी हरण का जीवंत लीला बनी आकर्षण का केंद्र। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से रुक्मिणी का हरण किया था और इसी धार्मिक और पौराणिक प्रसंग को गणेश प्रतिमा की कलात्मक प्रस्तुति के साथ पेश किया गया। प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं बप्पा के भक्त, प्रतिमा के सामने रुक रुक कर दर्शन कर सेल्फी ले रहे हैं। श्रीनगर में धार्मिक उत्साह और आदर के साथ पारंपरिक गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में शामिल हुए बप्पा के भक्त। विसर्जन से पहले निकाली गई पापा की शोभा यात्रा, लोगों ने पापा का आशीर्वाद लिया। श्री गणेश घाट पर वितास्ता नदी के पवित्र जल में प्रतिभा विसर्जित हुई। पंचमहल में पूरे भक्तिभाव के साथ किया गया बापा की प्रतिमा का विसर्जन। छोटी बड़ी सभी तरह की लगभग 1000 प्रतिमाओं को विदाई दी गई। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी। ढोल नगाड़ों, डीजे और गुलाल के साथ शहर की सड़कों पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान अचानक बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश ने गणेश भक्तों के उत्साह को और बढ़ाया। पूरे शहर में बप्पा की शोभा यात्रा में दिखा भक्तों का हुजूम, नम आंखों से भक्तों ने बप्पा को विदाई दी। रांची में झारखंड के मंत्री संजय सेठ ने पूजा उपासना के बाद पूरे भक्तिभाव के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया। श्रीनगर में भी धार्मिक उत्सव और भक्तिभाव से किया गया गणेश प्रतिमा का विसर्जन, सभी वर्ग के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। विसर्जन से पहले निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, भक्ति में डूबे हुए नजर आए बप्पा के भक्त। ऐतिहासिक गणपतियार मंदिर में की गई थी बप्पा की स्थापना, बड़ी संख्या में बप्पा से आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, चावल दाल साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया बप्पा की प्रतिमा का निर्माण। सूरत में गांव की थीम पर बना गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बना, पंडाल देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बापा के पंडाल को भक्तों ने नाम दिया हैप्पी क्लब, पंडाल में रखा है पुराने जमाने का भी सामान। पंडाल में बनाया गया बापा का कमरा, जहां गांव में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज मौजूद है, लोगों को गांव के परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंडाल में प्राकृतिक वातावरण के बीच ही स्थापित की गई है बप्पा की छोटी प्रतिमा, साथ ही ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इस पंडाल को बनाने में आयोजकों को 6 महीने का समय लगा, हर एक घर से पुरानी वस्तुओं को जुटाकर तैयार किया गया है ये पंडाल। गोरखपुर की गीता वाटिका में दधिकांत उत्सव, राधारानी प्राकट्य महोत्सव के समापन पर भव्य आयोजन, भक्तों ने दही और हल्दी के रंग में उत्सव मनाया। गीता वाटिका मंदिर में गूंजा राधारानी का जयकारा, तो वहीं दधिकांत ददोत्सव में दिखा भक्तिमय माहौल में उल्लास, दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़े। अखंड हरिनाम संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन, विशेष रास मंडलियों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, महारास मयूर नृत्य और दांडिया ने मोहामन। पुरी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर मंगल कामना की और सुख शांति की प्रार्थना की। पुरी में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए सीएम साई, पवित्र जगन्नाथ धाम की भूमि पर कथा का श्रवण किया, आध्यात्मिक आयोजन में भी शामिल हुए। औली में चल रहे भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के साहसी और जाबाज मिलिट्री डॉग्स ने शानदार प्रदर्शन किया। विशेष अभियानों के दौरान सैनिकों की सहायता में प्रशिक्षित सैन्य डॉग्स ने रस्सियों से उतरने जैसे अभ्यासों में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग में मिलिट्री डॉग्स K9, राइस, विक्टर, जैक और राउडी शामिल हुए। इन डॉग्स के पास भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तैनाती का अनुभव भी है। युद्धाभ्यास 2026 में सेना के इन डॉग्स की भागीदारी, सेना का जवानों, उच्च प्रशिक्षित जानवरों और उनके प्रशिक्षकों के बीच घनिष्ठ समन्वय को उजागर कर चुकी है। मेरठ में एयर शो दूसरा और आखिरी दिन वायु वीरों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 9 हॉक MK-132 विमान से आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाई। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन से रविवार को भारतीय एयर चीफ मार्शल और जापान के सेना प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरे।

0: जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन से रविवार को भारतीय एयर चीफ मार्शल और जापान के सेना प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। वीर गार्जन सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने स्वदेशी तेजस में उड़ान भरी। दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान। जापानी एयर चीफ को स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की क्षमताओं, आधुनिक प्रणालियों और इसकी मारक क्षमता से कराया गया रूबरू। दोनों एयर चीफ ने एयरफील्ड के ऊपर फ्लाई पास्ट किया, इसके बाद एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। भारत जापान के बीच चल रहे युद्धाभ्यास की 9 सितंबर को हुई थी शुरुआत, 22 सितंबर तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शनी लगाई गई, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का देखने को मिल रहा है अनोखा संगम। दिल्ली में सजी द स्पेस इन बिटवीन आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग और मूर्तियों के बीच संवाद की भव्य प्रस्तुति। आर्ट एग्जीबिशन में कई कलाकारों की कृतियां शामिल की गईं, कला के जरिए विचार और रूप के बीच संवाद की प्रस्तुति। दिल्ली की आर्ट गैलरी में सजी रचनात्मक दुनिया पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स लोगों को कर रही हैं आकर्षक। आर्ट गैलरी में दिखी रंगों और आकारों की कहानी, 28 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। सीएम भूपेंद्र पटेल की वडोदरा को करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात, तो मुख्यमंत्री ने 1297 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। गंभीरा ब्रिज और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया गया। ब्रिज से वडोदरा और आनंद के बीच सीधा संपर्क बहाल किया गया। 29 करोड़ की लागत से तैयार किया गया स्मारक। विकास पैकेज में 593 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर शामिल, सड़क पुल आवास पानी और ड्रेनेज से जुड़े काम भी शामिल। कटक में ओडिशा प्रो टी20 लीग का आगाज, तो वहीं सीएम मोहन चरण मांझी ने बारामती स्टेडियम में उद्घाटन किया। ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी समारोह में पहुंचे, 6 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। 29 सितंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। चाइना में 300 से ज्यादा रोबोट की अनोखी परेड, जेजुयांग के हांगझोउ में रोबोट्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 50 से ज्यादा प्रकार के रोबोट्स शामिल हुए। हांगझोउ में दिखा रोबोट्स का शानदार शक्ति प्रदर्शन, अलग अलग उद्योगों में दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता, रोबोट डॉग से लेकर ड्रोन तक दिखी झलक। रोबोट्स ने दिखाया हाईटेक रेस्क्यू का हुनर, रेस्क्यू और पेट्रोलिंग ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। अनमैन व्हीकल, रोबोट डॉग और ट्रैफिक रोबोट के साथ नजर आए। चाइना में आया 3000 दवाओं को पहचानने वाला रोबोट हांगझोउ में रोबोट ने शेल्फ से दवा निकालकर दिखाई अपनी क्षमता। दवा की दुकान में अब रोबोट करेगा मेडिसिन पिकिंग। चाइना में मेडिकल सेक्टर में रोबोटिक्स की नई एंट्री, ऑर्डर मिलते ही संबंधित दवा तय स्थान तक पहुंचाएगा। अंतिम सत्यापन और ऑर्डर पूर्ति फार्मासिस्ट करेगा। चाइना के जियांगजियाजिए में दिखा बादलों का अद्भुत समंदर, तियांजी माउंटेन बादलों और धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। पहाड़ों और घाटियों के ऊपर छाए बादलों ने मोहामन। क्वार्ट्ज सैंडस्टोन की चोटियों पर बादलों के बीच तैरती दिखी, तो वहीं पूरा इलाका खूबसूरत प्राकृतिक पेंटिंग जैसा नजर आया। शानदार नजारे ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध किया। ऑस्ट्रियन मोटो जीपी में पेड्रो अकोस्टा ने रचा इतिहास, हासिल की करियर की पहली मोटो जीपी जीत, जॉर्ज मार्टिन को पछाड़कर जीता खिताब। अकोस्टा की रफ्तार की आगे कायम नहीं रही। जॉर्ज मार्टिन की बढ़त, पोल पोजीशन से शुरू करने वाले मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे। मार्को बजर्की निशानदार रेस के साथ पोडियम पर बनाई जगह। अप्रेलिया के मार्को बजर्की ने तीसरा स्थान हासिल किया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना ये है कि अपने घर पर धारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं। नागपुर से वीना आडवाणी ने अपने पापा की सुंदर तस्वीरें हमसे शेयर की हैं। प्रतिमा के पीछे जल रही लाइट की रोशनी में चमकता दिए का डिजाइन भी भगवान गजानन की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। बेशक ये तस्वीर दिल जीतने वाली है। सुखकर्ता की ये सुंदर तस्वीर अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर हमारी दर्शक वीना आडवाणी ने हमें इसे भेजा है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमें नोएडा की प्रतिभा श्रीवास्तव ने भेजी है। ये बेहद खूबसूरत वीडियो क्लिप है जिसमें पापा मोरपंख लगाए नजर आ रहे हैं। ये बेहद साधारण मगर आकर्षक पापा की मूर्ति है जिन्हें प्रतिभा जी ने भगवान कृष्ण के मोरपंख से सजाया है। इस तस्वीर से गौरी पुत्र के प्रति प्रतिभा जी की आस्था और भक्ति का भाव साफ नजर आ रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में कभी खराब समय चलता है, कभी अच्छा समय चलता है। कुंडली में कभी अच्छी दशा आती है, कभी बुरी दशा आती है। तो जब आपकी बुरी दशा आए किसी ग्रह की, तो आप कौन सा उपाय करें कि उस बुरी दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, सूर्य की बुरी दशा चल रही हो, तो क्या होता है और इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे। सूर्य की अशुभ दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश की संभावना बनती है। सूर्य की अशुभ दशा से बचने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचेंगे। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में अपमृत्यु, अचानक मृत्यु की, हृदय की और मन की समस्या हो जाती है। तो अगर चंद्र की अशुभ दशा हो तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करें और जितने समय चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो उतने समय निरंतर भगवान शिव की अगर पूजा करें तो बेहतर होगा। अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा हो तो दुर्घटना होने के, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होने के और कारावास के, जेल जाने के योग बनते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा है तो वृषभ का दान यानी बैल का दान करना, निर्धनों को भोजन कराना शुभ होता है। साथ ही साथ मंगल की अशुभ दशा के प्रभाव से बचने के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। बाकी ग्रहों की अशुभ दशा पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं वो जानते हैं। अगर बुध की अशुभ दशा हो तो इसमें आर्थिक रूप से क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक रोग होते हैं और त्वचा की समस्या होती है। बुध की अशुभ दशा के निवारण के लिए भगवान विष्णु की, श्री हरि की पूजा करिएगा तुलसी दल से और नियमित रूप से बुध की अशुभ दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। बृहस्पति की अशुभ दशा में असाध्य रोग होते हैं
और बड़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में नियमित रूप से दान करना अनुकूल होता है। और बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ होता है। अगर शुक्र की अशुभ दशा हो तो अपमान, अपयश और नेत्र विकार के योग बनते हैं। शुक्र की अशुभ दशा हो तो भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करना अच्छा होगा और नियमित रूप से लिंगार्चन करना चाहिए। यानी नियमित रूप से अगर आप शिवलिंग की पूजा करें तो ऐसा करने से शुक्र की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ दशा चल रही है, शनि ग्रह की बुरी दशा चल रही है, तो क्या प्रभाव होगा? शनि की दशा अगर अशुभ रूप से चलने लगे तो अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों से परेशानी के योग आपके लिए बनते हैं। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो सोने का, स्वर्ण का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए, आपको लाभ होगा। अगर राहु की या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? राहु की या केतु की अगर बुरी दशा चले तो इस दशा में आकस्मिक घटनाएं होती हैं और विचित्र बीमारियां परेशान करती हैं। राहु केतु की अशुभ दशा चले तो शिव मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु के लिए भगवान भैरव की और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करने से इन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज हमने आपको बताया कि अलग अलग ग्रहों की जब अशुभ दशा चले, जब बुरी दशा चले तो क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। घर के मुख्य द्वार के आसपास पत्थर और कांटेदार पौधे न रखें, केवल शमी का पौधा रख सकते हैं, अन्य पौधा मत रखिएगा। अगर घर के मुख्य द्वार के आसपास आप बहुत सारे पत्थर रखते हैं या कांटेदार पौधे लगाते हैं तो हर महत्वपूर्ण कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा।
प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: कोई भी नाम बड़ी शिद्दत से बड़े भाव से जपा जाए तो आम शब्द भी मंत्र बन जाता है। ये इस कथा का मतलब है, इसलिए तो वेद आचार्य शास्त्रों में

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत की शानदार शुरुआत, शूटिंग में भारत को तीसरा मेडल, मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सिल्वर पर साधा निशाना। देशभर में गणेश उत्सव की रौनक, गणपति पूजा के आठवें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला लगा, लालबाग चौराहा के दरबार में भक्तों की कतार लगी। गोरखपुर की गीता वाटिका में भव्य उत्सव, दही और हल्दी से उत्सव मनाने की परंपरा, मंदिर में गूंजा राधा रानी का जयकारा। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शनी, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का देखने को मिल रहा है अनोखा संगम, आर्ट गैलरी में 28 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। कटक में ओडिशा प्रो T20 लीग का आगाज, सीएम मोहन चरण मांझी ने बारामती स्टेडियम में उद्घाटन किया, ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास्ट द बेस्ट है।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
3: तो आज के इस खास शो में गुड लक टुडे के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आपकी अच्छी सेहत के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं

0: या सड़क पर अन्न फेंकते हैं, भोजन फेंकते हैं, तो ये महापाप है। ऐसा करने से आपको जीवन में बड़े आर्थिक नुकसान का, धन की बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा।
1: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 21 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 21 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8 बजे तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 11:15 तक राहु काल का समय, प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार कौन से उपाय आप अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1, 10, 19 और 28 तारीख से। अगर आपका जन्मदिन इन दिनों पर पड़ता है तो आप कौन से उपाय कर सकते हैं, पंडित जी इससे ये जान लेते हैं।
0: जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को है तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये होता है अंक 1। और अंक 1 सूर्य की ऊर्जा से भरा हुआ है। 1 अंक वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहता है, फिर भी इनको हड्डियों, हृदय और आंखों की समस्या का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से हड्डियों की समस्या का। अगर 1 अंक वाले नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जप करें तो इनका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर होगा।
1: और चलिए वक्त हो चला है जानने का कि अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पड़ता है तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए जिससे आपकी जो सेहत है वो बेहतर हो सके।
0: अब बात करते हैं अंक 2 की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हो तो आपका अंक हो गया 2। 2 अंक में चंद्रमा की कोमलता और चंद्रमा की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी भरी रहती है। 2 अंक

0: को सांस, सर्दी जुखाम और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। कभी कभी इनको भावनात्मक और मानसिक समस्या भी काफी परेशान करती है। दो अंक वालों की ज्यादातर दिक्कतें मौसम बदलने पर आती हैं और मेंटली इमोशनली ये ज्यादा परेशान होते हैं। अगर दो अंक वाले नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का नियमित रूप से अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पारिवारिक समस्या आपको हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, करियर में लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको निभानी पड़ेंगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि अगर आपका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पड़ता है तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए।
0: अब बात करते हैं अंक 3 वालों की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को है तो आपका अंक है 3। 3 का अंक बृहस्पति का अंक माना जाता है और 3 अंक वालों को पेट की समस्या से, मोटापे से और मधुमेह यानी डायबिटीज से सतर्क रहना चाहिए। तीन अंक वाले खाने पीने में लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से पेट की दिक्कतें इनको परेशान करती हैं। तीन अंक वाले उत्तम स्वास्थ्य के लिए खान पान को सात्विक रखें तो बेहतर होगा, और ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें।
1: और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को है। पंडित जी से अब जान लेते हैं कि आपके जन्मदिन पर आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन करने के लिए।
0: अब बात करते हैं अंक 4 की। अगर आपका जन्मदिन महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को है तो आपका अंक है 4। 4 का जो अंक है ये राहु का रहस्यमयी अंक है। 4 अंक वालों को विचित्र बीमारियां होती हैं, जिनको पकड़ पाना बड़ा कठिन होता है। फिर भी इनको सांस की, त्वचा की और अवसाद यानी डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। 4 अंक वालों को कभी कभी विचित्र बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियों का कारण और बीमारियों का निवारण पता नहीं चलता। अगर आपका अंक 4 है तो सबसे ज्यादा आपको डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। राहु की उपासना से और नियमित जीवनचर्या से, रूटीन से आपको फायदा होगा। रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। सात्विक भोजन ग्रहण करें, ध्यान करें, बेवजह की चिंता और तनाव से बचाव करें।
1: और अब आगे बढ़ते हुए दैनिक राशिफल जान लेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन का लाभ होता दिख रहा है, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन मिल जाएगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक समस्या दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बारी उनकी है जिनका जन्मदिन 5 को, 14 को और 23 तारीख को पड़ता है। पंडित जी से ये जान लेंगे कि आप लोग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी सेहत बेहतर हो।
0: अब बात करते हैं अंक 5 की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को है तो आपका अंक है 5। ये अंक बुध से संबंध रखता है तो बुध ग्रह की कमजोरियों की बीमारियां इनको हो सकती हैं। 5 अंक वालों को त्वचा की समस्या, स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम की समस्या और एलर्जी की समस्या से बचना चाहिए। 5 अंक वालों को उम्र बढ़ने के साथ कभी कभी कान, नाक और गले की समस्या भी हो जाती है। 5 अंक वालों को अक्सर ENT की प्रॉब्लम, लगातार जुकाम की प्रॉब्लम और एलर्जी बने रहने की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपका अंक 5 है तो प्राणायाम करिए और नियमित रूप से टहलिएगा। भगवान गणेश की आप जितनी ज्यादा उपासना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणपति के मंत्र का जप करें, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो वहीं 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख वाले जन्मदिन वाले लोगों के लिए क्या कुछ उपाय हैं जिससे अपनी सेहत को बेहतर कर सकें, अब पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है।
0: अब बात करते हैं अंक 6 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख हो तो आपका अंक है 6। 6 का जो अंक है ये शुक्र ग्रह का अंक माना जाता है। सामान्यतः 6 अंक वालों को मधुमेह की यानी डायबिटीज की, आंखों की और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। 6 अंक वालों को उम्र बढ़ने के साथ वजन की समस्या भी हो सकती है। जो 6 अंक की महिलाएं हैं उनको अपने आंख का ध्यान देना है, वजन का ध्यान देना है और 6 अंक के जो पुरुष हैं उन्हें अपने किडनी और अपने प्रोस्टेट का ध्यान देना है। अगर आपका अंक 6 है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखिएगा। बेहतर होगा रविवार का उपवास रखें और चांदी धारण करें। चांदी का एक कड़ा या चांदी का छल्ला या चांदी की चेन अगर आप गले में धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। पुराने विवाद आपके हल होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। भावनाओं में आकर, इमोशंस में आकर निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान आपको मिलेगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर आपका जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को पड़ता है तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, पंडित जी से अब ये जान लेते हैं।
0: अब बात करते हैं अंक 7 की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को है तो आपका अंक है 7। 7 अंक का संबंध केतु नामक ग्रह से माना जाता है। 7 अंक वालों को मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम और रक्त की समस्या परेशान कर सकती है और कभी कभी हड्डियों में चोट लगने की, हड्डियों के सर्जरी की, हड्डियों के कष्ट की और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। 7 वालों को बीमारी से ज्यादा बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। अगर आपका अंक 7 है, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाएं, मंदिर में जाकर नियमित रूप से प्रार्थना करें और शिव जी की उपासना जरूर करें, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जप करें।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को पड़ता है। अगर आपका जन्मदिन इन दिनों में पड़ता है तो क्या कुछ उपाय करें जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो सके, अब ये जानने का वक्त है।
0: अब बात करते हैं अंक 8 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख है, आपका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है, तो आपका अंक है 8। ये शनि का अंक है। 8 अंक वालों को न्यूरो प्रॉब्लम से, रीढ़ की हड्डी की समस्या, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिन की समस्या और आंखों की समस्या से भी 8 अंक वालों को बचना चाहिए। 8 अंक वालों को उम्र बढ़ने पर त्वचा की समस्या अक्सर हो जाती है और बार बार चोट चपेट लगती है, जिसकी वजह से इनका कष्ट बना रहता है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 8 अंक से है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की उपासना करिएगा। कम से कम, ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो वहीं 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख वाले लोगों के जिनके इस दिन जन्मदिन पड़ते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं वो जान लेते हैं।
0: बात करते हैं अंक 9 की। अगर आपकी जन्म तारीख किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख है, तो आपका अंक हो गया 9। 9 का अंक मंगल का शक्तिशाली अंक माना जाता है। 9 अंक वालों को रक्त की समस्या, ब्लड की प्रॉब्लम, बार बार दुर्घटना होना, जीवन में एक से ज्यादा सर्जरी होना, एक से ज्यादा शल्य चिकित्सा होना, इसकी संभावना बनती है। 9 अंक वाले अक्सर बड़ी दुर्घटना के शिकार होते हैं और 9 अंक वालों को हाई ब्लड प्रेशर से, उच्च रक्तचाप से भी बचना चाहिए। अगर आपका अंक 9 है, तो सबसे पहले आप शांत रहना सीखिए, शांति से, प्रेम से काम करिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन का बड़ा लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन 21 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 21 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूर्व जन्म के बारे में बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। देखिए, पूर्व जन्म के बारे में ज्यादातर जो लोग बताते हैं वो काल्पनिक बातें हैं, बेसिर पैर की बातें हैं। बिना किसी आधार के लोग उल्टे सीधे अनुमान लगाते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्म की दुनिया में साधना करके, ध्यान करके, पूर्व जन्म के बारे में ठीक ठीक जाना जा सकता है। पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए गहरे ध्यान और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 21 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 21 सितंबर 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में किस वस्तु का इस्तेमाल जरूर करें। आज की गुडलक राशि है कर्क। इनको पूजा में सफेद मिठाई का, मिश्री का या चीनी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याएं दूर होंगी।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने शो के सबसे जरूरी सेगमेंट की ओर, जो है महा उपाय के बारे में जान लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या उपाय करें। साफ सुथरे पलंग पर या साफ सुथरे स्थान पर ही सोइए। सोने के पहले किसी मंत्र का जप करें या भगवान का स्मरण करें, या तो नमः शिवाय 27 बार जप करके सोइए, या गायत्री मंत्र 27 बार जप करके सोइए। इस तरह के सपने दिखने बंद हो जाएंगे।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
6: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए. और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पर धारे गजानन का वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए. हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे. हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं. हमें इंदौर के राम यादव जी ने अपने गणपति की तस्वीरें भेजी है. भव्य पगड़ी में सजे गजानन बेहद सुंदर लग रहे हैं. पीली धोती और धुरवा से सजी माला बप्पा को खूब फल रही है. और राम यादव जी के गणपति ने सीधे हाथ में लाल गुलाब थामा हुआ है और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं. दूसरी तस्वीर हमें ठाणे के मोहन माने ने भेजी है. इस तस्वीर में पापा की आरती की जा रही है. रोशनी और फूलों से पापा का आसन सजाया गया है. पापा के चरणों में गुड़हल का फूल रखा गया है और बड़े ही आदर भाव के साथ पापा की आरती उतारी जा रही है.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोग
7: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है, किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं, ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: गणेशोत्सव का आज 8वां दिन है। देश भर के गणपति पंडालों में भक्ति भाव से गजानन की पूजा अर्चना चल रही है। वहीं मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल में भी दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार उमड़ रही है, और इसी कड़ी में कल रात क्रिकेटर रोहित शर्मा और धवल कुलकर्णी भी लालबाग चौराहा के पंडाल में दर्शन करने पहुंचे। वहीं उद्योगपति अनंत अंबानी भी एक बार फिर से लालबाग चौराहा के दरबार में आराधना के लिए पहुंचे। इस बीच लालबाग चौराहा की भव्य आरती भी की गई, परंपरा के अनुसार उनका श्रृंगार भी किया गया। 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान हर दिन लालबाग चौराहा के पंडाल में आने वाले लोगों की श्रद्धा देखते ही बनती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई में शिवडीचा राजा के पंडाल की अनोखी झलक। मुंबई के प्रसिद्ध शिवडीचा राजा मंडल ने अपने 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस गणेशोत्सव पर पंडाल में जलमग्न द्वारका की भव्य और अनोखी थीम पेश की है। पंडाल के अंदर पौराणिक पानी के भीतर डूबी हुई भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का अद्भुत और जीवंत दृश्य तैयार किया गया है। यहाँ नीली रोशनी, समुद्री जीवों के प्रभाव और इमर्सिव साउंड लाइट सेटअप के जरिए को समंदर के अंदर का एहसास कराया जा रहा है। यह अनोखा पंडाल मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और भारत के दूसरे हिस्सों से भी भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ समुद्र के नीचे बसी द्वारका का नजारा दिखाया गया है, जिसे आने वाले लोगों को खास तौर पर तैयार की गई थीम के साथ गणपति की मूर्ति देखने का मौका मिल रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रामनगरी अयोध्या में गणेशोत्सव की खास तस्वीरें। अयोध्या नगरी में बने गणपति पंडाल यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। अयोध्या में इस साल गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां 150 से ज्यादा पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की गई। यहाँ के कुर्मी टोला, बड़ा रमना और अवधपुरी वार्ड समेत पूरे शहर में आकर्षक पंडाल, रंग बिरंगी लाइटें और स्वागत द्वार सजाए गए हैं। यहाँ के पंडालों में गणपति बप्पा मोरया के सांसान जय श्री राम की भी गूंज है। देश के कोने कोने में गणेश उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। पश्चिम से पूर्वी भारत और उत्तर से दक्षिण भारत तक तमाम शहरों में अलग अलग थीम पर गणपति पंडाल सजाए गए हैं और इसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के वारंगल में स्थापित अनोखे गणपति की तस्वीरें। गणपति को मंगल मूर्ति कहा जाता है, लेकिन वारंगल में न्यायमूर्ति गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित की गई है। तेलंगाना के वारंगल जिले के रमनापेट में गणेश उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट की थीम पर तैयार किया गया न्यायमूर्ति गणपति पंडाल और इको फ्रेंडली प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण है। आयोजकों के अनुसार इसे न्याय और निर्णय की अवधारणा के रूप में तैयार किया गया है, क्योंकि भगवान गणेश को सभी के लिए न्याय और निर्णय की सर्वोच्च पीठ माना जाता है। जोधपुर में भारत और जापान के सैनिक हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं और इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और राफेल के साथ जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। आपको बता दें 22 सितंबर तक चलने वाला ये अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, परिचालन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगा।

0: भारत के ये हवाई योद्धा इन दिनों जापान के साथ साथ अपने युद्ध कौशल का परचम लहरा रहे हैं। भारत के जोधपुर एयरबेस पर चल रहे वीर गार्जियन 2026 में जापान और भारत के हवाई योद्धा अपने कौशल को परख रहे हैं। वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास के लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत आए थे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह भी है कि इस युद्ध अभ्यास में भारत के एयर चीफ अमरप्रीत सिंह और जापान के एयर चीफ जनरल ताकेहिरो मोरिता ने तेजस में उड़ान भरी। जोधपुर का आसमान इस खास पल का गवाह बना। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी बल्कि भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी। जापान एयर एंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकेहिरो मोरिता ने तेजस लड़ाकू विमान की जमकर तारीफ की।
1: I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas. As an aircraft bomb from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
0: दोनों देशों के वायु सेना प्रमुखों की ओर से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं जापानी वायुसेना ने अपने F-2A लड़ाकू विमान के साथ शिरकत की है। युद्ध जैसे हालात में दोनों वायुसेनाएं अपनी हवाई युद्धक क्षमताओं को परख रही हैं। हालांकि यह अभ्यास अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। 2 सितंबर से 22 सितंबर तक जोधपुर में चल रहे इस अभ्यास में दोनों वायुसेनाएं कई तरह के हवाई अभियानों और युद्धक गतिविधियों का अभ्यास कर रही हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। जोधपुर के आसमान में तेजस की उड़ान ने संयुक्त अभ्यास में भारत की स्वदेशी हवाई शक्ति को खास तौर पर सामने रखा है। अभी तक हुए इस अभियान में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर चुके हैं। दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों ने एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं और युद्धक तौर तरीकों को भी समझा है। संयुक्त अभियानों के दौरान बेहतर समन्वय विकसित करना भी अभ्यास का अहम हिस्सा है। भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में भी इसे जापान में आयोजित किया गया था। वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रणकौशल से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखती हैं, तो वहीं युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन चल रहा है। इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का परिचय दे रहे हैं। युद्धाभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दोनों देशों के 6600 जवान शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 6600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और माना जा रहा है कि ये अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है।
0: दुश्मनों के किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तोनाबूद करना है ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है और यही वजह है कि भारतीय सेना और अमेरिका सेना जाबाजी का अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सैनिक राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज और औली में कर रहे हैं।
3: और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600-600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
0: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगरानी और टोही के लिए आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन महाजन में चल रहा है। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। इससे योद्धाओं को वास्तविक युद्ध जैसे हालात का अनुभव मिलेगा। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद इंटरऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं सीख रहे हैं और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर है। इससे संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ऐसे अभ्यास दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। इसी क्रम में महाजन फायरिंग रेंज में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर तोप से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस युद्ध अभ्यास का एक मकसद यह भी है कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए समझ विकसित करना। जहां संचार व्यवस्था बाधित हो, बिना इंसानी दखल वाले सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा हो और इंटेलिजेंस प्रोसेस करने और फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा हो। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है? और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।

0: में ही है
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: एशियन गेम्स में भारत को तीसरा मेडल, पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में सिल्वर जीता। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान को मात दी, तैराकी में भी उम्मीदें। देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला, लालबाग चौराहा के दरबार में भी भक्तों की कतार। गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकारा राइड कर ले रहे हैं आनंद। श्रीनगर की डल लेक के किनारे पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। सहारनपुर में आस्था का महाकुंभ, गोगा जी महाराज के ऐतिहासिक छड़ी मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, 800 साल से परंपरा जारी है। केरल में एक बार फिर बादल बरसेंगे, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज,
7: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
7: शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं गणेश उत्सव के साथ। देश भर में धूमधाम से ये उत्सव जारी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक गणेश उत्सव को लेकर खास आयोजन हो रहे हैं और इसको लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है, तो ये रंग भी आपको आगे दिखाएंगे। तो वहीं गणेश उत्सव में शानदार और भव्य पंडाल भी सजाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी अनोखा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर डिजिटल गणेश पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें सनातन संस्कृति की 3D झलक भी देखने को मिल रही है, तो वहीं आपको वहां भी लिए चलेंगे। और इधर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों को खास सौगात मिली है। आपको बता दें यहाँ के नौशेरा के बॉर्डर वाले क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है ताकि ग्रामीणों को आवाजाही में आसानी हो सके। कहां कहां चल रहे हैं ये काम आपको आगे ये भी बताएंगे। तो वहीं उधर एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। इन गेम्स में भारत को तीसरा मेडल मिला है। पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में सिल्वर जीता। तीनों मेडल्स शूटिंग में आए हैं। आज भी भारत को कई मेडल्स की उम्मीद है। आज कौन से हैं मुकाबले, आपको आगे बता

आएंगे। इसके अलावा आपको चाइना लिए चलेंगे, जहां के हांगझोउ में 300 से ज्यादा रोबोट की अनोखी परेड का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा प्रकार के रोबोट शामिल हुए, तो कैसा रहा ये नजारा बताएंगे आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का। एशियन गेम्स के दूसरे दिन भी भारत ने शानदार शुरुआत की। पहले दिन भारत ने दी सिल्वर मेडल की जीत, तो वहीं सोनम इलावेलिन और विनोद की तिकड़ी ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत को रजत पदक दिलाया। फिर इलावेलिन वलारिवन ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में भी सिल्वर पर निशाना साधा। आज भी भारत को कई मेडल्स की उम्मीदें हैं। गणेशोत्सव का आज 8वां दिन, देश भर में धूमधाम से गजानन की आराधना जारी है, तो वहीं मुंबई से लेकर कोलकाता तक गणेशोत्सव को लेकर आयोजन जारी है। कई जगहों पर गणपति प्रतिमा का विसर्जन भी किया जा रहा है। गोरखपुर के पंडित रामप्रसाद बिस्मिल नगर स्थित गीता वाटिका में श्री राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर आयोजित इस महोत्सव में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। पंडाल जय राधे जय श्री राधे के जय घोष से गूंज उठा। घड़ियालों की आवाज के बीच श्री राधा रानी की प्राकट्य आरती हुई और इस दौरान पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुरी में स्थित श्री प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। भारतीय सेना के प्रशिक्षित सैन्य डॉग भी भारत और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2026 का हिस्सा बने हैं। राइस विक्टर जैक और राउडी नाम के 4 सैन्य डॉग्स ने खास अभियानों में सैनिकों की मदद करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत और जापान के बीच जारी द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापान के एयर चीफ जनरल मोरिता भी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने जोधपुर और एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरी और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से स्वदेशी LCA तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुए। कटक में ओडिशा प्रो T20 लीग का शानदार आगाज हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन चरण मांझी ने बाराबती स्टेडियम में मुकाबले का उद्घाटन किया। ओपनिंग सेरेमनी में आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में एक अनोखी भेंट चर्चा में है। नेमहेड़ा निवासी धर्मराज बंजारा ने 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बना मॉडल भगवान सांवलिया सेठ को अर्पित किया। चाइना में 300 से ज्यादा रोबोट की अनोखी परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान हांगझोउ में रोबोट्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा प्रकार के रोबोट शामिल हुए।

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देश भर में इन दिनों गणपति महोत्सव की धूम है। दिल्ली से लेकर मुंबई और अयोध्या से लेकर सूरत तक बप्पा के भव्य दिव्य पंडाल सजे हुए हैं। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में आस्था अपार है। बप्पा के दर्शन पूजन के लिए क्या आम क्या खास, लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस बार गणपति उत्सव में आस्था के साथ तकनीक का रंग भी खूब देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसे अनोखे पंडाल तैयार किए गए हैं जहां आधुनिक तकनीक के जरिए गणपति उत्सव को नया अंदाज दिया गया है। कहीं रोबोट बप्पा की आरती करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं डिजिटल स्क्रीन और लाइटिंग के जरिए भगवान गणेश का भव्य दरबार सजाया गया है। कहीं पंडालों में सामाजिक संदेश दिए जा रहे हैं, तो कहीं पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत किया गया है। यानी इस बार गणपति उत्सव में परंपरा भी है, आस्था भी है और आधुनिकता का रंग भी खूब चढ़ा हुआ है।

और चलिए अब आपको मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन करवाते हैं। वहां पर सुबह के वक्त भगवान सिद्धि विनायक की मंगला आरती की गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप घर बैठे GNT के माध्यम से सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। मुंबई से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब सुबह सुबह यहाँ आरती पूजन हुआ।

0: तो वहीं मुंबई में लालबागचा राजा का दिव्य दरबार भी सजा हुआ है। आपको बता दें, भक्त दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और आज सुबह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शन के लिए लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। कितनी भीड़, कितना हुजूम श्रद्धालुओं का यहां पर उमड़ रहा है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लोगों का ये भक्ति भाव है कि दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव के पर्व पर लोग यहां पर गणपति बप्पा की झलक पा लेना चाहते हैं। और आपको बता दें, लालबागचा राजा को मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहां पर पहुंचकर मन्नत मांगता है वो अवश्य पूरी होती है, और यही वजह है कि यहां पर ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालबागचा राजा की, ये भव्य दिव्य प्रतिमा, ये अद्भुत तस्वीरें मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मुंबई में आस्था का सबसे बड़ा दरबार लालबाग की राजा का है, जहां दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का सैलाब उमड़ता है। दूर दूर से लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। किसी की आंखों में बप्पा को देखने की खुशी है, तो किसी के हाथों में मनोकामनाओं की पर्ची है। हर घर हर जुबां पर एक ही जयकारा है, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। लालबाग की राजा का दरबार सिर्फ भव्यता की वजह से खास नहीं है, बल्कि यहाँ पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इसे अलग पहचान देती है। मान्यता और श्रद्धा के साथ भक्त बप्पा के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कोई नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगता है, तो कोई परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है, और इसी विश्वास की वजह से बप्पा के दर्शन के लिए VIP भी कतार में लगे हुए नजर आते हैं। रोहित शर्मा को ले लीजिए। रोहित शर्मा ने लालबाग के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया, जबकि कुछ दिन पहले अंबानी परिवार ने भी पापा के दरबार में हाजिरी लगाई थी। वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बेहद शानदार तरीके से, बेहद धूमधाम के साथ गणेश उत्सव के इस पर्व को मनाया जा रहा है। इसी बीच तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, धनंजय सांबले हमारे साथ अकोला से जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। धनंजय, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? आज 8वां दिन हो चला है, किस तरह के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं?
1: जी बिल्कुल दीपाली जी, हम फिलहाल है अकोला के चिंताहरने वाला चिंतामणि भगवान जी के पास। देखिए चिंतामणि की ये भव्य जो स्वरूप है, आप देख सकते हो कि इतना सुंदर बप्पा का ये स्वरूप है, मानो सबकी उनके चेहरे के इधर देखकर ऐसा लगता है हमारी हर चिंता जो है वो हर वो लेगा। और साथ ही ये जो पंडाल है ये शास्त्री नगर इलाके में है, और यहाँ पर इस वक्त ये सुंदर सजावट तो की है, साथ ही यहाँ पर जो है वो जगन्नाथपुरी की भी झांकी यहाँ पर की गई है। और देख सकते हो आप ही जगन्नाथपुरी में, जैसे जगन्नाथ जी है, बहन सुभद्रा है और बलभद्र भाई है, तीनों ही जो है यहाँ पर इसकी झांकी की है। और दूसरी ओर देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो है खाटू श्याम जी का भी यहाँ पर ये झांकी की गई है। हमारे साथ पंडाल के जो अध्यक्ष है अमय, वो है हमारे साथ। ये सब कुछ जो है पप्पा चिंता हारने वाला है, क्या चिंता है फिलहाल की कंडीशन में जो हारने वाला है पप्पा?
2: हमारे अकोला में तो आप सभी को पता ही है, जैसे पानी की एक सबसे बड़ी चिंता है, तो इस बार पानी की चिंता देखते हुए हमने सबसे पहले ये निर्णय लिया है कि हम ये मूर्ति का जैसा प्राण प्रतिष्ठा किए वैसे प्राण विसर्जन करेंगे, पर मूर्ति पानी में विसर्जित ना करते हुए यही विसर्जन इसका पानी में हम, मतलब जो विधिवत होता है वैसा करके ये मूर्ति हम 5 साल तक वैसे की वैसी रखने वाले है। ये हमने मंडल की ओर से एक अभी नया निर्णय लिया गया है।
1: तो देखिए दीपाली जी, सबसे अहम बात यही है कि ये सबसे बड़ा सवाल है, अनिनों के चलते जिस तरीके से अकोला और विदर्भ में जो है पूरी तरीके से सूखे की स्थिति है, नदी नाले में जितना पानी चाहिए था, नदियों में जितना पानी चाहिए था वो विसर्जन के लिए यहाँ पर नहीं है, तो मंडल जो है वो स्वयं पूर्ति से इतनी बड़ी बापा की प्रतिमा तो बताते हैं।
0: पहल है जो इस बार की गई है कि इस बार 5 सालों तक किसी तरह से मूर्ति को रखा जाने वाला है, ये बहुत ही अच्छा संदेश देता है सोसाइटी को, समाज को। जिस तरह से आजकल इको फ्रेंडली मूर्तियों का भी प्रयोग किया जा रहा है, उनका पूजन किया जा रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। आज पूरे दिन के लिए क्या कुछ कार्यक्रम हैं, कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं वहां पर, श्रद्धालुओं की कितनी मौजूदगी है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइएगा।
1: देखिए आज सुबह का वक्त है, और सुबह के वक्त में जो है बापा के चरणों में जो है वो धीरे धीरे लोग जो है, क्योंकि रात को 2 बजे तक जो है यहाँ पर बापा के दर्शन लेने के लिए जो भक्त है वो यहाँ पर आते हैं, और आज सुबह जो है वो धीरे धीरे जो है लोग जो है सुबह अल सुबह जो है बापा के दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह नहीं तो शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होती है दीपाली जी, और सबसे अहम बात यही है कि हर पंडाल में जो है वो इस तरीके का माहौल है कि आज 8वां दिन जरूर है, लेकिन बापा जो है अपने खुशियों भरे ये 8वें दिन, और जिस तरीके से उनके विसर्जन का वक्त नजदीक आते जा रहा है तो भक्त भी थोड़े बहुत भाव विभोर यहाँ पर नजर आ रहे हैं दीपाली जी।
0: जी, और कई जगहों पर अभी विसर्जन शुरू भी हो चुका है। कहते हैं कि ऑड डेज जो होते हैं उनमें आप विसर्जन कर सकते हैं गणपति बप्पा का। तो महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर विसर्जन देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें हैं, जरा बताइएगा।
1: जी दीपाली जी, देखिए विसर्जन का ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में जैसे है 1.5 दिन के गणपति होते हैं, 5 दिन के गणपति होते हैं, और फिर 10 दिन के गणपति होते हैं। तो 5वें दिन का जो है कल का विसर्जन जो है वो हो चुका है, और सबसे अहम बात है कि मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर जो है फिलहाल जल संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके वजह से जो है नगर निगम ने जिस तरीके से आप देखो कि एक विशेष कुंड यहाँ पर बनाया गया है, जिस तरीके से अकोला के बीचों बीच बहने वाली जो मोरना नदी है वो मोरना नदी का जलस्तर बहुत ही कम हुआ है, जिसके चलते जो है सामान्य मूर्तियां मतलब 2 या 3 फीट की भी प्रतिमाएं जो है उसमें विसर्जित नहीं होती है। तो इसीलिए महानगर निगम ने जो है एक विशेष जो है विसर्जन कुंड यहां पर तैयार किए गए हैं, जाकि वहां पर उस कुंड में जो है बाहर से पानी डाला जाएगा और वहां पर विधिवत उसका विसर्जन किया जाएगा। और ये सबसे बात की इसमें बापा की जो प्रतिमा की जो विडंबना होती है या तो फिर उनके खंडित होती है वो यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए ये बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो किया
0: और
1: गया
0: बहुत शानदार पहल है ये, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है, पर्यावरण का खास ख्याल रखा जा रहा है, और इसी तरह से अपनी आस्था और भक्ति का इजहार भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धनंजय तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। शहर शहर बप्पा के पंडाल भी अलग अलग थीम पर तैयार हो रहे हैं, तो चलिए आपको 2 ऐसे यूनिक पंडालों में लेकर चलते हैं, जिसमें एक हो रहे मुंबई के शिवडी चा राजा का अंडर वाटर पंडाल, तो दूसरी ओर है अमरावती में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल की ओर से तैयार की गई खाटू श्याम मंदिर की अनोखी झांकी। दोनों ही पंडाल इस गणेशोत्सव धार्मिक थीम के साथ साथ तकनीक का मेल दर्शा रहे हैं, दिखाते हैं आपको।

0: संपूर्ण द्वारका नगरी बसी है इस गणेश पंडाल में। नाम है शिवड़ीचा राजा गणपति पंडाल, जिसको इस साल 75 बरस हो गए हैं। श्रद्धालुओं की ये भीड़ दरअसल मुंबई के शिवड़ी में शिवड़ीचा राजा गणेश पंडाल में ही जुट रही है, जो इसके 75वें अमृत महोत्सव पर खासकर अंडर वाटर द्वारका की अनूठी थीम को देखने ही पहुंच रहे हैं। पंडाल के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको समूचे पंडाल में एसी की ठंडक के साथ होलोग्राम तकनीक, लेजर लाइट्स और समंदर के अंदर की दुनिया ही दिखेगी। इन्हीं तमाम विशेषताओं के इस्तेमाल से प्राचीन द्वारका नगरी को शिवड़ीचा राजा पंडाल में पुनर्जीवित किया गया है। गणेशोत्सव की रौनक है तो लोग भी मुंबई के पंडालों में बप्पा का दर्शन करने के साथ ही इस गणेश पंडाल का रुख करना भूल नहीं रहे। भाई, शिवड़ीचा राजा पंडाल की भव्यता और इसकी खास अंडरवाटर द्वारका थीम ही इतनी आकर्षक है कि छठा के बीच दूर दराज से लोग आकर बप्पा के दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं।
1: ये साल हम लोग ने कुछ यूनिक करने का सोचा है, तो हम लोग ने अंडर वाटर द्वारका ये थीम सिलेक्ट करके जो गोमती और अरबी समुंदर के बीच में जो अपना द्वारका का डूब गई है, वो द्वारका बनाने का एक प्रयास किया है। और ये द्वारका देखने के लिए और ये अपना ये द्वारकाधीश शिवड़ी का राजा का दर्शन लेने के लिए गणपति के पहले दिन से पूरे भारत से सब भाविक या ठिकान या जगह पर आ रहे हैं। डेली सुबह 12 बजे ये हमारा द्वारका का दर्शन शुरू होता है और सुबह 6 बजे 7 बजे तक पब्लिक आते रहता है और ये द्वारकाधीश शिवड़ी का राजा दर्शन लेते हैं और द्वारका का भी दर्शन लेते हैं।
0: गणेशोत्सव शुरू होने के साथ शिवड़ीचा राजा गणेश हर साल 11 दिन पंडाल में विराजमान रहते हैं। आयोजनकर्ता बताते हैं कि इस साल डायमंड जुबली पर गणेश पंडाल के लिए कुछ ऐसी ही थीम पर काम करना था, जिसे देखने केवल मुंबई से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग जुटे। उनके अनुसार भले ही अंडरवाटर द्वारका का प्रोजेक्ट स्थापित करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उनके राजा की कृपा से ये भी मुमकिन हो गया। फिलहाल इस पंडाल को देखने वालों की भीड़ देश दुनिया से पहुँच रही है।
1: बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट था, लेकिन वो हमारे राजा की कृपा से वो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हो गया और पूरा भारत भर से पब्लिक ये जगह आ रहा है।
0: बप्पा के इस यूनिक अंडरवाटर पंडाल में आम हो या वीआईपी, सब सामान्य लाइन में लगकर बप्पा का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही नेचर की इस खूबसूरत तस्वीर को भी निहार रहे हैं। फिलहाल तो शिवड़ीचा पंडाल का ये भव्य स्वरूप, एशिया का सबसे बड़ा भगवान गणेश का होलोग्राम और पानी के नीचे की दुनिया का दिव्य अनुभव महसूस करा रहा है। अब जरा इस गणेश पंडाल को ही देख लीजिए, जिसमें खाटू श्याम मंदिर की अनोखी झांकी बनाई गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने इस बार खाटू श्याम की ये खास धार्मिक थीम तैयार की, जिसमें बप्पा को बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। पंडाल में आने वाला हर शख्स पहले भगवान गणेश और फिर खाटू श्याम जी का दर्शन करता है। इस गणपति पंडाल की बारीक सजावट और धार्मिकता से भरपूर माहौल ही लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है। लगभग 98 साल से आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल गणेशोत्सव की परंपरा को निभा रहा है। हर साल उत्सव को खास बनाने के लिए ये अलग अलग थीम भी प्रस्तुत करता है।
2: 1928 में अब हमारे मंडल की स्थापना थी और तब से लेके अब तक कई साल से हम ये हर साल गणेश उत्सव का जो है आयोजन करते हैं।
0: फिलहाल तो अमरावती में गणेश उत्सव के दौरान खाटू श्याम मंदिर का ये शानदार सेटअप आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल के गणपति पंडाल का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। अब आखिर में जालना की जरा ये तस्वीर देखिए, जहाँ रामायण में लंका कांड के एक दृश्य को बेहद अनोखे अंदाज में दिखाया गया। कहने को ये श्री अनोखा गणेश का पंडाल है, लेकिन इसी पंडाल में जब बजरंग बली द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के होश में आने का प्रसंग तकनीक के साथ साकार किया गया, तो हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाने का ये दृश्य वहाँ मौजूद लोगों को खूब आनंदित कर गया। फिलहाल तो खासकर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के बीच खूबसूरत पंडालों में विशाल मूर्तियां, कलात्मक सजावट और अनूठी थीम के कारण ही गणेश भक्तों और पर्यटकों का आकर्षण बनी हुई है। अमरावती से धनंजय साबले और जालना से गौरव विजयशाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और चलिए अब एक शानदार खबर आपको बता देते हैं। गुड न्यूज सामने आई है एशियन गेम्स से, भारत की झोली में चौथा मेडल आ चुका है। जी हां, आपको बता दें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। विमेन्स ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम की कैटेगरी में सेमीफाइनल में सुचिका तरियाल को सिंगापुर के टेओ हुई हुन ने 2-0 से हराया है। तो वहीं एशियन गेम्स के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत ने पहली बार कोई मेडल अपने नाम किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। शानदार खबर, गुड न्यूज हम आपको बता रहे हैं एशियन गेम्स से जो लगातार भारत के लिए आ रही हैं। इससे पहले शूटिंग में, टेबल टेनिस में और अब एक और मेडल मिल चुका है। और चलिए अब बात करते हैं गणेश उत्सव की। इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति बप्पा पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियोस या तस्वीरों को शेयर करने के लिए है। आपको बता दें जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजिए तो अपना नाम, अपने शहर का नाम या गांव और कस्बे का नाम जरूर भेजिए। गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाई जा रहे इस उत्सव से जुड़िए और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के प्रेरणा विजय किंकर की है। आपको बता दें इस वीडियो में प्रेरणा विजय किंकर ने अपने बप्पा की पगड़ी को मोर पंख से सजाया है, गले में फूलों की माला है, साथ ही श्री कृष्ण की सुंदर मूरत भी नजर आ रही है। बापा के आसन को माखन से भरी हांडी से भी सजाया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, मुरादाबाद के सतेंद्र सिंह ने इसे भेजा है हमें। बापा को गोटेदार पोशाक पहनाई गई है, गेंदे और गुलाब की माला से बापा का श्रृंगार किया गया है। बापा की बैकग्राउंड को भी रंग बिरंगी झालर से सजाया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वीडियोज हम दिखाएं तो हमें अपनी वीडियोस शेयर कीजिए। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एशियन गेम्स में तीसरा मेडल किसको मिला आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है? और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स में भारत का चौथा मेडल, पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में सिल्वर जीता। सुचिका को मिक्स मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मिला। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान को मात दी। देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला। लालबाग चौराजा के दरबार में भी भक्तों की कतार लगी। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। श्रीनगर की डल लेक के किनारे पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। सहारनपुर में आस्था का महाकुंभ देखने को मिला। गोगा जी महाराज के ऐतिहासिक छड़ी मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, 800 साल पुरानी परंपरा है। एक बार फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आप सभी का स्वागत है। गणेश उत्सव का समापन तो 25 सितंबर को होना है, लेकिन कुछ जगहों पर गणपति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपनी मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग 5 दिन तो कुछ लोग 7 दिन में गणपति विसर्जन करते हैं। ये तस्वीरें गुजरात की हम आपको दिखा रहे हैं। गोधरा में अलग अलग पंडालों की गणपति की शोभा यात्रा निकली तो भगवान के सम्मान में पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए लोगों ने गणपति बप्पा की विदाई की और अगले बरस फिर से जल्दी आने की कामना की। सड़कों पर विशाल गणपति प्रतिमाओं से पूरा माहौल ही भक्ति और उत्साह से भर गया। विसर्जन के दौरान कुछ जगहों पर बारिश भी हुई, हालांकि इस बारिश का भक्तों के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ जगहों पर भक्तों ने बप्पा को बारिश के बीच विसर्जन स्थल तक ले जाने का खास इंतजाम भी कर रखा था। नगर निगम ने भी गणपति विसर्जन कुंड पर खास तैयारियां कर रखी थी ताकि विसर्जन के लिए आने वाले लोग पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन कर पाएं और किसी भी श्रद्धालुओं को इसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। विसर्जन कुंड के आसपास सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम थे। आला अधिकारी भी सारी तैयारियों पर नजर बनाए हुए।

0: जिस धूमधाम से बप्पा का आगमन हुआ, उसी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बप्पा की विदाई भी शुरू हो चुकी है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े और डीजे के संगीत पर झूमते भक्त बप्पा को विदा करने चले तो सड़कों पर आस्था का सैलाब सा उमड़ आया। ये तस्वीर गुजरात के गोधरा की है, जहां 80 से अधिक गणेश मंडलों ने अपनी मूर्तियों का विसर्जन किया। लेकिन विसर्जन से पहले जब ये शोभा यात्रा शहर की सड़कों से होकर गुजरी तो माहौल देखते ही बना। मौसम का बिगड़ा मिजाज भी बप्पा के इन भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाया। जोरदार बारिश के बीच भी भजनों पर भक्तों का झूमना जारी रहा। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या युवा, सभी ने बप्पा को अगले बरस जल्दी आने के लिए खुशी खुशी विदाई दी। उधर महाराष्ट्र के बीड तहसील के लिम्बा गणेश गांव में 225 वर्षों से चली आ रही एक गांव एक गणपति की अनूठी परंपरा इस साल भी पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ निभाई गई। सरकार वाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति का विसर्जन शाही ठाट बाट के साथ किया गया, लेकिन विसर्जन से पहले गणपति बाप्पा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजा, ढोल ताशों की गूंज, ताल मृदंग की थाप और भजनों से पूरा लिम्बा गणेश गांव ही भक्तिमय माहौल में डूबा दिखा। वहीं कोल्हापुर में मूर्ति विसर्जन को लेकर महानगर पालिका और जिला परिषद की ओर से एक खास अभियान चलाया गया, जिसके तहत मूर्तिदान अभियान को शहरवासियों का जबरदस्त समर्थन मिला। शहर के अलग अलग स्थानों पर 160 से अधिक आर्टिफिशियल विसर्जन कुंड बनाए गए थे, जहां लोगों ने मूर्तियों का विसर्जन किया। इस पहल से न सिर्फ नदी और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास हुआ, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इतना ही नहीं, इस बार महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने मूर्ति को विसर्जन स्थल तक लाने के लिए कोल्हापुर मेट्रो ट्रांजिट बसों का उपयोग किया, जो अपनी तरह का पहला प्रयोग था। गोधरा से भोई जयेंद्र कुमार बलवंत भाई, बीड से रोहिदास हलागले और कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको मुंबई नगरी लिए चलते हैं, जहां पर बेहद शानदार तरीके से गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, किस तरह के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं? गणपति बप्पा के दर्शन करवाइएगा और बताइएगा।
2: बिल्कुल, देखिए मुंबई, महाराष्ट्र और यहाँ की तमाम सड़कों पर गणेश उत्सव जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार 10वें दिन का विसर्जन नहीं है, बल्कि 12वें दिन का विसर्जन होगा। हमेशा ही गुड न्यूज़ टुडे की जो टीम है वो बड़े बड़े पंडालों पे पहुँचती ही है। ऐसा एक पंडाल जो बहुत ज़्यादा चर्चित है उपनगर मुंबई में, मैं इस समय वहाँ मौजूद हूँ। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, इस तरह की गूंज हर जगह देखने को मिलेगी। मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये असलफा इलाका का महाराजा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और 7-स्टार स्पोर्ट्स क्लब मंडल के नाम से जाने जाते हैं यहाँ के बप्पा। उपनगर मुंबई में भाजी मार्केट है असलफा नाम की, बहुत बड़ी, वहाँ पर ये विराजित हैं। और ख़ास बात यह है कि आसपास के रहवासी और व्यापारियों द्वारा इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। देखिए, बहुत ज़्यादा विशाल, भव्य, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। थोड़ा सा इन सभी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गणपति बप्पा
3: मोरिया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।
2: बहुत ही ज्यादा गणपति बप्पा खूबसूरत नजर आ रहे हैं, सुंदर नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने मिलकर के इसकी स्थापना की, क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए इनसे नहीं, आपसे बात करते हैं। मार्केट में आप बाजार में हैं, गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान है, क्या कहेंगे? कितने ज्यादा आप इनको मानते हैं और इनके आने के बाद में आज 8वां दिन है, कैसा पूरा एकदम रूप हो गया?
3: एकदम अच्छा माहौल लग रहा है गणपति बाबा आने से। गणपति बाबा जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा कि आए, अगली साल जल्दी आवे।
2: अच्छा, और एक अलग ही तरह की रंगत,
3: अलग ही खुशी की तरह है मार्केट में।
2: ओके, आप थोड़ा सा यहाँ है, क्या नाम है आपका?
4: दिग्विजय सिंह बाबा।
2: मुझे लगता है आप उत्तर प्रदेश रहते हैं, यहाँ सिर्फ स्पेशली मुंबई
4: हर साल आते हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने।
2: तो कौन कौन से बप्पा का दर्शन कर लिया अभी तक?
4: लाल बाग के राजा, अपना असलफा के महाराजा,
2: अच्छा,
4: और साइन हर जगह जो है घूम घूम के।
2: कैसा लगता है माहौल यहाँ शाम? पूरा एकदम लाइटिंग, गणपति बप्पा हर जगह।
4: वही बप्पा के दर्शन करने के लिए हम आते हैं यूपी से हर साल।
2: क्या बात है,
4: गणपति बप्पा।
2: आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से सिर्फ स्पेशली बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप क्या व्यवसाय करते हैं? बाजी गणपति, मतलब भाजी मार्केट में बप्पा आ चुके हैं, आज आठवां दिन है, कैसा लग रहा है, किधर कैसा माहौल?
5: अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है,
2: पूरा एकता का प्रतीक है ना।
5: हाँ, बहुत ही अच्छा।
2: पूजा पाठ पे बहुत विश्वास रखते हैं आप?
5: बहुत अच्छा लगता है, जब आएगा तो ऐसा लगता है विसर्जन ना हमेशा अच्छा ही लगता है, आएगा तो एकदम खुशहाली लगता है गणपति बप्पा आएगा तो।
2: आप क्या कहेंगे गणपति बप्पा को लेकर?
6: गणपति बप्पा हमारे दुकान के सामने हर साल आते हैं और अच्छी बात है, और हम इसे खुशी मनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, पूरा 11 दिन तक हम लोग।
2: आपकी व्यवसायी है, क्या करते हैं आप?
7: शॉप है किराने का।
2: अच्छा, किराने का। कैसा लग रहा है बप्पा यहाँ पे आए, माहौल क्या है?
7: बहुत खुशी हो रही है, असलपा में गणपति राजा हम हर साल बैठाते हैं, और जैसा सुबह उठते ही हम लोग आते हैं तो गणपति जी का दर्शन करते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत खुशी से जाता है। और गणपति बापा को यही कामना करता हूँ, आप जल्दी वापस अगले साल जल्दी आए और सबको आशीर्वाद देते रहे।
2: मुझे लग रहा है अब आपके अंदर कुछ सूझ गया होगा कि क्या कहना है, तो गणपति बप्पा
8: मौर्या,
2: गणमूर्ति
8: मौर्या,
2: जोर से गणपति बप्पा
8: मौर्या,
2: मंगलमूर्ति
8: मौर्या।
2: तो इस तरीके से आपने देखा है, व्यापारी है, किसी की किराने की दुकान है, किसी की पान की दुकान है, तो किसी ने किसी तरीके की सब्जी की दुकान लगा रखी है, लेकिन बाजार में जब से गणपति बप्पा आए हैं यहाँ की रौनक बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है, और जैसे जैसे बप्पा के विसर्जन का समय आ रहा है हर कोई मायूस हो रहा है, क्योंकि वाकई में हर कोई ये फील करता है कि उनके परिवार में एक ऐसा मेहमान आया है जिसे सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब उनका विसर्जन होता है तो लोग बहुत भावुक भी दिखाई पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में आस्था और समर्पण की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। वहां पर एक व्यापारी ने अपने कारोबार में मिली सफलता से खुश होकर भगवान के चरणों में करीब 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बनी सीमेंट प्लांट की रेप्लिका भगवान को अर्पित की है, और इस मॉडल की कीमत लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। व्यापारी धर्मराज बंजारा मानते हैं कि व्यापार में मिली इस सफलता के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत नहीं बल्कि सांवलिया सेठ की असीम कृपा भी है। बचपन से ही माता पिता के साथ मंदिर आने वाले धर्मराज के लिए सांवलिया सेठ हमेशा से आराध्य देव रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए धर्मराज बंजारा ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ नीम्बाहेड़ा से मंदिर तक पदयात्रा का आयोजन किया। पूरे रास्ते डीजे पर बजते भक्ति गीतों और सांवलिया सेठ के जयकारों के साथ श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। आपको बता दें चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर देश के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां व्यापारी भगवान को अपने व्यवसाय में हिस्सेदार मानते हैं। और चलिए अब आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। श्री राम की नगरी में गणपति की पूजा धूमधाम से हो रही है। सुंदर सुंदर पंडाल सजे हैं जहां भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भव्य ये प्रतिमा है। एक तरफ जय श्री राम लिखा हुआ है, दूसरी ओर गणपति बप्पा की प्रतिमा, यहाँ पर पूजा अर्चना उनकी की जा रही है। श्री राम की नगरी में कैसे गणपति बप्पा का स्वागत किया गया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे उनकी पूजा अर्चना जारी है गणेश उत्सव के पर्व पर, किस तरह से लाइटिंग से सजावट की गई है, भव्य प्रतिमा किस तरह से सजाई गई है वो देखिए। और चलिए अब बात करते हैं एशियन गेम्स की, जहां पर भारतीय महिला शूटर्स का जलवा देखने को मिला है। आपको बता दें शूटिंग में सोनम मस्कर, इला वेनिल वलारिवन और विदर्स विनोद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जाहिर है इन चैंपियंस के घर जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
9: एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर सोनम उत्तम मस्कर की कामयाबी पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उत्सव का माहौल है। इस युवा शूटर के घर पर उनकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। जाहिर है सोनम के परिवार, कोच और एकेडमी के साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
10: माय सिस्टर गॉट सिल्वर मेडल क्योंकि अभी तक का उनका जो जर्नी है, जिस हिसाब से उन्होंने हार्डवर्क किया है, दैट इज कमेंडेबल एंड उसके हिसाब से शी डिजर्व्स एवरीथिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आगे भी ये करेगी उसको मैं दुआ देती हूँ कि ऐसे ही मेरे लेके देश के लिए
11: मेडल
10: लेके आओ।
9: कोच रोहित हवलदार और कोच राधिका बराले की सोनम की सक्सेस जर्नी में अहम भूमिका रही है। वो इस कामयाबी का श्रेय सोनम की मेहनत और लगन को देते हैं।
12: एक दिन इंडिया का नाम रोशन करेगी और उसके बाद उसने 24 में साइका एक्सलेंस में ज्वाइन किया और वहाँ से उसने और अच्छी शुरुआत लेके हमारा जो प्रेडिक्शन था उसको उसने साबित कर दिया और उसको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
9: एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने टीम इवेंट और फिर महिला 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। जाहिर है इलावेनिल के घर पर भी जश्न का माहौल है।
13: अच्छा लग रहा है, भारत के लिए मेडल लाई है, अपना क्या खुल गया है, क्या बोलेंगे, मेडल काउंट चालू हो गया है एंड फर्स्ट मेडल मैच शूटिंग का होता है, उसी में हम लोग मिस नहीं किया, हमको 2 मेडल मिला है तो हम खुशी है।
14: मैं बहुत खुश हूँ कि 12 साल के बाद इतना बड़ा मेडल मिली है और सिल्वर मेडल थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है फैमिली के लिए और भारत के लिए भी एंड उनके कोच और मेंटर्स बहुत बढ़िया काम किए हैं ये 12 साल उनके साथ साथ देके एंड हम सब बहुत प्राउड है।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलावेनिल वलारिवन को एक ही दिन में 2 पदक जीतने पर बधाई दी। परिवार का मानना है कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर इलावेनिल वलारिवन के करियर में अहम माइलस्टोन है। अब इन्हें उम्मीद है कि ये युवा निशानेबाज ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक मनोरंजक खबर जो न्यूयॉर्क से सामने आई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में निकली पेट्स की फैशन परेड। जी हाँ, न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क में बड़ी संख्या में डॉग्स के साथ उनके मालिक पहुंचे और मौके का जमकर लुत्फ उठाया।
9: पालतू कुत्तों और उनके मालिकों की ये जमघट बेहद खास है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क की हैं। यहाँ पर पॉज ऑन परेड के 4th संस्करण का आयोजन किया गया जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार तरीके से सजे धजे डॉगीज ने हिस्सा लिया। कहीं कुत्ते स्टाइलिश आउटफिट में नजर आए तो कहीं अपने मालिकों के साथ स्ट्रोलर में सैर करते दिखे। किसी ने मैक्सिकन हैट पहन रखी थी तो किसी को परी के रूप में सजाया गया। एक डॉग स्केटबोर्ड पर अपनी स्किल्स दिखाता नजर आया तो एक फ्रेंच अंदाज में तैयार होकर पहुंचा। वहीं कई लोगों ने अपने दुलारे डॉगीज को मोतियों की माला, चमकीले जैकेट, रफल्स और अलग अलग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में सजाया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉग्स और उनके मालिक पहुंचे। इसका मकसद इंसानों और उनके वफादार दोस्तों के बीच के खास रिश्ते को सेलिब्रेट करना था।
15: Which the energy here is just incredible, as it always is when you have so many people who love dogs in one place. This is the 4th time we've come together for Paws on Parade in partnership with Bryant Park, and we really just couldn't ask for a better day, a better vibe, and a better community of dog lovers than we have here in New York City.
9: यहाँ पर सिर्फ सजे धजे डॉग्स को देखना ही अहम नहीं था बल्कि हर कोई अपने अपने पेट्स के साथ इस खास दिन का आनंद लेता नजर आया। कुछ डॉग्स स्ट्रोलर में आराम फरमाते दिखे तो कुछ को उनके मालिक प्यार से सैर कराते नजर आए। इस दौरान लोगों को अपने पेट्स के साथ समय बिताने और दूसरे डॉग लवर्स से मिलने का भी मौका मिला।
11: So it's a great event, especially for other New Yorkers. You know, everyone has a dog stuck in their apartment, and this is a great time for everyone to kind of come out and meet all the other people with dogs and have their dogs meet and have everyone have a good time and get out in the sun and enjoy the park.
16: पार्क में एक तरफ डॉगीज माहौल का मजा ले रहे थे तो दूसरी तरफ उनके मालिक इस पूरे माहौल को कैमरे में कैद कर रहे थे। इस दौरान पेट्स और उनके मालिकों के बीच बॉन्डिंग को देखकर एक बार फिर ये साबित हो गया कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं बल्कि ये दोस्ती प्यार और साथ का रिश्ता है। इस आयोजन में डॉग्स के साथ उनकी सुरक्षा और देखभाल से जुड़े संगठनों ने भी हिस्सा लिया। खास तौर से अमेरिकन एकेडमी ऑफ कैनाइन वाटर रेस्क्यू के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद रहे। ये संस्था ऐसे डॉग्स को प्रशिक्षित करती है जो प्रोफेशनल लाइफगार्ड्स और वाटर रेस्क्यू टीमों की मदद कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब वक्त हो गया है आपको इंस्टा स्टोरी दिखाने का। उन कलाकारों की इंस्टा रील आपको दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए रूपाली गांगुली की फनी इंस्टा स्टोरी।

0: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: एशियन गेम्स में भारत को छठा मेडल, शूटिंग में आए 5 मेडल्स, तो आए हिमांशु रुद्रांश को मेंस 10 मीटर राइफल में सिल्वर और ब्रॉन्ज, सुचिका को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक। देशभर में गणेशोत्सव की रौनक, गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला लगा, लालबाग चौराहा के दरबार में भी भक्तों की कतार लगी। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद, श्रीनगर की डल लेक के किनारे पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। और चलिए अब वक्त हो चला है किस्मत कनेक्शन का, लेकिन उससे पहले एक शानदार खबर आपको बता दी। भारत ने जापान की नगोया में चल रहे एशियन गेम्स में 6 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। जी हाँ, गुड न्यूज सामने आई है, इनमें से 5 मेडल्स शूटर्स ने हमें दिलाए हैं और 1 मेडल मिक्स्ड मार्शल ने दिलाया है। आपको बता दें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल देखने को मिला है, हिमांशु ने सिल्वर मेडल जीता तो वहीं रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। भारत को अब तक कुल 6 मेडल्स मिल चुके हैं। जापान में एशियन गेम्स जारी है और भारत का धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक 6 मेडल्स भारत के नाम आ चुके हैं।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में कभी खराब समय चलता है, कभी अच्छा समय चलता है। कुंडली में कभी अच्छी दशा आती है, कभी बुरी दशा आती है। तो जब आपकी बुरी दशा आए किसी ग्रह की, तो आप कौन सा उपाय करें कि उस बुरी दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की,

है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, सूर्य की बुरी दशा चल रही हो, तो क्या होता है और इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे। सूर्य की अशुभ दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश की संभावना बनती है। सूर्य की अशुभ दशा से बचने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचेंगे। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में अपमृत्यु, अचानक मृत्यु की, हृदय की और मन की समस्या हो जाती है। तो अगर चंद्र की अशुभ दशा हो तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करें और जितने समय चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो उतने समय निरंतर भगवान शिव की अगर पूजा करें तो बेहतर होगा। अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा हो तो दुर्घटना होने के, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होने के और कारावास के, जेल जाने के योग बनते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा है तो वृषभ का दान यानी बैल का दान करना, निर्धनों को भोजन कराना शुभ होता है। साथ ही साथ मंगल की अशुभ दशा के प्रभाव से बचने के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। बाकी ग्रहों की अशुभ दशा पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। पारिवारिक समस्या आपको हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, करियर में लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको निभानी पड़ेंगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि,

स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन का लाभ होता दिख रहा है, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं वो जानते हैं। अगर बुध की अशुभ दशा हो तो इसमें आर्थिक रूप से क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक रोग होते हैं और त्वचा की समस्या होती है। बुध की अशुभ दशा के निवारण के लिए भगवान विष्णु की, श्री हरि की पूजा करिएगा तुलसी दल से, और नियमित रूप से बुध की अशुभ दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। बृहस्पति की अशुभ दशा में असाध्य रोग होते हैं और बड़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में नियमित रूप से दान करना अनुकूल होता है। और बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ होता है। अगर शुक्र की अशुभ दशा हो तो अपमान, अपयश और नेत्र विकार के योग बनते हैं। शुक्र की अशुभ दशा हो तो भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करना अच्छा होगा और नियमित रूप से लिंगार्चन करना चाहिए, यानी नियमित रूप से अगर आप शिवलिंग की पूजा करें तो ऐसा करने से शुक्र की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन मिल जाएगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक समस्या दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा, पुराने विवाद आपके हल होंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, भावनाओं में आकर इमोशंस में आकर निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ दशा चल रही है, शनि ग्रह की बुरी दशा चल रही है, तो क्या प्रभाव होगा? शनि की दशा अगर अशुभ रूप से चलने लगे तो अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों से परेशानी के योग आपके लिए बनते हैं। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो सोने का, स्वर्ण का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए, आपको लाभ होगा। अगर राहु की या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? राहु की या केतु की अगर बुरी दशा चले तो इस दशा में आकस्मिक घटनाएं होती हैं और विचित्र बीमारियां परेशान करती हैं। राहु केतु की अशुभ दशा चले तो शिव मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु के लिए भगवान भैरव की और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करने से इन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपको मिलेगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का बड़ा लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
तो आज हमने आपको बताया कि अलग अलग ग्रहों की जब अशुभ दशा चले, जब बुरी दशा चले तो क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। घर के मुख्य द्वार के आसपास पत्थर और कांटेदार पौधे न रखें, केवल शमी का पौधा रख सकते हैं, अन्य पौधा मत रखिएगा। अगर घर के मुख्य द्वार के आसपास आप बहुत सारे पत्थर रखते हैं या कांटेदार पौधे लगाते हैं तो हर महत्वपूर्ण कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना ये है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं, दिखाते हैं आपको। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से रानी परिहार ने हमें भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। गले में फूलों की माला है। बप्पा के आसन के सामने शानदार कलश की भी स्थापना की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें दिल्ली से श्वेता सिंह ने भेजी है। यहाँ बप्पा की शानदार पोशाक पहनाई गई है। गेंदे और गुलाब की माला से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। बप्पा की बैकग्राउंड को भी रंग बिरंगी झालर से सजाया गया है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: ये किसी ने प्रश्न भेजा है, गुरुदेव आप अनेक संत मिलकर के नाम जप करने पर बड़ा जोर देते हैं, मंत्र पर जप करने पर बड़ा जोर देते हैं, हम बहुत संतों को सोशल मीडिया पर टीवी पर सुनते रहते, नाम जप करने वाला अगर कोई कर रहा हो तो उसके जीवन में क्या बदलाव होता है और नाम जप करने से फायदे क्या है, बताने की कृपा करें। आपका दास विवेक कुमार, नाला सुपारा, मुंबई। गजब जगह से हो भाई साहब, नाला सुपारा नदिया हो जाते। चलो विवेक जी, नाम जप करने से फायदा क्या होता, बड़े पागल दिखाई पड़ रहे थे। हर काम तुम फायदे के लिए ही करोगे, बिना फायदे के कुछ नहीं करोगे। तुम गुटखा खाते हो, उससे क्या फायदा। दारू पीते लीवर खराब हो जाता है, पर उससे क्या फायदा। लेकिन नाम जप से तुम फायदा चाहते हो। बड़े उल्लू नजर आ रहे हमें, तुम बड़े पागल नजर आ रहे, तुम भगवान की भक्ति में भी फायदा चाहते। अरे एक बात नोट कर लो तुम, भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा। पहला फायदा लिखिए, पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा वो प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो मंगल होगा, मंगल होगा अमंगल मिट जाएगा। ये हम कोई अप्रमाणित बात नहीं कर रहे विवेक जी, रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। जो भी नाम जप करेगा दसों दिशाओं में मंगल होगा। क्यों मंगल क्यों होगा विवेक जी? राम जी का नाम मंगल करने वाला है क्योंकि

नाम जप से क्या होगा? अरे जिनका नाम है वो मंगल करते हैं। राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। नाम जप करने वाले को मंगल हो, अमंगल मिट जाता है। दूसरी बात, अगर तुम हनुमान जी के नाम का जप करते हो तो हनुमान जी भी मंगल करते। मंगल मूर्ति हनुमान जी भी मंगल करते। तो पहला फायदा है प्रसन्नता मिलती। दूसरा फायदा क्या? जो भी नाम जप करता उसके विकार मिट जाते, विचार शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज को बार बार रटेंगे तो अन्य विकार दिमाग में, अन्य थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, अन्य विचार परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि दिमाग एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एक जगह ही स्थित रहेगा। और विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा उसका आईक्यू लेवल भी हाई होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके ध्यान करने की, स्मरण करने की बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। नाम जप करने से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉन्शियस माइंड जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होता है और उस आदमी का ध्यान बहुत प्रबल होने लगता है। वो कोई भी चीज देखता है, पढ़ता है या सुनता है, वो उसे याद होने लगती है और उसका आईक्यू लेवल हाई हो जाता है। तो तीसरा ये फायदा है। चौथा क्या फायदा? कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। हमने नहीं कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा,

ये चौथा फायदा है। विवेक जी, आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता। ठठरी के बरे नक कटा इलू इलू करने से क्या होता है। अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम क्वेश्चन केवल यही करोगे सनातन के ऊपर। पर कोई बात नहीं, तुम नाला सुपारा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां ऐसा प्रभाव चलता है। पर उत्तर सुनो, पांचवा नाम जप करने से क्या फायदा होता। पांचवा फायदा, हम आपको इतने फायदे बताएंगे कि तुमको अपनी ही, अब हम क्या कह दें, राम राम राम, चलो हमारे मुंह से बुरा नहीं निकलना चाहिए। पांचवा क्या फायदा, वाणी सिद्ध होती है। क्या होता है, वाक्य की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवान का नाम जब प्रतिदिन प्रतिपल बार बार करेगा, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। ये पांचवा फायदा, ये कोई आप प्रमाणित बात नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक घटना सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा। आगरा के पास फतेहपुर, और फतेहपुर के पास अवलेंडा नाम का एक गांव है। अकबर के समय में एक नाम जपी महात्मा का बड़ा प्रचार था। अकबर ने उन महात्मा का सत्य का परीक्षण लेना चाहा। एक चबूतरा में बकरी, जीवित बकरी को दबा दिया और महात्मा को बुला करके कहा कि आप इस पर बैठो। महात्मा आए, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों, इसमें तीन जीवित जीव दबे हुए हैं बकरी रूप में। अकबर ने कहा कि महाराज बकरी तो सही है, पर तीन नहीं है, एक ही बकरी है, बाकी तो झूठ बोल दिया आपने। महात्मा बोले नहीं, तीन है। अकबर बोले अगर तीन नहीं निकले तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। महात्मा बोले अब हमारे मुंह से निकल गया, हनुमान जी की कृपा से अब तीन ही जीव निकलेंगे। महात्मा ने माला ले ली, चबूतरा को पुनः खोदा गया, बकरी बेहोश जैसी हालत में हो गई थी। पर एक ही बकरी मिली, तीन नहीं मिली। अकबर ने कहा देखा एक बकरी है, तुम फेल हो गए हो, झूठे हो। महात्मा बोले नहीं, हमने कह दिया तो तीन होंगे, कहां होंगे, यहां तो एक ही है। महात्मा बोले ये बकरी गर्भस्थ है, इसके पेट की चीरा फाड़ी की जाए, और जब पेट की चीरा फाड़ी की गई तो दो छोटे छोटे बच्चे उसके गर्भ में पाए गए। भगवान की कृपा से वो बकरी बच गई और महात्मा की वाणी से निकली हुई वाणी सत्य हो गई। विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा, भगवान का नाम सदैव स्मरण करेगा, उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो अपने मुंह से जो भी बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। और सुनो दूसरी घटना। एक राजा के गुरुजी दर्शन देने आए, गांव के लोग दर्शन करने चले गए। एक सीधा साधा गांव का आदमी गुरुजी की दीक्षा नहीं ले पाया, तो उसने शाम के समय गुरुजी से कहा महाराज हमको दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा ने कहा कि भाई अब इस बार तो हमें जाना है, कल हम चले जाएंगे, दीक्षा का समय नहीं बचा है, आज रात हो गई है, कल हमें चले जाना। एक काम करो अगली बार तुम दीक्षा ले लेना। वो बोला महाराज अगली बार तक जिंदा रहे ना रहे आप महात्मा आदमी अभी कृपा कर दो। महात्मा ने डांट के भगा दिया, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं हो सकती, अगली बार आना। गांव का सीधा साधा आदमी रात भर इंतजार में बैठा रहा। सुबह से गुरुजी लोटा लेकर के जंगल गए, समझ जाओ लोटा लेके पेट खाली करने, नित्य क्रिया करने गए महात्मा जी, ये पीछे पीछे चल दिया और धीरे से हाथ जोड़ के बोला गुरुजी मंत्र दे दो।
महात्मा बोले यहाँ मंत्र दे दे कि हम तो पेट खाली करने आए। अब गुरु जी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। गुरु जी सोचे कि चेला भगे तो हम बैठे कहीं, और चेला कहे कि गुरु जी मंत्र दो तो हम भगे। 2-3 किलोमीटर तक गुरु जी चले गए, गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। इसने कहा गुरु जी मंत्र दे दो। गुरु जी ने लोटा दिखा के कहा मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, एक लोटा मारेंगे खपड़िया फूट जाएगी। इसको लगा यही मंत्र है। सीधा साधा आदमी, इसको लगा यही मंत्र है। घर आया, माला ली और माला लेकर के कहने लगा मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है, मार हो लोटा सो खपाड़ फूट जे है। यही मंत्र जप करने लगा। गुरुजी तो चले गए। 1 महीने बाद राजा के बालक राजकुमार को भूत ने पकड़ दिया। बड़े बड़े ओझा, तांत्रिक, जानकार, धूला भभूति वाले लोग आए, सब फेल हो गए। इसने सुना कि राजा के बेटे को भूत ने पकड़ लिया और कोई ठीक नहीं कर पा रहा। तो इसने सुन रखा था कि गुरुजी ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि गुरु मंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि वो यम राजों को भी भगाने की क्षमता रखता है। इसने सोचा जब जमराज भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते हैं, जब यम दूत भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते। ये गया सबसे बोला हम ठीक कर देंगे। तो बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक जानकार ओझा हंसने लगे, बोले तुम क्या खाक ठीक करोगे, हम लोग हार गए जिनके पास देवता हैं, सिद्धियां हैं, तुम क्या खाक ठीक करोगे। इसने कहा हम ठीक कर देंगे। मालाली राजकुमार लेटा था महल में जमीन पर, ये कान के पास गया और कान में राजकुमार के बोला मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। भूत को लगा कि ये हमें पहचान आ गया है। जो राजकुमार में भूत प्रीत था उसको लगा ये हमें पहचान गया है। तब तो कह रहा है कि मारूंगा लोटा तो खपाड़ फूट जाएगा, खपाड़ मतलब सिर। आर भूत भग गया। अब भूत भागा तो राजकुमार ठीक हो गया। अब तो ये बाबा जी बनकर पूजने लगे। बड़े बड़े तांत्रिक बोले भाई हमने तो हम हार गए पर गजब के हो, ये भी हाथ से आशीर्वाद। अब राजा का लड़का ठीक हो गया तो पूरे राज्य में प्रचार हो गया। लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन की। और ये रोज भभूति दें, रोज ताबीज बना दे, और मंत्र एक ही है। कोई कहे गुरुजी हमारा पेट दर्द कर रहा, तुरंत कान में कहे मारी हो लोटा खपाड़ फूट जाएगी। कोई कहे महाराज लड़का नहीं हो रहा है, इधर आ, कान में बोले मारी हो लोटा खपाड़ फूट जाए। अब इनके जो गुरुजी थे, जो राजा के गुरुजी जिनकी इन्होंने दीक्षा ली थी, उनको खबर लगी कि हमारे जो शिष्य राजा हैं उनके यहां एक ऐसे महात्मा हुए जो बड़ा चमत्कार कर रहे। उनने सोचा चलो हम ही दर्शन कर ले। तो अब वो गुरुजी लाइन में दर्शन करने लगे तो इसने देख लिया, अरे गुरुजी, लंबी लाइन, तुरंत गुरुजी के चरणों में। अब गुरुजी चौंक गए कि इतनी भीड़ में हम जिसके दर्शन करने आए वो हमारा ही चेला निकला। लेकिन गुरुजी पहचानते नहीं थे तो कोने में ले गए, बोले भाई तुमने हमारी दीक्षा ली, बोले आपकी दीक्षा ली। गुरुजी बोले बेटा कब ली, बोले आप याद करो एक बार जंगल में जा रहे थे लोटा लेके पेट साफ। अब महात्मा खूब याद करें, उन्हें याद नहीं आवे, गुरुजी को याद नहीं आवे। बोले बेटा एक बात बताओ, हमने मंत्र कौन सा दिया था। गुरुजी ने सोचा अगर हमारा चेला होगा तो हमारे जो मंत्र दिया वो बताएगा। हमने बेटा मंत्र कौन सा दिया था। बोले वाह आपने कहा सबके सामने मंत्र नहीं बताना चाहिए। गुरुजी बोले अकेले में चल, अकेले में गए। गुरुजी बोले बेटा बता कौन सा मंत्र दिया था। बोले बा आपने कहा था ना, जब हमने कहा था गुरुजी मंत्र दे दो, आपने कहा था मारूंगा लोटा खपाड़ फूट जाएगा। अरे गुरुजी को याद आई, अरे बोले मार लिया, ऐसा भी मंत्र हो सकता है। लेकिन उस दिन गुरुजी ने एक बात कही कि कोई भी नाम बड़ी शिद्दत से बड़े भाव से जपा जाए
तो आम शब्द भी मंत्र बन जाता है। ये इस कथा का मतलब है। इसलिए तो वेद आचार्य शास्त्रों में

शेक जी, आपने पूछा कि नाम जप का फायदा क्या? ये पांचवा फायदा है, जो भी नाम जप करेगा उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर उन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी। बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के विदिशा से आकाश कुशवाहा ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से आकाश पापा को घर लेकर आए। शानदार तरीके से पापा का श्रृंगार किया गया। पूरे फिल्मी अंदाज में पापा का पहला लुक सामने आया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के ही बैतूल से निकेश पाठक ने हमें भेजी है। यहाँ पापा को शानदार पोशाक पहनाई गई है, साथ ही मनमोहक फूलों से पापा का श्रृंगार किया गया है। छोटा लेकिन पापा का आसन भी बेहद प्यारा लग रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: एशियन गेम

0: पेलोड ले जाने में सक्षम। फिलीपींस पहुंचे भारतीय नौसेना के युद्धपोत दूसरे आसियान भारत समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेंगे। समुद्री सुरक्षा पर एशियन रक्षा मंत्रियों की भी बैठक। देश भर में गणेशोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। गणपति पूजा के आठवें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सहारनपुर में आस्था का महाकुंभ लगा। गोगाजी महाराज के ऐतिहासिक छड़ी मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 800 साल से है ये परंपरा। बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले एक शानदार खबर आपको बता दें, भारत में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। जी हां, आपको बता दें आईजी डिफेंस ने अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन के AL का राजस्थान में स्थित पोखरण में सफल टेस्टिंग पूरी करने की घोषणा कर दी है। और ये एक कामिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन है जिसे गहरे लक्ष्य को भेदने वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना की शक्ति अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। स्वदेशी है ये ड्रोन, आपको बता दें लॉन्ग रेंज वन वे अटैक है और KAL राजस्थान में इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है, ये घोषणा की गई है। कामिकाजे ड्रोन है यानी कि आत्मघाती ड्रोन है और सीधे अपने टारगेट पर अटैक करने की क्षमता रखता है। कई महत्वपूर्ण मिशंस के लिए इसे डिजाइन किया गया है जो भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा। और चलिए आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: एशियन गेम्स 2026 का दूसरा दिन, पहले दिन भारत के हिस्से में आए दो मेडल्स। आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद है। भारत को एशियन गेम्स 2026 में तीसरा मेडल हासिल हुआ। मेंस 10 मीटर एयर राइफल में मिला सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला मेडल। 60 किलोग्राम की सेमीफाइनल में सुचिका तरियाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल। हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्राक्षी को ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान है। अब तक भारत के खाते में 6 मेडल्स आए। गणेशोत्सव का आज 8वां दिन है। देश भर में विधि विधान से गजानन की आराधना जारी है। देश के कई पूजा पंडालों में गजानन की प्रतिमा की विदाई हुई। लोगों ने भक्तिभाव और अगले बरस जल्दी आने की गुहार के बीच विसर्जन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव में दिखा बप्पा का अनोखा पंडाल। गणपति अलग अलग रूपों में दे रहे हैं जल बचाने और पर्यावरण की रक्षा का संदेश। कहीं बप्पा पानी की बूंद बने हैं तो कहीं पेड़ और प्राणी के रूप में नजर आ रहे हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। चंद्रपुर के पंडाल में ड्राइवर की भूमिका में नजर आए मूषक राज। पंडाल के रेल के डिब्बे की तरह बनाए गए हैं कंपार्टमेंट। मुंबई में शिव डीजा राजा का भव्य अवतार अंडर वाटर द्वारका की अद्भुत थीम। गणपति पंडाल की शानदार सजावट की गई। शिव डीजा राजा गणपति पंडाल के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। शिव डीजा राजा में पानी के अंदर सजी द्वारका नगरी, समुद्री जीव और रोशनी ने बढ़ाई भव्यता। होलोग्राफिक प्रस्तुति बनी खास आकर्षण। भव्य नजारे में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पानी के अंदर भगवान श्री कृष्ण की नगरी का रिक्रिएशन किया गया। जलमग्न नगरी की थीम ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लाल बाग चौराजा के दरबार में हाजिरी लगाई। पति पत्नी ऋतिका सजदेह के साथ बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। दर्शन के दौरान दिखा खास भक्तिमय अंदाज। दोनों के साथ बप्पा की पूजा अर्चना तो वहीं दर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। लालबाग चौराजा के दरबार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर धवल कुलकर्णी। पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया।

0: मुंबई में लाल बागचा राजा की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए बापा के भक्त। पुणे में असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने गणपति आरती की, श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में पापा का आशीर्वाद लिया। जालना में रामायण थीम पर अनोखा गणपति पंडाल, हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाते हुए नजर आए, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश में आने का प्रसंग दिखाया। गणपति पंडाल में दिखा रामायण का जीवंत दृश्य, रामायण का प्रसंग देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अनोखी प्रस्तुति ने भी खींचा श्रद्धालुओं का ध्यान। सहारनपुर में भव्य गोगा मेले का आयोजन हुआ, आस्था परंपरा और इतिहास का संगम दिखा। सहारनपुर में 800 साल से जारी है मेले की परंपरा, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नीले निशान और छड़ियों के साथ पहुंचे श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा पूरा शहर। गोगा मेले को लेकर की गई भव्य लाइटिंग, रोशनी से नहाया पूरा शहर। सहारनपुर में गोगा मेले को लेकर किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे से की चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गोरखपुर की गीता वाटिका में दधिकांत दोत्सव राधा रानी प्राकट्य महोत्सव के समापन पर भव्य आयोजन किया गया, भक्तों ने दही और हल्दी के रंग में मनाया उत्सव। गीता वाटिका मंदिर में गूंजा राधा रानी का जयकारा, तो वहीं दिखा भक्तिमय माहौल, उल्लास में दिखे श्रद्धालु। अखंड हरिनाम संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किया गया, विशेष रास मंडलियों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, महारास मयूर नृत्य और दांडिया ने सभी का मन मोहा। पुरी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर मंगल कामना की और सुख शांति की प्रार्थना की। पुरी में श्री भागवत कथा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साई, पवित्र जगन्नाथ धाम की भूमि पर कथा का श्रवण किया, आध्यात्मिक आयोजन में भी शामिल हुए। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शनी लगाई गई, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का देखने के लिए मिल रहा है अनोखा संगम। दिल्ली में सजी द स्पेस इन बिटवीन आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग और मूर्तियों के बीच संवाद की भव्य प्रस्तुति। आर्ट एग्जीबिशन में कई कलाकारों की कृतियां शामिल, कला के जरिए विचार और रूप के बीच संवाद की प्रस्तुति। दिल्ली की आर्ट गैलरी में सजी रचनात्मक दुनिया, पेंटिंग और स्कल्पचर्स लोगों को आकर्षित कर रही हैं। आर्ट गैलरी में दिखी रंगों और आकारों की कहानी, 28 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। INS सहयाद्री और INS कुलिश फिलीपींस पहुंचे, दोनों युद्धपोत ADMM प्लस ज्वाइंट कोऑपरेशन एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। संयुक्त अभ्यास में एशियन देशों के साथ 8 अन्य देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी, समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल को बढ़ाना लक्ष्य है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर है। INS सहयाद्री और INS कुलिश की यात्रा से भारत फिलीपींस समुद्री संबंध भी मजबूत होंगे, नौसेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग को बढ़ाने का मौका मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण में की AL ड्रोन और सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना ये है कि अपने घर पर धारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के सतना से रत्न और राधिका वंशंकर ने भेजी है। तो वहीं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से पूरा परिवार पापा की आराधना में जुटा है। शानदार तरीके से पापा का श्रृंगार किया गया है। दूसरी तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के ही आगर मालवा से दिव्यांशी भावसार ने भेजी है। यहाँ पापा के शानदार पोशाक पहनाई गई है और साथ ही मनमोहक फूलों से पापा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं पापा का आसन भी बेहद प्यारा लग रहा है।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर और रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मेडल मिला, सुचिका को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल। पोखरण में स्वदेशी KAL ड्रोन का सफल टेस्टिंग की गई, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर तक है मारक क्षमता, 50 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। फिलीपींस पहुंचे भारतीय नौसेना के युद्धपोत, दूसरे एशियन भारत समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेंगी, समुद्री सुरक्षा पर एशियन रक्षा मंत्रियों की भी बैठक हुई। देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला लगा, अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सहारनपुर में आस्था का महाकुंभ देखने को मिला, गोगा जी महाराज के ऐतिहासिक छड़ी मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, 800 साल से है ये परंपरा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। देश भर में जगह जगह पर गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है और एक ऐसे एक भव्य और अद्भुत पंडालों में बप्पा शान से विराजमान है। इस बार गणपति उत्सव में आस्था के साथ तकनीक का रंग भी खूब देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसे अनोखे पंडाल तैयार किए गए हैं जहाँ आधुनिक तकनीक के जरिए गणपति उत्सव को नया अंदाज दिया गया है। कहीं रोबोट बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं तो कहीं डिजिटल स्क्रीन और लाइटिंग के जरिए भगवान गणेश का भव्य दरबार सजाया गया है। कहीं पंडालों में सामाजिक संदेश दिए जा रहे हैं तो कहीं पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के वारंगल में भक्त बप्पा के एक अनोखे स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बप्पा न्यायमूर्ति के रूप में विराजमान हैं, जबकि एक दूसरे पंडाल में बप्पा नोटों से श्रृंगार किए हुए हैं।

0: देश भर में सजे इन गणेश पंडालों में इन दिनों आस्था और भक्ति के साथ साथ कला संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इन्हीं में एक गणपति पंडाल तेलंगाना के वारंगल में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। भगवान गणेश को हम मंगल मूर्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन तेलंगाना के वारंगल में इस बार बाप्पा एक बिल्कुल अनोखे और दिव्य रूप में विराजमान हैं। सुप्रीम कोर्ट की थीम पर तैयार किए गए इस पंडाल में बाप्पा न्यायमूर्ति गणपति के रूप में विराजमान हैं। वेदा गणपति यूथ एसोसिएशन की ओर से तैयार किए गए इस पंडाल में कोर्ट रूम जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कटघरा भी बनाया गया है, वकील भी मौजूद हैं और न्यायमूर्ति के रूप में बाबा की मौजूदगी भी है। क्योंकि भगवान गणेश सभी के लिए न्याय और निर्णय के सर्वोच्च प्रतीक हैं, इसी सोच के साथ इस बार पंडाल की इस खास थीम को चुना गया है। नोटों की माला, फूलों का हार, दमक रहा है बाबा का दरबार। ये तस्वीरें तेलंगाना के पालवंचा की हैं, जहां बाप्पा के पंडाल को करेंसी नोटों से सजाया गया है। यहां दो अलग अलग पंडालों को करेंसी नोटों की थीम पर सजाया गया है, लेकिन इन पंडालों को देखकर जहां हर कोई हैरान है, वहीं सजाने के लिए प्रयोग की गई रकम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहले बापूजी नगर में स्थापित किए गए पंडाल की सजावट पर करीब 1.40 करोड़ रुपए के नोट लगाए गए थे, जबकि यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंडाल ने गणेश प्रतिमा को करीब 1.50 करोड़ रुपए के करेंसी नोटों से सजाया। दोनों की रकम को जोड़ लें तो बापा के पंडाल को सजाने के लिए 2.90 करोड़ के करेंसी नोट प्रयोग किए गए हैं, जिनमें 10 और 20 रुपए के नोट से लेकर 50, 200 और 500 रुपए के नोट मौजूद हैं। इनमें बापा की प्रतिमा को पहनाए गए नोटों के हार के साथ ही छत और पंडाल की दीवारों को भी नोटों की लड़ियां बनाकर सजाया गया। अब आपको मुंबई के शिवरीचा राजा पंडाल लिए चलते हैं, जहां गणेश पंडाल में संपूर्ण द्वारका नगरी बसी है। दरअसल शिवड़ीचा राजा गणपति पंडाल के 75 बरस पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया और खास तौर पर इस अंडर वाटर द्वारका की अनूठी थीम को तैयार किया गया। पंडाल के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपको समूचे पंडाल में एसी की ठंडक के साथ होलोग्राम तकनीक, लेजर लाइट्स और समंदर के अंदर की दुनिया ही दिखेगी। इन्ही तमाम विशेषताओं के इस्तेमाल से प्राचीन द्वारका नगरी को शिवड़ीचा राजा पंडाल में पुनर्जीवित किया गया है। इस पंडाल की भव्यता और इसकी खास अंडरवाटर थीम इतनी आकर्षक है कि इस छटा को देखते दूर दराज से लोग बापा के दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं।
1: इस साल हम लोग ने कुछ यूनिक करने का सोचा है, तो हम लोग ने अंडरवाटर द्वारका ये थीम सिलेक्ट करके जो गोमती और अरबी समुद्र के बीच में जो अपना द्वारका का डूब गई है, वो द्वारका बनाने का एक प्रयास किया है। और ये द्वारका देखने के लिए और ये अपना ये द्वारकाधीश शिवड़ी का राजा का दर्शन लेने के लिए गणपति के पहले दिन से पूरे भारत से सब भाविक या ठिकान या जगह पर आ रहे हैं। डेली सुबह 12 बजे ये हमारा द्वारका का दर्शन शुरू होता है और सुबह 6 बजे 7 बजे तक पब्लिक आते रहता है और ये द्वारकाधीश शिवड़ी का राजा दर्शन लेते हैं और द्वारका का भी दर्शन लेते हैं।
0: बापा का ये यूनिक अंडर वाटर पंडाल एशिया का सबसे बड़ा भगवान गणेश का होलोग्राम और पानी के नीचे की दुनिया का दिव्य अनुभव महसूस करा रहा है। अब इस पंडाल को ही देख लीजिए, जिसमें खाटू श्याम मंदिर की अनोखी झांकी बनाई गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने इस बार खाटू श्याम की ये खास धार्मिक थीम तैयार की है, जिसमें बापा को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पंडाल में आने वाले हर शख्स पहले भगवान गणेश और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। इस गणपति पंडाल की बारीक सजावट और धार्मिकता से भरपूर माहौल ही लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है।
2: 1928 में अब हमारे मंडल की स्थापना थी और तब से लेके अब तक कई साल से हम ये हर साल गणेश उत्सव का जो है आयोजन करते हैं।
0: अब जालना की ये तस्वीर देखिए, जहां रामायण में लंका कांड के एक दृश्य को बेहद अनोखे अंदाज में दर्शाया गया। कहने को ये श्री अनोखा गणेश मंडल का पंडाल है, लेकिन इसी पंडाल में जब बजरंगबली द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के होश में आने का प्रसंग तकनीक के साथ साकार किया गया, तो हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाने का ये दृश्य वहाँ मौजूद लोगों को खूब आनंदित कर गया। गणपति उत्सव के दौरान बापा अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। पूरे देश से गजानन के ऐसे ही अनेकों दिव्य और भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं, जहां पहुंचकर श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश भर में गणेशोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर सजे गणपति पंडाल और इन पंडालों में विराजे बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इन गणपति पंडालों के अलावा विघ्नहर्ता भगवान गणेश की अनोखी मूर्तियां भी इन दिनों खासा सुर्खियां बटोर रही हैं। चाहे चंद्रपुर में अनाज से बनी बप्पा की मूर्ति हो या फिर अमरावती में बप्पा का कृष्ण स्वरूप हो, लोग इन अनोखी गणेश मूर्तियों का खासा पसंद कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं।

0: एक से बढ़कर एक भव्य गणपति पंडाल और इन पंडालों में विराजे विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मनोहारी मूर्तियाँ जो इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बप्पा का एक ऐसा ही अनोखा स्वरूप अमरावती के इस गार्डन क्लब गणेश मंडल के पंडाल में देखने को मिला है, जहाँ गौरी पुत्र गणेश को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। खास बात ये कि बप्पा की इस अनोखी प्रतिमा के साथ रुक्मिणी से जुड़ी कृष्ण लीला का संदर्भ भी दर्शाया गया है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
1: गणपति पंडाल में जो है अलग अलग थीम पर प्रतिमाएं जो है विराजमान होती है, लेकिन हम फिलहाल अमरावती में है जो कृष्ण कन्हैया की ससुराल भी कही जाती है, और उसी धरती पर जो है कृष्ण कन्हैया जो है अपनी जो सखी है रुक्मिणी उसे जो है यहाँ से हर ले जा रहा है, क्योंकि ये जगह ही वह है। अमरावती जो है वो कृष्णा का ससुराल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से जो है कृष्ण भगवान ने जो है रुक्मिणी को हर लिया था, ऐसी कथाओं में जो है पुरातन कथाओं में कहा जाता है। उसी धरती पर जो है गणपति बप्पा को जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुंदर यहाँ पर इंटीमेट ज्वेलरी से इतना खूबसूरत सजाया है, और दुल्हन बनी रुक्मिणी जो है वो उसे गणपति बप्पा जो है कृष्ण अवतार में उसे हर ले रहे हैं।
0: बता दें कि अमरावती जिले का कौंडण्यपुर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा से जुड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण यहीं आए और रुक्मिणी को अपने साथ द्वारका ले गए थे। इसी धार्मिक और पौराणिक प्रसंग को गणेश प्रतिमा की कलात्मक प्रस्तुति के साथ जोड़ने की कोशिश इस गणेश मंडल ने की है। गार्डन क्लब गणेश मंडल से जुड़े लोग कहते हैं कि बप्पा के स्वरूप को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है।
2: अम्बा नगरी में महाराष्ट्र ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप और स्टेटसों पे करीब करीब कल शाम तक तो 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने हमारे गणपति बप्पा के दर्शन किए।
3: मूर्ति को देख के यहाँ पे मतलब पता चलता है कि जैसे कृष्ण ने यहाँ से रुक्मिणी का हरण करके उनको भगा के शादी की थी अपने यहाँ कौंडण्यपुर में, है ना, तो वहाँ का ये दृश्य है जैसे आप देख रहे हैं, तो देख के ही मतलब बहुत अप्रतिम ऐसा देखा हुआ यहाँ पे हमने सादर किया है कृष्णा नगर में।
0: वही महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर के तुकुम इलाके की गणेश प्रतिमा भी खासा पसंद की जा रही है। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इस बार श्री छत्रपति गणेश मंडल ने चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली जैसे अनाज से प्रतिमा तैयार की है, जिसे देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ आ रही है। श्री छत्रपति गणेश मंडल ने इस साल पर्यावरण और रचनात्मकता का संदेश देने के मकसद से यह अनोखी प्रतिमा बनाई, जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। इस गणेश मंडल का ये 5वां साल है। मंडल की ओर से हर साल गणेश प्रतिमा को अलग अलग थीम पर तैयार किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार खाद्य सामग्री से बनाई गई प्रतिमा ने गणेशोत्सव को और भी खास बना दिया है। अमरावती से धनंजय साबले और चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब आपको छत्तीसगढ़ के भिलाई से डिजिटल गणेश पंडाल के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के गणपति के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं, साथ ही सनातन संस्कृति की 3D झलक भी श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है।

0: गणेश उत्सव का ये भव्य नजारा स्टील सिटी भिलाई का है। यहाँ के शिवमानस गणेश उत्सव समिति के गणेश पंडाल में भक्तों को बाप्पा के हाईटेक दर्शन हो रहे हैं। खास बात यह है कि आयोजकों ने तकनीक के माध्यम से भक्तों के सामने संपूर्ण सनातन संस्कृति की झलक पेश करने की कोशिश की है। इस भव्य पंडाल की सजावट और बाहरी बनावट बस्तर की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी के ऐतिहासिक मंदिर के प्रतिरूप के तौर पर तैयार की गई है। जाहिर इस खूबसूरत पंडाल में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और बस्तर की पहचान को उकेरा गया है। पंडाल के भीतर दाखिल होते ही भक्तों की नजर बाप्पा की सुंदर प्रतिमा पर टिक जाती है। यह मीनाक्षी अम्बन मंदिर के कुरुक विनायगर गणपति की झलक भक्तों के सामने पेश करने की कोशिश की गई है। 4000 स्क्वायर फीट की डिजिटल स्क्रीन और 3D नजारा इस पंडाल को बेहद खास बना रहा है।
1: उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बहुत बहुत अलग ही टाइप की अनुभूति हो रही है मुझे, और ख़ासतौर पे जो बप्पा का जो मूर्ति है बहुत ज़्यादा यूनिक है, इनका जो थीम है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है।
2: मूर्ति यही देखा कि साउथ का मूर्ति है, मीनाक्षी टेम्पल में गई थी तो वो बस फिर से रियलाइज़ कर पाई, फील कर पाई कि यहाँ इतना सुंदर, ऐसा लग रहा है कि ये जो 3D इफेक्ट है मैंने पहली बार इतना अच्छा देखा है, तो अलग ही फीलिंग है। जो वीडियोस में हम देखते हैं और जो यहाँ आके फील कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है।
0: आधुनिक सजावट इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत है। ये गणेश पंडाल पूरी तरह डिजिटल है। यहाँ 4000 स्क्वायर फीट की विशालकाय डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है। तकनीक के माध्यम से यहाँ श्रद्धालुओं को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों और 51 शक्ति पीठों के वर्चुअल दर्शन भी कराए जाते हैं।
3: इस वर्ष हम छत्तीसगढ़ में आदि शक्ति माँ दंतेश्वरी मंदिर का प्रतिरूप हमने बनाया है, और अंदर जो प्रतिमा गणेश जी के आप देख रहे हैं वो तमिलनाडु के मदुरई स्थित मीनाक्षी टेम्पल में जो गणेश जी हैं उनका प्रतिरूप हम यहाँ बनाए हैं। और ये मूर्ति लगभग 2200 वर्ष पुरानी है और एक पत्थर को तराश कर बनाई गई मूर्ति है, और इस मूर्ति की मान्यता है वहाँ पूजा करने वाले जो भी अविवाहित लोग जाते हैं उनकी मनोकामना एक वर्ष के अंदर पूर्ण होती है। और अंदर का इंटीरियर की मैं बात करूं तो यहां का इंटीरियर जो है 5000 स्क्वायर फीट में LED स्क्रीन लगा हुआ है, जिसमें हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और 4 धाम, उन सब के दर्शन हम एक ही जगह इसी पंडाल में करा रहे हैं।
0: शिवमानस गणेश उत्सव समिति यहाँ 34 साल से गणेश पूजा का आयोजन करती आ रही है। हर साल यहाँ भक्तों को भारत के अलग अलग मंदिर के दर्शन करवाए जाते हैं। इस साल तकनीक के जरिए मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के गणेश जी की प्रतिमा की झलक भक्तों को लुभा रही है, वहीं मां दंतेश्वरी मंदिर की थीम स्थानीय संस्कृति के रंग बिखेर रही है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में गणेश उत्सव के उत्साह के बीच एक परिवार आपको याद दिला रहा है आपकी सेहत की। सतारा के कराड़ का ये हिंगमिरे परिवार है जो कि ये मानता है कि तीज त्योहार हो या फिर उत्सव, तंदुरुस्ती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल इस परिवार ने अपने घर में अनोखी सजावट के माध्यम से समाज को स्वस्थ रहने का एक बेहद खूबसूरत और जरूरी संदेश दिया है। इन्होंने अपने बप्पा के पंडाल में योग के अलग अलग आसनों को किस अंदाज में पेश किया है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। और साथ ही आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के जालना की भी एक ऐसी अनोखी प्रदर्शनी में, जहां पर मारुति नंदन और भूगोल की अहमियत का बेहद आसान तरीके से इसे समझाया गया है।

0: त्योहार उत्सवों के माहौल में आमतौर पर लोग तड़क भड़क और पारंपरिक सजावट किया करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कराड़ का एक परिवार जिसने रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए सेहत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। दरअसल कराड़ की गजानन सोसाइटी के शिवसाई पार्क में हिंगमेरे परिवार ने गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा, आसपास आकर्षक सजावट और इसके साथ ही योग के अलग अलग आसनों को दर्शाया है, जो शरीर को योग से कैसे रखे निरोग का स्वस्थ संदेश दे रही है। पिछले कई सालों से ये फैमिली बप्पा की सजावट में चार चांद लगाने के लिए अलग अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर रही है। इस बार परिवार ने योग विषय चुना।
1: दरवर्षी आम्ही असे वेगवेगळे सामाजिक उपक्रमांवरच हे तयार करत असतो डेकोरेशन, पण यावर्षी आम्ही योगा हा विषय निवडला कारण मी सध्या स्वतः योगा करते आणि 7 ते 8 महिन्यातच माझ्या 3 वर्ष चालू असलेल्या गोळ्या फक्त योगामुळे बंद झाल्या, त्यामुळे मला असं वाटलं की हा हे डेकोरेशन आपण केलं तर हे लोक योगा करतील आणि कोणाचे काही आजार असतील ते सुद्धा यातून निघून जातील, म्हणून आम्ही हा डेकोरेशनचा विचार केला।
0: योग के अलग अलग आसनों को दर्शा रही ये झांकी तो खूबसूरत है ही, साथ ही गौरी पुत्र के लिए बनाए गए कमल से लेकर दीपमाला तक कई चीजें तो कार्डबोर्ड से ही तैयार की गई हैं, तो वहीं मां गौरी की सजावट में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें तो घर पर ही सिलकर तैयार भी की गई हैं। अल्पना ने ये सब अपने पति प्रमोद गजानन के सहयोग के साथ करीब 7 दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया, जिसमें कपास, कपड़े और घर में मौजूद दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर वेस्ट से बेस्ट का संदेश दिया गया। फिलहाल माँ गौरी के साथ बप्पा की ये खास सजावट सिर्फ आंखों को आकर्षित नहीं कर रही, बल्कि इसके साथ अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण का संदेश भी हिंग मेरे परिवार को औरों की मेहनत से थोड़ा अलग बना रहा है। गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र के जालना में भी एक बेहद अनोखी प्रदर्शनी लगी, जिसमें समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित मारुति की 11 मूर्तियों की प्रतिकृतियाँ दिखाई गयी है। वहीं साथ ही अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में भूगोल विषय से जुड़े लगभग 150 कॉन्सेप्ट को इस प्रदर्शनी में डिस्प्ले किया गया। शिक्षक श्रीकांत चिंच खेड़कर ने यहां रखे गए 80 से 90 एजुकेशनल मॉडल्स में पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक के कॉन्सेप्ट को बेहद आसान तरीके से समझाया है। इन मॉडल्स में पृथ्वी, भारत का भूगोल, सौर मंडल, ग्रह, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड शामिल हैं। वो मानते हैं कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों के लिए भूगोल को आसान और दिलचस्प बनाना है।
2: अपन जब पढ़ाई करते हैं भूगोल की, तो हमेशा क्या होता है कि उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हो, इसलिए हो जाता क्योंकि भूगोल जो है वो समझने में भी थोड़ा सा अड़चने आ जाती है, उसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा मालूम नहीं रहते और सिर्फ अपन डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से कुछ सीख नहीं पाते। तो ये डायग्राम की वजह यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं, यानी दरी कैसी है एक्चुअल में ये उनको समझ में आना चाहिए, सामुद्र धुनी बोले तो क्या है ये उनको समझ में आना चाहिए, ये इसका मूल जो है वो कंसेप्ट है।
0: केवल भूगोल ही नहीं बल्कि समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित 11 मारुति की प्रतिमाएं हूबहू तैयार की गईं, जो लोगों को भी पसंद आ रही हैं। ये मारुति मूर्तियां हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक हैं, जो छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा और गुणों को प्रोत्साहित करने का संदेश दे रही हैं। फिलहाल तो गणेशोत्सव की उमंग, उत्साह और भक्ति के बीच ये अनोखी एजुकेशनल प्रदर्शनी समाज में जागरूकता बढ़ाने की प्रेरणादायी मिसाल बनी हुई है। कराड़ से सकलेन मुलानी और जालना से गौरव विजयशाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब आपको राजकोट के गणेश पंडाल में लिए चलते हैं, जहां पर भक्ति और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहां राजा गणेश पंडाल में रोबोट बप्पा की आरती करते हैं और इतना ही नहीं, यहां पर हर शाम भक्तों के लिए खास सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

0: आस्था भक्ति और विज्ञान का मेल इस गणेश पंडाल को खास बना रहा है। ये राजकोट के स्पीडवेल चौक का राजा पंडाल की तस्वीरें हैं। यहाँ बाप्पा की आरती इंसान नहीं रोबोट्स उतारते हैं और इस तरह राजकोट के स्पीडवेल चौक का राजा में धर्म और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस साल गणेशोत्सव में आस्था भक्ति का ही आधुनिक तरीका गणेश भक्तों को खूब भा रहा है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस पंडाल में दो रोबोट एक्टिव हैं, एक बाप्पा की आरती करता है और दूसरा घंटी बजाता है। ये रोबोटिक आरती यहां आकर्षण का केंद्र बन गई है। ये रोबोटिक सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेशन पर काम करता है। खास बात यह है कि इसे राजकोट में ही असेंबल किया गया है।
1: क्या समय के साथ, न्यू इनोवेशन के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कभी लोगों को कुछ अच्छा लगे कि भाई ये कुछ ऑटोमेशन किया है और रोबोट आरती बापा की उतारता है। वैसे मैं भी इंडस्ट्री से आता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन सब लोग इंडस्ट्री से नहीं आते हैं तो वो सब देखते हैं तो उसको अच्छा लगता है भाई ये ऑटोमेशन के साथ बापा की आरती अभी यहाँ चालू है। और दूसरा तो व्हाइट हेवन मंडप पंडाल का थीम है, हर रोज सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं।
0: स्पीडवेल चौक का राजा पंडाल को इस साल व्हाइट हेवन थीम पर सजाया गया है। हर शाम यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खास बात यह है कि इन प्रोग्राम में धर्म अध्यात्म के साथ ही विज्ञान का भी शानदार मेल दिखाई देता है। यहाँ लोकगीत, शिव संध्या, व्रत लीला, श्रीजी झांकी के साथ साथ साइंस प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए टैटू, मेहंदी और कॉस्ट्यूम कॉम्पिटिशन जैसे कई आकर्षक इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि प्रतिभागियों को आस्था के इस मंच पर अपना हुनर और कौशल दिखाने का अवसर मिले। रौनक मजीठिया, राजकोट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए जीएनटी स्पेशल में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जीएनटी पर जारी है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति बप्पा पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बने और आप अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर करें। हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के बैरागढ़ से सौरभ और गौरव अहिरवार ने हमें भेजी है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से पूरा परिवार बप्पा की आराधना में जुटा हुआ है। शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के जलगांव से मोहित और विराज ने भेजी है, जहां बप्पा को शानदार पोशाक पहनाई गई है और साथ ही मनमोहक फूलों से बप्पा का श्रृंगार किया गया है, और आसन भी बेहद प्यारा लग रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल। हिमांशु ने जीता सिल्वर और रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मेडल, तो वहीं सुचिका को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा है वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना शामिल होगी, तो वहीं 11 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास। पोखरण में स्वदेशी के एयर ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे

0: मिशन भारत समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेंगे। समुद्री सुरक्षा पर एशियन रक्षा मंत्रियों की भी बैठक। देशभर में गणेश उत्सव की रौनक। गणपति पूजा के आठवें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: सच गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: एशियन गेम्स 2026 का आज दूसरा दिन, पहले दिन भारत के हिस्से में आए 2 मेडल्स, आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम्स 2026 में तीसरा मेडल हासिल हुआ, मेंस 10 मीटर एयर राइफल में मिला सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला मेडल, 60 किलोग्राम की कैटेगरी में सेमीफाइनल में सुचिका तारियाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दस मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान, अब तक भारत के खाते में 6 मेडल्स आए। गणेशोत्सव का आज 8वां दिन, देश भर में विधि विधान से गजानन की आराधना जारी। देश के कई पूजा पंडालों में गजानन की प्रतिमा की विदाई हुई, लोगों ने भक्ति भाव और अगले बरस जल्दी आना की गुहार के बीच विसर्जन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव में दिखा बप्पा का अनोखा पंडाल, गणपति अलग अलग रूपों में दे रहे हैं जल बचाने और पर्यावरण की रक्षा का संदेश। कहीं बप्पा पानी की बूंद बने हैं तो कहीं पेड़ और प्राणी के रूप में नजर आ रहे हैं, प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। चंद्रपुर के पंडाल में ड्राइवर की भूमिका में नजर आए मूषक राज, पंडाल में रेल के डिब्बे की तरह बनाए गए कंपार्टमेंट। गोरखपुर की गीता वाटिका में दधिकांत दोत्सव राधा रानी प्राकट्य महोत्सव के समापन पर भव्य आयोजन किया गया, भक्तों ने दही और हल्दी के रंग में मनाया उत्सव। गीता वाटिका मंदिर में गूंजा राधा रानी का जयकारा, दधिकांत दोत्सव में दिखा भक्तिमय माहौल में उल्लास, दर्शन के लिए देश भर से उमड़े श्रद्धालु। अखंड हरिनाम संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए, विशेष रास मंडलियों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, महारास मयूर नृत्य और दांडिया ने मोहामन। पुरी में छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर मंगल कामना की और सुख शांति की प्रार्थना की। पुरी में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, पवित्र जगन्नाथ धाम की भूमि पर कथा का श्रवण किया, आध्यात्मिक आयोजन में भी शामिल हुए। सहारनपुर में भव्य गोगा मेले का आयोजन किया गया, आस्था परंपरा और इतिहास का दिखा संगम। सहारनपुर में 800 सालों से जारी है मेले की परंपरा, दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। नीले निशान और छड़ियों के साथ पहुंचे श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा पूरा शहर। गोगा मेले को लेकर की गई भव्य लाइटिंग, रोशनी से नहाया पूरा शहर। सहारनपुर में गोगा मेले को लेकर किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली में सिनेमा लवर्स के लिए खास प्रदर्शनी, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का देखने

को मिल रहा है अनोखा संगम। दिल्ली में सजी द स्पेस इन बिटवीन आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग और मूर्तियों के बीच संवाद की भव्य प्रस्तुति। आर्ट एग्जीबिशन में कई कलाकारों की कृतियां शामिल की गई, कला के जरिए विचार और रूप के बीच संवाद की प्रस्तुति। दिल्ली की आर्ट गैलरी में सजी रचनात्मक दुनिया, पेंटिंग और स्कल्पचर्स लोगों को आकर्षित कर रही हैं। आर्ट गैलरी में दिखी रंगों और आकारों की कहानियां, 28 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी।

लंच टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात शक्ति भक्ति और आस्था के संगम की। हमारा देश उत्सवों का देश है। यहाँ पर एक उत्सव की समाप्ति होती नहीं है कि दूसरे उत्सव का उल्लास छाने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा ही कुछ इन दिनों हो रहा है। पूरे देश में उत्सव का माहौल छाया हुआ है। एक तरफ गुजरात के अंबाजी में भादरवी मेले की रौनक छाई है। हर साल भादो महीने में नवमी से पूनम तक 7 दिनों तक ये त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें, कल से इस मेले की शुरुआत हो चुकी है और 26 सितंबर तक ये मेला चलेगा। माना जा रहा है कि हर साल की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में भक्त अंबाजी आने वाले हैं। दूसरी ओर सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस मेले का नाम है गोगा मेला। तो वहीं ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि करीब 800 साल पुरानी आस्था और परंपरा से जुड़ा आयोजन है। इस मेले में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या है इस मेले की कहानी और मान्यता, आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बात यहाँ गणपति उत्सव की, जिसका उल्लास पिछले 8 दिनों से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में छाया है। ये 10 दिवसीय उत्सव अब अपने समापन की ओर है। कई भक्त अपने गणपति का विसर्जन कर चुके हैं, तो लालबागचा समेत कई गणपति का विसर्जन परसों किया जाने वाला है। आपको बता दें, भक्तों की आंखें नम हैं और जुबां पर बस एक ही बोल है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के अंबाजी में लगे भादरवी मेले की। हर साल भादो महीने में अंबाजी मंदिर में लगने वाला ये बेहद भव्य और धार्मिक मेला है। आमतौर पर ये मेला 7 दिनों तक चलता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भक्त भादरवी पूनम पर माता अम्बा के दर्शन कर उन्हें शारदीय नवरात्रि के लिए अपने गाँव और घर पधारने का आमंत्रण देने के लिए आते हैं।

0: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भद्रवी महामेले का रविवार को पूरी आस्था श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार शुभारंभ हो गया। भद्रवी महीने में नवमी से पूजन यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश माता जी का रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ हुआ। अंबाजी के रथ यात्रा के दौरान ड्रोन के जरिए आसमान से फूल बरसाए गए। वहीं बैगपाइपर बैंड ने श्रद्धा से सराबोर अपनी धुनों से माहौल को और ज्यादा भक्तिमय कर दिया। अहमदाबाद से आए व्यासवाड़ी संघ ने अंबाजी मंदिर में ध्वजा चढ़ाई। ये संघ 33 सालों से हर साल यहां आता है और ध्वजा चढ़ाकर महामेले की शुरुआत करता है। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भद्रवी महामेले के लिए 7 दिनों में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अंबाजी आने की उम्मीद है। ऐसे में पूरे मेले के सुचारू आयोजन के लिए प्रशासन ने 29 कमेटियों का गठन कर 7,000 कर्मचारियों को महामेले में तैनात किया है।
1: हम लाखों की संख्या में अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे की सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक संधारी कर्मचारी 24 घंटे परस्पर तैनात रहने के पार्किंग लॉ एंड ऑर्डर एवं संचालन सहित 29 जितनी जिला रक्षा की सुविधा भी बनाई गई है। तदुपरांत अंबाजी परिसर में 4 जिले भोजन केंद्र के साथ 8 जितने गेस्ट रोग यही की विश्रामा केंद्र और 40 से अधिक पार्टी स्थलों की भी पहचान की गई। साथ ही साथ जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में जगत दीदी माँ अप्पा के चरणों में आने वाले तब का ये महामेला सुखमय और शांति पूर्वक वातावरण में संपन्न ऐसी आज माता जी प्राप्त की गई।
0: महामेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की ओर से 10 सेक्टरों के अलग अलग जोन में 6,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस विभाग की ओर से 51 शक्तिपीठ सर्कल पर एक पुलिस कंट्रोल पॉइंट शुरू किया गया है जिसमें 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है।
2: मेला में आने वाली सभी माई भक्तों का दर्शन व शांति के और सुरक्षा के वातावरण में हो इसके लिए पुलिस के द्वारा 6,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारी होमगार्ड जीआरडी के जवानों के द्वारा बंदोबस्त रखा गया है। इस बंदोबस्त के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी बॉडी वन कैमरा के माध्यम से बंदोबस्त किया जाएगा। पदयात्री जो आ रहे हैं उनके लिए रास्ते के लेफ्ट साइड से वो आ सकती है इसकी व्यवस्था की गई है। रास्ता के दौरान 63 जितने पुलिस सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। अंबाजी में आने वाले भारी वाहनों के ऊपर हेवी व्हीकल्स के ऊपर प्रतिबंध रखा गया है। मेरी सभी पदयात्रियों से आने वाले तमाम माई भक्तों से विनंती है कि आपको किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो आप 112 नंबर के ऊपर कॉल करके पुलिस की मदद ले सकते हो। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाला बंदोबस्त बहुत शांति के और सुरक्षा के वातावरण में पूरा हो।
0: गुजरात के बनासकंठा मेले में अरावली पहाड़ियों के पास स्थित अंबाजी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है जिसे आघा शक्तिपीठ माना जाता है। भद्रवी महामेला इस प्राचीन शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। महामेले के दौरान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं और सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। बनासकंठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं जहां के सहारनपुर में आस्था और परंपरा का प्रतीक श्री जाहिरवीर गोगाजी महाराज का ऐतिहासिक छड़ी मुबारक मेला पूरे धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है। गोगाजी महाराज की महाड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें दूर दराज के कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचकर नीले झंडे और निशान चढ़ा रहे हैं। करीब 800 साल से चली आ रही इस मेले की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है।
0: लगाड़ों की आवाज से गूंज उठी है सहारनपुर की गलियां। गोगा यहां महाड़ी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सहारनपुर में आस्था और परंपरा का प्रतीक श्री जाहरवीर गोगाजी महाराज का ऐतिहासिक छड़ी मेला पूरे धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है। भादो के महीने में सहारनपुर में पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हो चुकी है। हजारों कदम गोगा महाड़ी की ओर मुड़ चुके हैं। श्रद्धालु अपने दिल में मनोकामनाओं को लेकर परंपरा के मुताबिक नीली छड़ियों के साथ आए हैं। रविवार रात 12 बजे से शुरू हुआ 3 दिवसीय मेला बुधवार रात 12 बजे तक चलेगा। हर साल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, छड़ियां चढ़ाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, जहावीर गोगाजी और गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि गोगाजी महाराज के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती है।
4: आना बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे सहारनपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, मतलब जो हर साल सभी लोग संगत के साथ आते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। जय गुगे पीर बाबा की जय।
5: मान्यता यह है जहाँ पे आप मांगोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी जरूर। हमें आ गए यहाँ पे 15-16 साल हो गए, लगातार आ रहे हैं।
0: सहारनपुर में हर साल भादो के महीने में लगने वाला ये मेला करीब 900 साल पुराना बताया जाता है। बताया जाता है कि बाबा जहावीर गोगाजी महाराज अपने ननिहाल सहारनपुर आया करते थे। उस समय मुगलों का शासन था, जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते थे और मूर्तियां खंडित की जाती थी। ये सब देखकर बाबा ने सहारनपुर में अपने एक भक्त को नीला झंडा दिया और कहा कि यहाँ इसकी पूजा करें। इसके बाद यहाँ उनकी पूजा शुरू हुई और धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा बढ़ती गयी।
6: यहाँ से बचपन से आ रहे हैं और बहुत बाबा की कृपा है, बाबा जहारवीर जी की। अभी टाइम से आ रहे हैं गोगा जी महाराज के जो है चरणों में यहाँ पे निशान चढ़ाने। ठीक है, कैसे लगता है? बहुत बहुत अच्छा है। और ये जो है भव्य मतलब मंदिर है अब गोगा जी महाराज का, हर साल यहाँ पे जनसंख्या आती है और गोगा जी महाराज के जो है चरणों में जो है निशान चढ़ाती है, प्रसाद चढ़ाती है। बोलो गोगा जी महाराज की जय।
0: गोगा जहावीर की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान के बागड़ क्षेत्र को माना जाता है। भादो महीने में वहां विशाल मेला लगता है। इसके बाद सहारनपुर की गोगा महाड़ी पर होने वाला आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब बात करते हैं गणपति उत्सव की।

तो पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, दिल्ली और प्रयागराज तक गणपति उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तेलंगाना के वारंगल की बात करें तो यहाँ गणपति बप्पा को जज के रूप में दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की थीम पर तैयार किए गए इस पंडाल में बप्पा न्यायमूर्ति गणपति के रूप में विराजमान है। इस पंडाल में कोर्ट रूम जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कटघरा भी बनाया गया है, वकील भी मौजूद हैं। वहीं अमरावती की तस्वीर देखिए, जहां पर गणपति बप्पा को भगवान कृष्ण के अवतार में दिखाया गया है। पंडाल में आने वाला हर शख्स पहले भगवान गणेश और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करता है। भिलाई में बप्पा के हाईटेक दर्शन की व्यवस्था की गई है। डिजिटल स्क्रीन और लाइटिंग के जरिए भगवान गणेश का भव्य दरबार सजाया गया है। राजकोट की तस्वीर देखिए, जहां राजा गणेश पंडाल में रोबोट बप्पा की आरती करते हैं। जी हाँ, तो वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति बप्पा प्रकृति संरक्षण का संदेश देते दिख रहे हैं। सूरत में गणपति पंडाल को गांव की थीम पर सजाया गया है। इस अनूठे गणेश पंडाल में बीते दौर के ग्रामीण परिवेश की यादों को बेहद खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। अलग अलग स्वरूप में गणपति बप्पा को दर्शाया गया है। तो वहीं मुंबई में गणपति उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। पूरे प्रदेश में उल्लास छाया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर दिन बप्पा के चरणों में नतमस्तक होने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ लालबाग चौराहा के दर्शन आप कर रहे हैं, दूसरी ओर तस्वीर आरती पूजन की हम आपको दिखा रहे हैं। GNT के माध्यम से आपके दर्शन करवा रहे हैं। गणेश उत्सव में आप GNT के जरिए दर्शन कर सकते हैं। मुंबई की ये तस्वीरें लालबाग चौराहा की भव्य प्रतिमा देखने को मिल रही है और आसपास है श्रद्धालुओं की भीड़, उनका हुजूम। हर दिन बप्पा के चरणों में नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर सैलाब उमड़ता है। मुंबई से सिद्धिविनायक मंदिर में भी बप्पा के दर्शन पूजन करने और उनसे मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बप्पा के इस दरबार की बड़ी मान्यता है, यहाँ पर हर आम और खास बप्पा से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं।

0: तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ज्यादा तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। अकोला से धनंजय सांबले हमारे साथ बने हुए हैं और मुंबई से धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी मुंबई की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, सिद्धिविनायक मंदिर की हमने तस्वीरें दिखाई, आप जहां पर मौजूद है वहां की जरा तस्वीरें दिखाइएगा और क्या खास इस बार पिछली बार से हो रहा है ये भी बताइएगा।
1: बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक ऐसे दरबार में गणपति बप्पा के, जिन्हें घाटकोपर का राजा के नाम से जाना जाता है और पशुपति नाथ के अवतार में बप्पा यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। देखिए एक विशाल काय बप्पा की यहाँ पर देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा भव्य यहाँ पर देखे जा रहे हैं बप्पा। स्पेशली पशुपति नाथ महाराज के अवतार में लाना, कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनकी पौराणिक कथाएं जो हैं वो पहुंचाना यहाँ पे मौजूद तमाम श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूर्तिकार साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, इसके अलावा जो डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ पे करनी पड़ेगी। आप देखें पूरा हरित वातावरण यहाँ दिख रहा है, पर्यावरण से संबंधित बप्पा को यहाँ पर विराजमान किया गया और भी क्या खास बात है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा तस्वीरों में देखें किस तरीके से श्रद्धालु भी यहाँ पर बाकायदा मौजूद हैं और बप्पा को सिर्फ एक नज़र निहार लें, उन सभी की ये मिन्नतें हैं। हर कोई यहाँ पर पहुँच जाता है स्पेशली गणेश उत्सव में, ताकि बहुत सारा जो बप्पा से मांगना चाहते हैं वो पूरी हो जाती है। इस समय हमारे साथ मंडल से पदाधिकारी हैं, क्या नाम है साहब आपका?
2: दिनेश ठक्कर।
1: अच्छा, तो आप पदाधिकारी हैं?
2: हाँ जी।
1: थोड़ा सा कैमरा वहाँ है, ये बताइए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं गणपति बप्पा, तो इस बार पशुपति नाथ महाराज का ही क्यों अवतार और कितना साल हो गया थोड़ा बताएं?
2: मंडल को 26 साल हो गए हैं और हर साल कुछ नया दिखाने का कोशिश करते हैं हम, और इस साल पशुपतिनाथ इसलिए किया हुआ है क्योंकि नेपाल में जो आई थी बाढ़ उसके चलते, और दूसरा मंडल में 100 से ज़्यादा आदमी रोज फ्री में खाना खाते हैं और उसके बाद मन्नत का राजा भी कहा।
1: नेपाल, नेपाल की जो त्रासदी है उससे आप थोड़ा सा इस तरफ देखें ना, थोड़ा यहाँ आइए यहाँ ऐसा। अच्छा, मतलब जो नेपाल की त्रासदी है उससे संबंधित आपका इस बार का थीम है पापा,
2: चेंज किया है कि पापा जो वहाँ पे हुआ वो कहीं ना हो ऐसा, इसलिए ये थीम रखा हुआ है। कोई अलग थीम था वो चेंज किया गया था।
1: अच्छा, कितने फीट के हैं बापा वैसे?
2: ये बापा टोटल 24 फुट हाइट है उसका।
1: ऊपर तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है भाई, सीधा वर्सोवा से मेट्रो लेके यहाँ, जैसे दादर था अब वैसे घाटकोपुर गया, ऐसे बीच में कितने श्रद्धालु रोज आते हैं और पंडाल की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए करी गई है?
2: पंडाल उनके लिए व्यवस्था, चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था की गई है और जितने भी आते हैं सब खुश होके जाते हैं, बापा के दर्शन लेके जाते हैं।
1: अच्छा, युवा पीढ़ी जो आजकल जेंजिस के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है वो भी आ रहे हैं और आते हैं, तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं,
2: सारे वीडियो बना रहे अपने अपने हिसाब से डाल रहे हैं। बापा के करीबन 5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं अब तक।
1: 5 लाख आपके मंडल के,
2: मंडल के
1: गणपति बप्पा
3: मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।
1: मेरे को तो लगता है कि पूरा का पूरा 12 दिन, इस बार 10 दिन नहीं 12 दिन का। इधर ही हो आप, हिलोगे नहीं?
3: नहीं, इधर ही है, क्या डे नाइट ड्यूटी है।
1: अच्छा, मैं अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा सा श्रद्धालुओं से भी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे तमाम लोग।
4: एक स्पेशलिटी और
1: जी, देखिए मैं उस मंच पे पहुंच रहा हूँ, सारे युवा पीढ़ियां कॉलेज है ना, अरे रुको तो गणपति बप्पा मोरिया, तो कम से कम गणपति बप्पा
5: मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
5: मोरिया।
1: मुझे पता है आप लोग जो है कैमरा नहीं फेस करते हो, लेकिन फिर भी बप्पा कैसे लगे ये तो बोल सकते हो ना, कैसे लगे बप्पा बेटा?
6: अच्छे।
1: क्या नाम है आपका?
6: मायरा।
1: स्कूल से छूट गए आप?
6: नहीं,
1: अभी स्कूल जा रहे हो?
6: हाँ।
1: पहले बप्पा उसके बाद स्कूल?
6: हाँ।
1: आपका क्या नाम है?
6: आयशा।
1: आयशा, कैसे लगे बप्पा?
6: बहुत मस्त थे।
1: आपका क्या नाम है?
6: अरिशिया।
1: मोदक खाया आपने? मोदक?
6: हाँ।
1: अच्छा, देखिए कुछ थोड़ा बताएं, आप इतना कॉलेज जा रहे हैं या आ रहे हैं?
7: कॉलेज से आ रहे हैं।
1: कैसे लगे पापा?
7: बहुत अच्छे।
1: बहुत अच्छे, तो यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं तमाम, क्या बेटा क्या नाम है आपका?
8: मेरा नाम लवकुश।
1: कैसे लगे पापा?
8: अच्छे।
1: अच्छा, ये गणेश उत्सव आप अपने लाइफ में कितना जीते हो, मतलब हर रोज निकल रहे हो स्कूल के बाद?
8: हाँ।
1: आपके पंडाल में ही बैठे आपके यहाँ पे जहाँ आप रहते हो?
8: हाँ।
1: हाय, क्या मैं आपसे?
7: पायल।
1: कैसे लगे?
7: बहुत खूबसूरत, बहुत, और हर साल उनके बप्पा इतने खूबसूरत रहते हैं कि नजर ही नहीं हटती है। स्पेशली मैं ऑफिस से हाफ डे लेके गणपति देखने आई हूँ।
1: मराठी मानुस हो?
7: हाँ, मराठी।
1: तो उकड़ी, क्या उकड़ी? उकड़ी का, उकड़ी का मोदक बनाया आपने?
7: हाँ, बनाया है, पहले ही दिन बनाया था। फिर उकड़ी के मोदक तो बप्पा को तो इतने पसंद है, तो फिर वो तो है ही
6: जी। गणपति बप्पा
7: मोरिया
6: मंगल
0: जी धर्मेंद्र।
1: इस तरह के माहौल आप देख रहे हैं मुंबई के हर गलियों में है और हर जगह इसी तरह की गूंज है।
0: और छात्र भी बच्चे भी यहाँ पर नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें आप दिखा रहे थे धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच जरा धनंजय के पास अकोला लिए चलते हैं दर्शकों को। धनंजय, जब आप पिछली बार कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े थे तो आप इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे, जरा ये बताइएगा कि इस बार इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का चलन कितना बढ़ा है और इस बार क्या खास पिछली बार से देखने को मिल रहा है?
8: जी बिल्कुल दीपाली जी, इको फ्रेंडली मानो पर्यावरण पूरक, क्योंकि हाल ही में जो है पर्यावरण किस तरह से रूठा हुआ है हमारे, वो बारिश नहीं हो रही है जिसके चलते जो है बाप्पा का अब 12वें दिन जो है विसर्जन करना है। उससे पहले की जो है हर नदी में हर तालाब में जो पानी होने चाहिए था, जो हर साल दर साल होता है, वो इस वक्त नहीं है। बड़ी चिंता भक्तों में भी है और प्रशासन भी इसकी चिंता कर रहा है। तो प्रशासन से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने से मेरी बात हुई है, तो वो अभी वही मुआयना कर रहे हैं कि गणपति विसर्जन के लिए कौन सी जगह ठीक होगी और कहां पर किस तरीके का पानी है जो बड़े बड़े प्रतिमाएं वहां पर विसर्जित हो सकती है। तो मैंने 9 बजे जैसे लाइव में आपको बताया, वो कार्यकर्ता ने बता दिया कि हमारी 30 फीट की जो प्रतिमाएं हैं वो हम वहां पर ही जो है वो कोई नदी या कोई तालाब में उसको विसर्जित नहीं करने वाले हैं, वो हम कहीं सुरक्षित जगहों पर लगेंगे और विधिवत उसकी विसर्जन की पूजा करके उसको लगेंगे। हम फिलहाल है देशमुख फैल के शिवाजी कॉलेज पार्क के सीट जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पंडाल है, उस पंडाल में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र का जो आराध्य दैवत है उसकी ये सुंदर प्रतिमा जो है बड़ी प्रतिमाएं हैं। और इस प्रतिमा के साथ साथ इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से झांकी यहाँ पर दीपाली बनाई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में जो गढ़ किले हैं जो शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में जीते थे वो उनकी पूरी जानकारी, और ये सबसे अहम बात है जो बीच में जो ये टैंक में जो बना हुआ है ये जजीरा किला है जो अलीबाग के लगभग है, वो पूरा है आज के जो युवा पीढ़ी को जो है ये पूरे किले कैसे है कहाँ पर है वो देखे जाती है। मुझे बोलिए आज यहाँ पर आए हैं आप तो ये किले देखकर क्या लगा, क्या उस वक्त का जमाना याद आया कि जो किताबों में पढ़ा था और प्रत्यक्ष रूप से देखा है?
9: हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इससे पहले हमें नहीं पता था कि इससे इतने सब किले होते हैं। तो इस थीम से हमें ये सब जानकारी मिल रही है कि शिवाजी महाराज ने कितने किले जिंके है और ये इतनी बड़ी मूर्ति है, तो हमें ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
8: गणपति बप्पा मोरिया। दीपाली जी एक मिनट, गणपति बप्पा
6: मोरिया।
8: देखिए इस वक्त जो है रूठा हुआ मानसून है, अब बारिश नहीं हो रही है, अब विसर्जन की चिंता है। विसर्जन को लेकर कहीं पंडाल जो है वो ये सोच रहे हैं कि अभी कहीं पानी है ही नहीं तालाब में या नदी में, तो इसका विधिवत विसर्जन जो है कहीं जगहों पर रखकर ही किया जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप?
10: हाँ जरूरी है, क्योंकि ये साल बारिश कम हुई है, किसान परेशान है, सभी लोग परेशान है। नदियां तालाब में पानी कम होने की वजह से गणपति की बड़ी जो मूर्तियां है उसका विसर्जन नदियां में करना मुश्किल है, इसलिए
0: और बहुत खूबसूरत ये पंडाल सजाया गया है ये मैं कहना चाहूंगी। और सुबह से आप हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत शानदार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अलग अलग पंडालों से और क्या खासियत है वो जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र और धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर, दर्शकों को बता दें GNT में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति सबका हिस्सा बनिए, आप अपने अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरों को भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजते हैं तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम या गाँव और कस्बे का नाम जरूर लिख कर भेजिए। तो गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस खास उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पर पधारे का जानन का वीडियो बनाना है और हमारे साथ शेयर करना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से कार्तिक वर्मा ने इसे हमें भेजा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से पूरा परिवार बप्पा की आराधना में जुटा है। है। शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार भी किया गया है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से चंद्रप्रकाश भगत ने हमें भेजी है, जहां बप्पा को शानदार पोशाक पहनाई गई है और साथ ही मनमोहक फूलों से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। बप्पा का आसन भी बेहद प्यारा लग रहा है। और चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गणपति बप्पा की 25 तस्वीरें।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
12: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: एशियन गेम्स की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल। हिमांशु ने जीता सिल्वर और रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मेडल। सुचिका को मिक्स मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा है वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना शामिल होंगी। 11 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास। पोखरण में स्वदेशी के एएल ड्रोन का सफल टेस्टिंग। 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर की रेंज, 50 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। फिलीपींस पहुंचे भारतीय नौसेना के युद्धपोत। दूसरे आसियान भारत समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेंगे। समुद्री सुरक्षा पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। देशभर में गणेशोत्सव की रौनक। गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

गणेशोत्सव का आज आठवां दिन है। देश भर में गणपति पंडालों में भक्ति भाव से गजानन की पूजा अर्चना चल रही है। मुंबई के लालबाग चौराहा के पंडाल में भी दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। इस बीच लालबाग चौराहा की भव्य आरती भी की गई। परंपरा के अनुसार उनका श्रृंगार भी किया गया। 10 दिन चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान हर दिन लालबाग चौराहा के पंडाल में आने वाले लोगों की श्रद्धा देखते ही बनती है। राजा के दरबार में हर दिन लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। और इसी कड़ी में कल रात को क्रिकेटर रोहित शर्मा और धवल कुलकर्णी भी लालबाग चौराहा के पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं बिजनेसमैन अनंत अंबानी भी एक बार फिर से लालबाग चौराहा के दरबार में आराधना के लिए पहुंचे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई में शिवडीचा राजा के पंडाल की तस्वीरें। मुंबई के प्रसिद्ध शिवडीचा राजा मंडल में अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस गणेशोत्सव पर पंडाल में जलमग्न द्वारका की भव्य और अनोखी थीम पेश की गई। पंडाल के भीतर पौराणिक पानी के भीतर डूबी हुई भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का अद्भुत और जीवंत दृश्य पेश किया गया। यहां लोगों को खासतौर पर तैयार की गई थीम के साथ गणपति की मूर्ति के दर्शन का मौका मिल रहा है। अब आपको मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन करवाते हैं। वहां सुबह के वक्त भगवान सिद्धि विनायक की मंगला आरती हुई। गणेशोत्सव के दौरान हर दिन सिद्धि विनायक मंदिर में खासतौर से गणपति की मंगला आरती की जाती है। हर दिन तड़के बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं।

0: और अब आपको दिखाते हैं पुणे में गणेशोत्सव की तस्वीरें। पुणे में श्रीमंत दगडू शेठ गणपति के अलावा भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल के पंडाल में भी गजानन के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां स्थापित गणेश जी की मूर्ति बहुत अनोखी है। इस मूर्ति में भगवान गणेश को एक राक्षस पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल की स्थापना साल 1892 में पुणे में क्रांतिकारी भाऊ साहेब रंगारी ने की थी और इसे भारत का सबसे पहला सार्वजनिक गणेश मंडल माना जाता है। पुणे में गणेशोत्सव में शामिल होने के लिए तमाम आम श्रद्धालुओं के साथ नेता अभिनेता और सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में एमएनएस नेता अमित ठाकरे भी भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में पहुंचे और बप्पा की पूजा अर्चना की। अमित ठाकरे बप्पा के सामने भक्ति भाव से अभिभूत नजर आए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में पुणे के पास राजनांदगांव में गणपति का झिलमिलाता रूप। पुणे जिले के शिरूर तालुका में स्थित राजनांदगांव में महागणपति मंदिर गणेश उत्सव के अवसर पर आकर्षक लाइटिंग से जगमगा उठा। ड्रोन कैमरे में कैद मंदिर और रोशनी से जगमगाता पूरा परिसर का विहंगम दृश्य बेहद खूबसूरत है। ये मंदिर अष्टविनायक गणपति मंदिरों में शामिल है। मंदिर के साथ साथ पूरे गांव में भी आकर्षक लाइटिंग की गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक अनोखी गणेश पंडाल की तस्वीरें। चंद्रपुर के तुकुम इलाके में गणेश उत्सव के दौरान तुकुम के राजा का अनोखा रूप श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। खास बात यह है कि इस बार भी श्री छत्रपति गणेश पंडाल ने चावल दाल साबुदाना और मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थों से गणेश प्रतिमा तैयार की है। अनोखी कलाकृति को देखने के लिए मंडप में भक्तों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के जालना में एक शानदार गणपति पंडाल की तस्वीरें। जालना में रामायण की कथा की थीम पर पंडाल में विशेष दृश्य की रचना की गई है। कहने को ये श्री अनोखा गणेश मंडल का पंडाल है, लेकिन इस पंडाल में बजरंग बली के संजीवनी बूटी लाने और लक्ष्मण जी के होश में आने का प्रसंग तकनीक के साथ साकार किया गया। तो हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाने का ये दृश्य वहाँ मौजूद लोगों को खूब पसंद आया।
1: की मूर्ति जो कि स्वर्ण द्वारा यहाँ बनाई गई है, सभी भक्तगणों की मनोकामनाएं पूरी होते हुए।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के जालना में ही गणेशोत्सव की एक और खास तस्वीर। जालना में गणेशोत्सव के पंडाल में अनोखी भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी की ओर से स्थापित 11 मूर्ति की प्रतिमाओं के साथ भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई है और पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड तक की अलग अलग अवधारणाओं को मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में इन दिनों गणेशोत्सव की भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक भी देखने को मिल रही है। अमरावती के इस गार्डन क्लब गणेश मंडल के पंडाल में गौरीपुत्र गणेश को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। गणपति बप्पा के हाथ में राधा का हाथ नजर आता है, जबकि प्रतिमा की पूरी कलात्मक प्रस्तुति भगवान कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाती है। खास बात यह है कि बप्पा की इस अनोखी प्रतिमा के साथ रुक्मिणी से जुड़ी कृष्ण लीला का संदर्भ भी दर्शाया गया है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। अब आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती में एक और गणपति पंडाल की शानदार तस्वीरें। यहाँ के बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल ने पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी तैयार की। यहाँ गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा के साथ खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी बनाई गई है। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर रहे हैं। आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल करीब 98 सालों से गणेशोत्सव की परंपरा को निभा रहा है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के सतारा में करार के एक परिवार ने गणेशोत्सव में रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए सेहत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। करार की गजानन सोसाइटी के शिवसाई पार्क में हिंगमिरी परिवार ने गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा के आसपास योग के अलग अलग आसनों को दर्शाया है और शरीर को योग से कैसे निरोग का संदेश दिया है। तो वहीं योग के अलग अलग आसनों को दर्शा रही है झांकी, खूबसूरत तो है ही, साथ ही गौरी पुत्र के लिए बनाए गए कमल से लेकर दीपमाला तक कई चीजें कार्डबोर्ड से तैयार की गई हैं। गणेश उत्सव के दौरान देश भर में एक से बढ़कर एक भव्य और आकर्षक गणेश पंडाल तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच गुजरात के सूरत शहर से थोड़ी दूर सरोली गांव में एक ऐसा ही गणेश पंडाल तैयार किया गया है जिसकी खासियत इसकी सादगी और गांव की यादों को जीवंत करने वाली थीम है। यहाँ गणेश उत्सव के लिए एक अनोखा गाँव की थीम पर आधारित गणेश पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी गाँव में पहुँच गए हों। अब आपको दिखाते हैं सूरत के एक अनोखे गणपति पंडाल की तस्वीरें। सूरत के रानदेर इलाके में इस बार गणेश उत्सव के दौरान शानदार सामाजिक संदेश देने वाली थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया है। आमतौर पर गणेश पंडालों में धार्मिक और पौराणिक झांकियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको राजकोट के गणेश पंडाल में लिए चलते हैं जहां भक्ति और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस पंडाल में दो रोबोट्स एक्टिव हैं, एक बप्पा की आरती करता है, दूसरा घंटी बजाता है। ये रोबोटिक आरती यहां आकर्षण का केंद्र है। ये रोबोटिक सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेशन पर काम करता है। खास बात यह है कि इसे राजकोट में ही असेंबल किया गया है। स्पीडवेल चौक का राजा पंडाल को इस साल व्हाइट हेवन थीम पर सजाया गया है। अब आपको दिखाते हैं रामनगरी अयोध्या में गणेश उत्सव की खास तस्वीरें। अयोध्या नगरी में बने गणपति पंडाल यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। अयोध्या में इस साल गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां 150 से ज्यादा पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहां के कुर्मी टोला, बड़ा रमना और अवधपुरी वार्ड समेत पूरे शहर में आकर्षक पंडाल, रंग बिरंगी लाइटें और स्वागत द्वार सजाए गए हैं। यहां के पंडालों में गणपति बप्पा मोरिया के साथ साथ जय श्री राम की भी गूंज है। अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई की तस्वीरें। भिलाई में छत्तीसगढ़ की बस्तर की प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता मंदिर की थीम पर प्रदेश का पहला शानदार डिजिटल गणेश पंडाल बनाया गया है। यहां भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। काले पत्थर की आभा वाली ये गणपति प्रतिमा इतनी सजीव और अलौकिक लगती है कि भक्त भाव विभोर होकर बस इन्हें निहारते रह जाते हैं। भव्य पंडाल की बाहरी बनावट बस्तर की अष्टी अधिशास्त्री देवी मां दंतेश्वरी के ऐतिहासिक मंदिर के प्रतिरूप के तौर पर तैयार की गई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के वारंगल में स्थापित अनोखे गणपति की तस्वीरें। गणपति को मंगल मूर्ति कहा जाता है, लेकिन वारंगल में न्याय मूर्ति गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित की गई है। तेलंगाना के वारंगल जिले के रमन्ना पेट में गणेश उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट की थीम पर तैयार की गई ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इको फ्रेंडली प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनी हुई है। वहीं तेलंगाना के पलवांचा में करारे करंसी नोटों से गणपति का श्रृंगार किया गया है। दो गणेश प्रतिमाओं को 2,90,00,000 के करंसी नोट से सजाया गया है। एक प्रतिमा बापूजी नगर में स्थापित की गई है जहां कापू समुदाय ने विशेष पूजा का आयोजन किया और गणेश प्रतिमा को 1,40,00,000 रुपए के नोटों से सजाया। दूसरी ओर एक और जगह पर टीम एक दंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने गणेश प्रतिमा को 1,50,00,000 के करंसी नोट से सजाया है। इस अनोखी सजावट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और बड़ी संख्या में भक्त प्रतिमाओं को देखने के लिए पहुंचे। अब आपको दिखाते हैं बिहार के गणपति उत्सव की तस्वीरें। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के गुदरी बाजार और ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिन के गणेश पूजा महोत्सव का खास आयोजन किया गया। गुदरी बाजार में 31 साल से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार यहाँ कोलकाता की थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है। करीब 15 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के ऐतिहासिक पंच मंदिर में भी गणेशोत्सव हो रहा है। यहाँ बप्पा का रोज अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है और दिव्य आरती होती है। अब आपको दिखाते हैं गणपति की विदाई की तस्वीरें। महाराष्ट्र के बीड में लिंबा गणेश में मयूरेश्वर गणपति को शाही अंदाज में विदाई दी गई। बीड तहसील के लिंबा गणेश गांव में 225 सालों से चली आ रही एक गांव एक गणपति की अनूठी परंपरा इस साल भी पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ निभाई गई। यहां सरकार वाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति की विदाई शाही ठाट बाट के साथ सम्पन्न हुई। इस भव्य जुलूस में आसपास के 12 गांवों की टीमों ने हिस्सा लेकर समा बांध दिया। गणपति को भावभीनी विदाई बिहार के मधेपुरा जिले में भी दी गई। मधेपुरा के मुरलीगंज में 5 दिन पूजा अर्चना के बाद भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और नदी में विधि विधान के साथ भगवान की प्रतिमा को विदाई दी गई। गुजरात के गोधरा में भी 6 दिनों की पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को विदाई दी। गोधरा शहर में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 1000 से ज्यादा प्रतिमाओं को रामसागर तालाब और कनेलाव में भावपूर्ण विदाई दी गई है। मूसलाधार बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और लोगों ने बारिश को बप्पा का आशीर्वाद मानकर डीजे की धुन पर नाचते गाते विदाई यात्रा निकाली और इस भव्य शोभा यात्रा में 80 से ज्यादा गणेश मंडल डीजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर शामिल हुए। अब आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बप्पा की विदाई की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर प्रबंधन समिति ने गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पारंपरिक गणेश विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान गणपतियार स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। ये जुलूस कई इलाकों में होते हुए हब्बा कदल के सोमयार शिव मंदिर की ओर गया और फिर खयार से होते हुए श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर लौटा और अंत में श्री गणेश घाट पर गणपति को विदाई दी गई।

0: Every day, companies you've never heard of are making billions selling your personal information. Data brokers scrape your name, addresses, phone numbers, even details about your family, and sell it without your consent. Aura fights back. Aura removes your data from broker sites, keeps it off, and alerts you if your info shows up on the dark web. You also get VPN, antivirus, and a password manager. Start your free trial today at aura.com/shield. Protect yourself now at aura.com/shield. That's aura.com/shield.
1: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
9: गणेशोत्सव का समापन तो 25 सितंबर को होना है, लेकिन कुछ जगहों पर गणपति विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है. अपनी मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग 5 दिन तो कुछ लोग 7 दिन में गणपति विसर्जन करते हैं. ये तस्वीरें गुजरात की हैं. गोधरा में अलग अलग पंडालों की गणपति की शोभा यात्रा निकली, तो भगवान के सम्मान में पूरा शहर सड़कों पर उतर आया. ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए लोगों ने गणपति बप्पा की विदाई की और अगले बरस जल्दी आना की कामना की. सड़कों पर विशाल प्रतिमाओं से पूरा माहौल ही भक्ति और उत्साह से भर गया. विसर्जन के दौरान कुछ जगहों पर बारिश भी हुई, हालांकि इस बारिश का भक्तों के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा. कुछ जगहों पर भक्तों ने बप्पा को बारिश के बीच विसर्जन स्थल तक ले जाने का खास इंतजाम भी किया हुआ था. नगर निगम ने भी गणपति विसर्जन कुंड पर खास तैयारियां की थी, ताकि विसर्जन के लिए आने वाले लोग पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन कर पाए और किसी भी श्रद्धालु को विसर्जन में कोई परेशानी ना हो. विसर्जन कुंड तैयार किए गए थे, इसके आसपास सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम थे. आला अधिकारी भी सारी तैयारियों पर नजर रखे हुए थे.

0: जिस धूमधाम से बप्पा का आगमन हुआ उसी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बप्पा की विदाई भी शुरू हो चुकी है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े और डीजे के संगीत पर झूमते भक्त बप्पा को विदा करने चले तो सड़कों पर आस्था का सैलाब सा उमड़ आया। ये तस्वीर गुजरात के गोधरा की है जहां 80 से अधिक गणेश मंडलों ने अपनी मूर्तियों का विसर्जन किया। लेकिन विसर्जन से पहले जब ये शोभा यात्रा शहर की सड़कों से होकर गुजरी तो माहौल देखते ही बना। मौसम का बिगड़ा मिजाज भी बप्पा के इन भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाया। जोरदार बारिश के बीच भी भजनों पर भक्तों का झूमना जारी रहा। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या युवा, सभी ने बप्पा को अगले बरस जल्दी आने के लिए खुशी खुशी विदाई दी। उधर महाराष्ट्र के बीड तहसील के लिम्बा गणेश गांव में 225 वर्षों से चली आ रही एक गांव एक गणपति की अनूठी परंपरा इस साल भी पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ निभाई गई। सरकार वाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति का विसर्जन शाही ठाट बाट के साथ किया गया, लेकिन विसर्जन से पहले गणपति बाप्पा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजा, ढोल ताशों की गूंज, ताल मृदंग की थाप और भजनों से पूरा लिम्बा गणेश गांव ही भक्तिमय माहौल में डूबा दिखा। वहीं कोल्हापुर में मूर्ति विसर्जन को लेकर महानगर पालिका और जिला परिषद की ओर से एक खास अभियान चलाया गया, जिसके तहत मूर्ति दान अभियान को शहरवासियों का जबरदस्त समर्थन मिला। शहर के अलग अलग स्थानों पर 160 से अधिक आर्टिफिशियल विसर्जन कुंड बनाए गए थे जहां लोगों ने मूर्तियों का विसर्जन किया। इस पहल से न सिर्फ नदी और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास हुआ बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इतना ही नहीं, इस बार महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने मूर्ति को विसर्जन स्थल तक लाने के लिए कोल्हापुर मेट्रो ट्रांजिट बसों का उपयोग किया, जो अपनी तरह का पहला प्रयोग था। गोधरा से भोई जयेंद्र कुमार बलवंत भाई, बीड से रोहिदास हलागले और कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि हमारे आपके घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमारे साथ शेयर करना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के नागपुर से रूपाली भूते ने इसे हमें भेजा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से पूरा परिवार पापा की आराधना में जुटा है। शानदार तरीके से पापा का श्रृंगार किया गया है। दूसरी तस्वीर हमें उत्तराखंड ऋषिकेश से शिप्रा शर्मा ने भेजी है। यहाँ पापा को शानदार पोशाक पहनाई गई है और साथ ही मनमोहक फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है। पापा का आसन भी बेहद प्यारा लग रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
1: देशभर में गणेश उत्सव की रौनक, गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला लगा। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है पवित्र चार धाम यात्रा। मानसून के बाद भक्तों से गुलजार हुई बद्रीनाथ धाम। अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

का मेंस 10 मीटर एयर राइफल में मिला सिल्वर। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला मेडल। 60 किलोग्राम की कैटेगरी में सेमीफाइनल में सुचिका तरियाल ने जीता ब्रॉन्ज। दस मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल। हिमांशु ने जीता सिल्वर मेडल। रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मिला। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान। अब तक भारत के खाते में 6 मेडल्स। गणेशोत्सव का आज 8वां दिन। देशभर में विधि विधान से गजानन की आराधना जारी। देश के कई पूजा पंडालों से गजानन की प्रतिमा की हुई विदाई। लोगों ने भक्ति भाव और अगले बरस जल्दी आने की गुहार के बीच विसर्जन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव में दिखा बप्पा का अनोखा पंडाल। गणपति अलग अलग रूपों में दे रहे हैं जल बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश। कहीं गणपति बप्पा पानी की बूंद बने हैं तो कहीं पेड़ और प्राणी के रूप में नजर आ रहे हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। चंद्रपुर के पंडाल में ड्राइवर की भूमिका में नजर आए मूषक राज। पंडाल में रेल के डिब्बे की तरह बनाए गए हैं सभी कंपार्टमेंट्स। मुंबई में शिव डीचा राजा का भव्य अवतार। अंडर वाटर द्वारका की अद्भुत थीम। गणपति पंडाल की शानदार सजावट। शिव डीचा राजा गणपति पंडाल के 75 साल पूरे होने पर जश्न। शिव डीचा राजा में पानी के अंदर सजी द्वारका नगरी। समुद्री जीव और रोशनी ने बढ़ाई भव्यता। होलोग्राफिक प्रस्तुति बनी खास आकर्षण। भव्य नजारे में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पानी के अंदर भगवान श्री कृष्ण की नगरी का रिक्रिएशन किया गया। जलमग्न नगरी की थीम ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। बापा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबाग चौराहा के दरबार में हाजिरी लगाई। पति पत्नी यहां पर पहुंचे, बापा के दर्शन किए। दोनों ने बापा का आशीर्वाद लिया। दर्शन के दौरान दिख रहा है खास भक्तिमय अंदाज। दोनों ने साथ में बप्पा की पूजा अर्चना की। दर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। लालबाग चौराहा के दरबार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर धवल कुलकर्णी। पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में लालबाग चौराहा की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल। आस्था और भक्ति से सराबोर नजर आए बप्पा के भक्त। पुणे में असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने गणपति आरती की। श्रीमंत भाव साहेब रंगारी गणपति पंडाल में लिया बप्पा का आशीर्वाद। जालना में रामायण की थीम पर अनोखा गणपति पंडाल सजा। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाते हुए नजर आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश में आने का प्रसंग दिखाया गया। गणपति पंडाल में दिखा रामायण का जीवन दृश्य। रामायण का प्रसंग देखने के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़।

सहारनपुर में भव्य गोगा मेले का आयोजन किया गया। आस्था परंपरा और इतिहास का अनोखा संगम। सहारनपुर में 800 सालों से जारी है मेले की परंपरा, दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। नीले निशान और छड़ियों के साथ पहुंचे श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा पूरा शहर। गोगा मेले को लेकर की गई भव्य लाइटिंग, रोशनी से नहाया पूरा शहर। सहारनपुर में गोगा मेले को लेकर किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर।

0: गोरखपुर में गीता वाटिका में दधिकांत लोत्सव, राधा रानी प्राकट्य महोत्सव के समापन पर भव्य आयोजन। गीता वाटिका मंदिर में गूंजा राधा रानी का जयकारा, दधिकांत दोत्सव में दिखा भक्तिमय माहौल, उल्लास नजर आया, देश भर में से उमड़े श्रद्धालु। अखंड हरिनाम संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किया गया, विशेष रास मंडलियों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पुरी के छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर मंगल कामना की और सुख शांति की प्रार्थना की। पुरी में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, पवित्र जगन्नाथ धाम की भूमि पर कथा, आध्यात्मिक आयोजन में भी शामिल हुए। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शनी, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का देखने के लिए मिल रहा है अनोखा संगम। दिल्ली में सजी द स्पेस इन बिटवीन आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग और मूर्तियों के बीच संवाद की भव्य प्रस्तुति। आर्ट एग्जीबिशन में कई कलाकारों की कृतियां शामिल, कला के जरिए विचार और रूप के बीच संवाद की प्रस्तुति। दिल्ली की आर्ट गैलरी में सजी रचनात्मक दुनिया, पेंटिंग और स्कल्पचर्स लोगों को आकर्षित कर रही हैं। आर्ट गैलरी में दिखी रंगों और आकारों की कहानी, 28 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस पहुंचे, दोनों युद्धपोत ADMM प्लस ज्वाइंट कॉपरेशन एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। संयुक्त अभ्यास से आसियान देशों के साथ 8 अन्य देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी, समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाना अभ्यास का उद्देश्य है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर है। INS सह्याद्री और INS कुलिश की यात्रा से भारत फिलीपींस समुद्री संबंध भी मजबूत होंगे, नौसेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग बढ़ाने का मौका मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण में KAL ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का आश्वासन दिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे एडिशन का सीएम योगी ने ऐलान किया, 25 से 29 सितंबर तक नोएडा के इंडिया एक्सपोज केंद्र में होगा आयोजन। इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी सरकार का निर्यात पर रहेगा फोकस, सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है निवेश। सरकारी नौकरियों को लेकर भी सीएम योगी ने ऐलान किया, अगले 6 महीने तक हर हफ्ते बांटेंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी देने की पहल तेज हुई, नौशेरा में रोड बनाने के साथ पुलों से जोड़े जा रहे हैं इलाके। सीएम भूपेंद्र पटेल की वडोदरा को करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात, मुख्यमंत्री ने 1297 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। गंभीरा ब्रिज और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का किया गया उद्घाटन, ब्रिज से वडोदरा और आनंद के बीच सीधा संपर्क बहाल हुआ, 29 करोड़ की लागत से तैयार किया गया स्मारक। विकास पैकेज में 593 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर शामिल, सड़क पुल आवास पानी और ड्रेनेज से जुड़े काम भी शामिल। कटक में ओडिशा प्रो T20 लीग का आगाज, सीएम मोहन चरण मांझी ने बारामती स्टेडियम में उद्घाटन किया, ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी समारोह में पहुंचे, 6 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी, 29 सितंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। चाइना के जांगजियाजिए में दिखा बादलों का अद्भुत समंदर। तियांजी माउंटेन बादलों और धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। पहाड़ों और घाटियों के ऊपर छाए बादलों ने मोहा मन। क्वार्ट्ज सैंडस्टोन की चोटियां बादलों के बीच तैरती दिखी। पूरा इलाका खूबसूरत प्राकृतिक पेंटिंग जैसा नजर आया। शानदार नजारे ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध किया। ऑस्ट्रियन मोटो जीपी में पेड्रो अकोस्टा ने रचा इतिहास। हासिल की करियर की पहली मोटो जीपी जीत। जॉर्ज मार्टिन को पछाड़कर खिताब जीता। अकोस्टा की रफ्तार की आगे कायम नहीं रही जॉर्ज मार्टिन की बढ़त। तो वहीं पोल पोजीशन से शुरू करने वाले मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे। मार्को बजेकी ने शानदार रेस के साथ पोडियम पर बनाई जगह। अप्रीलिया के मार्को बजेकी ने तीसरा स्थान हासिल किया। चाइना में 300 से ज्यादा रोबोट के अनोखी परेड। जेजियांग के हांगझोंग में रोबोट्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 50 से ज्यादा प्रकार के रोबोट शामिल हुए। हांगझोंग में दिखा रोबोट्स का शानदार शक्ति प्रदर्शन। अलग अलग उद्योगों में दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। रोबोट डॉग से लेकर ड्रोन तक दिखी झलक। रोबोट्स में दिखाया गया हाईटेक रेस्क्यू का हुनर। रेस्क्यू और पेट्रोलिंग ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। अनमैन व्हीकल रोबोट डॉग और ट्रैफिक रोबोट साथ नजर आए। चाइना में आया 3000 दवाओं को पहचानने वाला रोबोट। हांगझोउ में रोबोट ने शेल्फ से दवा निकालकर दिखाई अपनी क्षमता। दवा की दुकान में अब रोबोट करेगा मेडिसिन पिकिंग। चाइना में मेडिकल सेक्टर में रोबोटिक्स की नई एंट्री। ऑर्डर मिलते ही संबंधित दवा तय स्थान तक पहुंचाएगा। अंतिम सत्यापन और ऑर्डर पूर्ति फार्मासिस्ट करेगा। न्यूयॉर्क के ब्रायन पार्क में पॉज ऑन परेड का आयोजन किया गया। डॉग्स और उनके मालिकों की जमकर मस्ती देखने को मिली। परेड में डॉग्स रंग बिरंगे कपड़ों और मोतियों की माला में सजे हुए नजर आए। किसी ने स्टाइलिश जैकेट पहनी तो कोई रफल्स में दिखा। कुछ डॉग्स को उनके मालिक स्ट्रोलर में लेकर पहुंचे। वहीं एक डॉग ने स्केटबोर्ड चलाकर खींचा सबका ध्यान। इंसानों और डॉग्स के रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजन हुआ। डॉग लवर्स को एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। कार्यक्रम में केनाइन वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य भी पहुंचे। डॉग्स को वाटर रेस्क्यू में मदद करने की ट्रेनिंग की जानकारी दी गई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम, शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर भेजें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है, हमारे साथ शेयर करना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें महाराष्ट्र के पुणे से सरिता पांडे ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से पूरा परिवार यहाँ पर जश्न मना रहा है। दूसरी तस्वीर आप ज्ञानेश्वर महाराज की देख रहे हैं, जो उन्होंने भेजी है किस तरह से गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। महाराष्ट्र से अहिल्या नगर से उन्होंने हमें ये तस्वीर साझा की है, कितने सुंदर तरीके से गणपति बप्पा को सजाया गया है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला, अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर और रुद्राक्ष को ब्रॉन्ज मेडल, सुचिका को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा है वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी, 11 अक्टूबर तक चलेगा ये एक्सरसाइज। पोखरण में स्वदेशी केएल ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर की रेंज, 50 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। फिलीपींस पहुंचे भारतीय नौसेना के युद्धपोत, दूसरे आसियान भारत समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेंगे, समुद्री सुरक्षा पर आसियान रक्षा मंत्रियों की भी बैठक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
8: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिंकी भाभी और लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। सीरियल्स का सस्पेंस हो, रियलिटी शोज का हंगामा या फिर वेब सीरीज का तड़का, सास बहू और बेटियां के शो में आपको मिलेगी मनोरंजन की हर खबर। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, अनुपमा के घर आएंगे बप्पा, नाच गा कर होगा विघ्नहर्ता का स्वागत।

चाचा की होगी तुलाभार की रस्म, दादी चलेगी नई चाल। पति पत्नी और पंगा के प्री लॉन्च पार्टी में नजर आएंगी जोड़ियां, शानदार होगी शाम।

सूरज प्रजातिया लेकर आ रही हैं फैमिली फिल्म ये प्रेम मोहलिया, जिसमें बनी है आयुष्मान और शर्वरी की जोड़ी। देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में काफी जोड़तोड़ और हंगामे के बाद आखिरकार ताइजी और चंदूजी की शादी होने जा रही है। ऐसे में इस शादी के लिए सूरज तो तैयार है, लेकिन शादी में नया ट्विस्ट आना बाकी है। कैसे, देखते हैं।
1: हो गई चंदू और ताई माँ की शादी।
2: अबे मेरी शर्त पर मेरे ताईवा माँ उस घर में नहीं जाएंगे, बल्कि यही हमारे घर में हमारे साथ।
1: शुरू हुई सूरज और ईशा के बीच टशनेबाजी। सूरज की जिद पर ईशा की चेतावनी।
3: मोहल्ले के सारे आदमी पर अपने आदमी को समझाने के लिए मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेंगे।
4: मेरे ठीक पति ब्रह्मचारी जी, तुम जानते हो ना, शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती है।
1: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा ने जो फैसला लिया था, आज अपने वो फैसले को पूरा करने जा रही है। जरा देखिए कैसे ताई माँ की आंखों में पट्टी बांधकर वो दे रही है उन्हें सरप्राइज। असल में ईशा ताई माँ और चंदू की शादी करवाना चाहती थी, और देखिए कैसे वो शादी करवा कर अपने मोहल्ले में वापस ले भी आई है। और तो और मोनिका वो तो झूम झूम कर नाच रही है अपनी सासू माँ की शादी पर, और तो और जाहिर कर रही है अपनी खुशी भी, क्योंकि ताई माँ अपने ससुराल जो जाएंगी।

0: तभी तो आपने फूलों की बारिश करवा दी। गालियां देंगे लेकिन खुद ही, लेकिन ये तो खुद यहाँ तक छोड़ने आया हूँ मैं।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये अनोखा तो है ही, क्योंकि हमारी ईशा जो है वो सिर्फ हीरोइन नहीं है, वो एक्चुअली समाज में हीरोइन की पोजीशन रखती है। तो उसको लगता है कि पॉजिटिवली कि ताइमा अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, तो इसलिए उसका उठाया हुआ कदम है। और ये भी पता लगता है कि जो चंदू है वो उनका पुराना प्यार है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कोशिश ईशा की है।
2: भाई मोनिका तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है क्योंकि उसे ताई माँ का कमरा जो मिल जाएगा। ऐसे में ईशा भी अपनी सासू माँ को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कहती है, तो वहीं चंदू के बच्चे भी इस शादी के खिलाफ हैं। हालांकि ताई माँ और चंदू नीचे से ही उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, और तो और ताई माँ चंदू के साथ उनके घर की ओर निकल भी पड़ती है। लेकिन तभी सूरज ईशा को रोक लेता है, वो भी नो टच वाले अंदाज से, और सुनाता है अपना फैसला।
3: अभी मेरी शर्त बाकी, मेरे ताइमा वहाँ उस घर में नहीं जाएंगे, बल्कि यही हमारे घर में हमारे साथ।
2: अब ईशा ने कोशिश तो की सूरज को समझाने की, लेकिन सूरज भी जिद पर आ गया है क्योंकि उसकी ताई माँ के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग है, और वो चाहकर भी अपनी ताई माँ को अपने से दूर भेज नहीं सकता। इसीलिए देखिए कैसे वो ईशा पर नाराज हो रहा है।
4: मोहल्ले के सारे आदमी समझे, पर अपने आदमी को समझाने के लिए मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेंगे। मेरे ठीक पति ब्रह्मचारी जी, तुम जानते हो ना शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती है।
3: हाँ सब जानता हूँ, लेकिन मेरी ताई माँ घर से कहीं भी नहीं जाएगी बस।
4: अच्छा हाँ? हमारी शादी के बाद मुझे ससुराल लाए थे ना, या मुझे गुलाब उंगली छोड़कर आ गए थे?
5: वो तो मजबूरी थी ईशा जी, अब गले पड़ गई थी मेरी, इसलिए मजबूरी में लेकर आना पड़ा।
4: अच्छा, मैं गले पड़ गई थी?
5: हाँ।
4: तो
1: विदाई तो नहीं हो पाएगी क्योंकि सूरज ताई माँ एक दूसरे की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ताई जी के लिए सूरज से बढ़ के कुछ नहीं है, और सूरज के लिए ताई जी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो सूरज ने शर्त रख दी है कि ताई जी नहीं जाएंगी घर से बाहर, तो ताई जी मान लेती है कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर में रहूंगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है चंदू हमारे घर में आ जाएगा और हम साथ में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाला ट्रैक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपने अगर पुरानी पिक्चर देखी हो गोलमाल, है ना, कि दो दो फैमिली के बच्चे, उसके बच्चे हमारे बच्चे, और दोनों पेरेंटिंग करेंगे, तो थोड़ा कॉमेडी भी होगा, थोड़ा अच्छा होगा वो ट्रैक। और विदाई तो नहीं होने देता है, वो सूरज शर्त लगा देता है, तो हमारी विदाई तो नहीं हो पाती है।
2: भाई यहाँ तो सूरज और ईशा के बीच की बहसबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सभी घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरज है कि चुप हो ही नहीं रहा। ऐसे में ईशा जाती है और पानी से भरी बाल्टी ले आती है, और सूरज को चुप करने के लिए वो पानी सूरज के ऊपर फेंक देती है, जिसके चलते सूरज की बोलती तो बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही ईशा कुछ कहती है, सूरज फिर से शुरू हो जाता है और अपनी शर्त आगे रख देता है।
4: शुक्र करो कि तुम्हें मुझ जैसी लड़की मिल गई, वरना तुम अभी भी वही लड़की होते सूरज।
3: बीते हुए कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने आज को अपनी मर्जी से जीऊंगा। मैंने कह दिया ना कि मेरी ताइमा कहीं नहीं जाएगी, मतलब कहीं नहीं जाएगी, बस बात खत्म।
4: कैसे रोकते हो?
1: जोड़ी टूटेगी तो कभी नहीं, ऐसा लगता है। कई बार हुआ है ऐसा कि लोगों को लगता है जोड़ी टूटेगी, बट उनका रिश्ता अब ऐसा हो गया है सूरज का ईशा का, जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं ना ऐसे, बट उनका प्यार बहुत है आपस में, तो वो टूटने की स्थिति तो नहीं है, पर झगड़ा करते हैं। और ये हम सबको पता है कि लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन एक हो जाएंगे, अलग नहीं हो सकते।
2: भाई इससे पहले कि इस मोहल्ले में सूरज और ईशा का गुस्सा तेज पकड़ता, ताई माँ सामने आ जाती है और सूरज की बात को मानते हुए उसके साथ उसी के घर में रहने की बात कहती है। यानी अब ताई माँ के साथ साथ चंदू और उनके बच्चे भी सूरज के घर में आकर रहेंगे, यानी दो परिवार एक होने की कोशिश करेंगे, जिनमें कई सारे मतभेद भी होंगे और कई सारे ट्विस्ट भी आएंगे जिन्हें देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: अंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में चल रही है राध्या के तुलाभार की रस्म, जहां तराजू के एक तरफ राध्या है और दूसरी तरफ अनाज की बोरियां। लेकिन तराजू है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इसके पीछे है दादी की चाल। कैसे, चलिए देखते हैं।

का तुलाभार। दादी की नई चाल।

0: में शुरू हुआ नया तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आए दिन कोई ना कोई ड्रामे होते ही रहते हैं, लेकिन आज तो हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर दादी ने फैसला लिया है कि वो राध्या की तुलाभार की रस्म करेगी। असल में दादी ने राध्या के वजन का अनाज दान करने का वादा किया है। ऐसे में सभी घर वालों के सामने वो ये बड़ा सा तराजू लेकर आई है। साथ ही यहाँ मौजूद है दादी की सहेलियाँ भी, जिनके सामने आज राध्या इस तराजू पर बैठेगी और दूसरी तरफ अनाज की बोरियाँ होंगी। हालांकि पहले तो प्रथम इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन फिर दादी के कई बातें सुनाने पर वो सभी को मानना पड़ता है।
1: राध्या होने वाले बच्चे की माँ, इसलिए आज हम राध्या के वजन बराबर गरीबों में अन्न दान करेंगे।
2: अगर राधा के वजन जितना ही दान करना था तो आप वेइंग मशीन से चेक करके वैसे भी करवा सकती थी। उसके लिए राधा को तराजू पर बैठाने की क्या जरूरत थी?
1: जरूरत थी प्रथम, कल हमारी सहेलियों ने हमारे ऊपर इतने ताने कसे, आज उनकी नजरों के सामने ये दान तो होना ही चाहिए और किसी तरह से होगा। राधा की वजह से हमारी जग हसाई हुई और आज तुम हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो। अरे राधे को तो सिर्फ हमने तराजू में बैठने के लिए कहा है प्रथम, थोड़ी ना उसे अपने कंधों पर बोरा लादने के लिए कह दिया। हाँ, अरे राधे को तो बस तराजू पर बैठना ही है। कौन सा हमने महारानी को अपने कंधे के ऊपर बोरा लादने के लिए कह दिया?
0: तो भाई तराजू के एक तरफ राध्या है और दूसरी तरफ, और देखिए तो दादी खुद ही ये अनाज की बोरियां रख रही है किसी की हेल्प लिए बिना। तो भाई एक एक कर दादी अनाज की बोरियां तराजू की दूसरी तरफ रखती जा रही है, लेकिन राध्या के तरफ का तराजू ऊपर उठ ही नहीं रहा। ऐसे में देखिए कैसे दादी की सहेलियां ताने पर ताने भी मार रही हैं। में दादी अनाज की सारी बोरियां रख देती है, लेकिन तराजू टस से मस नहीं होता। ऐसे में सभी के सामने राध्या के वजन का मजाक उड़ाया जा रहा है। भई यही तो दादी चाहती थी, क्योंकि ये है दादी की चाल। असल में इन बोरियों में अनाज है ही नहीं, इसी वजह से तराजू टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है सिवाय दादी के। फिर होता है चमत्कार, राध्या भगवान की प्रार्थना करती है और देखिए तराजू राध्या की तरफ से ऊपर उठने लगता है।

0: तो भाई सच की जीत होती है। राध्या को कोई भी कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, आखिरकार वो जीत ही जाती है और हो जाता है चमत्कार। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मोहम्मद लतीफ के घर गणपति विराजे हैं। ऐसे में बप्पा के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कई सितारे उनके घर पहुंचे। सितारों की मौजूदगी से लतीफ के घर का माहौल और भी खास हो गया। तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर।

0: बात पापा के दर्शन करने पहुँचे सितारे।
1: दुनिया का है करता धरता, दुख निवारण तू है बड़ा।
0: मोहम्मद लतीफ के घर आए बापा।
1: सुन दुनिया के राजा, मेरे घर भी आजा, दिल में भी राजा तू हमेशा।
0: छाया भक्ति का समा।
1: ओ गणेशा, ओ गणेशा, ओ गणेशा।
0: चारों ओर गणेशोत्सव की धूम है। ऐसे में इन्फ्लुएंसर मोहम्मद लतीफ भी हर साल अपने घर पर पापा लेकर आते हैं और इस साल भी उनके घर पापा मेहमान बनकर आए हैं और इस खास मौके पर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया है पापा का आशीर्वाद लेने के लिए। भाई पापा बुलाएं और सितारे ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो मोहम्मद लतीफ के पापा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कई सितारे, जैसे कि शुभांगी आत्रे, शिखा पांडे, उर्वशी ढोलकिया, अदा खान, शाइनी दोषी, सुरभि चांदना और करण, आकांक्षा चमोला, डेजी शाह, मुनीषा, अद्रिजा रॉय, उर्वशी ढोलकिया, श्रुतिका, राजन शाही, विशाल सिंह और कई और सितारे जो पापा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। भाई यही तो मौके होते हैं जब सब साथ मिलते हैं और त्योहार में सब अगर साथ हो तो त्योहार और भी ज्यादा हैप्पी हैप्पी हो जाता है। तो भाई यहाँ सभी पहुँचे, सभी ने बापा का आशीर्वाद लिया, उनकी आरती उतारी और कहा गणपति बापा मोरिया। तो आइए इन सभी सितारों से जानते हैं कि किस तरह वो गणेशोत्सव का ये त्योहार मना रहे हैं और क्यों है इनके लिए ये साल बेहद खास।

बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरे यहाँ गणपति आते हैं. जब से मेरी और करण की शादी हुई है, ये तीसरा साल है जब हमने गणपति रखे. बप्पा आए, उनको हम सुकर के बप्पा बोलते हैं, सुरभि और करण के, और उनका विसर्जन भी हो गया बिकॉज डेढ़ दिन के थे. एंड नाउ इज़ द टाइम टू मीट फ्रेंड्स. एंड मोहम्मद ने बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत बप्पा रखे. आई मीन बहुत अच्छा, और ऐसा चहल पहल वाला माहौल सबसे अच्छा लगता है. आई फील मेरे अंदर काफ़ी स्थिरता, स्टेबिलिटी काफ़ी आई है. बप्पा एक तरीके से एक सेंस ऑफ मैनेजमेंट भी लाते हैं, सेंस ऑफ स्थिरता, पेशेंस, ये सारी चीज़ें मुझे प्रदान कर रहे हैं. आई थिंक घर का जो माहौल होता है ना, मेरे तो पहले दिन ही गैस लीक हो गई थी. मैंने एक अपना पोस्ट में भी डाला था, तो बप्पा का भोग बन रहा था एंड गैस लीक होनी शुरू हो गई, अचानक से स्मेल आने लगी. बट बप्पा को विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता. ऑन दैट फर्स्ट डे, जिस दिन चतुर्थी होती है तो छुट्टियाँ होती हैं, गैस वाले की भी मतलब वो एक छुट्टी थी, बट देन वी मैनेज इट. एक घंटे में वो आया, फिक्स्ड इट. पापा का भोग लगा, थोड़ा लेट लगा, बट शायद उसी वक्त आइडियल टाइम था पापा को भोग लगने का.

बहुत बहुत स्पेशल है एंड आई थिंक दिस इज़ माय थर्ड ईयर इन मुंबई एंड और अभी इस साल मैं मोहम्मद के घर आई हूँ एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कलकत्ता से हूँ मैं एंड कलकत्ता में दुर्गा पूजा ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है जैसे मुंबई में गणपति और अभी दोस्त बन रहे हैं मेरे तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंबई में नॉर्मल दर्शन के लिए जाती हूँ अब मैं लोगों के घर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर पर ऐसे कोई सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मुझे मेरी घर मतलब मेरे घर की बहुत याद आ जाती है।

0: बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये 10 दिन का माहौल ही बहुत अच्छा लगता है, और मतलब हर जगह आरती चल रही है, ढोल बज रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सजे हुए हैं, हैप्पी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जिस चीज़ के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा खुद भी अवेयर हूँ और लोगों को भी अवेयर करना चाहती हूँ, गणपति विसर्जन के टाइम आप लोग प्लीज़ नदी, तालाब या जो हमारा अरेबियन सी है, प्लीज़ उसके आसपास कोशिश कीजिए, कचरा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए। प्रकृति में ही ईश्वर है, ये इस चीज़ को समझना और जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी जो प्रकृति ने जो हमको दिया है, इतने सारा, इतनी सुंदर सुंदर, लाइक वो कहते हैं ना कि प्रकृति, लाइक हम तो उसको माँ भी मानते हैं, और ईश्वर ने हमको इतना सुंदर ये पृथ्वी दी है, हमारी जिम्मेदारी है उसको संभालना। तो बस प्लीज़ गंदा मत कीजिए, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
1: एक्साइटेड है, और जब से मैं मुंबई आई हूँ गणपति के लिए, तो मैं हमेशा वेट करती हूँ कि कब ये फेस्टिवल आए, कब हम सेलिब्रेट करें, कब हम तैयार हो, कब हम बप्पा की आरती करें। तो बहुत बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मैं इस फेस्टिवल के लिए। अपने अपने शोज़ कर रहे होते हैं या कहीं किसी इवेंट में बिजी होते हैं तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन गणपति एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हम सब मिलते हैं। मतलब चाहे हम 5 मिनट का भी टाइम निकालते हैं, लेकिन सबके घर जाते हैं, मोदक खाते हैं। तो आई थिंक मुझे तो वही गैदरिंग बहुत पसंद है।

यार मेरा खुद का जन्मदिन गणेश चतुर्थी पे हुआ था, तो मैं और बप्पा अपना बर्थडे शेयर करते हैं, और जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन बप्पा भी 9 दिन के जो गणपति हम लेकर आते हैं उस दिन गणेश चतुर्थी थी। तो मैं, मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो डेट से भले मेरा बर्थडे याद रखे ना रखे, तिथि से हमेशा याद रहता है कि गणेश चतुर्थी है, मतलब शाइनी का बर्थडे है। सो या मैं जो भी हूँ आज, इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स, और वो जहाँ तक भी मुझे लेकर आए हैं आज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बप्पा एंड या।

0: मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। बचपन से लेकर अभी तक हर त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और गणपति बप्पा तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है पूरे महाराष्ट्र के लिए और अब पूरे इंडिया के लिए। तो बस यही है, हर पंडाल विजिट करो, सबके घरों में जाओ, मोदक खाओ, उकड़ी का मोदक खाओ, बस ये खाने पीने वाला सीजन है। बटोरते रहो, खाते रहो और बप्पा के दर्शन करते रहो। सुंदर सुंदर बप्पा हर जगह मिल ही जाते हैं हमें।
1: ये बहुत अच्छा है, इतने खूबसूरत बप्पा जी के मतलब दर्शन हो गए मोहम्मद के घर पे, और इतने प्यार से बुलाते हैं हमेशा, एंड आई फील रियली नाइस। और आज घर पे इनके आना, एंड आई रियली फेल्ट वेरी वेरी पॉजिटिव, यू नो। और इतना खूबसूरत जो यू नो डेकोरेशन किया गया है, एंड मोहम्मद ने सारी कहानियाँ बताई, यू नो, उनकी जो आस्था जो उनका वो जो यू नो बप्पा पे है, हर गणपति पे, तो इतनी अच्छी कहानी थी, एंड फील वेरी पॉजिटिव एंड नाइस। गणपति बप्पा मोरिया,
2: इनके यहाँ आई हूँ पहली बार आज, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और गणेश चतुर्थी, आई मीन आई थिंक सारे फेस्टिवल्स एक ऐसा मौका होते हैं जहाँ हम सारे दोस्तों से मिले, उनके साथ सेलिब्रेट करें। सो आज मैं इनके यहाँ आई हूँ और सेलिब्रेट कर रही हूँ इनके साथ, और बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे डेकोरेशन।
3: अदा हमेशा मिस करती है, क्योंकि जिस दिन मेरे घर में कुछ रहता है उसी के दिन अदा के और फ्रेंड्स के घर में कुछ ना कुछ होता है। इफ्तार पार्टी से लेके अभी एक साल हो गया, अदा पहली बार आ रही है।
4: गंदू भैया मैं उनको बुलाती हूँ, तो जब भी मैं मुंबई आती हूँ ना कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, मैं हमेशा सिद्धिविनायक जाती हूँ, बिफोर प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट, शुक्रिया बोलने के लिए, और हमेशा अच्छा ही होता है। तो मेरे लिए वो अपने मतलब ही इज लाइक द क्यूटी। हाँ,
5: हमेशा बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ और मुंबई से, और जहाँ मैं रहती थी बचपन में, हमारे सोसाइटी में नीचे एक वर्कशॉप था जिसमें गणपति बापा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और बहुत सारे फैंस और लोग जानते हैं कि मैं बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाती हूँ, और सबसे खूबसूरत उनमें से होता है एलिफेंट हेड यानी गणपति जी का सर। तो वो मैंने उन बनाने वाले कारीगरों से सीखा था जो अब तक मैं बनाती हूँ यानी शौक से। और मुझे मेरा फेवरेट एनिमल भी एलिफेंट है, मेरे घर में आप आएंगे तो 40-50 आपको हाथी ही दिखेंगे अलग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं शायद वही एक कनेक्शन है कि मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, और सब इतना मानते हैं, और मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ तो मेरा कल्चर तो पूरा ही महाराष्ट्र है, तो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ।
6: तो भाई हमारी तरफ से भी आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो यही कहेंगे कि बापा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: पैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा, मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
6: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बीती शाम पायल गेमिंग ने मनाया अपना बर्थडे थ्रू की बर्थडे पार्टी, जिसमें शामिल हुए कई सारे सितारे जैसे कि एल्विश यादव, विकी जैन, फहद अली, सोहेल खान, नाजिला, जैद दरबार और कई और सितारे, जिन्होंने इस बर्थडे पार्टी में चार चांद लगाए और पायल को दी ढेर सारी विशेस।

खबरें आ रही हैं कि कलर्स टीवी के शो मन्नत में बड़ा बदलाव आने वाला है और इसमें आने वाले हैं नए लीड्स। और सुनने में आ रहा है कि अब मन्नत के नए लीड्स होंगे नमिक पॉल और तन्वी डोगरा।

बढ़ जाती है अपनी अपकमिंग फैमिली ड्रामा फिल्म। ये प्रेम मोल लिया को दर्शकों के बीच लाने के लिए तैयार है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शर्वरी की जोड़ी लीड रोल में नजर आएगी। बीती रात हुए म्यूजिक लॉन्च पर हिमेश रेशमिया के गानों और सितारों के डांस ने शानदार समा बांधा। देखते हैं इस म्यूजिक लॉन्च के नजारे।

पर जातिया लेकर आ रहे हैं फैमिली फिल्म। प्रेम रतन म्यूजिक लॉन्च पर छाया डांस और गाने का समा। तो भाई फैंस के लिए है गुड न्यूज, क्योंकि सूरज परजातिया फिर एक बार लेकर आ रहे हैं फैमिली फिल्म जिसका नाम है प्रेम मोहलिया। भाई सूरज परजातिया फैमिली फिल्म हमेशा से बनाते आ रहे हैं, जैसे कि हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह, और अब 2026 में वो लेकर आ रहे हैं एक और फैमिली फिल्म जिसका नाम तो आप सब जान ही चुके हैं। बीती शाम हुआ इसका लॉन्च, जिसमें नजर आए हीरो हीरोइन यानी कि आयुष्मान और शर्वरी, जिन्होंने डांस से समा ही बांध दिया। और दिखी इनकी ये प्यारी जोड़ी, मैं इनकी केमिस्ट्री आज देखने लायक है।

0: इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. टू बी अ राजश्री हीरोइन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सूरज सर कि आपने मुझे ये प्रिविलेज दिया. मैं एक चीज़ कहूँगी, आई थिंक राजश्री हीरोइन, राजश्री फैमिली जो है, आई थिंक द वे सूरज सर सीज दीज रिलेशनशिप्स, वो बस दो लोगों में नहीं होते, उनके अराउंड एक पूरी दुनिया होती है और ये दुनिया में उनकी फैमिली होती है, लोग होते हैं, उनके इमोशंस होते हैं, एंड आई थिंक ये जो सारी चीज़ें होती है ये रिलेशनशिप को बहुत रियल और ऑनेस्ट बनाती है. सो आई थिंक कि ये सर की सबसे बड़ी खूबी है. और द वे ही राइट्स हिज फीमेल कैरेक्टर्स, आई थिंक सभी जानते हैं कि ही सीज देम विद सो मच ग्रेस, विद सो मच डिग्निटी, येट दे आर सो फियर्स एंड सो करेजियस. एंड आई थिंक कि आई थिंक अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड. बट सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस टू मी. एंड ये जो राजश्री फैमिली है, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने मेरे आई बाबा उन दोनों को एक्चुअली मेरे फिल्म सेट पर बुलाया था, वो आज भी यहाँ है. इसके पहले मैं हमेशा डरी हुई रहती थी, मैंने कभी उन्हें फिल्म सेट पर बुलाया नहीं था, बट वो फर्स्ट टाइम मेरी इस फिल्म के सेट पर आए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा परिवार इस परिवार से भी मिले. एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी.
1: जय, मुझे उस टाइम पर विश्वास ना होता, मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है. ये राजश्री के साथ जो मेरा रिश्ता है, उसे मेरा नहीं, समस्त भारत का है, सब परिवारों का है. सब परिवारों को साथ में जोड़ने का जिम्मा जो उन्होंने उठाया है फिल्मों के जरिए, आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल. आई थिंक मुझे ये याद है कि हम आपके हैं कौन, मैंने सह परिवार देखी थी और मेरा पूरा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ पर थी, और वो देखने के बाद मुझे प्रेम से प्रेम हुआ, हिंदी सिनेमा से प्रेम हुआ, हमारे परिवारों के अंदर जो शक्ति है उससे प्रेम हुआ. एंड अब 20 सितंबर 2026 यहाँ पर सूरज बजातिया सर सामने बैठे हैं, और मुझे इतना पता है कि जब भी वैनिटी में सीन समझाने आते थे तो सर अपने जूते उतार के आते थे. मैंने कहा सर प्लीज़ अपने जूते मत उतारिए, आप प्लीज़ वैनिटी में आ जाइए, पर वो कभी मानते नहीं थे, जूते उतार के आते थे. फिर मैं उनको चरण स्पर्श कहता था, उनके मन से निकलता था आयुष्मान भव, और फिर वो सीन समझाते थे. तो ये मेरे लिए बहुत अनरियल है. मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अ चाइल्डहुड ड्रीम, आई थिंक इट्स टू गुड टू बी ट्रू. तो राजश्री के लिए तालियां होनी चाहिए.
0: सबसे पहले तो इट फील्स रियली रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. बट एक एनेक्डोट याद आता है, एक्चुअली हमेशा जब हम गाने शूट करते थे तो सूरज सर और मैं ना एक कॉर्नर पकड़ लेते थे और वो मुझे बातें बताते, जैसे कि हमने मैया यशोदा में ये स्टेप पे ये किया था, या फिर दीदी तेरा देवर दीवाना पे ये हुआ था. एंड दैट वॉज माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो मतलब बचपन से देखी हुई है, इन गानों से इतना प्यार है. और सर ने मुझे थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन बताई थी और फिर मैं भी उसे ट्राई कर रही थी अप्लाई करने के लिए. बट आई रियली थिंक कि ये एक फर्स्ट टाइम था जब मैंने देखा कि गानों में सिर्फ कोरियोग्राफी छोड़कर इतनी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया था, जैसे जो फैमिली है उनके इमोशंस, उनके साथ जो जो कनेक्शन बनता है, कहानी आगे कैसे बढ़ती है. एंड आई थिंक कि ये पहली बार था जब मैंने देखा कि गाने फिल्म को आगे कैसे ले जाते हैं, कहानी को आगे कैसे ले जाते हैं. एंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस था. और कौन नहीं जानता है हिमेश सर की मेलोडीज, हमने बचपन से सुनी है, आज भी सुनते आ रहे हैं सर. And it is such an honor ki we are here today and we are able to do this on your song. But there's just some very, very beautiful warmth that comes from you in the kind of music you've made. And the lyrics, I must say, have helped me a lot. Main hamesha lyrics sunke actually us kirdar mein zyada pahunchti thi. So I just want to say thank you to you, sir.
2: Toh is film ka music diya hai Himesh Reshamiya ne. Is launch par wo maujood hai. Aur dekhiye kaise Himesh ne अपने सुरों से समा बांध दिया. वैसे आज हिमेश के साथ आयुष्मान ने भी गाना गाया और लगा दिए इस लॉन्च पर चार चांद.
1: As a musician, probably I would love to, you know, I go for melody first, then lyrics, and then programming, production value, and everything. And as an actor, if I consume a melody, it'll be probably some scenarios in my head कि मैं कैसे उसे enact करूँगा. पर जो आप चंडीगढ़ के बच्चे की बात कर रहे थे ना, 15 साल को बस स्टैंड के बाहर चाय पीने के लिए, वो सिर्फ इमोशन के साथ जाता है. और कमाल की बात ये है कि हिमेश जी इमोशन समझते हैं और मास को समझते हैं. जो हिंदुस्तान की जनता को जितना अच्छा ये समझते हैं शायद ही और कोई कंपोजर आज के दौर में समझता है। जब पहली बार मैं नरेशन लेने गया था सूरत सर से और उन्होंने नरेशन सुनाई और मैंने बोला ये टाइटल, ये प्रेम मौलिया, और इनफैक्ट ट्विटर पे भी हर जगह ये प्रेम मौलिया टाइटल कैसे। फिर सर ने मुझे प्ले किया टाइटल ट्रैक ये प्रेम मौलिया एंड आई वॉज कन्विंस कि इससे बेहतर टाइटल हो ही नहीं सकता।
3: आयुष्मान ने तो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं अब तक, बहुत डिफरेंट फिल्में की है, बहुत प्रोग्रेसिव फिल्में की है। सो अगेन ये भी एक बहुत प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस की जहाँ तक बात है तो वो परफॉर्मेंसेस एक नॉच ऊपर जाने वाली है। इतना अच्छा काम किया है, उस स्क्रिप्ट को जस्टिफाई किया है कमर्शियलिज्म के साथ, बहुत आर्टिस्टिक तरीके से उसको, बहुत डीप उस कैरेक्टर को फील किया है। एंड शर्वरी का कैरेक्टर तो आई मीन आई डोंट थिंक शर्वरी के अलावा कोई प्ले कर सकता है, उतना अच्छा हुआ है। तो आप देख लेना, तो ये जो केमिस्ट्री है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री नहीं है सूरज जी की पिक्चर में हीरो और हीरोइन के बीच में तो क्या है। तो वो और सूरज जी जिस तरह से एक एक एक्सप्रेशन एंड परफॉर्मेंसेस पे काम करते हैं वो बहुत बहुत बहुत उम्दा काम किया है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट। तो बस बात है कि बस आप लोगों की दुआ चाहिए, बस मुझे दिल से बस आप लोग प्रे करना।

0: आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग हिस्ट्री.
1: इससे पहले एक हमारा लव ट्रैक है फिल्म, हमारा पहला हाफ लव ट्रैक पे टिका हुआ है और वो लव ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है. अब लॉर्ड हिमेश यहाँ पर है और अपना लव ट्रैक ना गाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
0: देखिए हिमेश जी, मैं तो सूरज जी आपसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितनी डांट पड़ने वाली है सूरज जी से कल, क्योंकि क्या होता है, हंड्रेड परसेंट मैं गाने वाला हूँ वो लाइन.
2: इस शहर में एक लड़की है बिल्कुल गजल जैसी, बातों में नजाकत है नर्म मखमल जैसी, पढ़ेगा जमाना उसे मेरी शायरी में एक दिन, वो इश्क के आंगन में है सच्चे ताज महल जैसी.
3: वाह,

0: दुबई लॉन्च के नज़ारों में ही इतना एंटरटेनमेंट है तो सोचिए फिल्म में कितना एंटरटेनमेंट होगा।
1: मैं 10-12 साल का था तो मैं ग्रैंडफादर के रूम में बैठा था तो एक राइटर आए तो उन्होंने कई कहानियां सुनाई उनको। मुझे याद है भाई हो तो ऐसा की भी कहानी सुनाई थी उन्होंने 2-3। तो हर कहानी के लिए मेरे दादाजी जो हैं वो बोलते रहे कि तो सुपर हिट है पर मेरे काम की नहीं। तो फिर जब राइटर गए तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जब सुपर हिट है तो अपन बनाते क्यों नहीं। तो वो मुस्कुराए और मुझे बाहर ले गए अपने कमरे के जहाँ हमारा सरस्वती का एम्बलम है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ जो फिल्में बने बस ऐसी बने जिनमें सरस्वती का वास हो। तो आज मेरे ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची सब बैठे हैं तो अगर वो खुश हैं तो मुझे लगता है कि उनकी भी ब्लेसिंग मेरे साथ है।
2: फैन हैं कि कैसा लगा सूरज जी के साथ? आई थिंक जो भी उनके पास उनके साथ काम करता है हिज पर्सनालिटी इज सो इन्फेक्शियस कि वो उनका फैन बन जाता है। तो मुझे कैसा लगा, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले नरेशन से लेकर अब तक इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट इमोशंस। दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज, फैमिली एंड सूरज जी के लिए मैं जितने अल्फाज, आई मीन कुछ भी जो भी यूज करूँगा वो कम पड़ेंगे बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है ये बयां करने के लिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ ये प्रेम मोल्लिया का म्यूजिक दे के। एंड हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इसके म्यूजिक राइट्स हमें दिए सूरज जी ने।
1: आई रियली वॉन्ट टू थैंक द एंटायर ये प्रेम मोल्लिया फैमिली, आयुष्मान शर्वरी, कुमार जी और लिरिक राइटर्स एंड स्पेशली टू हिमेश रेशमिया मेलेडी, सोनिया जी, हिमेश जी फॉर पुटिंग दिस अप एंड फॉर गिविंग सो मच लव बट 7 सॉन्ग।
3: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो।
0: तो हो जाइए तैयार आयुष्मान और शर्वरी की ये जोड़ी देखने के लिए क्योंकि ये है राजश्री की फिल्म। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ट्रेस प्रतीक्षा होनमुखी के घर बप्पा के विसर्जन पर

0: धूमधाम देखने को मिली। अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मिलकर प्रतीक्षा ने नाच गाने और पूरे उत्साह के साथ की। बप्पा की भावभीनी विदाई तो चलते हैं, प्रतीक्षा के घर और हो जाते हैं इस विसर्जन में शामिल।
1: प्रतीक्षा हॉल में

नाश्ते गाते की बप्पा की विदाई। लगा फ्रेंड्स और फैमिली वालों का मेला। प्रतीक्षा हर साल अपने घर पर बप्पा को लेकर आती है। पूरा परिवार साथ मिलकर बप्पा की भक्ति करता है और दिल से करता है उनकी सेवा। और आज है सातवें दिन के बप्पा का विसर्जन। ऐसे में प्रतीक्षा देखिए हो गई है इमोशनल।

0: खैर यहाँ पर जमा है उनका पूरा परिवार, रील हो या फिर रियल, क्योंकि इनके सीरियल के कोस्टार्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी के साथ पापा की आरती हो रही है। विदाई से पहले आखिरी बार पापा के साथ ये सभी समय बिता रहे हैं। भाई आज का दिन खास इसलिए भी है कि पापा की विदाई तो है ही, साथ ही साथ आज प्रतीक्षा का पूरा परिवार एकजुट हुआ है। सभी लेडीज गैंग ने महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है। सभी सजे धजे हैं क्योंकि आज नाच गाकर पापा को विदा जो करना है। तो चलिए प्रतीक्षा से ही जानते हैं उनकी तैयारियों के बारे में और साथ ही साथ पापा के बारे में भी कई और बातें हम प्रतीक्षा से जानेंगे कि इस साल उन्होंने क्या खास डेकोरेशन किया, कैसे उनकी फैमिली एकजुट हुई और कैसे उन्होंने इस त्योहार को दिल खोल कर मनाया।
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हमारे घर पे जो भी जितने भी लोग हैं हम सब जाके मूर्ति सिलेक्ट करते हैं। एंड इस बार हमारे घर पे 25 ईयर्स हो जाएंगे हमारे पापा को, सो इसलिए इस बार हमने विरार से मूर्ति लाई है, विरार होना। सो या आई नो दिस वेरी क्यूट, एंड यू कैन सी दे आर हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक हमारा ये बॉन्ड हमेशा ऐसे ही रहेगा। एक शो खत्म होने से हमारा बॉन्ड खत्म हो सकता है। आई एम वेरी वेरी वेरी हैप्पी दैट दे आर हियर, लाइक हर साल हम मिलते हैं, गणपति में जाते हैं। सो या
2: बहुत ही प्यारा है हर बार प्रतीक्षा की पापा, बहुत क्यूट लगते हैं हमेशा, बहुत अच्छे से ये लोग सजाते हैं और सबसे अच्छी बात पूरी फैमिली मिलके करती है, जो कि बहुत यूनिक लगता है मुझे कि आज के जमाने में सारे जहाँ दूर दूर से रिलेटिव्स आते हैं और एक साथ 7 दिन यहाँ रहते हैं और जब हम आते हैं तो सब लोग मिलते हैं, तो वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
3: मुझे तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा सैड भी हूँ कि मैं 7 दिन में सबसे एंड डे पे आ रही हूँ, बट आई थिंक मैं ये बाइट देने के लिए बनी थी इसके लिए। बट या इनकी फैमिली एक्चुअली मेरी फैमिली की जैसे ही है। ये लोग हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे तू अकेले नहीं है, तू यहाँ कभी भी आ सकती है। सो आई थिंक या मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द ईयर, बेस्ट डेज ऑफ द ईयर एंड बेस्ट टाइम।
1: जिनसे मैंने करवाया है तो फिर उन्होंने मुझे ऑप्शंस भेजे थे, लाइक आई सेड यू दैट हमारे घर पे जो कुछ भी होता है वी सिट एंड देन वी टॉक, वी डिस्कस और फिर हम उस हिसाब से ये चीज़ें करते हैं। सो जब हमने सोचा था कि हमें ऐसा कुछ करना है तो हमने पहले सबसे पूछा दैट ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एंड देन जब सबने हाँ बोला तब हम
2: भाई फैमिली यूनिटी
1: तो तब जाके हमने ये कलर कॉम्बिनेशन भी चूज किया है।
0: भाई आज तो प्रतीक्षा अपने पूरे परिवार से मिला रही है क्योंकि इस खास मौके पर परिवार वाले एक साथ जो आए हैं,
1: इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम सब सेम ऐसे काष्टा पहनेंगे बिकॉज वी आर महाराष्ट्रियन। सो या इसलिए हमने सबने जितने भी घर पे लोग हैं सबने काष्टा पहना है। सो शी इज माय मॉम, पापा को टेल
2: या
1: ना, शी इज माय सिस्टर, माय मासी, काकी को टेल, स्टार्टिंग से डिसाइड नहीं किया था हमने, एक दिन पहले डिसाइड किया कि हम सब पहनेंगे और सबने एक दिन में अरेंजमेंट करके सबने काष्टा पहना है। ये मेरी दो चाचियां है, ये एक और दूसरी।
4: मतलब इतने अच्छे रहते कैसे लगता है फर्स्ट डे ही है आज, लेकिन दुख होता है कि सेकंड डे में पापा जा रहे हैं।
5: आज तो दुख हो रहा है बहुत, पापा जा रहे हैं, मगर 7 दिन बहुत अच्छे जाते हैं हमारे। हम लोग हर साल ऐसे राह देखते कभी आएंगे गणपति पापा।
1: आज ये मेरी दादी है, दादी अज्जी तुम्हारा कसा वाटते है बोला
2: गणपति।
6: This is the moment we live for, I can say. ये फेस्टिवल में सारी फैमिली एक साथ आते हैं, वी एंजॉय टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी प्ले गेम्स। सो दिस इज समथिंग जो हम डेली जो हमारा दिन जाते हैं वैसे नहीं रहते, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल एंड गणपति बप्पा मोरिया।
1: एंड मैं बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलाऊंगी आप लोगों को, ये हमारा गणपति बप्पा है।
7: इसका जन्म दिन भी गणपति के,
1: हाँ ये बॉर्न भी गणपति के पापा के दिन ही हुआ है।

तो भाई फैमिली टाइम तो हो गया, अब बारी पापा को विदा करने की। भाई हर साल की तरह इस साल भी प्रतीक्षा और उनके परिवार वालों ने ढोल ताशे बुलाए हैं, जिनकी धुन पर वो नाचेंगे और खुशी खुशी पापा को बाय बाय कहेंगे

0: तो भाई प्रतीक्षा के घर पापा आए, उन्होंने उनकी सेवा की और अब उन्हें किया खुशी खुशी विदा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: के दिन को खास बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम हाजिर हैं कुछ बेहद रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।

फिर गेम शो के सेट के बाहर नजर आए कई सितारे जैसे कि भारती, हर्ष, गुरमीत देवीना, करणवीर मेहरा, अर्चना गौतम, आकांक्षा चमोला और वरुण यादव, जो तैयार हैं शूटिंग के लिए।

0: मेरे को नहीं होता है किसी पर ट्रस्ट. कोई कितना ही मेरे साथ प्यारे से बैठ जाए, कोई कितना ही मेरे को डाउट ही रहता है सामने वाले इंसान पे. मुझे लगता है कि पता नहीं भाई कब.
1: नजर डाल लीजिए बिग बॉस के नए प्रोमो पर, जहां पर उल्टा नॉमिनेशन होने वाला है, यानी कि करना है किसी दो घर वालों को सेफ.
0: जो मेरा ट्रस्ट टूटा तो मैं बहुत टूट जाती हूँ, और मैंने बहुत वक्त लिया है आज ऐसा इंसान बनने का कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कौन काम आया था उस समय पर, जिस पे मैं पूरा रिलाय करके बैठी थी, क्या वो भी आया था. शोज मना कर दिए, चीजें मना कर दी, मेरा काम पे जाने का मन नहीं करता था. बेड पे सुबह से लेकर रात तक वहीं पे हूँ, सोफा पे हूँ. आई थिंक दैट टर्म जो हाइपर इंडिपेंडेंस बोलते हैं, मेरा वो हो चुका है. अब मैं इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ, सोशली भी मैं आई लव टू बी अलोन. मैंने उस पर अपने आप पर इतना काम किया, अब वो काम करने के बाद अब मैं इस फेज में हूँ कि अब मुझे बहुत डर लगता है इतनी सी अटैचमेंट से भी.
2: आप मुझे एक एक कर उन दो सदस्यों का नाम बताएं जिन्हें आप नॉमिनेशन से बचाना चाहते हैं.
3: मेरे अंदर डिफरेंट एनर्जी आती है जब मैं उसके साथ रहती हूँ.
4: She is very caring and हमारा इक्वेशन बहुत ही अच्छा है.
5: She is very good for the game.
6: बहुत लोग हैं जो उनको नहीं पसंद करते,
7: वो बहुत डिजर्विंग है.
8: लोगों का पर्सपेक्टिव उनका तरफ थोड़ा सा नेगेटिव है.
9: जिस तरीके से वो शो में सबको एंटरटेन रख रहे हैं, मुझे लगता भी है वो टारगेट हो सकते हैं इस वीक, तो मैं उन्हें सबसे पहले सेफ करना चाहूंगी.
2: जिन सदस्यों को किसी भी घर वाले ने बचाने के लिए वोट नहीं दिया वो हैं

गोकुलधाम के एक मेव सेक्रेटरी यानी कि मंदार के पापा का विसर्जन हुआ। उन्होंने की पापा की विदाई।

0: देख लीजिए ये वीडियो जहाँ पर कृति सनोन पॉटरी करती नजर आ रही है।
1: सीरियल तुम देना साथ मेरा में चल रहा है अपराजिता और रक्षित का डोली वाला रोमांस, जहां अपराजिता को मिला रक्षित का साथ और दोनों ने इस पल को मिलकर और भी खूबसूरत बना दिया। कैसे तो चलिए देखते हैं मियां बीवी के ये प्यार भरे लम्हे।
0: आई अपराजिता की पालकी,
2: डोली बारात भी साथ में तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार, सोनी आज नहीं तो कल है।
0: अपराजिता हुई रक्षित की दीवानी।

0: वापस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता और आराध्या अपने घर पगथेरे के लिए आई तो थी, लेकिन उनको लेने के लिए वहाँ पहुँच गई है सुधा अपने परिवार के साथ। और देखिए कैसे सभी मोहल्ले में अपराजिता को नीचा दिखाने के लिए सुधा इनडायरेक्टली अपराजिता को ताने कसती है, जिसे कोई और समझे न समझे लेकिन अपराजिता बखूबी समझ रही है।
1: अपराजिता की कार तो रिपेयर के लिए गई है, कैसे जाएगी?
2: और हम तो हमारी गाड़ी से आए थे तो हमारी गाड़ी से ही जाएगी, तुम कैसे जाओगी अप्पू?
0: यहाँ अपराजिता के साथ अनजाना व्यवहार तो वहाँ आराध्या खुश होकर पहुँच गई अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, और तो सुधा और पूरा परिवार भी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी चल दी, वहाँ पर अपराजिता ने भी अपने लिए ऑटो मंगा लिया और चुपचाप ऑटो में बैठकर जाने लगी कि तभी लग गया ब्रेक, क्योंकि सामने से आ गई पालकी, और ये पालकी कोई और लेकर नहीं बल्कि लेकर आया है रक्षित, जिसे देखकर अपराजिता हो गई दीवानी, और तो और वो अपने आप को रोक भी नहीं पाई। जरा देखिए कैसे दौड़कर जाकर वो रक्षित के सीने से जा लगी।

भाई रक्षित को देख अपराजिता तो बहुत खुश है, लेकिन अपराजिता रक्षित को बता रही है कि सामने उसके सास ससुर भी खड़े हैं। बस फिर क्या, रक्षित दौड़कर जाकर अपने सास ससुर के पैर पड़ते हैं और रक्षित का ही अंदाज देखकर तो अपराजिता के मम्मी पापा दोनों ही बहुत खुश हैं। भाई रक्षित ने यहाँ सिर्फ ना अपने सास ससुर को खुश किया बल्कि पूरे मोहल्ले की औरतों को भी खुश कर दिया, क्योंकि वो सभी के लिए लेकर आया है तोहफा। और देखिए कैसे सभी को अपने हाथों से महंगे महंगे तोहफे दे रहा है। सभी औरतें बहुत खुश हो रही हैं और तो और रक्षित पर अपना प्यार भी जता रही हैं। एक ने तो रक्षित को डबल आशीर्वाद भी दे दिया प्यार के तौर पर। खैर ये सब देखकर दूर खड़ी सुधा जल रही है और रक्षित अपनी अपराजिता के हाथ थामे पहुंच जाता है अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन माँ दूर हट जाती है और जाकर कार में बैठ जाती है। ये देख अपराजिता को दुख भी हो रहा है। भाई रक्षित ने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। हालांकि अपराजिता हैरान है, लेकिन रक्षित पक्के इरादों के साथ आया है। तभी तो देखिए अपराजिता कैसे डोली में जाकर बैठ जाती है और तो और डोली से बाहर देखकर खुश भी हो रही है, क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है, जो डोली के आगे झूमता नाचता जा रहा है अपनी दुल्हनिया को लेकर, वो भी गाजे बाजे के साथ।

0: है ये तो रक्षित का प्यार है, लेकिन आराध्या ये देखकर खूब जली होगी। अब देखना होगा कि आगे चलकर सुधा और कौन से खेल खेलेंगी ताकि अपराजिता को और भी नीचा दिखाया जा सके। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल अनुपमा में अनुपमा के घर बाप्पा पधार रहे हैं। ऐसे में घर में खुशी का माहौल है, लेकिन सीरियल में कोई भी सेलिब्रेशन बिना ट्विस्ट और ड्रामे के पूरा नहीं होता है। अब अनुपमा की मुसीबतों को विघ्नहर्ता कैसे दूर करते हैं, देखना दिलचस्प होगा।

बाबा के घर बाप्पा की धूम, जिसका एक साया रे तू ही गणेशा, नाच गा कर किया गणपति बाप्पा का स्वागत, उसमें जो समाया रे तू ही गणेशा, विघ्न हरता आए खुशियाँ लाए, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज देखिए अनुपमा और सभी घर वाले कैसे नाच गा रहे हैं और मना रहे हैं खुशियाँ, क्योंकि बाप्पा जो उनके घर आ रहे हैं, ऐसे में कुछ इस तरह नाच गा कर हो रहा है बाप्पा का आगमन। तो आइए देखते हैं गणेश उत्सव का ये धमाल।

0: गणेश उत्सव का शुभारंभ है, यानी कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक हमारे घर पर ये मेहमान बनकर रहेंगे। वैसे तो घर में कोई भी फेवरेट इंसान आ जाता है, कोई भी मेहमान आ जाता है तो दिल खुशी से फूले नहीं समाता। तो ये तो स्वयं गणपति बाप्पा मेहमान बन के हमारे घर पधारे हैं, हमारे दाता।
1: वहीं दूसरी तरफ जयू को जानना है आखिरकार क्या है गणपति बाप्पा की कहानी। ऐसे में यहाँ पर फिल्माया जा रहा है ये नाटक, जिसमें शिव पार्वती बने हैं तोशु और किंजल, अंश बने हैं गणपति बाप्पा, तो अन्नपूर्णा देवी बनी है राही। और इस नाटक के जरिए बताया जा रही है गणेश जी की ये कहानी।

0: ऑनेस्टली मैं एज सच कुछ कर नहीं रही, मैं बस माँ से ही प्रे कर रही हूँ कि आप मुझसे अपने आप का रोल प्ले करवा देना, क्योंकि हम इंसानों में तो क्षमता नहीं है कि हम उनके जैसे बने, पर वो अगर आशीर्वाद दे तो हम थोड़ा सा शायद लोग हमें वैसे देख पाए। वैसे श्रृंगार अच्छे से करती है शिव जी के लिए, तो पार्वती जी ऐसे ही मतलब लहंगा सबसे पहले तो पहनते हैं, और यहाँ पे कमर पट्टा आता है, ऊपर आते हैं नेकलेस, माला, चोकर और नथ, जो कि मैंने अभी पहनी नहीं है, बट नथ एंड मांग टीका, दिस इज इट, एंड बिंदी, और ऊपर थोड़ा सा और श्रृंगार। जयू के मन में बहुत सारे सवाल थे कि गणपति जी सिर्फ एक मोदक खा के कैसे खुश हो जाते हैं, सिर्फ एक मोदक में उनका पेट कैसे भर जाता है, और बहुत सारे सवाल थे उसके मन में। तो मम्मी ने सोचा अब गणेश चतुर्थी आ रही है, तो जयू को समझाने के लिए चलो हम सब गणपति जी की बचपन की सारी कहानियाँ रिपीट करते हैं, उसे बताते हैं। तो हमने उसे और इलेबरेट किया, हम सब तैयार हो गए, तोशु शिव जी है, मैं पार्वती जी बनी हूँ, और अंश हमारे है जो गणपति जी बने हैं, और हम सब ने परफॉर्म किया।
1: तो भाई गणपति बप्पा तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इन खुशियों में ट्विस्ट का ब्रेक लगता है या नहीं।
2: तेरे से एक जरूरी बात करनी है अन्नू।
3: बताइए ना क्या बात है।
2: पहले प्रॉमिस कर तुम मना नहीं करेगी,
4: हम जो मांगेंगे वो तुम दोगी।
2: हाँ
5: तू पहले आग बंद कर।
2: हाँ
1: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: ये कौन सा बिल है?
7: रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के सीजन 2 की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में हाल ही में सेट के बाहर इस शो से जुड़ी कई पॉपुलर जोड़ियां कैमरे में कैद हुई। अब इन सितारों के बीच क्या कुछ खास देखने को मिला, चलिए देखते हैं।
8: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: का धमाल, पति पत्नी और रेड कार्पेट, नया सीजन नया पंगा।
9: और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: टीवी पर जल्द शुरू होने जा रहा है पति पत्नी और पंगा का सीजन 2, जिसका नाम है धमाल विद पति पत्नी और पंगा, जिसमें जोड़ियों को मिलेगा रियलिटी चेक। बीती शाम हुई इसकी प्री लॉन्च पार्टी, जिसमें शामिल हुई ये सभी जोड़ियां। भाई यहाँ साथ साथ नजर आए दिशा राहुल, जिन्होंने आज की शाम के लिए ब्लैक कलर चुना।

0: में तो
1: पूरा एक घंटा लग गया था इसे सेट करने में।
2: प्यार करो तो पंगा, प्यार ना करो तो भी पंगा, बेचारा पति करे तो करे क्या।
3: जमाना चाहे कोई भी हो, बहाना मिल ही जाता है।
4: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया।

0: ये लो, जल्दी से आग लगाओ, बहुत भूख लगी है।
1: एक पत्थर से आग लगाऊं? एक पत्थर से आग तुम्हारा परिवार लगा सकता है, पर तुम्हें तो पत्थर की भी जरूरत नहीं।
0: देखो मेरे परिवार में मत जाओ।
1: क्यों ना जाऊं? उस दिन जो बुआ जी आई थी तुम्हारी, क्या बोली? इतनी बड़ी गुफा बना दी, एंट्रेंस छोटी रह गई जरा। ये छोटी लगती है, और तुम्हारे चाचे का बेटा उस दिन आया, क्या बोला? भाभी भाभी मुझे डायनासोर दिलाओ ना। तुम्हारी चाची छोड़ के गई डायनासोर के अंडे।
0: प्यारा भाई है मेरा।
1: तबाही है तबाही। ये लो पत्थर, बनाओ खुद।
2: जमाना चाहे कोई भी हो, बहाना मिल ही जाता।
3: अर्जुन और नेहा, साथ ही नजर आए शो के होस्ट मुनावर और सोनाली बेंद्रे। मैं इस शाम में चार चांद लग गए जब ये जोड़ियां हाथों में हाथ डालकर यहाँ पहुँची। इसी के साथ इस खास शाम में नजर आए मनोज तिवारी, जो यहाँ पहुँचे सुरभि संग। वैसे खबरों की माने तो पति पत्नी और पंगा में कई और जोड़ियां नजर आने वाली हैं, जैसे कि अर्चना पूरन सिंह और परमित सेठी।
4: कह नहीं रहा, सिर्फ सह रहा हूँ।
5: What do you mean?
4: Nothing, baby, nothing.
5: What do you mean?
2: समाना चाहे कोई भी हो, बहाना मिल ही जाता।
3: शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला, निया शर्मा और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिकंदर। लेकिन अब तक इन जोड़ियों के शो में होने का कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बाकी जो जोड़ियां इस प्री लॉन्च पार्टी में हुई हैं शामिल, इनके पंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे।

0: जाइए तैयार पति पत्नी के ये पंगे देखने के लिए, जिसमें है एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: ट्विस्ट और टर्न्स से भरी होती है टीवी सीरियल्स की दुनिया, जहां हर मोड़ पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है। किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में।
3: इतने अच्छे कॉलेज में इसके एडमिशन के चांसेस चौपट करने के बाद भी ये नहीं कि सुधर जाओ।
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां मायरा और कबीर के घर वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में दादी मायरा पर ही लगा रही है इल्जाम, जिस वजह से अभीरा मायरा से काफी गुस्सा भी हो गई है। फिर रिश्तों में काफी अनबन है और कबीर और मायरा को लेकर परिवार वाले चिंतित भी।
3: बेटा अगर तुम इसके साथ रहे ना तो ये आगे तक जरूर जाएगी, लेकिन फिर अगले ही कट से यू टर्न लेके फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। तुम बच्चों को क्या लगता है कि 18 के होने के बाद कोई ज्ञान चक्षु खुल गए तुम्हारे? तुमने एक बार भी इसके करियर के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम महासेल्फिश हो। तुम मतलब ही हो या सेल्फिश।
4: अभीरा जी, पहली बार देख रहे हैं मछुआरा मछली को जाल में फंसाकर हाय तोबा कर रहा है। जाल तो आपकी लड़की ने बिछाया था, हमारे लड़के पर दोष देना बंद कीजिए।
3: मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूं आंटी जी, वरना।
4: वरना क्या अभीरा जी, आपके घर में लिहाज करने का रिवाज है? अगर है तो सबसे पहले अपनी बेटी को शर्म और लिहाज सिखा देते। हमारा कबीर मायरा के पास नहीं गया था, मायरा इसके आगे बिछ गई थी। हमारा कबीर तो सिर्फ इसे दोस्त मानता था, आपकी बेटी ने इसे रिझाया, मीठी मीठी बातें की और अपनी पहली पसंद मायरा ने जाहिर की।
5: उसने पहले अपनी फीलिंग्स बताई,
6: ब्रेव ना।
7: अच्छा किया बड़ी दादी, मुझे भी ये शुरू से पसंद है।
4: पर कबीर तुमने अपनी मर्यादा नहीं लांगी, तुम्हें अच्छे से पता था कि दोनों परिवार में अनबन है, इसलिए तुमने वो बात न सिर्फ दोस्ती तक रखी पर इस लड़की के मन में तो अरमानों के पंख लगे थे। तुमने तो बेटा हमारे बच्चे को रात दिन फोन किए होंगे, मैसेज किए होंगे और बहुत सारे बहाने बनाए होंगे ना मिलने के लिए।
7: बड़ी दादी प्लीज स्टॉप।
4: गलत नहीं कह रहे हैं हम, इसने ही पहल की थी।
3: मम्मा प्लीज घर चलो।
0: अब देखना होगा कैसे अभीरा मायरा को समझाएगी।
8: अभीरा उसको उस लड़के से कितनी बार अलग करोगी?
3: जितनी बार जरूरत पड़ेगी। रिश्ता चुका रह गए।
9: आंखें बंद करके चला।
10: कबीर दिस इज अरमान पोद्दार, मुझे तुमसे मायरा के बारे में कुछ बात करनी है, लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन चले आओ।
11: आप बेटे पे आई हर मुसीबत से बाप ही निपटता है।
12: महादेव एंड सन्स।
3: उसे कुछ नहीं हुआ, नीरज, तुम उसे हॉस्पिटल लेके चलो ना।
0: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में रची काफी डरी हुई है, ऐसे में उसका सहारा बन गए हैं धीरज, साथ ही आ गई है नर्मदा भी, जो परेशान रची को संभाल रहे हैं और उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
10: देखो चलो यहाँ से मैं साथ, चलो यहाँ से मैं साथ, चलो प्लीज, चलो चलो चलो चलो चलो।
3: भारत ये हमने हमने बोले नहीं किया।
10: वो हमारी बीवी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो इसलिए तुम ठीक हो ना?
2: आज के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम, शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर भेजें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें जो देख सकते हैं, पहली तस्वीर गुजरात के सूरत से भारत प्रभाकर ने हमें भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से पूरा परिवार बप्पा की आराधना में जुटा है। शानदार तरीके से पापा का श्रृंगार किया गया है। दूसरी तस्वीर हमें यूपी के मैनपुरी से शैलेश दीक्षित ने भेजी है। यहाँ पापा को शानदार पोशाक पहनाई गई है, साथ ही मनमोहक फूलों से पापा का श्रृंगार किया गया है। पापा का आसन भी बेहद प्यारा लग रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
8: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक। गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी पवित्र चारधाम यात्रा। मानसून के बाद भक्तों से गुलजार हुई बद्रीनाथ धाम। अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्सव के रंग में रंगा पंजाब का फरीदकोट। बाबा फरीद आगमन पर्व पर देखी सांस्कृतिक विरासत की झलक, सड़कों पर जुटे कलाकार। एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल। हिमांशु ने जीता सिल्वर और रुद्रांश को ब्रॉन्ज। सुचिका को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल। 11 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: गणेश उत्सव का आज 8वां दिन देश भर में विधि विधान के साथ गजानन की आराधना जारी। देश के कई पूजा पंडालों से गजानन की प्रतिमा की हुई विदाई। या लोगों ने भक्तिभाव और अगले वर्ष जल्दी आने की गुहार के साथ विसर्जन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेश उत्सव में देखा बप्पा का अनोखा पंडाल। गणपति अलग अलग रूपों में दे रहे दर्शन। कहीं बप्पा पानी की बूंद बने हैं तो कहीं पर पेड़ और प्राणी के रूप में आ रहे हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा का दे रहे हैं संदेश। चंद्रपुर के पंडाल में ड्राइवर की भूमिका में नजर आए मूषक राज। पंडाल में रेल के डिब्बे की तरह बनाए गए हैं कंपार्टमेंट्स। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियों और पंडालों के अनोखे प्रयोग। अंजीर मखाने से बनाई गई 7 फीट ऊंची प्रतिमा। चंद्रपुर के गणपति पंडाल में अनोखा प्रयोग। सुग्रीव की गुफा में राम रूपी गजानन के हो रहे हैं दर्शन। गुफा प्रवेश के लिए बनाए गए नियम। दर्शन से पहले पैर धुलकर जाने की परंपरा। गणपति उत्सव को लेकर मुंबई रेलवे का बड़ा ऐलान। CSMT मुंबई से कल्याण, ठाणे और वापसी के चलाई जाएंगी 18 स्पेशल नाइट सबर्बन ट्रेन्स। मुंबई में विशेष रेल 23 से 26 सितंबर की रात में चलाने की फैसला। मुंबई में शिवडीचा राजा का भव्य अवतार अंडरवाटर द्वारका की अद्भुत थीम। गणपति पंडाल की शानदार सजावट। शिवडीचा राजा में पानी के अंदर सजी द्वारका नगरी, समुद्री जीव और रोशनी से बढ़ाई गई भव्यता। होलोग्राफिक प्रस्तुति बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। पानी के अंदर भगवान कृष्ण की नगरी का रिक्रिएशन किया गया। जलमग्न नगरी की थीम ने श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने लालबाग चौराहे के दरबार में लगाई हाजिरी। पत्नी ऋतिका सचदेह के साथ बप्पा के दर्शन पूजन किए। दोनों ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। दर्शन के दौरान देखा खास भक्तिमय अंदाज। दोनों ने एक साथ बप्पा की पूजा अर्चना की। लालबाग चौराहे के दरबार में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर धवल कुलकर्णी। पूजा अर्चना करके बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई में लालबाग चौराहे की तर्ज पर सजा गणपति पंडाल। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आया बप्पा के भक्त। पुणे में असम राइफल्स के डीजे लेफ्टिनेंट जनरल विकास बखेड़ा ने की गणपति आरती। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में लिया गया आशीर्वाद। जालना में रामायण थीम पर अनोखा गणपति पंडाल। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाते हुए नजर आए। गणपति पंडाल में देखा रामायण का जीवन दृश्य। रामायण का प्रसंग देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अनोखी प्रस्तुति में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सहारनपुर में भव्य गोगा मेले का आयोजन हुआ। आस्था परंपरा और इतिहास का अद्भुत संगम। सहारनपुर में 800 साल से लगातार जारी मेले की परंपरा। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। नीले निशान और छड़ी में साथ पहुंचे श्रद्धालु। जयकारों की गूंज। गोगा मेले को लेकर भव्य लाइटिंग की गई। रोशनी सना है पूरा शहर। सहारनपुर में गोगा मेले को लेकर किए गए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है पल पल की नजर। एशियन गेम्स 2026 का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत के हिस्से में आए 2 मेडल्स। आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम्स 2026 में 3रा मेडल हुआ हासिल। गेम्स में मैंस 10 मीटर एयर राइफल में मिला सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला मेडल, 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल्स में सुचिका ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्रांश को ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत 10वें पायदान पर है, अब तक भारत के खाते में 6 मेडल्स। तरंग शक्ति 2026 की वापसी, जोधपुर बनेगा एयर वॉरफेयर का केंद्र। भारतीय वायुसेना करेगी मेगा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा साझा युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति 2026 में ग्लोबल एयर फोर्सेस की होगी बड़ी भागीदारी, दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे करतब। पौली में भारत अमेरिका सैनिकों ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास, लगातार जारी, जंगल से इंडोर फायरिंग रेंज तक बढ़ाया तालमेल।

रानी का जयकारा, दक्षकांतोत्सव में दिखा भक्तिमय माहौल। अखंड हरिनाम संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान की आयोजन किया गया। विशिष्ट रास मंडली ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पुरी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर मंगल कामना। पुरी में श्रीमद भागवत कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय, पवित्र जगन्नाथ धाम की भूमि पर कथा हुई, आध्यात्मिक आयोजन में शामिल हुए। दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए खास प्रदर्शन, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का देखने को मिल रहा है अद्भुत संगम। दिल्ली में सजी द स्पेस इन बिटवीन आर्ट एग्जीबिशन, पेंटिंग और मूर्तियों के बीच संवाद की भव्य प्रस्तुति। आर्ट एग्जीबिशन में कई कलाकारों की कृतियां शामिल हैं, कला के जरिए विचार और रूप के बीच संवाद की प्रस्तुति। दिल्ली की आर्ट गैलरी में सजी रचनात्मक दुनिया, पेंटिंग और स्कल्पचर्स लोगों को कर रही आकर्षित। आर्ट गैलरी में दिख रही रंगों और आकारों की कहानी 28 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। INS सहाद्री और INS कुलिश फिलीपींस पहुंचे। संयुक्त अभ्यास में आसियान देशों के साथ 8 अन्य देशों की नौसेनाएं होंगी शामिल, समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाना मकसद। एटलीस्ट पॉलिसी के तहत भारत अभ्यास में ले रहा है हिस्सा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना लक्ष्य। INS सहाद्री और INS कुलिश की यात्रा से भारत फिलीपींस समुद्री संबंध होंगे मजबूत। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, पोखरण में KAL ड्रोन का सफल परीक्षण, 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर तक का मारक क्षमता। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे एडिशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया, 25 से 29 सितंबर तक नोएडा के इंडिया एक्सपो केंद्र में होगा आयोजन। इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश सरकार का निर्यात पर रहेगा फोकस, मुख्यमंत्री योगी का दावा, अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है निवेश। सरकारी नौकरियों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया, अगले 6 महीने तक हर हफ्ते बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी देने की पहल तेज, नौशेर में रोड बनाने के साथ पुलों से जोड़े जा रहे इलाके। पंजाब के दौरे पर बठिंडा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारे में अरदास की। भारत के पहले गांव माणा से नशा मुक्त भारत अभियान की होगी शुरुआत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संदेश पहुंचाने की मुहिम। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के बाद लौटी रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उठा रहे हैं लुत्फ। बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, पवित्र स्नान के लिए जुड़े श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के से निकलकर आई अच्छी खबर, भैरव लेम के पास नाव के पलटने से फंसे 9 मछुआरों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की वडोदरा को करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात, मुख्यमंत्री ने 1,297 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ किया। नवीरा ब्रिज और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का किया गया उद्घाटन, ब्रिज से वडोदरा और आनंद के बीच सीधा संपर्क। विकास पैकेज में 593 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर शामिल। कटक में ओडिशा प्रो T20 लीग का आगाज, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बारापति स्टेडियम का उद्घाटन किया। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी समारोह में पहुंचे, 6 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरे। चीन के झांगजियाजी में देखा बादलों का अद्भुत समुद्र, तियानजी माउंटेन बादलों और धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। क्वार्टर सैंडस्टोन की चोटियां बादलों से पूरी तरीके से घिरी हुई नजर आई।
ऑस्ट्रियन मोटो जीपी में पेट्रो ने रच दिया इतिहास। हासिल की करियर की पहली मोटो जीपी

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुडनीज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक का गणपति पूजा के 8वें दिन बप्पा के पंडालों में आस्था का मेला, अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी पवित्र चार धाम यात्रा, मॉनसून के बाद भक्तों से गुलजार हुई बद्रीनाथ धाम, अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्सव के रंग में रंगा पंजाब का फरीदकोट, बाबा फरीद आगमन पर्व पर दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक, सड़कों पर जुटे कलाकार। एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर और रुद्रांश को ब्रॉन्ज, सुचिता को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा है वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
13: नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। भाद्रपद महीना चल रहा है और माना जाता है कि इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलने वाले हैं। इस एकादशी को पदमाया परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि इस तिथि से अपनी योग निद्रा में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर आपको श्री हरि के साथ ही भगवान गणेश की भी कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद महीने की एकादशी आखिरकार क्यों इतनी खास है और कैसे करनी है आपको परिवर्तनी एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा उपासना।

0: जब श्री हरि बदलते हैं करवट, तब दूर हो जाते हैं सारे संकट। परम फलकारी है भाद्रपद की पर्वतनी एकादशी। हर मनोरथ सिद्ध करने वाला है ये परम प्रतापी व्रत। माना जाता है कि श्री हरि की योग निद्रा में करवट बदलने के कारण इसे पर्वतनी या पद्म एकादशी कहा जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि आषाढ़ महीने से शेष शैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु अब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पार्श्व यानी शयन मुद्रा को बदलेंगे। इसे भारत के कई क्षेत्रों में जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर श्री हरि के वामन अवतार को पूजने की परंपरा है।
1: ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो चातुर्मास जो ये महीना चल रहा है इसमें शयन करते रहते हैं और इसी एकादशी वाले दिन ये करवट बदलते हैं और इसी करवट बदलने के क्रम को परवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये वामन देव का भी अवतार इसी समय काल में माना गया है, इसलिए इसको वामन एकादशी भी माना जा सकता है।
0: माना जाता है कि इस तिथि पर जानी अनजानी हुए पाप का शमन होता है। जानकार बताते हैं कि जो इंसान पर्वतनी एकादशी पर श्री हरि का ध्यान करता है उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। शास्त्रों में 24 एकादशियों का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि हर एकादशी पुण्य प्रभावों के साथ आती है और साधक को कामना पूर्ति का वरदान देकर जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब से लगने जा रही है पर्वतनी एकादशी की तिथि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 21 सितंबर की रात से ही लग रही है। रात 8:01 से 22 सितंबर की रात 9:43 तक ये तिथि रहेगी। उदया तिथि को मानते हुए पर्वतनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर को किया जाएगा। पर्वतनी एकादशी पर सुबह 6:09 से सुबह 7:06 तक रवि योग है। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से लेकर 5:22 तक रहेगा। इस समय स्नान से निवृत्त होकर व्रत और पूजा का संकल्प ले सकते हैं। श्री हरि की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर दोपहर 1:45 तक रहने वाला है। पर्वतनी एकादशी व्रत का पारण 23 सितंबर को किया जाएगा। व्रती पूजा पाठ के बाद सुबह 6:10 से 8:35 के बीच किसी भी समय पारण कर सकते हैं। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। हम अब आपको पर्वतनी एकादशी की महिमा समझाने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं पर्वतनी एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें।
1: कोई भी एकादशी हो, ये पर्वतनी एकादशी के अलावा भी इसमें चावल का सेवन नहीं करते हैं, साथ ही चावल से बनी हुई जो भी वस्तु हो उनका भी इसमें भोग नहीं लगाना चाहिए, न इसमें खाना चाहिए। इसमें शुद्ध आचरण, निर्मल मन चित्त के संग व्रत करेंगे तो इसका आपको बहुत ही लाभ मिलना है।
0: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनी एकादशी कहा जाता है। इसको पद्म एकादशी और जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है। ये व्रत गणेश जी और श्री हरि दोनों की कृपा दिलवा देता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। जिन लोगों को संतान सुख या धन की प्राप्ति करनी हो, उनके लिए ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी है।
1: भगवान विष्णु के आराधना की जाती है और सैया में के साथ भगवान लक्ष्मी माँ का भी आराधना करने की उपासना है। इसके संग मेन वामन रूप की भी आराधना और उनका भी उत्सव इनके जहाँ जहाँ विशेष मंदिर इत्यादि हैं वहाँ मनाया जाता है।
0: माना जाता है कि ये व्रत सब प्रकार से कल्याणकारी और शुभ फलदायक है। कहते हैं पर्वतनी एकादशी के व्रत से मुक्ति और मोक्ष के प्रबल योग बनने लगते हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस एकादशी के दिन जो इंसान व्रत और उपासना करता है उसे भूमि दान और गोदान से ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस दिव्य एकादशी पर कैसे करें श्री हरि की पूजा उपासना।
1: प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के बाद जो है पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम की 16 प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं। 5 प्रकार से भी इनका पूजन किया जाता है। भगवान को पंजीरी का भोग, फल, मिष्ठान इत्यादि इन सब का भोग लगा के चाहे विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, अन्यथा वामन पुराण के संबंध की जो कथा है उसको सुने या कहें, इस तरह इनके पूजा का क्रम रहता है।
0: सुबह स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें, श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, गणेश जी को मोदक और दुर्वा अर्पित करें, पहले गणेश जी और तब श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें, अन्न का सेवन ना करें, जलाहार या फलाहार ही ग्रहण करें। तो आप भी इस विशेष विधि से पर्वतनी एकादशी का व्रत रखिए, क्योंकि ये व्रत आपकी संतान और धन संबंधी बाधाएं भी दूर कर सकता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाए तो भी ईश्वर के भजन और कीर्तन से पापों से मुक्ति संभव है। आगे हम आपको बताएंगे आर्थिक बाधा दूर करने के उपाय, साथ ही एकादशी की तिथि पर किए जाने वाले संतान प्राप्ति के महाप्रयोग भी जानेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने पर अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत की गाथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। ज्योतिष के जानकार तो ये भी बताते हैं कि पद्माया परिवर्तनी एकादशी के व्रत को अगर उत्तम विधि से पूरा कर लिया जाए तो जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। तो देखिए इस दिन कैसे होगी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति।

0: भक्तों का कल्याण करने वाली हैं पर्वतनी एकादशी। पापों से मुक्ति दिलाएगी पद्म एकादशी। पर्वतनी एकादशी पर करें श्री हरि का ध्यान, भक्तों को मिलेगा मनचाहा वरदान। एक व्रत में मिलेगा संपूर्ण यज्ञ का फल, इस व्रत के प्रताप से मिलेगा सभी मुश्किलों का हल। माना जाता है कि जाने अनजाने हुए पापों के नाश के लिए पद्मा एकादशी व्रत से उत्तम कोई पूजा या व्रत नहीं है। मान्यता है कि इस दिव्य तिथि पर श्री हरि के वामन स्वरूप और माँ लक्ष्मी की उपासना परम फलकारी है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री हरि के साथ आपको इस तिथि पर भगवान गणेश की भी विशेष कृपा मिल सकती है।
1: विष्णु का और आदि देव गणेश जी का जो इस तिथि में सामंजस्य बनता है उसको देखते हुए गणेश जी की आराधना करने से सदा मंगल होता है। जो आपके विघ्न बाधाएं होती हैं वो पूर्णतया दूर होता है।
0: कहते हैं कि जो इंसान इस एकादशी के दिन श्री हरि और गणपति का ध्यान करता है उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पर्वतनी एकादशी के दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर आपके घर में संतान संबंधी कोई बाधा है तो इसका निवारण पर्वतनी एकादशी पर एक महा उपाय करके किया जा सकता है। भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर मोदक अर्पित करें, संतान गणपति स्त्रोत का पाठ करें या ओम उमा पुत्राय नमः का जाप करें। पंचांग की तिथि में जब गणेश उत्सव चल रहा होता है अक्सर तभी ये पुण्यकारी एकादशी आती है जहां आप अपनी कामनाओं के लिए गणपति को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आपको धन या आर्थिक परेशानी हो तो इसके लिए भी आप ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश को एक मिट्टी या धातु का चूहा अर्पित करें, उन्हें पीले फूल और पीला प्रसाद अर्पित करें, ओम श्रीम सौम्याय सौभाग्याय गण गणपताय नमः का 108 बार जाप करें, चूहे को अपने धन स्थान पर रखें। आस्था कहती है कि गजानन गणेश विघ्न हरता है, इसलिए उनकी उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। विद्या बुद्धि धन वैभव नौकरी और कारोबार से जुड़ी सभी बाधाएं गजानन की कृपा से दूर हो सकती हैं। तो अगर आपको व्यापार में सफलता चाहिए तो किस खास उपाय से आप गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं गौर से देखिए। हल्दी से गणेश जी बनाएं, इनको मोदक दुर्वा और बेलपत्र अर्पित करें, इन गणेश जी को व्यापार के स्थान पर स्थापित करें। आस्था कहती है कि जहां भक्ति होती है वहीं ईश्वरीय शक्ति होती है और श्री हरि संग जब आप करेंगे बप्पा की भक्ति तो हर पाप और बाधा से मुक्ति मिल सकती है।
1: भगवान विष्णु का भी जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अन्य जो विष्णु के मंत्र हैं उनका भी जाप किया जा सकता है। साथ ही साथ ओम गंग गणपतये नमः है या एक दंताय विद्महे वक्त्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इन सब का मंत्रों का उच्चारण और जप करने से मनोरथ की पूर्ति होती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पद्मा एकादशी के दिन दान का भी महत्व है, लेकिन दान के लिए एक विशेष मंत्र है। उस परम फलकारी मंत्र के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दान का सनातन परंपरा में सर्वोत्तम कर्म माना गया है। कहते हैं कि इस एकादशी पर अगर आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो इसका फल आपको ता उम्र मिलता रहता है। लेकिन कौन से मंत्रों के उच्चारण के साथ इस एकादशी का दान करना चाहिए, आइए वो भी आपको बता देते हैं।

0: अक्षय पुण्य दिलाएगी पर्वतनी एकादशी का दान। धर्म ग्रंथ और पुराण में है दान की महिमा का गुणगान। मान्यता है कि पद्म एकादशी पर किया गया दान सभी पापों का नाश करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि इस दिन चावल, दही या चांदी का दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो लोग किसी कारणवश पर्वतनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें इस तिथि पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि जो भी पर्वतनी एकादशी की तिथि पर दान करता है, उसके लिए नारायण मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। माना भी जाता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी जो जरूरतमंद की मदद करता है वो श्री हरि की कृपा का पात्र बन जाता है।
1: देखिए, इतने महा उपाय में एक जिसको बोलते हैं ब्राह्मण को दान करना है, उसमें पीले वस्त्र हों, पीतल इत्यादि के बर्तन इत्यादि हों, साथ ही उत्तम रसों से बने हुए मिष्ठान, दुग्ध की चीज़ें, खीर और वस्त्र, उपवस्त्र, और साथ ही साथ इसमें चरण पादुका का भी दान करने से बहुत से कष्टों का निवारण हो जाता है।
0: कहते हैं कि इस तिथि पर दान करते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाए तो इसका शुभ फल और भी ज्यादा मिलता है। तो देखिए, पद्मा एकादशी पर दान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण शुभकारी होगा। पद्मा एकादशी पर दान का मंत्र, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक औद्योग संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्या प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्व लोकामना सुखदायक। जानकार ये भी बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम या रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है, जिससे सभी कामनाओं की पूर्ति की मान्यता है। तो आप भी इस पर्वतनी एकादशी पर दान करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए, जिससे आपके ऊपर बरसेगा श्री हरि का आशीर्वाद और जिस पर नारायण की कृपा हो जाए, भला उसे जीवन में किस बात का संकट हो सकता है।
2: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: गणेशोत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पर पधारे का जन्म का वीडियो बनाइए, हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप हमें वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजते हैं तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है, हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमारे पास लगातार दर्शकों के वीडियोज आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप आज वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हमें महाराष्ट्र के पीठ से वैभव खंदारी ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हुई और शानदार सजावट, बड़े ही भक्तिभाव के साथ बप्पा का श्रृंगार किया गया है। वहीं पर देखिए दूसरी तस्वीर हमें मुंबई से रोहिशा ने भेजी है। यहाँ पर बड़े ही आकर्षक पंडाल में बप्पा को विराजमान किया गया है, तो वहीं पर बप्पा को शानदार पोशाक भी पहनाई गई है। साथ ही साथ मनमोहक फूलों से बप्पा का श्रृंगार भी किया गया है। बप्पा का आसन भी बहुत शानदार लग रहा है। बप्पा के ऊपर लिखे मंत्र सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देश के कोने कोने में गणेशोत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। पश्चिम से पूर्वी भारत और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम शहरों में अलग अलग थीम पर गणपति पंडाल सजाए गए हैं। इसी कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं तेलंगाना के वारंगल में स्थापित अनोखे गणपति की तस्वीर। देखिए, गणपति को मंगल मूर्ति कहा जाता है, लेकिन वारंगल में न्यायमूर्ति गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित की गई है। तेलंगाना के वारंगल जिले के रामन्नापेट में गणेश उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट की थीम पर तैयार किया गया न्यायमूर्ति गणपति पंडाल और इको फ्रेंडली प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का इस वक्त केंद्र बने हुए हैं। आयोजकों के अनुसार अगर हम देखें तो इसे न्याय और निर्णय के अवधारणा के रूप में तैयार किया गया है, क्योंकि भगवान गणेश को सभी के लिए न्याय और निर्णय की सर्वोच्च पीठ माना जाता है। शहर शहर बप्पा की पंडाल भी अलग अलग थीम पर तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको दो ऐसे यूनिक पंडाल में लिए चलते हैं, जिसमें एक ओर है मुंबई के शिवड़ी चा राजा का अंडर वाटर पंडाल, तो दूसरी तरफ है अमरावती में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल की ओर से तैयार की गई खाटू श्याम मंदिर की अनोखी झांकी। दोनों ही पंडाल इस गणेश उत्सव धार्मिक थीम के साथ साथ तकनीक का भी मेल दर्शा रहे हैं।

0: संपूर्ण द्वारका नगरी बसी है इस गणेश पंडाल में। नाम है शिवड़ीचा राजा गणपति पंडाल, जिसको इस साल 75 बरस हो गए हैं। श्रद्धालुओं की ये भीड़ दरअसल मुंबई के शिवड़ी में शिवड़ीचा राजा गणेश पंडाल में ही जुट रही है, जो इसके 75वें अमृत महोत्सव पर खासकर अंडर वाटर द्वारका की अनूठी थीम को देखने ही पहुंच रहे हैं। पंडाल के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको समूचे पंडाल में एसी की ठंडक के साथ होलोग्राम तकनीक, लेजर लाइट्स और समंदर के अंदर की दुनिया ही दिखेगी। इन्हीं तमाम विशेषताओं के इस्तेमाल से प्राचीन द्वारका नगरी को शिवड़ीचा राजा पंडाल में पुनर्जीवित किया गया है। गणेशोत्सव की रौनक है तो लोग भी मुंबई के पंडालों में बप्पा का दर्शन करने के साथ ही इस गणेश पंडाल का रुख करना भूल नहीं रहे। भाई, शिवड़ीचा राजा पंडाल की भव्यता और इसकी खास अंडरवाटर द्वारका थीम ही इतनी आकर्षक है कि छठा के बीच दूर दराज से लोग आकर बप्पा के दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं।
1: ये साल हम लोग ने कुछ यूनिक करने का सोचा है, तो हम लोग ने अंडर वाटर द्वारका ये थीम सिलेक्ट करके जो गोमती और अरबी समुंदर के बीच में जो अपना द्वारका का डूब गई है, वो द्वारका बनाने का एक प्रयास किया है। और ये द्वारका देखने के लिए और ये अपना ये द्वारका दी शिवड़ी का राजा का दर्शन लेने के लिए गणपति के पहले दिन से पूरे भारत से सब भाविक या ठिकान या जगह पर आ रहे हैं। डेली सुबह 12 बजे ये हमारा द्वारका का दर्शन शुरू होता है और सुबह 6 बजे 7 बजे तक पब्लिक आते रहता है और ये द्वारकाधीश शिवड़ी का राजा दर्शन लेते हैं और द्वारका का भी दर्शन लेते हैं।
0: गणेशोत्सव शुरू होने के साथ शिवड़ीचा राजा गणेश हर साल 11 दिन पंडाल में विराजमान रहते हैं। आयोजनकर्ता बताते हैं कि इस साल डायमंड जुबली पर गणेश पंडाल के लिए कुछ ऐसी ही थीम पर काम करना था, जिसे देखने केवल मुंबई से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग जुटे। उनके अनुसार भले ही अंडरवाटर द्वारका का प्रोजेक्ट स्थापित करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उनके राजा की कृपा से ये भी मुमकिन हो गया। फिलहाल इस पंडाल को देखने वालों की भीड़ देश दुनिया से पहुँच रही है।
1: बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट था, लेकिन वो हमारे राजा की कृपा से वो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हो गया और पूरा भारत भर से पब्लिक ये जगह आ रहा है।
0: बप्पा के इस यूनिक अंडरवाटर पंडाल में आम को या वीआईपी सब सामान्य लाइन में लगकर बप्पा का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही नेचर की इस खूबसूरत तस्वीर को भी निहार रहे हैं। फिलहाल तो शिवड़ीचा पंडाल का ये भव्य स्वरूप, एशिया का सबसे बड़ा भगवान गणेश का होलोग्राम और पानी के नीचे की दुनिया का दिव्य अनुभव महसूस करा रहा है। अब जरा इस गणेश पंडाल को ही देख लीजिए, जिसमें खाटू श्याम मंदिर की अनोखी झांकी बनाई गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने इस बार खाटू श्याम की ये खास धार्मिक थीम तैयार की, जिसमें बप्पा को बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। पंडाल में आने वाला हर शख्स पहले भगवान गणेश और फिर खाटू श्याम जी का दर्शन करता है। इस गणपति पंडाल की बारीक सजावट और धार्मिकता से भरपूर माहौल ही लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है। लगभग 98 साल से आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल गणेशोत्सव की परंपरा को निभा रहा है। हर साल उत्सव को खास बनाने के लिए ये अलग अलग थीम भी प्रस्तुत करता है।
2: 1928 में अब हमारे मंडल की स्थापना थी और तब से लेके अब तक कई साल से हम ये हर साल गणेश उत्सव का जो है आयोजन करते हैं।
0: फिलहाल तो अमरावती में गणेश उत्सव के दौरान खाटू श्याम मंदिर का ये शानदार सेटअप आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल के गणपति पंडाल का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। अब आखिर में जालना की जरा ये तस्वीर देखिए, जहाँ रामायण में लंका कांड के दृश्य को बेहद अनोखे अंदाज में दिखाया गया। कहने को ये श्री अनोखा गणेश का पंडाल है, लेकिन इसी पंडाल में जब बजरंग बली द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के होश में आने का प्रसंग तकनीक के साथ साकार किया गया, तो हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाने का ये दृश्य वहाँ मौजूद लोगों को खूब आनंदित कर गया। फिलहाल तो खासकर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के बीच खूबसूरत पंडालों में विशाल मूर्तियां, कलात्मक सजावट और अनूठी थीम के कारण ही गणेश भक्तों और पर्यटकों का आकर्षण बनी हुई है। अमरावती से धनंजय साबले और जालना से गौरव विजयसाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में आठवें दिन भी लग रहा है आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। देवभूमि उत्तराखंड में हर्षोल्लास से जारी पवित्र चारधाम यात्रा, मॉनसून के बाद भक्तों से गुलजार बद्रीनाथ धाम। अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्सव के रंग में रंगा पंजाब का फरीदकोट, बाबा फरीद आगमन पर्व पर दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक, सड़कों पर जुटे कलाकार। एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्रांश को ब्रॉन्ज मेडल, सुशिका को मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास।

बॉडी शेमिंग के खिलाफ बॉडीगार्ड, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेरी सहयोगी सना फरजीन जुड़ चुकी हैं, तो बता दें आपको कि आज चर्चा बॉडी शेमिंग को लेकर होगी, पेपराजी को लेकर चर्चा होगी। ये पूरा जो ताजा मामला है वो सलमान खान से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि सोशल मीडिया और तकनीक के दौर में कहीं सितारों की निजी स्पेस में दखल तो नहीं हो रहा है। सलमान खान ने नेहा धूपिया और कुछ दूसरे सितारों की गलत तरीके से तस्वीरें खींचने को लेकर पेपराजी को घेरा और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी मामला उठा है। तो बिग बॉस का मंच, सलमान का पंच, सितारों की निजता में दखल क्यों दिया जाए, पेपराजी को सलमान ने क्या नसीहत दी है, इन तमाम मसलों पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ फिल्मी जगत की तमाम हस्तियां भी जुड़ेंगी। दरअसल बिग बॉस में सलमान खान ने फटकार लगाई है। क्या कहा सलमान खान ने, सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। उन्होंने पेपराजी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। सलमान खान ने गलत एंगल से तस्वीरें लेने पर सवाल उठाया, महिलाओं के बैकशॉट वीडियो बनाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। सलमान खान ने टी शर्ट उतार कर दिखाई, सलमान ने अपना मेकअप भी हटाया और हाल में खुद सलमान, कैटरीना, नेहा धूपिया, अंजलि आनंद ने भी बॉडी शेमिंग झेली है। कैटरीना पर भी सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की गई थी और कई भद्दी टिप्पणियां भी हुई थी, लेकिन अब जब सलमान ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं तो सलमान के समर्थन में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां सामने आई हैं। नेहा धूपिया, वरुण धवन, डायरेक्टर कुणाल कोहली ने भी उन्हें समर्थन दिया है और बॉलीवुड ने कहा कि जब भाई बोलता है तो फिर किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचता है। सलमान खान वैसे पहले भी पेपराजी को नसीहत देते नजर आए, अगर आपको याद हो तो मामला मई 2026 का था। अपने किसी करीबी को देखने के लिए जब वो अस्पताल गए थे तो पेपराजी ने पीछे से चिल्लाते हुए, आवाज़ लगाते हुए कहा था कि वो उनकी एक तस्वीर लेना चाहते हैं। तब सलमान खान का उन्होंने पीछा भी किया था और अस्पताल परिसर में किस तरीके से तस्वीर लेने को लेकर सलमान भड़क गए थे। रात में तस्वीर खींचने के लिए पेपराजी किस तरीके से चिल्ला रहा था और पेपराजी को सलमान खान ने नसीहत भी दी थी। मामला हालांकि बढ़ गया था, लेकिन बाद में खुद पेपराजी ने सलमान खान की नसीहत को माना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप चुप रहिए। फिर एक पार्टी में दोनों जब मिले तो उनकी सुलह हो गई थी और सलमान ने भी उनको माफ कर दिया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, लेकिन अब दोबारा

0: चुके हैं मनीषा सिंगल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, मीनल पाठक हैं हमारे साथ, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सना आपसे शुरू करना चाहूंगी, ये बिग बॉस वाला जो मामला, हालांकि पेपराजी और सलमान खान का जो नाता है वो बहुत पुराना है, पहले अस्पताल वाला मामला भी हमने देखा था और हमने उसको लेकर चर्चा भी की थी, सना आप भी हमारे उस शो में मौजूद थी, लेकिन अब वापस से बिग बॉस में जो ये नसीहत है।
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक स्टेटमेंट जो कहते हैं ना हम, उन्होंने बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी है। बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म जो कई देशों में एयर होता है, उन्होंने उसमें आकर सलमान खान ने ये क्लियर कहा है कि उन्हें रिसेंटली बहुत ट्रोल की जा रही थी कि उनकी बॉडी जो है वो उस तरीके से फिट नहीं रही है जैसे पहले रहा है, उन्हें बूढ़ा, उनके एज शेमिंग की जा रही है। और सलमान ने यही अपनी टी शर्ट उतार के उन्होंने ये दिखा दिया कि देख लो भाई मेरी बॉडी ये रियल है, और मेकअप तक उतारा। और उन्होंने ये मेंशन भी किया कि 60 साल मेरे अब हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब एज फैक्टर वो आएगा, बट आप एक्सपेक्ट एक्टर्स से करते हैं कि वो एक ही तरीके का एक लुक हो, वो दिखे। एंड सलमान ने ना कि सिर्फ अपने लिए बट बाकी जो फीमेल एक्ट्रेस थे उनके लिए भी स्टैंड लिया, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली मेंशन किया कि जिस तरीके से आज शूट होते हैं, जैसे पीछे के बैक शॉट्स लिए जाते हैं या आप उनकी प्राइवेसी इन्वेड करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सलमान ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, क्योंकि पैपराजी जो है, एक एक्टर और पैपराजी का जो रिश्ता है वो बहुत अनोखा है, क्योंकि आप उनके लिए पैपराजी का घर चलता है क्योंकि आप एक्टर्स की वीडियोस दे रहे हैं, और एक्टर्स की पॉपुलैरिटी आज के टाइम पे स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स या जो हम थोड़े छोटे एक्टर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी पैपराजीज की वजह से होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही सारी वीडियोस पॉपुलर होती है। बट सलमान का ये कहना था कि जिस तरीके से आप एक पर्सनल स्पेस पे आते हैं, जिस तरीके से आप ट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि ट्रोलिंग जो आज सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सा एक इशू बन चुका है कि आप किसी भी चीज को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एंड सलमान का यही कहना था कि आप मेरी बॉडी को लेकर आप मुझे शेम कर रहे हैं, आप मेरे एज को लेकर शेम कर रहे हैं, तो ये देखो ये रियल है, अब आपको जो बोलना है बोलो। और ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, मूव है, क्योंकि एक ए लिस्टर एक्टर सलमान खान के लेवल के एक स्टार जब इस तरीके से एक स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, अगेंस्ट पैपराजी कल्चर जो एक गलत तरीके से आता है, क्योंकि हम पैपराजी को ऑफ कोर्स डेफिनेटली पूरी तरीके से निगेट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ जो एलिमेंट्स है जिस तरीके से उनको जो एक हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रहे हैं या एक नेगेटिविटी ला रहे हैं उस प्रोफेशन में, उसके लिए सलमान ने ये स्टैंड लिया। एंड बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे एक स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यहां से मैसेज बहुत बड़ा जाता है, इसके तमाम पहलू हैं, प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स हैं। सना ने इसको मेंशन ही किया कि देखा जाए तो पेपराजी का घर एक्टर से और एक्टर्स का घर पेपराजी से चलता है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है, लेकिन यहां पर जिस नेगेटिव तरीके से पब्लिसाइज किया जाता है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंकज जी, मैं पहले आपकी राय इसको लेकर जानना चाहूंगी।
2: पेपराजी और सेलिब्रिटी, जो सना ने बताया कि रिश्ता दोनों का थोड़ा सा नाजुक है और उसकी एक बहुत महीन जो लकीर होती है उसको कई बार दोनों तरफ से क्रॉस किया जाता है। कई बार खुद सेलिब्रिटीज की तरफ से मैसेज भेजे जाते हैं कि फला फला स्टार यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, आप तो पहुंच जाइए। कई बार पेपराजी वहां भी पहुंच जाता है जहां के बारे में उनको जानकारी किसी और सोर्स से मिलती है। तो पेपराजी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत हाल के दिनों में ये हुई है कि वो बहुत नजदीक चले जाते हैं सेलिब्रिटीज के, उनके बैक शॉट्स लेते हैं जो सलमान ने बताया, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से नेगेटिव फोटोग्राफ्स या उस तरह के फोटोग्राफ जो सामान्य तौर पे नहीं खींचे जाने चाहिए वो लोग देखते भी ज्यादा हैं, तो गलती उनकी भी है जो इस तरह के रील्स लाइक करते हैं। तो पूरा एक तरह से सोशल इम्पैक्ट है जिसको लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं, और सोसाइटी क्या पसंद करती है क्या नहीं पसंद कर सकती वही उनको परोसा जा रहा है। सलमान खान का कहना आपकी जगह बिल्कुल सही है कि किसी भी महिला की पिक्चर्स बिना उसकी इजाजत के नहीं लिए जाने चाहिए, वो किस तरह से दिखना चाहती है, किस तरह से खुद को दिखाना चाहती है, उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और देखा जाए तो ये इस तरह एक तरह का ये भी है कि हमारे देश में इस तरह का कोई कानून भी नहीं बनाया अभी तक कि किसी की प्राइवेसी कहाँ से शुरू होती है। मैं साउथ कोरिया जाता हूँ और भी तमाम सारे लोग जर्नलिस्ट जाते हैं वहां, देखते हैं कोई भी किसी भी ऑडियंस की शॉट नहीं ले सकता है, कोई भी अखबार किसी भी जनरल पब्लिक का फोटो नहीं छाप सकता है। अगर नेता के साथ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसका फोटो मॉर्फ कर दिया जाता है। अगर पैरासाइट जिसने ऑस्कर जीता था उसका आप पोस्टर देखेंगे तो हीरो के अलावा बाकी दो तीन जो पिक्चर्स थे वो मॉर्फ की हुई हैं। तो एक तरह से स्ट्रिक्ट जब तक रेगुलेशंस नहीं बनेंगे किसी की प्राइवेसी को लेकर के तब तक ये संकट चलता रहेगा। और सितारों को भी ये समझना चाहिए कि प्राइवेसी जब वो बात करते हैं तो खुद ही उनकी पीआर टीम क्यों उन पेपराजी को बुलाती है।
0: बिल्कुल, ये सारी चीजें होती है। एक बार

0: आज जी, आप खुद एक एक्टर हैं और बॉलीवुड के साथ बहुत समय से जुड़े, एक बार आपकी इसको लेकर क्या राय, जरा वो रख दीजिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, सलमान खान ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि बॉडी शेमिंग जो है नहीं होनी चाहिए। अब हमारे फादर साहब अजीत साहब, उनके टाइम पे भी जो था ये मीडिया थी, लेकिन उस वक्त ये जो इंटरनेट और ये सब जो दौर है वो नहीं था, तो बहुत ही सीक्रेसी होती थी। और फोटो, उस वक्त के जो फोटोग्राफर्स थे बहुत तमीज और तहजीब में रहते थे, पूछते थे सर फोटो ले सकते हैं आपसे। आजकल जो एक माहौल सा बन गया है वो बड़ा अफसोसनाक है। मैंने सलमान और कतरीना के साथ फिल्म की थी भारत, उसमें मीडिया वाले बिल्कुल अलाउड नहीं थे। तो ये बात जरूर है कि मीडिया को भी एक अपनी क्या कहते हैं वो सीमा जो है वो लांघनी नहीं चाहिए। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि कोरिया में ऐसे ऐसे लॉज है, तो आई थिंक वो लॉ हमारे देश में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज कहीं भी जाते हैं तो चुपके से जो सामने के टेबल पर बैठा है वो हमारी वीडियो बना रहा है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, वो हम क्यों उसको वो करें। Sometimes you're talking personal matters, sometimes you're talking about film, sometimes हम कुछ कुछ बात करें फैमिली के साथ में, हर जगह जो है ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उसका अंक ये भी है कि कुछ सेलिब्रिटीज ने जो है, सेलिब्रिटीज या आप जो कहिए इन्फ्लुएंसर्स कहिए जो भी बरसाती मेंढक जो है, इन लोगों ने एक पीआर टीम रखी हुई है और उनका काम यह है कि वो जहाँ जाते हैं वो आ जाते हैं। और कुछ लड़कियों का मैं देखता हूँ अक्सर पीआर टीम वो तो जानबूझकर जो है वो ऐसे फोटोग्राफ्स खिंचवाती हैं अपने, ताकि लोगों की अटेंशन उस पे जाए। कपड़े इतनी वाहियात पहनते हैं कि लोगों के अटेंशन जाए, और अपनी उनकी पीआर टीम होती है जो उनको इसके वो बूस्ट करती है, इससे वो सोचती है कि भाई वो उनको किसी स्टार के ऑपोजिट ब्रेक मिल जाएगा। दिस इज ऑल वेरी चीप, इट्स वेरी चीप एंड दे शुड नॉट डू दिस। इससे कुछ नहीं होना है।
0: आपने इस बात का खुद ही जवाब रख दिया सना, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बिल्कुल सर शेजा जी मैं क्लेरिफाई कर दूं, जब आपने नियमों की बात कही, पंकज जी ने भी कही, मेरे ख्याल से पंकज जी आप इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि सना भी हमारे यहाँ बहुत समय से फिल्म कवर कर रही है, लेकिन सना हमारे कुछ रूल्स होते हैं, आई एम श्योर कि आप भी उस सीमा को, उस मर्यादा को नहीं लांघती हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पेपराजी हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे हिट होना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी तस्वीरें ऑन एयर दिखा भी नहीं पाते क्योंकि हम भी नियमों को मान रहे हैं। सना
2: जी बिल्कुल नवजोत, और कहीं ना कहीं एक नियम तो ऑफकोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की होती है, कंपनी की होती है, बट एक ह्यूमन लेवल पे भी आपको पता होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। जब आप इस तरीके की स्पेशली महिलाओं की पिक्चर्स आप शेयर करती हैं, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग हैं, वो उसे किस नजर से देख रहे हैं आपको नहीं पता है। मे बी शायद आपके इंटेंशन अच्छे होंगे बट जो वो वीडियो देख रहे हैं उनके इंटेंशन अच्छे नहीं हो सकते। सो ये कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल देखना होगा। एंड रूल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी सारे ऑर्गेनाइजेशन पे ये क्लियरिफाई होता है कि आपको किस तरीके के वीडियो शेयर करने एंड कंसेंट जिसकी बात कर रहे थे। एंड एक अभी शायद हमें एक इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि एज अ इंडस्ट्री एक रूल आए कि पेपराजी के किस तरीके के एक सीमाएं बनाए जाए, किस तरीके के पिक्चर शूट हो,
0: पेपराजीज के लिए ये रूल्स
2: होने चाहिए,
0: क्योंकि नॉर्मल रिपोर्टर्स तो पूरी मर्यादा में रहते हुए ही सारी चीजें कवर करते हैं। पंकज जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नियम जो है वो जरूरी है, सबके लिए होने चाहिए।
3: मुंबई में एक फेडरेशन है जो सारी संस्थाओं की मदर बॉडी कुछ कहती है, FWIC। पहल उन्हीं को करनी चाहिए कि आप हर चीज का नियम बना रहे हैं, तो फेडरेशन ने एक नियम यह भी बनाई, कोई भी सितारा अगर कंप्लेन करता है कि हमारी पिक्चर्स गलत तरीके से खींची जा रही है तो जाकर के उन फोटोग्राफर से बात करें, और फोटोग्राफर्स को भी ये समझना चाहिए। मैं तो बहुत साफ बात कहता हूँ कि जितने फोटोग्राफर्स हैं, जो भी पेपराजी जिनको हमने नाम दिया है, वो सबको एक उस तरह से इंसेंटिव मिलता है। जो भी जहाँ फोटो खींचने जाता है ये मुफ्त में नहीं करते हैं, सब जाके इंसेंटिव मिलता है, इनको फोटो खींचते हैं, ये बाकायदे खरीदते हैं लोग फुटेज, जो है उनका चैनल बना हुआ है जिसमें फुटेज डाली जाती है, और उनके सब्सक्राइबर्स हैं जो फुटेज पर मंथ बेसिस पे उसे खरीद रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से IT एक्ट इसमें ऑलरेडी आ चुका है, जो हमारे यहाँ देश में बना हुआ है IT एक्ट, उसमें है कि किसी भी व्यक्ति की फोटो आप बिना उसकी परमिशन के किसी भी चैनल पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर सकते हैं। बस जरूरत उसका कड़ाई से पालन की है। जितने भी संस्थाएं हैं, सिंटा है, सिंटा का अपना नया नियम बने हुए हैं, सिंटा को इस मामले में आगे आना चाहिए। सितारों को खुद भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए कि भाई फोटोग्राफ्स हमारे निश्चित तौर से खींचे जाए, लेकिन वहां खींचे जाए जहां जरूरी है।
0: हाँ, पंकज जी, एक बहस अब यहाँ पर ना एक नया सवाल है, लेकिन मेरे साथ दो और मेहमान है, मैं उनको जोड़ लूं। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें चाहे सलमान है, शाहरुख है, उनको आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो नए स्टार्स है, जैसा अभी शहजाद जी ने खुद ही अपनी बातों में कह दिया कि ऐसे बहुत सारे नए नए एक्टर्स हैं जो खुद बुलाते हैं उनको, क्योंकि पेपराजीज की वजह से ही उनको लग रहा है कि शायद हमें फिल्म में ब्रेक मिल जाएगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मीनल आपके पास आना चाहूंगी, क्या आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं?
4: मुझे ऐसा लगता है जनरल पब्लिक शुड टेक अ लर्निंग फ्रॉम हियर कि नाउ इट्स अ हाई टाइम दैट यू स्टॉप ग्लैमराइजिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। वो सभी लोग जिनको कैटरीना कैफ जैसी वाइफ चाहिए या सलमान खान जैसा हस्बैंड चाहिए, दे आर ऑल्सो रियल पीपल। इट इज सो गुड कि सलमान खान इतनी ओपनली बाहर आए और उन्होंने बोला कि मुझे देख लो, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल जो यू नो देर वॉज अ टाइम जब यू नो बिल्कुल ही एक्टर और एक्ट्रेसेस को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था, उनके पीछे ऐसे लोग भागते थे। बट मुझे अब ऐसा लगता है कि वी हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल दिस, समवेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ अ ह्यूमैनिटी कि वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान है और वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यू नो जस्ट लीव इट टू देम एंड लीव इट एंड स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ। आप ये वाले जो बेसिक एक कंपैरिजंस होते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए और वैसे ही दिखना चाहिए, वो उन्होंने अपना मेकअप हटा के दिखाया कि मैं भी बिल्कुल तुम लोगों जैसा हूँ, और यू नो वो जो उनकी एक बॉडी उन्होंने बनाई थी वो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से बनाई थी, एंड यू नो दैट बॉडी कांट स्टे फॉर लाइक फॉर एवर। और इनफैक्ट बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने एक मूवी के लिए 5-6 months बहुत मेहनत करके एक बॉडी बनाते हैं और वो उस मूवी के लिए ही बनाते हैं, उसके बाद वो अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं और उनकी बॉडीज पे नॉर्मल हो जाती हैं। बट लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी को उन एक मूवी और एक वो फोटो में कैसे लग रहे हैं उस चीज से कंपेयर करके अपनी नॉर्मल जिंदगी खराब कर देते हैं। वो जिस तरह का स्टार्वेशन, डाइटिंग और ये सारे पैटर्न्स अडॉप्ट करते हैं,
0: ये तो पूरा सोशल मीडिया का इफेक्ट भी तो है। हर कोई सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहता है, हर कोई चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, और उसके चक्कर में ये सब कुछ होता है।
4: सो सी वहां पर आई वुड से कि अगेन देयर हैज टू बी अ लाइन ऑफ सोशल एटिकेट, और एक आप कितना कहां तक एक यू नो एक लिमिट होनी चाहिए हर किसी की। और जहां पर ये अभी बात हुई कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने रील्स बनाई ऑन द सुष्मिता सॉरी कैटरीना कैफ हाउ शी इज लुकिंग, और उसको बहुत ज्यादा दिखाया और ट्रोलिंग की। सो आई बिलीव कि मदरहुड इज द लास्ट थिंग जिसपे आपको बॉडी शेमिंग पे आना चाहिए। यू डोंट रियली नो कि मदरहुड की जर्नी होती क्या है, एंड बिकॉज आई सॉ सो मेनी ट्रोल्स फ्रॉम द मेन, ऑल दीज मेन दे कांट इवन थिंक अबाउट कि आप मतलब आई वुड जस्ट वॉन्ट टू से कि जो एक यूट्रस एक नॉर्मल साइज का होता है, इट गोज बियॉन्ड 100 and 100 times, मतलब वो इतना एक्सपैंड हो जाता है। यू कांट एक्सपेक्ट कि यू नो विद इन अ ईयर और टू ईयर्स ये जो मदरहुड की जर्नी है ये बाउंस बैक जर्नी नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन।
0: ऐसी बहुत सारी हमने ऐश्वर्या को भी बहुत बार देखा, भी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि वो दर्शन करने के लिए गई थी, उसमें भी मैं देख रही थी कि बहुत जगह उनको लेकर भी कई बार लोग अपने कमेंट्स कर देते हैं। एक बार हमारे साथ मोनिशा जी भी हैं। मनीषा जी, क्या सोच इसके पीछे रहती है? देखिए, हम इसको लेकर पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, अब जरूरत तो दोनों को है, भले ही सीनियर एक्टर्स, बड़े एक्टर्स जिनका नाम है अच्छा, उनको जरूरत नहीं हो पेपराजीज की, लेकिन जो नए एक्टर्स हैं उनको जरूरत है, उनकी रोजी रोटी पेपराजी से चलती है, पेपराजी की उनसे चलती है, तो ये पूरा एक तरीके से हम कहें कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं एक तरीके से। सीनियर एक्टर्स को भले ही जरूरत हो नहीं हो, तो किस तरीके से नियम बनेंगे, क्या सोच उसके पीछे रहती है?
5: एक कॉमन सेंस है इन सबके बीच में, आपने सही बोला, हर एक को हर एक की जरूरत है, पेपराजी को नए एक्टर्स की और न्यू कमर्स जितने उनकी जरूरत है, और जनरल पब्लिक, अगर हम ये सेलिब्रिटीज को असाइड रखें, आई एम सो सॉरी बट इफ वी कीप ऑल दीज सेलिब्रिटीज असाइड एंड इफ वी टॉक अबाउट द जनरल पब्लिक, तो आजकल आपने देखा होगा हर दूसरा इंसान रील्स बना रहा है, उसके पीछे साइकी क्या है, क्या साइकोलॉजी है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर एक है। दूसरा, दोनों की साइकोलॉजी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि जो लोग रील्स बना रहे हैं जिन्हें ये अटेंशन चाहिए, और जो लोग बिना कंसेंट लिए जनरल वीडियोस बना रहे हैं, जो ये केस है, राइट? सो दोनों को ही एक पॉपुलैरिटी चाहिए, फेमस होना है आज की तारीख में, क्योंकि स्क्रीन मीडिया आजकल इतना कॉमन ये प्लेटफॉर्म है और हर कोई चाहे वो फेमस होके कुछ अच्छा काम करके या कुछ गलत काम करके कैसे भी वो फेमस हो सकता है। अब उसको हम चाहे हम अपनी निगाहों में देखें कि वो अच्छा है या बुरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान को। लेकिन एक जो मैंने जहां से शुरू की थी बात, कॉमन सेंस, कंसेंट और परमिशन, अगर कोई इंसान कंफर्टेबल नहीं है तो आप यू आर नो वन टू कैप्चर दैट पर्सन्स वीडियो और स्टिल पिक्चर्स आप नहीं खींच सकते हैं। इवन आजकल आपने देखा होगा कि जिम हो गया, पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क है और कहीं पे भी किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे लोग अपने डांस वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी नहीं तो खाली एक्टिंग ही कर रहे हैं। किटी पार्टीज में लोग निकले हुए अपने वीडियोस बना के वो शेयर कर रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके पीछे भी बहुत सारी पब्लिक है जो शायद नहीं कैप्चर होना चाहती है और वो अनजाने में उनके एक्साइटमेंट में या उनकी इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि भाई अगर हम अपना वीडियो बना रहे हैं तो हमारा ही वीडियो आए, दूसरा कोई और उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये वाली एक अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। और अगर कोई पेपराजी, अगर किसी भी सेलिब्रिटी, नाउ कमिंग टू द सेलिब्रिटीज, उनका कोई भी वीडियो वो बना रहे हैं या फोटोज खींच रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे परमिशन लेना जरूरी है। अदरवाइज इसको अगर हम, और बहुत मुश्किल है ये सब कंट्रोल कर पाना, जब तक हम इसको एक जनरल एजुकेशन, एक जनरल अवेयरनेस सिस्टम हम नहीं स्प्रेड करेंगे तब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी। और इसके लिए कुछ प्यूनिटिव एक्ट्स डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के आज के टाइम में कोई भी किसी की ना फोटो खींचे, और AI का जमाना है, आपको नहीं पता वो फोटोज और वीडियोज जो कैप्चर हुए हैं वो किस तरह से कल को पब्लिक होंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसके बेस पे बॉडी शेमिंग अनादर, एक चीज आपने की और उसके बाद दूसरी चीज, एक और नेगेटिव आपने चीज उसमें ऐड कर दी, बॉडी शेमिंग मतलब किस वजह से, और वो भी एक प्रेग्नेंट महिला की। तो कहीं से कहीं तक ये कुछ फिट नहीं होता है दिमाग में, कुछ एक्सेप्टेबल है नहीं इसी तरह से।
0: पंकज जी, एक चीज और, सलमान ने जो बात कही है उसमें तमाम तरह की बातें कही कि जब गाड़ी में बैठते हैं या निकलते हैं उसमें हर तरह के एंगल से शॉट लिया जाता है और फिर उसी को परोसा जाता है, फिर उसके बाद एक तस्वीर लगा के लिखा जाता है कि पहचान कौन क्या, इस तरह के तमाम कैप्शन दिए जाते हैं। सर, यहाँ सलमान खान इस बात का जिक्र तो कर रहे हैं कि बिना किसी की परमिशन के इस तरीके से कम कपड़ों में किसी की तस्वीर आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन सर ये भी तो बताइए कि फिल्मों में तो हम बहुत सारे आइटम नंबर्स देखते हैं, वहां पर भी तो कम कपड़ों में होते हैं। शहजाद जी ने अभी ये बात इसका जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है जो कॉमन पीपल है, आम लोग हैं, उनके लिए हीरो हीरोइन तो यही है, वो तो इनको फॉलो करते हैं।
3: दो चीजें हैं जी उसमें, हम दो चीजें, एक किसी की व्यक्तिगत जीवन क्या है, उसके पर्सनल लाइफ क्या है और एक प्रोफेशनल लाइफ क्या है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर वो लड़की कोई एक्टिंग कर रही है, डांस कर रही है, उसकी जो रिक्वायरमेंट रोल की उसके हिसाब से काम कर रही है, उसको देखने के लिए पब्लिक टिकट लेकर सिनेमा हॉल में जा रही है और उसको देख रही है, वो उसका प्रोफेशनल काम है। वो घर में कैसे रहती है, घर में उसका क्या काम है, या सड़क पे जाते सब्जी खरीदते हुए, जिम से निकलते समय, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। उसको खींचने का उसने अधिकार नहीं दिया है, उसको फिल्म के लिए फिल्माए जाने का उसने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको किस किस तरह के गाने करने हैं, किस किस तरह के सीन कर रहे हैं, उसके वो पैसे ले रही है, उसकी फीस ले रही है और अपनी परमिशन दे रही है उस बात की। किसी भी व्यक्ति का कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो बिना उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मैं तो चाहूंगा अगली बार जब इस तरह की हम चर्चा करें, हमारे पैनल में एक IT विशेषज्ञ होना चाहिए, एक आज के नए कानूनों का विशेषज्ञ होना चाहिए, जो ये सब बात उनके बता सके, दर्शकों को भी, जो लोग सोशल मीडिया पे ये फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, कितना घातक है आने वाले समय के लिए। अगर किसी दिन किसी भी एक्ट्रेस या एक्टर ने उसको लीगली चैलेंज कर दिया तो बहुत सारे लोग जेल चले जाएंगे। जितनी पेपराजी है इसमें से 50% लोगों के खिलाफ केस हो सकता है आज की तारीख में, क्योंकि वो बिना परमिशन की फोटो खींच रहे हैं। अगर आपको इनवाइट किया गया किसी इवेंट में, कल परसों में देख रहा था शिल्पा शेट्टी के घर पे गणपति का एक डांस चल रहा है जिसमें वो पेपराजी को बुला बुला के डांस कर रही है। एक तो ये तरीका हो गया कि उन्होंने मालूमी साड़ी पहन रखी है और डांस कर रही है पेपराजी, दूसरी तरफ जब उन्हीं शिल्पा शेट्टी की फोटोग्राफ खींचता है जिम से निकलते हुए और वो बोलती है बैग से फोटो नहीं लेना, तो दोनों अलग अलग मामले हो जाते हैं। कौन आपको इनवाइट कर रहा है फोटो खींचने के लिए, किसने इजाजत दी है और किस मौके पे इजाजत नहीं दी गई, तो दोनों पहलू, जो दोनों सवाल आपने पूछे उसका जवाब यही है, कि सहमति जरूरी है।
0: बिल्कुल,
3: बिना सहमति के किसी की फोटो खींचना या उसको पब्लिक करना बिल्कुल गैरकानूनी है आज के कानून में भी, और आने वाले समय में और ये सख्त कानून होते चले जाएंगे।
0: ठीक है सना, इस पर, इसी पर।
2: अभी रिसेंटली नवजोत हमने ये देखा था कि पेड्डी जो फिल्म आई थी उसमें जानवी कपूर ने भी ऑब्जेक्शन उनके फैंस ने लिए थे कि उनके क्लीवेज और उनके बैक शॉट्स लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं फिल्म में भी एक एक्ट्रेस ऑब्जेक्टिफाइड होती है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आइटम सॉन्ग्स में जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जिस तरीके से उन्हें शूट किया जाता है, काफी सेक्सुअलाइज किया जाता है, एंड यहां पे भी बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्सेंट की जो बात हम कर रहे थे, जानवी कपूर के फैंस ने जब एक शोर मचाया, रेडिट पे मैसेजेस आने लगे जिसमें जानवी ने कहीं ना कहीं अपने फैंस को यह कहा था कि मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से मुझे शूट किया जा रहा है, या मैं अनकंफर्टेबल थी, उसके बाद डायरेक्टर ने वो सीन्स कट हुए, तो आप कहीं ना कहीं अभी भी फिल्मों में ये हो रहा है, और यहीं पे सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स जब आकर बात करते हैं तो ना कि सिर्फ पैपराजी शूट्स, बट कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्ट्रेसेस को सेक्सुअलाइज किया जाता है आइटम सॉन्ग्स में स्पेशली, उसके बारे में भी अगर वो मेंशन करे तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर पे हम एक्ट्रेसेस और फीमेल एक्ट्रेसेस को स्पेशली रिस्पेक्ट करें। डेफिनेटली आइटम सॉन्ग्स जिस तरीके से पहले थोड़े क्रासी बनते थे वो अब थोड़े बेटर हुए हैं, बट अभी भी कुछ फिल्मों में हम देख रहे हैं कि यंग एक्ट्रेसेस को स्पेशली और शायद जो न्यू कमर्स आते हैं उन्हें सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलमान खान अपना प्लेटफॉर्म जिस तरीके से वो पैपराजीज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन्हें शायद अब ये भी एक स्टेप लेना चाहिए, एक मुद्दा उठाना चाहिए कि हम फिल्मों में भी एक अलग तरीके से एक एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करें, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि फैंस के दिमाग में ना वो इमेज छप जाता है, कहीं ना कहीं वो एक एक्ट्रेस को उसी तरीके से देखने लगते हैं, स्पेशली हम कुछ जो एक्ट्रेसेस जिन्होंने आइटम सॉन्ग्स किए उन्हें हम ग्लैमरस और ये सारे टर्म्स देने लगते हैं, तो जब आप इस तरीके से देखने लगते हो तो पैपराजी भी उन्हें उस तरीके से ही शूट करते हैं, तो ये इमेज तोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स जब आकर बड़े प्लेटफॉर्म्स यूज करके एक मैसेज दे तो वो एक इंडस्ट्री में एक चेंज आएगा, और अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये चेंज आए, क्योंकि रिस्पेक्ट सब डिजर्व करती हैं, स्पेशली एक्ट्रेसेस।
0: जल्दी से इसी पर एक बार शहजाद जी आपकी राय चाहूंगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी हमारे जितने भी पैनलिस्ट ने कहा, हम सब जो है एक तरीके से सलमान खान की इस बात को सपोर्ट करते हैं, बट एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं जिसमें पुराने जर्नलिस्ट हो गए, पुराने वो हो गए, वो जो है राज खोल रहे काफी एक्टरों के। देखिए उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, क्या थी, जो भी थी, वो आप पॉडकास्ट पे बैठ के आप कह रहे हैं कि फलां का अफेयर उसके साथ था, वो रंगे हाथ पकड़ा गया था, वो ऐसा हुआ था, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ अब 20-30 साल हो गए, वो किसी की बीवी हो गई, किसी उनके बच्चे हो गए, ये हो गए, और जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है वो पॉडकास्ट करे इस बात पे ताकि इसके वायरल हो जाए, इसको ज्यादा, ये सारा चक्कर जो है ये सब्सक्राइब का है, व्यूज का है, तो इसको किसी भी तरह कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है कि पॉडकास्ट पर भी इंसान क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहिए। और सलमान खान ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, और अब मैं सिंटा में भी आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये अहद करते हैं। और क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक क्रिटिक है जो अपने आप को द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिटिक कहते हैं, उन्होंने दिखाया एक फिल्म आई थी पठान, उसमें दीपिका पादुकोण का एक गाना था बेशरम रंग, तो जो BTS होते हैं उसको कह रहे बड़ा हंसते हुए और मजाक करते हुए कि देखिए ये कहाँ का मेकअप लगाती है, और बहुत वो BTS उन्होंने दिखाया, बहुत ही अश्लील था, बहुत ही शर्मनाक था, कि ये सब चीजें इन तक पहुंचती कैसे है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को बंद होना चाहिए, एक्टर्स को अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत सेफगार्ड करके रखना चाहिए, चाहे वो बाहर हो चाहे वो सेट पे हो, कौन किस वक्त क्या बना रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीजें खास करके हमारी जो हीरोइंस है उनका उनका तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मैं ये सबसे गुजारिश करता हूँ।
0: चलिए आपने कहा कि आप चिंता में आ गए, इसका मतलब जिम्मेदारी अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा है नियमों को बनाने की। हम यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पंकज जी बिल्कुल आपका जवाब भी लूंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, तुरंत लौटते हैं खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान। परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: बॉडी शेमिंग के खिलाफ बॉडीगार्ड इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पंकज शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तो शहजाद जी ने जो ब्रेक पर जाने से पहले मुद्दा उठाया, देखिए अब ये दायरा और बड़ा होता जा रहा है हमारी चर्चा का। शुरुआत यहाँ पेपराजी से हुई थी कि किस तरीके से आप फॉलो नहीं कीजिए बिना किसी की मर्जी के, लेकिन यहाँ मुद्दा यहाँ तक आ गया कि पॉडकास्ट में भी एक्टर्स की निजी जिंदगी का खुलासा हो रहा है। इसका जवाब तो मैं चाहूंगी कि आप रखिए, लेकिन इसी के साथ साथ जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते, आप तो एक पब्लिक फिगर बन जाते ना, सेलिब्रिटी बन गए आप, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी छोटी छोटी चीजों को जानना चाहेंगे, अच्छा लगेगा उनको, उनको सुनना अच्छा लगेगा, अच्छी चीजों को लोग फॉलो भी करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बुरी चीजों को भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो खबरें बनती हैं अपने आप में।
6: मेरा ये मानना है कि अगर हम पिछले 20-25 साल में जो सोशल मीडिया का उभार हुआ है, शुरुआत में अगर आपको याद हो ऑर्कुट आया था, ऑर्कुट था, याहू मैसेंजर था, याहू की मैसेंजर की चैट्स होती थी, प्राइवेट चैट्स होती थी। जब से फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे चीजें वायरल होनी शुरू हुई, थोड़ा इजी हुआ सोशल मीडिया यूज करना, तब से इस तरह की समस्याएं ज्यादा हुई। तो पहले लोगों ने इसको उपयोग करना शुरू किया अपने प्रचार के लिए, अपने वीडियो बनाए, अपने पॉडकास्ट बनाए, अपने डाले। धीरे धीरे ये चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही है। अब हर कोई फिल्म व्यूअर बन रहा है, हर कोई जर्नलिस्ट है, हर कोई फिल्म क्रिटिक है, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई भी किसी के बारे में जाके एक पॉडकास्ट बना के डाल सकता है। हालांकि सरकार ने इस बारे में नियम कायदे बनाना है, न्यूज चैनल जो चल रहे हैं, डिजिटल न्यूज चैनल चल रहे हैं, उनका ये था कि जिला मुख्यालय पे उनकी रजिस्ट्री होगी, सूचना विभाग में उनको पंजीकृत कराना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई रोक नहीं है, उसके क्रॉस चेक नहीं है। कोई भी न्यूज चैनल जो आज की तारीख में मान लीजिए किसी ने यूट्यूब पे बना रखा है, किसी तहसील मुख्यालय में, किसी गाँव में चल रहा है, उस पर क्या कंटेंट जा रहा है कौन चेक करेगा? तो सेल्फ रेगुलेशन जो होता था, जो न्यूज चैनल बड़े चैनल है, आज तक है या और दूसरे चैनल है बड़े चैनल, उनका एक सेल्फ रेगुलेटरी टीम है। सना ने जैसे बताया था कि हमारे सबके कायदे कानून हैं, जर्नलिज्म में हमें शुरुआती दौर में शिक्षा दी जाती थी क्या सही है क्या गलत, उसका ध्यान रखना है। तो वो जो चीजें हैं वो कोई सिखाने नहीं जा रहा। जो जगह जगह पे न्यूज चैनल छोटे छोटे खुल गए हैं, या फिल्म क्रिटिक खुल गए हैं, या जो पेपराजी जिनको बोलते हैं, पेपराजी के हाथ में सिर्फ मोबाइल रहता है। पहले तो लोगों को कैमरे खरीदने पड़ते थे। अगर आपको याद हो, प्रिंसेस डायना की मौत इसी चक्कर में हुई थी, पेपराजी उनका पीछा कर रहा था तो वो भाग रही थी। उस तरह के हादसे मुंबई में भी होते होते बचे हैं कि पेपराजी किसी का पीछा कर रहा है और गाड़ी लेकर कोई निकल रहा है, किसी ने गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये हादसे और न बढ़े, इसको आगे रोकने के लिए शहजाद ने जैसे बोला कि वो चिंता में आ गए हैं। उनके पिताजी अजीत को अगर आप देखें, वो खलनायक होते हुए भी इतने शरीफ दिखते थे, उनका पहनावा, उनका बातचीत करने का लहजा, वो कहीं भी चीप एक्टिंग नहीं दिखती थी। तो हर स्तर पे एक होता था, उसमें एक गरिमा बनाई रखी जाती थी, हर अभिनय की गरिमा होती थी, लोग पब्लिक प्लेसेस में जाते थे उसकी गरिमा होती थी, पार्टी की अपनी गरिमा होती थी। हर जगह फोटोग्राफर नहीं घुसा जाता, हर जगह जो उसका वीडियोग्राफर है वो पार्टी के अंदर इनवाइटेड नहीं होता था। पार्टी के अंदर बहुत प्राइवेट स्पेस है, वहां पे पार्टी चल रही, लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहां पे कोई, अभी 20-25 साल पहले तक की बात है, अलाउड ही नहीं था न फोटोग्राफर न वीडियोग्राफर। आजकल तो स्टार अपने साथ 5-6 कैमरामैन लेके मोबाइल वाले साथ में चलते हैं, वो खुद उनका शूट कर रहे होते हैं। जब आपने परमिशन दे रखी है तो अंदर जाके आपको शूट करने उनको मौका मिलेगा, दूसरे को भी शूट करेंगे ना, वहां कौन उनको रोकने वाला है। पहली चीज तो यह है कि जितना फिल्म प्रोड्यूसर्स की चार पांच जो संस्थाएं हैं वो मिलकर बैठ के आपस में तय करें, सिंटा के लोग आपस में बैठ के तय करें कि हमें हमारे सितारों की या हमारी फिल्मों की शूटिंग की या हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहां तक फोटोग्राफर अलाउड होगा और कहां से इनकी सीमा समाप्त है। जैसे अभी हम वीडियो देख रहे हैं सलमान खान का, शायद ईद का वीडियो होगा, वो अपनी छत पे आकर के लोगों से दुआएं कबूल कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो ये तो ठीक है, आपने बुलाया तो वो आ गए, बिना बुलाए जो आएगा पेपराजी या स्नोटोग्राफर या फोटोग्राफर जो भी,
1: अस्पताल वाला मुद्दा मुझे अभी भी याद है क्योंकि उसको लेकर भी हमने चर्चा की थी।
6: मुझे याद है सनी देओल का, याद है
1: सनी देओल
6: जब सीरियस थे और सनी
1: देओल, जया बच्चन को बहुत बार हमने देखा भी है पंकज जी, वो भी नसीहत देती रहती
6: है, गुस्से में आती है, सब लोग इरिटेट होके कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
1: चलिए
6: इस पर कोई गलत बात कर रहे हैं, हमने संभाल लिया, जया बच्चन नहीं कंट्रोल कर पाती हैं। जी
1: अब इसी पर हमने कुछ लोगों की राय भी ली है, एक बार वो सुन लेते हैं लोगों का इसको लेकर क्या कहना है, क्या व्यूज है आम जनता के।
4: मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्टार्स होते हैं, कई महिलाएं होती हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, आपत्तिजनक उन पर टिप्पणी करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं जो उनके मन में आता है वो लिख देते हैं, किसी को नीचा दिखाने की वो कोशिश करते हैं, तो ये बहुत गलत है जो आज चल रहा है ट्रोलिंग का। लोगों की बॉडी को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर कमेंट किए जाते हैं कि ये मोटा है, ये काला है, ये ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं और मैं इनकी आलोचना करता हूँ।
7: जितने भी हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अपने बाहर जो मूवीज़ वगैरह बनाते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन सबको ये जो कमेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम पर, जो कमेंट्स आते हैं, ये सब कुछ टोटली गलत है। वो उनको जैसा भी, जो कैटरीना कैफ को जो अभी उसकी बॉडी जो गेन हुई है, वो अभी वेट जो गेन हुआ है उसके ऊपर इतने लोगों ने उसको ट्रोल करा, सलमान खान को ट्रोल करा, सोहेल खान तक को ट्रोल करा, जो भी कोई गलत ये जो इंस्टाग्राम पे इस पे जो भी गलत ये जो बोलते हैं इनके खिलाफ हमको कुछ ना कुछ तो एक्शन हमेशा लेना चाहिए, ये बिल्कुल 100% मेरी तरफ से गलत है।
8: अब वो भी एक ह्यूमन बीइंग है तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं, जैसे ही उनकी कोई नेक्स्ट मूवी आएगी, कुछ भी नेक्स्ट मूवी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगी। तो हमें किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी पर्सन को इस चीज़ के लिए ट्रॉल नहीं करना चाहिए, उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए।
9: मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि आजकल मैं काफ़ी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कि सेलिब्रिटीज़ की काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।
10: जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इन दिनों सेलिब्रिटीज़ को कैसे ट्रोल किया जाता है, बिकॉज वो जैसे कैटरीना कैफ हैं, अभी माँ बन चुकी हैं, तो उनकी बॉडी को बॉडी शेम किया जाता है, जो कि बिल्कुल ये हमारे राइट्स में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
1: चलिए इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अमीनल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर आम लोगों की राय ली जाए, देखिए इस बात को हर कोई समझता है, लेकिन फिर मैं ये बात इस बात को और कोई समझता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हम जो लिख रहे हैं उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें करते हों, लेकिन ये ट्रोलर्स कहाँ से आते हैं, कौन से लोग होते हैं, किस तरह की मानसिकता है इनकी, यहाँ पर एक चेन चलती है कि किस तरीके से ट्रोल किया जाए इनको?
11: मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक पब्लिक पर्सनालिटी है और वो सभी लोग जो एक पब्लिक पर्सनालिटी बनना चाह रहे हैं, तो एक नेचुरल साइड इफेक्ट है बीइंग अ पब्लिक पर्सनालिटी का कि लोग आपके फैंस होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, और जब भी वो आपके आसपास कहीं आते हैं या दिखते हैं, वो आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। और आपने बहुत ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस पुश कर रहे होते हैं उन लोगों को अपने से दूर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों की भी तो अपनी एक डिग्निटी है, वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपके आपके साथ एक सेल्फी लेना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वहां पर बीच में एक जो एक विच आई सेड देयर हैज टू बी सम एटिकेट ऑन उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ, वो कहीं पर मिस हो जाता है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो पब्लिक का प्यार है उन एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए जब वो आते हैं उनसे वो सेल्फीज लेने। और ये जो ट्रोलिंग वाली बात है, आई थिंक इट्स ये अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। कोई भी एक बहुत नोन फेस में अगर आपको लगता है कि आप उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा कर लेंगे, आप सोचिए ना जिन जिन लोगों ने ये नेगेटिव रील्स बनाई है उनकी रील्स कितनी ज्यादा फॉलो हुई, कितनी जगह उन लोगों को शेयर करके बोला गया। इट्स अ काइंड ऑफ अटेंशन, वेदर इट इज अ नेगेटिव अटेंशन और वेदर इट इज अ पॉजिटिव अटेंशन, इट इज अ अटेंशन व्हिच दोस यू नो इन्फ्लुएंसर्स आर गेटिंग। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ गेनिंग यू नो अटेंशन ऑन द मीडिया। एंड यस, जैसे आपने ये वाली बात बोली कि बहुत लोग मान रहे हैं कि बॉडी शेमिंग इज अ रॉन्ग थिंग, बट अगेन व्हेन यू आर अ पब्लिक पर्सनालिटी और आपने लोगों को अपनी ए प्लस फॉर्म में देखा है, मतलब पीपल हैव सीन कैटरीना कैफ इन लाइक बेस्ट ऑफ अ फिगर एंड बेस्ट ऑफ अ डेज, और अब एकदम से ऐसे देखकर बहुत लोगों को शॉक भी लगा, मतलब दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, बट उसके लिए ट्रोलिंग करना ये बहुत गलत है. वहां पर मुझे लगता है आपका जो एक बेसिक ह्यूमन ह्यूमैनिटी है ना, वो आपके अंदर वो आपको झकझोरती नहीं बिफोर सेइंग एनीथिंग टू अ मदर कि आप एकदम से वापस पतली होकर वैसे फिगर में क्यों नहीं आई. आई थिंक कैटरीना कैफ ओ इट टू नो वन, शी ओज नो आंसर टू एनी वन एंड नो ट्रोलर्स नो रिप्लाई, ये सब बोल बोल के लोग चुप हो जाएंगे. You just simply ignore these people. आपको किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है. आई बिलीव ये उनका अपना अंदर का एक नेगेटिव इमोशन है जो वो बाहर लेकर आते हैं, उनकी अपनी अंदर की असफलताएं हैं जो वो नहीं अचीव कर पाई, वो दूसरों पे यू नो दे ट्राई टू पुट इट ऑन दी अदर पीपल. इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर बिकॉज यू विल सी लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग ऑल्सो. There are a lot of people who are speaking against this. There are a lot of people who are posting supporting Katrina Kaif and you know telling her that you're doing great. और मुझे तो अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लगे, मुझे तो वो बहुत प्यारी लगी. आई लव द वे शी मेंटेन्ड हर हेयर, हर स्किन, दैट प्लम. आई रियली लाइक दैट.
1: नहीं, लेकिन यहाँ पर मनीषा जी, मेरे ख्याल से आप ऐसी सोच को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकती हैं. वो एक कहावत है ना, बदनाम होंगे तो नाम ना होगा. मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए भी लोग करते हैं ये सारी चीजें.
12: बिल्कुल आप सही कह रही हैं. आजकल की तारीख में उनको पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी चलेगा, बस उनका नाम आ जाए आगे तो लोग उनको जान जाते हैं. और अभी पिछले आई थिंक कुछ एक सालों में, मैं ये बोलूंगी कोविड से लेके अब तक, जो कोविड एरा था और तब से लेके अब तक, आप देखिए जितनी भी चीजें मीडिया पे आई हैं, न्यूज चैनल्स पे आई हैं या न्यूज पेपर में आई हैं, उसमें बहुत सारे इस तरह के इंस्टेंसेस हैं जो जिनका कोई बेस ही नहीं है, लेकिन बस उनको पब्लिसिटी चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं. तो थोड़ा पॉपुलर होने का, फेमस होने का एक वो जो फैसिनेशन है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो हमारे जो हमारा छोटे जो बच्चे हैं, वो बच्चे इन्फ्लुएंस होके उन्हें थोड़ा सा गलत राह मिल रही है और हमें उनके बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि वो भविष्य तो वही है हमारा, कल का, हमारे देश का भविष्य, और उनको आगे ले जाना है. तो जो किस तरह का कंटेंट हम दिखा रहे हैं उस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. और इसमें हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई आम इंसान है, लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. जो प्रेगनेंसी है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसकी फिगर चेंज हो गई है, तो वो एक ब्लेसिंग है. वो फिगर तो वापस आ जाएगी, उसमें कुछ ही दिन लगेंगे. लेकिन ये जो मैसेजेस हैं, इनको थोड़ा हमें हम किस तरह से पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है आज की तारीख में. लोग जो देखते हैं उससे वो फैसिनेट होते हैं और वही उनको नहीं फर्क पड़ता वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, उतना वो अपना दिमाग यूज भी नहीं करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बस उनको वो बस इंस्टेंट उन्होंने लिख दिया, उन्होंने सोचा भी नहीं उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता.
1: शहजाद जी, अब बिल्कुल मनीषा जी आती हो आपके पास. शहजाद जी, अब क्योंकि देखिए नॉर्मली इस तरह के मुद्दों को लेकर इतनी बड़ी चर्चा नहीं होती, लेकिन हम लोग गुड न्यूज टुडे पर हैं तो हम इसको लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा भी है. हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हम क्या देखना पसंद कर रहे हैं, हमारे दिमाग में किस तरह की नेगेटिविटी आ रही है या पॉजिटिविटी आ रही है. कोशिश हमारी यही रहती है कि कम से कम लोगों की इस सोच को समझा जाए, उसे बताया जाए. पंकज जी ने बहुत अच्छी बात भी कही थी और मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाएगी, संता के साथ आप जुड़ गए. सर, चर्चा एक्टर्स के बीच में इसको लेकर होती है क्या और किस तरह की होती है, अगर आप हमें बता.
13: देखिए, एक्टर्स के बीच कम होती है, एक्ट्रेसेस के बीच में ये ज्यादा होती है. और कुछ जो जिन लोगों ने अपनी पीआर टीम रखी है उनको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब जगह वो नजर आए, चाहे एयरपोर्ट पे हो, वो जिम में हो कुछ. लेकिन जिन लोगों ने नहीं रखा है, जो प्राइवेसी चाहते हैं, उसके बावजूद भी उनकी प्राइवेसी में जो है ये एक्ट्रेस पासिंग होती है, उनको ऑफकोर्स ऑब्जेक्शनल लगता है एंड उनका पूरा हक बनता है. और हमारे पैनलिस्ट ने जो कहा कि एक वो आईटी एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए कि भाई जो हमारे जो मीडिया है वो किस हद तक विदाउट परमिशन फोटोज नहीं लेना चाहिए. और सबसे जो सबसे दुखदायक बात, आप देखिए, आप खुद आप मीडिया से आप खुद देखेंगे, जब कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी सेलिब्रिटी बाहर निकलती है, जो जो जो मीडिया कवर कर रही है उनके आपने गंदे गंदे कमेंट्स देखे, कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो खुद बात कर, वो सब वो समझते हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वो तो चलो सेलिब्रिटी को कवर कर रहे हैं अपने फोन से या अपने कैमरा से, लेकिन उनकी कॉन्वर्जेशन इतनी गंदी होती है, इतनी खराब होती है, आइटम ये वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब दिखाता है।
1: ये शब्द भी तो बॉलीवुड से ही आया, अगर आपको याद हो आइटम सॉन्ग शब्द कहाँ से आया, हम लोग को तो नहीं पता था पहले, किसी को नहीं पता था ये शब्द।
13: नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बॉलीवुड वो दिखाता है जो समाज में हो रहा है, हम समाज का जो है एक किस्म से अंग कहिए वो है, और हम उसको ग्लोरीफाई करके पढ़ते
1: ठीक है, लेकिन इसमें भी हम इसको भी नकार नहीं सकते कि समाज भी बॉलीवुड को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है। चलते चलते आखिरी कमेंट पंकज जी आपसे।
6: मैं तो इसको पूरी जो हमारी चर्चा है उसको वाइंड अप करने के पहले एक सवाल मैं बिग बॉस के मेकर्स से पूछना चाहता हूँ कि ये जितनी कंट्रोवर्सीज है हीरोइंस की, जो बॉडी शेमिंग तो चलिए अभी हुई है, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स मैं देखता हूँ जो खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाना चाहती है पेपराजी के साथ मिलकर, किसी तरह से उनको बिग बॉस में मौका मिल जाए। तो बिग बॉस के सिलेक्शन का प्रोसेस अगर ये पब्लिक करना शुरू कर दें कि हमारे यहाँ बिग बॉस के इस सीजन में इतने इतने लोगों की जरूरत है, आप अप्लाई कीजिए, ये हमारा क्राइटेरिया है। मैं अपना पर्सनल मैं बता रहा हूँ, पिछले 15-20 साल का जो मेरा अनुभव बॉम्बे की जर्नलिज्म का है, स्टारलेट्स जो होती हैं, नई नई जो एक्ट्रेसेस होती हैं, खुद अप्रोच करती हैं जर्नलिस्ट को कि आप हमारे बारे में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं क्या, और उनके कहना यहां तक होता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है बिग बॉस में जाने के लिए। तो बिग बॉस का जो एक जनरल इमेज जो लड़कियों के बीच में बना हुआ है बॉम्बे में, मैं अपना पर्सनल बातचीत जो मेरी एक्ट्रेस से होती है वो बता रहा हूँ कि वो बिग बॉस पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उस अचीवमेंट को पाने के लिए बहुत सारी चीजें प्लान्ड भी होती हैं, चाहे वो नाम किसी एक्ट्रेस का नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिग बॉस को अपना भी एनालिसिस करना चाहिए कि उनके कंटेंट में जो दिखाया जा रहा है उसका असर समाज पे क्या पड़ रहा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: क्या सलमान खान बीइंग ए होस्ट जो बात कह रहे हैं वो उनका जो प्रोडक्शन कंपनी है एज ए मेकर वही बात वो भी कहना चाह रही है, या उनके जो कैमरा लाइव चलते रहते हैं उसमें जो सीन्स रिकॉर्ड होते हैं वो जो उनके शोज में दिखाए जाते हैं वो वही बात है जो सलमान खान कह रहे हैं, या दोनों की बातें अलग अलग है?
1: बिल्कुल, कहीं विरोध
6: नहीं। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, मुझे लगता है
1: बहुत जरूरी है सर, लेकिन
6: बात करने की बहुत जरूरत है
1: सर। वक्त अभी इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान, परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे में गणेशोत्सव के उत्साह के बीच एक परिवार आपको याद दिला रहा है आपकी सेहत की। घर में अनोखी सजावट से समाज को स्वस्थ रहने का एक संदेश भी दे रहा है, बेहद खूबसूरत संदेश है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और साथ ही आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के जालना की एक ऐसी अनोखी प्रदर्शनी में, जहां पर मारुति नंदन और भूगोल को की अहमियत को बेहद आसान तरीके से समझाया गया है।

0: त्योहार उत्सवों के माहौल में आमतौर पर लोग तड़क भड़क और पारंपरिक सजावट किया करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कराड़ का एक परिवार जिसने रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए सेहत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। दरअसल कराड़ की गजानन सोसाइटी के शिवसाई पार्क में हिंग मेरे परिवार ने गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा, आसपास आकर्षक सजावट और इसके साथ ही योग के अलग अलग आसनों को दर्शाया है, जो शरीर को योग से कैसे रखे निरोग का स्वस्थ संदेश दे रही है। पिछले कई सालों से ये फैमिली बप्पा की सजावट में चार चांद लगाने के लिए अलग अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर रही है। इस बार परिवार ने योग विषय चुना।
1: दरवर्षी आम्ही असे वेगवेगळे सामाजिक उपक्रमांवरच हे तयार करत असतो डेकोरेशन, पण या वर्षी आम्ही योगा हा विषय निवडला कारण मी सध्या स्वतः योगा करते आणि 7 ते 8 महिन्यातच माझ्या 3 वर्ष चालू असलेल्या गोळ्या फक्त योगामुळे बंद झाल्या, त्यामुळे मला असं वाटलं की हा हे डेकोरेशन आपण केलं तर हे लोक योगा करतील आणि कोणाचे काही आजार असतील ते सुद्धा यातून निघून जातील, म्हणून आम्ही हा डेकोरेशनचा विचार केला।
0: योग के अलग अलग आसनों को दर्शा रही ये झांकी तो खूबसूरत है ही, साथ ही गौरी पुत्र के लिए बनाए गए कमल से लेकर दीपमाला तक कई चीजें तो कार्डबोर्ड से ही तैयार की गई हैं। तो वहीं मां गौरी की सजावट में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें तो घर पर ही सिलकर तैयार भी की गई हैं। अल्पना ने ये सब अपने पति प्रमोद गजानन के सहयोग के साथ करीब 7 दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया, जिसमें कपास, कपड़े और घर में मौजूद दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर वेस्ट से बेस्ट का संदेश दिया गया। फिलहाल माँ गौरी के साथ बप्पा की ये खास सजावट सिर्फ आंखों को आकर्षित नहीं कर रही, बल्कि इसके साथ अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण का संदेश भी हिंग मेरे परिवार को औरों की मेहनत से थोड़ा अलग बना रहा है। गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र के जालना में भी एक बेहद अनोखी प्रदर्शनी लगी, जिसमें समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित मारुति की 11 मूर्तियों की प्रतिकृतियां दिखाई गई हैं। वही साथ ही अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में भूगोल विषय से जुड़े लगभग 150 कॉन्सेप्ट को इस प्रदर्शनी में डिस्प्ले किया गया। शिक्षक श्रीकांत चिंच खेड़कर ने यहाँ रखे गए 80 से 90 एजुकेशनल मॉडल्स में पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक के कॉन्सेप्ट को बेहद आसान तरीके से समझाया है। इन मॉडल्स में पृथ्वी, भारत का भूगोल, सौर मंडल, ग्रह, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड शामिल हैं। वो मानते हैं कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों के लिए भूगोल को आसान और दिलचस्प बनाना है।
2: अपन जब पढ़ाई करते हैं भूगोल की तो हमेशा क्या होता है कि उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम इसलिए हो जाता क्योंकि भूगोल जो है वो समझने में भी थोड़ा सा अड़चने आ जाती है, उसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा मालूम नहीं रहते और सिर्फ अपन डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से कुछ सीख नहीं पाते। तो ये डायग्राम की वजह यहाँ पे मॉडल बनाए वाले हैं, यानी दरी कैसी है एक्चुअल में ये उनको समझ में आना चाहिए, सामुद्र धुनी बोले तो क्या है ये उनको समझ में आना चाहिए, ये इसका मूल जो है वो कंसेप्ट है।
0: केवल भूगोल ही नहीं बल्कि समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित 11 मारुति की प्रतिमाएं हूबहू तैयार की गई, जो लोगों को भी पसंद आ रही हैं। ये मारुति मूर्तियां हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक हैं, जो छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा और गुणों को प्रोत्साहित करने का संदेश दे रही हैं। फिलहाल तो गणेशोत्सव की उमंग, उत्साह और भक्ति के बीच ये अनोखी एजुकेशनल प्रदर्शनी समाज में जागरूकता बढ़ाने की प्रेरणादायी मिसाल बनी हुई है। कराड़ से सकलेन मुलानी और जालना से गौरव विजयशाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: और गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जयंती पर मनाइए गणेशोत्सव, और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि पापा आपके घर पधारे, उसका वीडियो और फोटो लीजिए और हमें तुरंत भेज दीजिए। हमारे पास लगातार दर्शकों के तमाम वीडियोस आ ही रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव से संताराम नाना भाऊ ने गणेशोत्सव का ये वीडियो शेयर किया है। बप्पा के पंडाल को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है, आसन पर विराजमान बप्पा को सुगंधित पुष्पों की माला भी पहनाई गई है, साथ ही साथ फल मिष्ठान से बप्पा का भोग लगाया गया है। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये राजस्थान के अलवर की तस्वीर है जहाँ हिमांशी गुप्ता ने हमें यह तस्वीर भेजी है। घर में बप्पा की मनमोहक प्रतिमा उन्होंने स्थापित की है, पंडाल को फूलों की माला लाइट से सजाया गया है और भगवान गजानन के सम्मुख अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: परिवर्तिनी एकादशी का पूजा विधान। परिवर्तिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तिनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात उस मुलाकात की करेंगे जिसने एक नई फिल्म को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। हनुमानंद की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर दूसरी बार बागेश्वर धाम पहुंची और इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या हनुमानंद के बाद निर्माता बागेश्वर धाम की कहानी को भी पर्दे पर उतारने की तैयारी में है। क्या है इसकी पूरी खबर, आगे आपको बताएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, बात हम गणपति उत्सव की भी करेंगे जिसके रंग बिरंगी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। कहीं गणपति बप्पा को न्यायमूर्ति के स्वरूप में स्थापित किया गया है तो कहीं पंडाल में संपूर्ण द्वारका की झलक दिखाई दे रही है। तो गणपति की भक्ति और आस्था से सराबोर ऐसी ही तमाम तस्वीरें थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। एआई को लेकर इन दिनों तमाम तरह की चिंताओं के बीच बहस तेज है, लेकिन आज हम आपको एआई का एक ऐसा पहलू दिखाएंगे जिसे इसकी पॉजिटिव पावर कहा जा सकता है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एआई की एक बिछड़े हुए इंसान को उसके परिवार से मिलाने की वजह बना है। ऐसी कई पॉजिटिव उम्मीद जगाने वाली खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
5: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
6: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में आठवें दिन भी लगा आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। देवभूमि उत्तराखंड में हर्षोल्लास से जारी पवित्र चारधाम यात्रा, मॉनसून के बाद भक्तों से गुलजार बद्रीनाथ धाम। अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में दो दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन। हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम में स्थानीय संस्कृति की झलक, सेना के अधिकारियों के साथ सीएम धामी रहे मौजूद। उत्सव के रंग में रंगा पंजाब का फरीदकोट, बाबा फरीद आगमन पर्व पर दिखे सांस्कृतिक विरासत की झलक, सड़कों पर जुटे कलाकार। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन। मेहमानों के ठहरने खाने पीने के व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगे शामिल। 11 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा हम करेंगे बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त जो चमत्कार हो रहा है उससे, उस खबर से जुड़ी। क्योंकि लगातार देखिए बॉक्स ऑफिस पर अब तक आपने बड़े बजट की धमाकेदार एक्शन और सुपरस्टार्स का जादू देखा होगा, लेकिन इन दिनों देश के सिनेमाघरों में जो हो रहा है उसे लोग किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं मान रहे। नीम करौरी बाबा के जीवन और महिमा पर भरी फिल्म हनुमान अंश ने सफलता का ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके आगे दंगल और महाअवतार नरसिम्हा जैसी बड़ी फिल्में भी मस्तक हो गई है।
3: बिल्कुल, देखिए हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस रफ्तार 45वें दिन भी थमती नजर नहीं आई है। महज 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने अपनी लागत का 170 गुना से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का नया इतिहास रच दिया है। अब जरा सोचिए कि एक वक्त जो फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर महज 30 स्क्रीन पर सिमट गई हो, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मिलते ही बॉक्स ऑफिस पर कैसी ऊंची छलांग लगाई कि 347 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन कर ली। वैसे इसका खुलासा खुद फिल्म के प्रोड्यूसर ने किया है और इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर भी फिल्म बनाने की बात कही है।
4: और देखिए, भक्ति की ताकत जब सिनेमा के पर्दों पर उतरती है तो उसका असर सिर्फ थिएटर्स तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि फिल्म हनुमान अंश इसकी एक मिसाल है। नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित इस फिल्म ने कमाई के मामले में दंगल और महावतार नरसिम्हा जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा जादू किया है कि इसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में नतमस्तक हैं। फिल्म ने 45वें दिन दंगल की कमाई को भी पछाड़ दिया है। महावतार नरसिम्हा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एमपी में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अनुप्रिया

0: लेकर आई थी और उस समय महाराज जी ने मेरा साथ दिया और गुरु जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, फिल्म बहुत आगे जाएगी और वापस आज मैं आई हूँ उन्हें थैंक यू उनका धन्यवाद करने और वापस उनका आशीर्वाद लेने और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है।
1: बागेश्वर धाम पहुंचकर अनुप्रिया नागर ने बालाजी भगवान के दर्शन किए और मंदिर में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान अंश के प्रोड्यूसर ने बताया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और उनका आशीर्वाद पाने के बाद फिल्म की किस्मत बदल गई। हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर ऊंची छलांग लगाई और सुपरहिट हो गई।
0: तो जब मैं बागेश्वर धाम पहुंची, मुझे कहा गया था कि आपको सिर्फ एक मिरेकल आपकी फिल्म बचा सकती है और नेक्स्ट डे फिल्म उतर भी सकती है। तो मैं पहुंची थी बागेश्वर धाम और जब मैं मंच पर बैठी थी, मैं इतने सारे लोगों को देख रही थी और मैं लिटरली देख रही थी कि गुरुदेव इतने सारे बच्चों को, इतने सारे लोगों को वो क्योर कर रहे हैं। और जब मैं उधर बैठी थी, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जो मैं पूछना चाहती हूँ वो सबके सामने इतना छोटा है, इतना कम है और ये तो सबसे बड़ी सेवा है, लोगों की सहायता करना, लोगों की सेवा करना। और उस दिन से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने महसूस किया, टीम ने महसूस किया और ये तो नंबर्स तो सब देख ही सकते कि कैसे फिल्म शूट हुई आफ्टर मीटिंग महाराज जी, आफ्टर मीटिंग गुरु जी।
1: अनुप्रिया नागर ने बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। अनुप्रिया नागर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में उन्हें गाइड करेंगे, तभी ये संभव है। अनुप्रिया के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाना है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 45वें दिन दंगल की कमाई को भी पछाड़ दिया। दंगल ने चीन में हुई कमाई की बदौलत 10.48 करोड़ की कमाई की थी। वहीं हनुमान अंश ने केवल भारत की मिट्टी पर 45वें दिन 13.75 करोड़ की कमाई कर डाली। फिल्म ने भारत में अब तक 272 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। विदेशों में फिल्म ने अब तक 26 करोड़ रुपए की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड ग्राफ कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 347 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस तरह हनुमान अंश ने कमाई के मामले में महाअवतार नरसिम्हा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसका लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 248 करोड़ था। फिल्म की शानदार कामयाबी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चेहरे बड़ी मुस्कान ला दी है।
2: गीता जो भगवान श्री कृष्ण है, he says, he tells अर्जुना that कर्मण्य वादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मीनिंग यही है कि जितना आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को अटैच नहीं करोगे, डू योर बेस्ट। आई गेस मेरा जो आकांक्षा थी, जो मेरी विश थी, वो ये थी कि लाखों करोड़ लोग, मतलब जन जन फिल्म को देखे, ये आइडिया था कि इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे थे। सो वी थिंकिंग ऑफ इन्फ्लेटेबल थिएटर्स लेटर ऑन, कि भाई ऐसे थिएटरकल एंड खत्म हो जाएगा, फिर हम जो कि गाँव वहाँ जाके फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह के आइडियाज हम सोच रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई, और ये करोड़ों का धंधा प्रॉब्ली द बिजनेस एंड द होल थिंग इज प्रॉब्ली नॉट माई कप ऑफ टी एंड नॉट माई, मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर है।
1: प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना है कि हनुमान अंश देखकर बच्चों का धर्म के प्रति माइंडसेट बदल रहा है। बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं तो उनका मन सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। इस फिल्म के जरिए बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: चलिए बढ़ते आगे और अब बात गणेश उत्सव की कर लेते हैं। देश में जगह जगह गणेश उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान से विराजमान है। इस बार गणपति उत्सव में आस्था के साथ तकनीक का रंग भी खूब देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसे अनोखे पंडाल तैयार किए गए हैं जहां आधुनिक तकनीक के जरिए गणपति उत्सव को नया अंदाज दिया गया है।
1: देखिए, कहीं रोबोट बप्पा की आरती करता नजर आ रहा है तो कहीं डिजिटल स्क्रीन और लाइटिंग के जरिए भगवान गणेश का भव्य दरबार सजाया गया है। कहीं पंडालों में सामाजिक संदेश दिए जा रहे हैं तो कहीं पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों को

आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के वारंगल में भक्त बप्पा के एक अनोखे स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बप्पा न्यायमूर्ति के रूप में विराजमान हैं, जबकि एक दूसरे पंडाल में बप्पा का नोटों से श्रृंगार किया गया है।

0: देश भर में सजे इन गणेश पंडालों में इन दिनों आस्था और भक्ति के साथ साथ कला संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इन्हीं में एक गणपति पंडाल तेलंगाना के वारंगल में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। भगवान गणेश को हम मंगल मूर्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन तेलंगाना के वारंगल में इस बार बाप्पा एक बिल्कुल अनोखे और दिव्य रूप में विराजमान हैं। सुप्रीम कोर्ट की थीम पर तैयार किए गए इस पंडाल में बाप्पा न्यायमूर्ति गणपति के रूप में विराजमान हैं। वेदा गणपति यूथ एसोसिएशन की ओर से तैयार किए गए इस पंडाल में कोर्ट रूम जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कटघरा भी बनाया गया है, वकील भी मौजूद हैं और न्यायमूर्ति के रूप में बाबा की मौजूदगी भी है। क्योंकि भगवान गणेश सभी के लिए न्याय और निर्णय के सर्वोच्च प्रतीक हैं, इसी सोच के साथ इस बार पंडाल की इस खास थीम को चुना गया है। नोटों की माला, फूलों का हार, दमक रहा है बाबा का दरबार। ये तस्वीरें तेलंगाना के पालवंचा की हैं, जहां बाप्पा के पंडाल को करेंसी नोटों से सजाया गया है। यहां दो अलग अलग पंडालों को करेंसी नोटों की थीम पर सजाया गया है, लेकिन इन पंडालों को देखकर जहां हर कोई हैरान है, वहीं सजाने के लिए प्रयोग की गई रकम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहले बापूजी नगर में स्थापित किए गए पंडाल की सजावट पर करीब 1.40 करोड़ रुपए के नोट लगाए गए थे, जबकि यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंडाल ने गणेश प्रतिमा को करीब 1.50 करोड़ रुपए के करेंसी नोटों से सजाया। दोनों की रकम को जोड़ लें तो बापा के पंडाल को सजाने के लिए 2.90 करोड़ के करेंसी नोट प्रयोग किए गए हैं, जिनमें 10 और 20 रुपए के नोट से लेकर 50, 200 और 500 रुपए के नोट मौजूद हैं। इनमें बापा की प्रतिमा को पहनाए गए नोटों के हार के साथ ही छत और पंडाल की दीवारों को भी नोटों की लड़ियां बनाकर सजाया गया। अब आपको मुंबई के शिवरीचा राजा पंडाल लिए चलते हैं, जहां गणेश पंडाल में संपूर्ण द्वारका नगरी बसी है। दरअसल शिवड़ीचा राजा गणपति पंडाल के 75 बरस पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया और खास तौर पर इस अंडर वाटर द्वारका की अनूठी थीम को तैयार किया गया। पंडाल के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपको समूचे पंडाल में एसी की ठंडक के साथ होलोग्राम तकनीक, लेजर लाइट्स और समंदर के अंदर की दुनिया ही दिखेगी। इन्ही तमाम विशेषताओं के इस्तेमाल से प्राचीन द्वारका नगरी को शिवड़ीचा राजा पंडाल में पुनर्जीवित किया गया है। इस पंडाल की भव्यता और इसकी खास अंडरवाटर थीम इतनी आकर्षक है कि इस छटा को देखने दूर दराज से लोग बापा के दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं।
1: इस साल हम लोग ने कुछ यूनिक करने का सोचा है, तो हम लोग ने अंडरवाटर द्वारका ये थीम सिलेक्ट करके जो गोमती और अरबी समुद्र के बीच में जो अपना द्वारका का डूब गई है, वो द्वारका बनाने का एक प्रयास किया है। और ये द्वारका देखने के लिए और ये अपना ये द्वारकाधीश शिवड़ी का राजा का दर्शन लेने के लिए गणपति के पहले दिन से पूरे भारत से सब भाविक या ठिकान या जगह पर आ रहे हैं। डेली सुबह 12 बजे ये हमारा द्वारका का दर्शन शुरू होता है और सुबह 6 बजे 7 बजे तक पब्लिक आते रहता है और ये द्वारकाधीश शिवड़ी का राजा दर्शन लेते हैं और द्वारका का भी दर्शन लेते हैं।
0: बापा का ये यूनिक अंडर वाटर पंडाल एशिया का सबसे बड़ा भगवान गणेश का होलोग्राम और पानी के नीचे की दुनिया का दिव्य अनुभव महसूस करा रहा है। अब इस पंडाल को ही देख लीजिए, जिसमें खाटू श्याम मंदिर की अनोखी झांकी बनाई गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने इस बार खाटू श्याम की ये खास धार्मिक थीम तैयार की है, जिसमें बापा को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पंडाल में आने वाले हर शख्स पहले भगवान गणेश और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। इस गणपति पंडाल की बारीक सजावट और धार्मिकता से भरपूर माहौल ही लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है।
2: 1928 में अब हमारे मंडल की स्थापना थी और तब से लेके अब तक कई साल से हम ये हर साल गणेश उत्सव का जो है आयोजन करते हैं।
0: अब जालना की ये तस्वीर देखिए, जहां रामायण में लंका कांड के एक दृश्य को बेहद अनोखे अंदाज में दर्शाया गया। कहने को ये श्री अनोखा गणेश मंडल का पंडाल है, लेकिन इसी पंडाल में जब बजरंगबली द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के होश में आने का प्रसंग तकनीक के साथ साकार किया गया, तो हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाने का ये दृश्य वहां मौजूद लोगों को खूब आनंदित कर गया। गणपति उत्सव के दौरान बापा अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। पूरे देश से गजानन के ऐसे ही अनेकों दिव्य और भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं, जहां पहुंचकर श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब आपको दक्षिण मुंबई के गिरगांव के महाराजा के दरबार में लिए चलते हैं, जहां राजस्थान के श्रीनाथ देव दर्शन दे रहे हैं और यहां पर गणपति की करीब 33 फीट ऊंची प्रतिमा है और इस समय वो गिरगांव की शान बने हुए हैं।
4: बिल्कुल, आपको बता दें कि गिरगांव चौपाटी पर ही लालबाग के राजा की तरह तमाम बड़ी और ऊंची प्रतिमाएं विसर्जन की जाती हैं। इस बार ये मंडल अपना 52वां साल मना रहा है। इस बार बच्चों की आकर्षित करने के लिए पानी पर पुल वाली थीम रखी गई है। बच्चे यहां आकर खूब एंजॉय भी कर रहे हैं।
5: मैं मौजूद हूं मुंबई के गिरगांव का महाराजा के दरबार में और इसलिए ये मंडल बहुत ज्यादा वायरल है क्योंकि इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
6: बहुत फन है, एकदम अमेजिंग।
5: क्या नाम है आपका? डर नहीं लगा आपको वहाँ पे?
6: नहीं।
5: मतलब एंजॉय कर लिया ना?
6: हाँ।
5: ओके ओके, थैंक यू। आ जाओ आप लोग, आ जाओ। कैसा लगा?
6: अच्छा,
5: मजा आया?
6: हाँ।
5: आपको कैसा लगा
6: अच्छा
5: भाई
6: लगा,
5: आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको।
6: बहुत अच्छा लगा।
5: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
6: तीन चार बार।
5: अच्छा राहुल, आप तो देखते रहोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वगैरह आते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं लोग?
6: लोग को बहुत मजा आता है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है यहाँ पर।
5: ऐसा पहली बार हो रहा है? हाँ, मतलब ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो इसलिए ये तराफा लगाया हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन आपको कराते हैं। इस बार ये पंडाल जो है 95 ईयर्स पूरा कर चुका है। ये देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे है गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है और इन्हें देखने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं।
7: हमारे मंडल की खासियत है 95 ईयर्स से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
5: प्लास्टिक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी बात पे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति,
7: गिरगांवचा महाराजाचा,
5: क्या बात है। तो श्रीनाथ जी का अवतार लेकर के बप्पा गिरगांव के महाराजा के दरबार में विराजमान है और कुछ इस तरीके से देखिए तमाम लोग यहां पर श्रद्धालु पहुंच गए हैं और हर कोई दर्शन कर रहा है, हर कोई मिन्नतें मांग रहा है और जैसा कि उन्होंने बताया कि बप्पा खुश हो जाते हैं और जब मिन्नत पूरी कर लेते हैं तो लोग चढ़ावे के रूप में जो उनसे बन पनता है वो ला करके बप्पा के समक्ष रख देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे।
3: देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी JNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना यह है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। गुजरात के सूरत से निशांत सुराना ने गणेशोत्सव की तस्वीरें शेयर की हैं। घर में भगवान गजानन का शानदार पंडाल सजाया गया है। ऊंचे आसन पर विराजमान बप्पा को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया है। पूरे परिवार विधि विधान से मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के मंडला से, सर्वेश चौरसिया ने भी हमें भेजी है। बप्पा के पंडाल को तिरुपति बालाजी की थीम पर सजाया गया है। खूबसूरत पंडाल में भगवान गजानन की प्रतिमा स्थापित की गई है। पीछे भगवान वेंकटेश के दर्शन भी हो रहे हैं।
4: और चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात के अंबाजी में लगे भादरवी मेले की, जहां पर हर साल भादो महीने में अंबाजी मंदिर में लगने वाला ये बेहद भव्य और धार्मिक मेला है। आमतौर पर ये मेला 7 दिनों तक चलता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।
8: धार्मिक मान्यता ये है कि भक्त भदरवी पूनम पर माता अम्बा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें शारदीय नवरात्र के लिए अपने गांव घर पधारने का आमंत्रण देते हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में अरावली पहाड़ियों के पास स्थित अंबाजी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे आद्य शक्ति पीठ भी कहा जाता है।

0: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भद्रवी महामेले का रविवार को पूरी आस्था श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार शुभारंभ हो गया। भद्रवी महीने में नवमी से पूजन यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश माता जी का रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ हुआ। अंबाजी के रथ यात्रा के दौरान ड्रोन के जरिए आसमान से फूल बरसाए गए। वहीं बैगपाइपर बैंड ने श्रद्धा से सराबोर अपनी धुनों से माहौल को और ज्यादा भक्तिमय कर दिया। अहमदाबाद से आए व्यासवाड़ी संघ ने अंबाजी मंदिर में ध्वजा चढ़ाई। ये संघ 33 सालों से हर साल यहां आता है और ध्वजा चढ़ाकर महामेले की शुरुआत करता है। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भद्रवी महामेले के लिए 7 दिनों में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अंबाजी आने की उम्मीद है। ऐसे में पूरे मेले के सुचारू आयोजन के लिए प्रशासन ने 29 कमेटियों का गठन कर 7,000 कर्मचारियों को महामेले में तैनात किया है।
1: हम लाखों की संख्या में अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे की सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक संधारी कर्मचारी 24 घंटे परस्पर तैनात रहने के पार्किंग लॉ एंड ऑर्डर एवं संचालन सहित 29 जितनी जिला रक्षा की सुविधा भी बनाई गई है। तदुपरांत अंबाजी परिसर में 4 जिले भोजन केंद्र के साथ 8 कितने गेस्ट रोग यानी की विश्रामा केंद्र और 40 से अधिक पार्टी स्थलों की भी पहचान की गई। साथ ही साथ जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में जगत दीदी माँ अप्पा के चरणों में आने वाले तब का ये महामेला सुखमय और शांति जो वातावरण में संपन्न ऐसी आज माता जी प्राप्त की गई।
0: महामेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की ओर से 10 सेक्टरों के अलग अलग जोन में 6,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस विभाग की ओर से 51 शक्तिपीठ सर्कल पर 1 पुलिस कंट्रोल पॉइंट शुरू किया गया है जिसमें 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है।
2: मेला में आने वाली सभी माई भक्तों का दर्शन वो शांति के और सुरक्षा के वातावरण में हो इसके लिए पुलिस के द्वारा 6,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारी होमगार्ड जीआरडी के जवानों के द्वारा बंदोबस्त रखा गया है। इस बंदोबस्त के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी बॉडी वन कैमरा के माध्यम से बंदोबस्त किया जाएगा। पदयात्री जो आ रहे हैं उनके लिए रस्ते के लेफ्ट साइड से वो आ सकती है इसकी व्यवस्था की गई है। रास्ता के दौरान 63 जितने पुलिस सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। अंबाजी में आने वाले भारी वाहनों के ऊपर हेवी व्हीकल्स के ऊपर प्रतिबंध रखा गया है। मेरी सभी पदयात्रियों से आने वाले तमाम माई भक्तों से विनंती है कि आपको किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो आप 112 नंबर के ऊपर कॉल करके पुलिस की मदद ले सकते हो। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाला बंदोबस्त बहुत शांति के और सुरक्षा के वातावरण में पूरा हो।
0: गुजरात के बनासकंठा मेले में अरावली पहाड़ियों के पास स्थित अंबाजी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है जिसे आघा शक्तिपीठ माना जाता है। भद्रवी महामेला इस प्राचीन शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। महामेले के दौरान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं और सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। बनासकंठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए अब बात खेलों की दुनिया की। एशियन गेम्स में भारतीय महिला शूटर्स का जलवा देखने को मिला है। शूटिंग में सोनम मस्कर, इलावेनिल वारालिवन और विदर्स विनोद ने महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जाहिर है इन चैंपियंस के घर जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा है।
4: एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर सोनम उत्तम मस्कर की कामयाबी पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उत्सव का माहौल है। इस युवा शूटर के घर पर उनकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। जाहिर है सोनम के परिवार, कोच और एकेडमी के साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
5: माय सिस्टर गॉट सिल्वर मेडल क्योंकि अभी तक का उनका जो जर्नी है, जिस हिसाब से उन्होंने हार्डवर्क किया है, दैट इज कमेंडेबल एंड उसके हिसाब से शी डिजर्व्स एवरीथिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आगे भी ये करेगी उसको मैं दुआ देती हूँ कि ऐसे ही मेरे लेके देश के लिए
6: मेडल
5: लेके आओ।
4: कोच रोहित हवलदार और कोच राधिका बराले की सोनम की सक्सेस जर्नी में अहम भूमिका रही है। वो इस कामयाबी का श्रेय सोनम की मेहनत और लगन को देते हैं।
7: एक दिन इंडिया का नाम रोशन करेगी और उसके बाद उसने 24 में साइका एक्सलेंस में ज्वाइन किया और वहाँ से उसने और अच्छी शुरुआत लेके हमारा जो प्रेडिक्शन था उसको उसने साबित कर दिया और उसको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
4: एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज इला वेनिल वलारिवन ने टीम इवेंट और फिर महिला 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। जाहिर है इला वेनिल के घर पर भी जश्न का माहौल है।
8: अच्छा लग रहा है, भारत के लिए मेडल लाई है, अपना क्या खुल गया है, क्या बोलेंगे, मेडल काउंट चालू हो गया है एंड फर्स्ट मेडल मैच शूटिंग का होता है, उसी में हम लोग मिस नहीं किया, हमको 2 मेडल मिला है तो हम खुशी है।
9: मैं बहुत खुश हूँ कि 12 साल के बाद इतना बड़ा मेडल मिली है और सिल्वर मेडल थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है फैमिली के लिए और भारत के लिए भी एंड उनके कोच और मेंटर्स बहुत बढ़िया काम किए हैं ये 12 साल उनके साथ साथ देके एंड हम सब बहुत प्राउड है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एला विनिल वाला रिवन को एक ही दिन में 2 पदक जीतने पर बधाई दी। परिवार का मानना है कि एशियन गेम्स में मेडल जीतकर एला विनिल वाला रिवन के करियर में अहम माइलस्टोन है। अब इन्हें उम्मीद है कि ये युवा निशानेबाज ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत की ड्रोन शक्ति का दमखा।
10: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में आठवें दिन भी लगा आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। देवभूमि उत्तराखंड में हर्षोल्लास से जारी पवित्र चारधाम यात्रा। मॉनसून के बाद भक्तों से गुलजार बद्रीनाथ धाम, अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में दो दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन। हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम पर स्थानीय संस्कृति की झलक, सेना के अधिकारियों के साथ सीएम धाम भी पहुंचे। चलिए बात भारत की ड्रोन शक्ति की कर लेते हैं। भारत में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है और इसके साथ ही भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास कम लागत में लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाले ड्रोन बनाने की क्षमता है।
4: बिल्कुल, आपको बता दें कि भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन केएल का राजस्थान में सफल परीक्षण किया गया है, जिसे गहरे लक्ष्य भेदने वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
5: राजस्थान के पोखरण में मोबाइल लॉन्चर से ड्रोन की ये उड़ान भारत की बढ़ती ताकत की ओर इशारा कर रही है। ये काल है, ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया हुआ ड्रोन है जो काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और टारगेट्स को भी तबाह कर सकता है। 20 सितंबर 2026 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में काल लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। ये भारत की अपनी लंबी दूरी की मानव रहित मारक क्षमता के विकास में अहम उपलब्धि है।
6: इससे पहले भी लगातार काल के अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं, अलग अलग टेरेन्स में इसे परखा जा रहा है और इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। यानी रूस और यूक्रेन के शाहिद और जेरान ड्रोन के मुकाबले अब भारत का काल ड्रोन तैयार है और भारत अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर रहा है। यही आत्मनिर्भर होती भारत की सेनाओं के लिए एक बड़ी मिसाल भी है और एक उपलब्धि भी।
5: आपको बताते हैं क्या है इस शानदार ड्रोन की खूबियां और किस तरह से यह भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करने वाला है। काल एक लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ये 7 से 8 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम तक है, यानी ये 50 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार ले जाने में सक्षम है। ये समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई तक काम कर सकता है। इसे भारतीय कंपनी आईजी डिफेंस ने खुद डिजाइन और विकसित किया है। पोखरण में किए गए टेस्ट में काल की ताकत को परखा गया। ये ड्रोन अपनी कई बेहतरीन खासियतों के कारण सेना की मारक क्षमता बढ़ाने में मददगार होगा। मिशन कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशनल मंजूरी के आधार पर सेना और सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल दुश्मन के सिस्टम और अड्डों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि काल ड्रोन प्लेटफॉर्म में मल्टी बैंड GNSS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को जोड़कर नेविगेशन सुइट लगाया गया है। इसके कारण पूरे मिशन के दौरान इसे अपने आप उड़ने में मदद मिलती है। काल को पहले से तय टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य रणनीतिक ठिकानों जैसे लक्ष्य शामिल हो सकते हैं। इसे सटीक निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। काल को विकसित करने की खास वजह भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की मानव रहित स्ट्राइक क्षमता तैयार करना है, क्योंकि अहम बात यह है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन आधुनिक युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसी तकनीक का इस्तेमाल हालिया वक्त में पश्चिम एशिया और लाल सागर में किए गए हमलों में भी देखा गया। इससे जाहिर होता है कि लॉन्ग रेंज अनमैन्ड स्ट्राइक सिस्टम के जियो पॉलिटिकल महत्व कितना बढ़ गया है। खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के शाहिद 136 और रूस के गिरान 2 सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। इससे साबित हो गया है कि कम लागत वाले इस तरह के ड्रोन यानी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म से सेनाओं को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल हो सकती है। इनमें न केवल दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया जा सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर हमलों को भी अंजाम दिया जा सकता है। लंबी दूरी तक मार करने वाले ऐसे ड्रोन की तकनीक अब ईरान और रूस के अलावा दुनिया के दूसरे देशों के पास भी है। वहीं अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है और अपनी जरूरतों के अनुसार स्वदेशी कार ड्रोन बनाकर उसमें इसका इस्तेमाल करने में कामयाब होने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में लॉन्ग रेंज अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की भूमिका बढ़ सकती है, लिहाजा सेना के पास इनके इस्तेमाल की क्षमता होना जरूरी है और भारत इसमें किसी से पीछे नहीं है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हवा में रस्सी के सहारे रैपलिंग करते जाबाज और बारूद की गंध को दूर से ही सूंघ लेने की गजब क्षमता। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच चल रहे युद्ध अभ्यास 2026 में भारतीय सेना के चार पैरों वाले सिपाहियों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि सुपर पावर अमेरिका के सैनिक भी दंग रह गए।
4: बिल्कुल, आपको बता दें कि राइस, विक्टर, जैक और राउडी ये भारतीय सेना के K9 स्क्वाड के वो चार खास योद्धा हैं जिन्होंने रोम इंटरवेंशन से लेकर मुश्किल सैन्य ऑपरेशंस तक में अपनी ट्रेनिंग का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि इस अभ्यास में भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल रामपुर हाउंड का डंका भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बज रहा है।
7: दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं है। चार पैरों वाले ये डॉग्स हर वो कमाल कर सकते हैं जो कल्पना से परे है। ये सेना के ऐसे सिपाही हैं जिसके सूंघने की ताकत और फुर्ती कई मुश्किल ऑपरेशन में जवानों के काम आती है। ये तस्वीरें युद्ध अभ्यास 2026 की है जहां भारत और अमेरिका की सेनाएं एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है और इसी अभ्यास में भारतीय सेना के ये चार खास जाबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं। नाम है राइस, विक्टर, जैक और राउडी। चारों को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर ये जवानों के साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन में काम कर सके। अब जरा इनकी फुर्ती देखिए। बंद कमरे में ऑपरेशन हो तो ये जवानों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और जब बात ऊंचाई से नीचे उतरने की हो तो रस्सी के सहारे रैपलिंग भी करते हैं। रूम इंटरवेंशन से लेकर रैपलिंग तक युद्धाभ्यास में इन डॉग्स ने अपनी ट्रेनिंग से हैरत में डाल दिया है। इस प्रदर्शन का मकसद साफ था, ये दिखाना कि सही ट्रेनिंग मिले तो ये डॉग्स मुश्किल सैन्य ऑपरेशन में जवानों का बखूबी साथ दे सकते हैं। सेना के इस खास स्क्वाड के चार पैरों से चलने वाले ये सिपाही खुद में बड़े स्पेशल हैं। राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है, मतलब भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल। जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस है लैब्राडोर रिट्रीवर। चारों की खूबियां अलग है लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना, क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है इनके सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। और बात यही खत्म नहीं होती, इनके भाई बहनों को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जलंधर और अमृतसर सेक्टर में तैनात किया गया था और अब युद्ध अभ्यास 2026 में अमेरिकी सेना के सामने इनका प्रदर्शन सबको हैरान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हाल ही में भारत के प्रोजेक्ट चीता को 4 साल पूरे हुए हैं और करीब 4 साल पहले यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से 8 चीतों को मंगाकर खुद उन्हें कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा था और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। अब अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट चीता पूरी तरह से सफल रहा है और भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है।
1: और देखिए, कूनो के बाद मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के तौर पर आबाद किया जा रहा है। बीते दिनों एमपी के सीएम मोहन यादव ने एक मादा चीता CCB2 को गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में छोड़ा जिससे वहां 4 चीते हो गए हैं।

0: प्रोजेक्ट चीता अब अपने नए दौर में प्रवेश कर चुका है। मध्य प्रदेश के नीमच में गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में चीता प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सीएम मोहन यादव ने मादा चीता CCB2 को गांधी सागर में रिलीज किया। इसके साथ ही अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है।
1: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं।
0: गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ी गई CCB2 एक मादा चीता है। इस अभयारण्य में अब 2 नर और 2 मादा चीते हो गए हैं। भारत के वन्यजीव संरक्षण के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। CCB2 चीते को कूनू से लाकर यहाँ छोड़ा गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि कूनू नेशनल पार्क की तरह ही यहाँ चीतों के कुनबे में जल्द बढ़ोतरी होगी। आज से करीब 4 साल पहले 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी, जब नामीबिया से चीते भारत लाए गए थे। तब उम्मीद के साथ साथ चीतों के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट को लेकर आशंकाओं के बादल भी मंडरा रहे थे, लेकिन वक्त के साथ तमाम आशंकाएं गलत साबित हुई और उम्मीद की जीत हुई। आज कूनू नेशनल पार्क चीतों के कुनबे से लहला रहा है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। 29 चीतों में से 19 जीवित रहे, यानी कि जिंदा रहने की दर 65% से अधिक रही। कूनू में अब तक 49 शावकों का जन्म हुआ है। इनमें 33 जीवित हैं और इनके जीवित रहने की दर 67% से अधिक है। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क की परिस्थितियां अफ्रीका के खुले घास के मैदानों से काफी अलग हैं। अफ्रीकी चीतों को बड़े इलाके की आदत होती है, जबकि कूनू का दायरा थोड़ा सीमित है। अफ्रीका की तुलना में कूनू में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है, जो अफ्रीकी चीतों के लिए डिहाइड्रेशन और बड़ी चुनौती की वजह बनता है। कूनू में तेंदुओं की अच्छी खासी आबादी भी चीतों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए चीतों की सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी साधनों के साथ साथ मानवीय निगरानी पर भी जोर दिया गया है। शावकों को सुरक्षित रखा जा सके इसके लिए गुफा के पास निगरानी रखी गई है। इसके अलावा चीतों के गले में विशेष सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है, जो GPS तकनीक के जरिए इनकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करने में मदद करता है। 100 से अधिक वनरक्षक ट्रैकर्स, CCTV और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जब मादा चीता बाहर शिकार पर जाए तब टीम सुरक्षित दूरी से शावकों की सेहत की जांच कर सके। इस तरह का प्रयोग भारत में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इससे मादा चीता के साथ नन्हे शावकों की देखरेख भी की जा सकी। ये नया तरीका गहन निगरानी और गैर हस्तक्षेप की दूरी के बीच संतुलन बनाने में कारगर साबित हुआ। भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किए जा चुके चीतों का कुनबा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। MyGov.in ने X पर पोस्ट कर बताया है कि भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। इनमें बीते 18 सितंबर को ही कूनू नेशनल पार्क में 4 नए शावकों का जन्म हुआ। कूनू के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में अब चीतों का दूसरा घर बनता जा रहा है। गांधी सागर के बाद नौरादेही नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाने की तैयारी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नन्हे कदम और मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदन कानन जू से आई नई तस्वीरें राहत देने वाली हैं। क्वारंटीन सेंटर में रखे 5 नन्हे ओरंगुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खास तौर पर उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी, जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे।
3: बिल्कुल, गुड न्यूज ये है कि अब इनकी एक्टिविटी नॉर्मल है, फीडिंग ठीक चल रही है और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां भी लौट आई है। इन नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास नजर रखी जा रही है।
4: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी, क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है। साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है। दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन पांचों नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदनकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी पांचों का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदनकानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। यानी इन नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये पांचों ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और यह वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फ्रांस में 100 मीटर ऊंचाई पर हैरत अंगेज रोप वॉक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
2: 2000 साल पुरानी रोमन विरासत और उसी पर दौड़ती रोशनी की आधुनिक रंगीन दुनिया। क्रोएशिया के पुला में इतिहास और टेक्नोलॉजी का ऐसा संगम दिखा, जहां प्राचीन इमारतें लाइट आर्ट का विशाल कैनवस बन गई।
3: 16 जगहों पर 23 आर्ट वर्क और रंग, रोशनी और प्रोजेक्शन के जरिए अंतरिक्ष से लेकर शांति तक की कहानी। देखिए पुला के विजुएला लाइट फेस्टिवल की ये शानदार तस्वीरें।
4: एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा क्रोएशिया का ऐतिहासिक शहर पुला। 2000 साल पुरानी रोमन विरासत को खुद में समेटे ये शहर रात होते ही रोशनी और डिजिटल आर्ट का विशाल कैनवास बन गया। विजुएलिया लाइट फेस्टिवल में 16 जगहों पर 23 आर्ट वर्क दिखाए गए। इस साल की थीम रही स्पेस एंड कॉस्मोस, यानी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड। प्रोजेक्शन, इंस्टॉलेशन और लाइट आर्ट ने शहर की पुरानी इमारतों को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया।
5: जब हमने 2013 में फेस्टिवल शुरू किया और इस शहर को देखा, तो ये बिल्कुल एक खाली कैनवस जैसा लगा। प्रोजेक्शन और लाइट इंस्टॉलेशन ने पूरे शहर का रंग बदल दिया और इसे एक अलग नजरिए से देखना अद्भुत था।
4: और ये बदलाव सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रहा। यूक्रेनी कलाकार जूलिया शमशीवा के वॉइस ऑफ यूक्रेन ने पुरातत्व संग्रहालय की दीवारों को रोशन किया। वही मुख्य रोमन चौक पर जर्मन कलाकार क्लाउडिया रेह का फ्रिक्शंस और थाई आर्टिस्ट ग्रुप डिसाइड किट का अ बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स भी नजर आया।
5: ये पुरानी इमारतें बिना लाइट के भी अद्भुत लगती हैं, लेकिन लाइट के साथ तो ये बिल्कुल जबरदस्त लगती हैं।
4: कहीं रोशनी ने आसमान और ब्रह्मांड की कल्पना दिखाई, तो कहीं ध्वनि, प्रकृति और इंसानी एहसास को एक नई कहानी में ढाला गया। हांगकांग के कलाकार च्यूंग वोंग का द टावर ऑफ लाइट, फिनिश कलाकार निको टियानिन का रेजोनेंस और फ्रेंच कलाकार लू चैपल का बर्ड सॉन्ग्स, हर प्रस्तुति ने दर्शकों को एक अलग दुनिया का अनुभव कराया। और पेड़ों के बीच मैजिक गार्डन ने तो पूरे माहौल को ही किसी जादुई दुनिया जैसा बना दिया।
6: मेरे लिए शांति का मतलब है सुकून से रहना, अपने परिवार के साथ, अपने आसपास और खुद के साथ शांत से रहना। मेरे लिए शांति की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, एक शांत घर, परिवार और प्रकृति के साथ सुकून भरी जिंदगी।
4: रोशनी की इस दुनिया में सिर्फ रंग और चमक नहीं थी, बल्कि शांति, पहचान और इंसानी रिश्तों की कहानी भी थी। डच कलाकार कात्या हेटमैन का परपिचुम हो, या क्रोएशियाई कलाकार पेटर स्कुलाक का स्टीयर्स बिटवीन वॉर्स, या फिर इटालियन कलाकार एलेसांड्रो लुपी का आइडेंटिटी, हर कलाकृति ने अपने ही अंदाज में एक अलग एहसास जगाया। और नॉर्वेजियन आर्टिस्ट ग्रुप वॉइड का नादिर, जिसने शहर की सड़क को ही बदल दिया एक खुले आसमान के नीचे बने आर्ट स्पेस में।
7: For me, means being at peace.
5: मेरे लिए शांति सिर्फ एक विचार नहीं, ये गहरा एहसास है जिसे मैं अंदर से महसूस करता हूँ। शायद शांति का सबसे गहरा रिश्ता खामोशी से है। जब सब कुछ शांत हो जाए, वही असली शांति है।
4: एस्ट्रोनॉट की मस्ती से लेकर चमकती ऐतिहासिक दीवारों तक, पुला की इन रातों में इतिहास और भविष्य आमने सामने नजर आए। 2000 साल पुरानी रोमन विरासत और उस पर आधुनिक रोशनी की नई कहानी। विजुएलिया लाइट फेस्टिवल ने पुला को सिर्फ रोशन नहीं किया बल्कि पूरे शहर को बना दिया कला, टेक्नोलॉजी और कल्पना का एक शानदार कैनवास। ब्यूरो रिपोर्ट, मूवीज टुडे।
8: और शायद पर चर्चा में फिलहाल यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बात उस तस्वीर की जिसने सभी को दंग कर दिया, और ये नजारा फ्रांस का है जहां पर टाइट्रोप आर्टिस्ट बोगोंगा ने जमीन से करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा रस्सी के 400 मीटर लंबा सफर तय किया। हजारों लोग इस खतरनाक करतब को देखने के लिए जुटे। बोगोंगा ने यूरोप के सबसे ऊंचे स्लैग हीप्स यानी कि कोयला खनन से निकले कचरे के विशाल पहाड़ों के बीच तार पर चलकर यह कारनामा कर दिखाया। उनका पूरा प्रदर्शन करीब 37 मिनट वाला।
2: और देखिए इसमें खास बात ये रही कि वो सिर्फ तार पर चली ही नहीं बल्कि करीब 100 मीटर ऊपर हवा में तमाम तरह के करतब भी दिखाए। प्रदर्शन खत्म होने के बाद बोगोंगा ने दर्शकों का अभिवादन किया और एक ऐसा गाना गाया जो उत्तरी फ्रांस के कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों से जुड़ा बेहद लोकप्रिय गीत माना जाता है।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना। आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे होगी मुलाकात चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
3: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में आठवें दिन भी लगा आस्था का मेला, अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सूरत में समुद्र के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन, नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का है बहुत दुर्गम और मुश्किल रास्ता। बद्रीनाथ धाम में दो दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन, हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम में स्थानीय संस्कृति की झलक, सेना के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी राय मौजूद। उत्सव के रंग में रंगा पंजाब का फरीदकोट, बाबा फरीद आगमन पर्व पर दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक, सड़कों पर जुटे खड़ा। हनुमान अंश की सफलता के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंची सह निर्माता अनुप्रिया नागर, विधि विधान से हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में पूजा अर्चना, भगवान के दर्शन पाकर हुई भावुक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
3: नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। देश में यूं तो उत्सवों का मौसम चल रहा है, लेकिन आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे शौर्य के उस उत्सव की जिसकी छटा देश में जमी से आसमान तक अगर आप देखेंगे तो नजर आएगी। बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान के रण तक वीरों की गर्जना देखने को मिल रही है। भारत की सेना इस समय अलग अलग मोर्चों पर धुआंधार युद्ध अभ्यासों में जुटी हुई है। देखिए तीन तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति की, भारत में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शुमार हो गया है, आगे बढ़ चला है, जिनके पास कम लागत में लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाले ड्रोन बनाने की क्षमता है। भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया। वहीं पर एक और तस्वीर राजस्थान से ही निकलकर आई है, जोधपुर में भारत और जापान पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। दोनों देशों के वायुवीर अपनी अपनी क्षमताओं के उनको पकड़ पर रख रहे हैं और आपसी साझेदारी को और बेहतर बना रहे हैं। तीसरी तस्वीर है भारत और अमेरिका के बीच हो रहे युद्धाभ्यास की। भारत और अमेरिका के बीच देश के दो अलग अलग क्षेत्रों में युद्धाभ्यास लगातार जारी है। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का जबरदस्त परिचय दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास 2004 से होता आ रहा है, लेकिन पहली बार जो है यह युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। और आखिर क्या वजह है कि एक युद्धाभ्यास के लिए दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों को चुनाव उनका किया गया और दोनों देशों के लिए क्यों इतना महम है ये युद्धाभ्यास, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जाबाज देश के दो छोरों पर हुंकार भर रहे हैं, और इस हुंकार में अब की बार साझेदार है वो सेना जिसके साथ अब तक भारत ने सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ, एक अभ्यास उत्तराखंड के औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। 15 से 28 सितंबर की तारीखों के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के लगभग 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों को आजमाया जा रहा है, जिनमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभ्यास के जितना ही खास इसका नाम भी है। अब चूंकि तैयारी वाकई युद्ध के लिए है, अभ्यास वाकई युद्ध जैसे हालात में ऑपरेशन रेडीनेस के लिए है, तो जो काम है सीधे सीधे वैसा ही नाम रखा गया है। बिना शब्दों के हेर फेर के भारत अमेरिका की इस साझा वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास 2026।
1: भारतीय सेना यूं तो लगातार कई देशों के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करती है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका युद्ध अभ्यास बेहद खास है और इसीलिए इसे खास नाम युद्ध अभ्यास दिया गया है। यानी दुनिया की जब दो सर्वश्रेष्ठ सेनाएं मिलती हैं और एक साथ अपने रण कौशल को बांटती हैं, तो वाकई में ये दिखाता है कि कैसे उस देश की दो सेनाओं के बीच के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। इस बार युद्धाभ्यास न सिर्फ रेगिस्तान में हो रहा है बल्कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर भी हो रहा है, जहां औली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर और अलग अलग तरह की स्किल्स को भारत और अमेरिका के जाबाज साझा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर तमाम अलग अलग एक्शन और ड्रिल्स कर रहे हैं, रियल टाइम वॉर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और किस तरह से किसी भी युद्ध में इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाता है, ये युद्धाभ्यास में बखूबी देखा जा रहा है।
0: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है, तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल

0: इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लियरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेन डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है, यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल। जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना। क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली एलएसी यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। पहली बार दो अलग भूभागों पर एक साथ हो रहा अभ्यास भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सेना को एक ही समय में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर संभावित खतरों से एक साथ निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये युद्धाभ्यास दिखाता है कि क्वाड देशों में भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी बेहद मजबूत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है, जो न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करेगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास है, तो वहीं पर जोधपुर में भारत और जापान के सैनिक हवाई युद्धाभ्यास वीर गर्जन 2026 में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और राफेल के साथ साथ जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। 22 सितंबर तक चलने वाला यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, ऑपरेशन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में किस तरीके से मददगार होगा, आपको पहले ये बताते हैं।

0: वीरों की धरा है, वीरों का आसमान है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में ये शौर्य की उड़ान है। जोधपुर एयरबेस इन दिनों हिंदुस्तान और जापान के बीच हवाई ताकत की बेहतरीन साझेदारी का गवाह बन रहा है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2026 में भारत की वायुसेना अपनी ताकत परखने के लिए जापान के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में रविवार 20 सितंबर को ऐतिहासिक मौका तब आया जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर एयरबेस पर एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी।
1: जापान के एयरफोर्स

0: फोर्स पहली बार अपने फाइटर्स के साथ भारत में एक एयर एक्सरसाइज वीर गार्जन कर रही है। वीर गार्जन इसलिए खास है क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक राजस्थान में किया जा रहा है और जोधपुर के आसमान में जब भारत और जापान के फाइटर्स एक साथ उड़ान भर रहे हैं तो ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ है। इतना ही नहीं, जापान के एयर चीफ और भारत के एयर चीफ ने एक साथ एक सॉटी की, भारत के तेजस विमान को उड़ाया और ये दिखा दिया कि भारत के कौशल के साथ साथ भारत में बना हुआ भारत का अपना फाइटर भी बेहद खास है।
1: उड़ान के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मुख्य पायलट की भूमिका निभाई, जबकि जापानी वायुसेना प्रमुख विंग सीटर तेजस में सह पायलट के रूप में शामिल हुए। ये उड़ान न केवल भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी, बल्कि ये उड़ान भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता पर जापान के भरोसे का प्रतीक भी बनी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकिहिरो मोरिता ने एलसीए तेजस की तारीफ की।
2: आई एम ग्रेटफुल फॉर द इनवैल्युएबल अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई ऑन द तेजस एज एन एयरक्राफ्ट बॉम्ब फ्रॉम इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज। Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
1: दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ओर से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच मुख्य रूप से दो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। दोनों देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन नाम से, जबकि वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास वीर गार्जियन नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों युद्धाभ्यास समय समय पर भारत और जापान में बारी बारी से होते हैं। अब तक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कुल 7 बार आयोजित हो चुका है। इसका 7वां संस्करण इसी साल 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था, जबकि वायुसेनाओं की वॉर एक्सरसाइज वीर गार्जियन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में जापान के हायाकुरी एयरबेस पर आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के अलावा सुखोई 30 एमकेआई और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं जापानी वायुसेना ने अपने F-2A और कावासाकी C-2 जैसे विमानों के साथ शिरकत की है। युद्ध जैसे हालात में दोनों वायुसेनाएं अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। हालांकि यह अभ्यास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। 22 सितंबर तक जोधपुर में चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। इसीलिए दोनों वायु सेनाएं जोधपुर में अब तक कई तरह के हवाई अभियानों और वार एक्टिविटीज का अभ्यास कर चुकी हैं। दोनों वायु सेनाओं के पायलट और कमांडरों ने आधुनिक युद्ध तकनीकों, एडवांस्ड ऑपरेशनल मिशन और संयुक्त मिशन प्लानिंग पर काम किया है। इसमें दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की ऑपरेशनल टैक्टिक्स को समझा ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर काम किया जा सके। हवाई युद्धाभ्यास के अलावा दोनों देशों के तकनीकी और इंजीनियरिंग दलों के बीच भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें विमानों के रखरखाव, कठिन मौसम में इंजीनियरिंग सहायता और एयरोस्पेस सेफ्टी सुनिश्चित करने की बेस्ट तकनीकों को साझा किया गया, ताकि वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल में जुटी है, अपनी तैयारियों को परख रही है, तो वहीं युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज स्टूडियो।
3: बात करेंगे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। अब से कुछ ही दिनों में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। आपको बता दें कि देखिए, ऑपरेशनल तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय वायुसेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तब ये युद्धाभ्यास जो है दो चरणों में हुआ था। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में, जबकि दूसरा राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर आयोजित हुआ था। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अब एक बार फिर से हमारे वायुवीर तैयार हैं दुनिया भर की वायुसेनाओं का स्वागत भारत के आसमान पर करने के लिए। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का अवसर मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका भी मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। तो ये तो थी बात युद्धाभ्यासों में अपने रण कौशल को परखने की, निखारने की, लेकिन अब आपको भारत की बढ़ती डिफेंस क्षमताओं की एक शानदार झलक भी दिखा देते हैं। 20 सितंबर 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए, काल स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। वो ड्रोन है जो काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और टारगेट्स को तबाह करने में सक्षम है। इसकी खूबियों की अगर हम बात करें तो देखिए, काल की रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक है। ये 7 से 8 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम तक है, यानी ये 50 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये भारत की अपनी लंबी दूरी की मानव रहित मारक क्षमता के विकास में अहम उपलब्धि है। चूंकि अब लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन आधुनिक युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, इसी को देखते हुए काल को विकसित किया गया है। ये भारत की लंबी दूरी की अनमैंड स्ट्राइक क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्यों खास है काल और क्यों है इसकी खासियत, इस पर और जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा।
0: रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लगातार ड्रोन्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत का अपना पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन काल तैयार हो चुका है। काल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी कि वो दुश्मन को बहुत दूरी से मार सकता है और वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत में आईजी ड्रोन्स द्वारा बनाए गए काल की क्षमताएं एक बार फिर एक परीक्षण में साफ दिखाई दी, जो पोखरण में किया गया। ये 50 किलो का पेलोड लेकर दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। इससे पहले भी लगातार काल के अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं, अलग अलग टेरेन्स में इसे परखा जा रहा है और इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है।
3: तो भारत की हवाई स्ट्राइक क्षमता को मजबूती देने आ चुका है। चलिए, बढ़ती क्षमताओं वाली गुड न्यूज के बाद अब आपको एक झलक वायुवीरों के शौर्य की भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वीकेंड वायु सेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम के एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया और इस शो में वायु सेना के जाबाजों ने अपने जानदार और शानदार करतबों से सबका दिल जीत लिया।

0: आसमान को तिरंगे के रंगों से नहलाने वाली ये तस्वीरें यूपी के मेरठ से आई हैं। मेरठ के आसमान पर 19 और 20 सितंबर को भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने यहां पर हैरतअंगेज करतब दिखाए। टीम ने मेरठ के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेरठ के मोहिउद्दीनपुर के न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आयोजित एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉक MK-132 विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर लोग रोमांचित हो उठे। शो के दौरान 9 हॉक Mark 132 फाइटर जेट्स पर सवार पायलट्स ने महज 5 मीटर की दूरी पर रहते हुए जमीन से लगभग 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर कई शानदार मैन्यूवर पेश किए। जिसमें सूर्य किरण टीम के सिग्नेचर बैरल रोल और डायमंड जैसे फॉर्मेशन शामिल थे। सूर्य किरण टीम के हर स्टंट ने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। सूर्य किरण टीम ने अपने फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक दिखाई। मेरठ का आसमान केसरिया सफेद और हरे रंग के धुएं से रंगा हुआ था। ये सटीकता, अनुशासन और टीम स्पिरिट का अनोखा प्रदर्शन था। आपको बता दें कि ऐसा एक शो करने के लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलट्स को 6 से 8 महीने के कठिन अभ्यास से गुजरना होता है। सूर्य किरण टीम अलग अलग मौकों पर ऐसे एरोबेटिक शोज का आयोजन करती रहती है। बता दें कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम सारी दुनिया में विख्यात है। इसका गठन 1996 में किया गया था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम को SKAT यानी स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है। ये टीम अब तक दुनिया भर में सैकड़ों रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। सूर्य किरण टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक Mark 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपने जानदार कर्तव्य दिखाती है। बात अगर टीम की करे तो इस टीम में कुल 13 पायलट हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट ही एक शो में भाग लेते हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के लिए साल में 2 बार पायलट्स का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम में 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है। एरोबेटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का अनुभव होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। मेरठ में हुए एयर शो में सूर्य किरण टीम की वही शानदार साझेदारी नजर आई। वायुसेना के इन जावाजों ने अपने साहस से एक बार फिर सबको यकीन दिला दिया कि क्यों इस टीम का ध्येय वाक्य सदैव सर्वोत्तम है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने रोमांचक कर्तव्यों से मेरठ और सारे देश का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ स्टूडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताजी क्यों रोने लगे? एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी के छलके आंसू। रेलवे ट्रैक पर हाथी के बच्चे के रेस्क्यू के वीडियो का सच। हनुमान अंश पर जिन अल्फा की क्यूट एक्टिंग। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों के तमाम वीडियोस पहुंच रहे हैं। ये देखिए दो तस्वीरें, मध्य प्रदेश के उज्जैन से रानी परिहार ने गणेशोत्सव के मौके पर बप्पा की मनमोहक प्रतिमा घर में उन्होंने स्थापित की है। भक्तों को निर्भय होने का वरदान दे रहे भगवान गजानन को प्रिय मोदक का भोग भी लगाया गया है। गले में मोतियों की माला धारण किए बप्पा की सुंदर दर्शन आपको प्राप्त होंगे। दूसरी तस्वीर देखिए गुरुग्राम से मोनिका सेठी की है, जहां पर यहां सुगंधित पुष्पों की माला से सुशोभित भगवान गणेश के पीछे राधा कृष्ण की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। भगवान गणेश को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया है। पूरा परिवार विधि विधान से बप्पा की आराधना कर रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में 8वें दिन भी लगा आस्था का मेला, अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त, मंदिर तक जाने का बहुत दुर्गम और मुश्किल रास्ता। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन, हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम में स्थानीय संस्कृति की झलक, सेना के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद। उत्सव के रंग में रंगा पंजाब का फरीदकोट, बाबा फरीद आगमन पर्व पर देखी सांस्कृतिक विरासत की झलक, सड़कों पर जुटे कलाकार। फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंची सह निर्माता अनुप्रिया नागर, विधि विधान से हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान के दर्शन पाकर हुई भावुक। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने के व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा है वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: मुंबई के घाटकोपर में नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, घाटकोपर के राजा के नाम से जाना जाता है पंडाल। जंगल की थीम पर तैयार किया गया बप्पा का पंडाल, मुख्य प्रतिमा के साथ अन्य जानवरों की प्रतिमाएं भी सजाई गई। पिछले 26 साल से घाटकोपर के राजा पशुपतिनाथ थीम पर ही किए जाते हैं स्थापित, हर साल बप्पा का होता है बिल्कुल नया श्रृंगार। पंडाल में बप्पा को शिवलिंग पर विराजमान दिखाया गया है, गजानन की ये प्रतिमा करीब 52 फीट। बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन को भक्त पहुंच रहे हैं और पंडाल की सुंदरता को निहार रहे हैं। मुंबई के गिरगांव में भी सजा बप्पा का अद्भुत दरबार, यहां पर स्थापित विघ्नहर्ता की अद्भुत प्रतिमा लोगों को खूब लुभा रही है। राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में यहां पर बप्पा विराजमान है, लगभग 33 फीट ऊंची है प्रतिमा। बड़ी प्रतिमा के साथ यहां पर गजानन की छोटी प्रतिमा भी स्थापित की गई, बप्पा को पहनाए गए सोने और चांदी के आभूषण। बप्पा की दोनों ही प्रतिमाएं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, कई स्थानों की मिट्टी से प्रतिमा की गई है तैयार। पंडाल में बच्चों की आकर्षित करने के लिए पानी पर पुल वाली थीम पर बनाया गया है रास्ता, बच्चे कर रहे हैं खूब एंजॉय। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दुर्गा रूप में हो रहे हैं बप्पा के दिव्य दर्शन, राक्षसों का संहार कर बुराई मिटाने का संदेश। गजानन की 6 भुजाधारी प्रतिमा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, 21 फीट ऊंची है विघ्नहर्ता की प्रतिमा। इस पंडाल में पिछले 90 वर्षों से हो रही है बप्पा की स्थापना, हर साल बड़ी संख्या में लोग मिलकर तैयार करते हैं। पुणे में 7 दिन बप्पा की आराधना के बाद भक्ति भाव से बप्पा की प्रतिमा की हो गई विदाई। बप्पा की विदाई में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। डीजे की धुन पर तैरकते हुए नजर आए। जालना में गणेश उत्सव के मौके पर चमनचा राजा गणपति पंडाल मंडल में बनाया खाटू श्याम का बाबा धाम। बड़ी संख्या में दर्शन को आ रहे हैं भक्त। जालना शहर के साथ ही आसपास के इलाकों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस्पात नगरी भिलाई में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय तमिलनाडु के गणेश मंदिर के आयोजित हुआ विग्रहता का भव्य कल्याण महोत्सव। ढोल नगाड़े पारंपरिक वाद्य यंत्र और दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार निकाली गई बप्पा की बारात। वैदिक रीति रिवाज के साथ हल्दी मेहंदी और मंडप की रस्में निभाई गई अनोखी धार्मिक परंपराओं से जुड़े लोग। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियों और पंडालों के अनोखे प्रयोग का अंजीर मखाने से बनाई गई 7 फीट ऊंची प्रतिमा। चंद्रपुर के गणपति पंडाल में अनोखा प्रयोग सुग्रीव की गुफा में राम रूपी का जनन के दिव्य दर्शन। गुफा में प्रवेश करने के लिए बनाए गए नियम दर्शन से पहले पैर धुलकर जाने की बनाई गई है परंपरा। गणपति उत्सव को लेकर मुंबई रेलवे स्टेशन का बड़ा ऐलान। CMCS MTR मुंबई से कल्याण ठाणे और वापसी के लिए चलाई जाएंगी 18 स्पेशल नाइट सब अर्बन ट्रेन्स। मुंबई में विशेष रेल 23 से 26 सितंबर की रात में चलाने का फैसला। गणपति विसर्जन के बाद लौटने वालों की सुविधाओं के लिए फैसला। पंजाब के फरीदकोट में 57वें बाबा शेख फरीद आगमन पर्व का शुभारंभ हो गया। देखने के लिए सांस्कृतिक विरासत। खेला मुबारक से शुरू हुआ विरासत काफिला शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। कई स्कूलों के छात्रों ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम की मिसाल। देखने को मिला पंजाब के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति का समावेश। 23 सितंबर तक चलेगा बाबा शेख फरीद आगमन मेला। देखने को मिलेंगे पंजाब के संस्कृति के रंग। मेले में प्रदर्शन का भी हो रहा है आयोजन। स्थानीय दस्तकारों को अपने हुनर को पेश करने का मौका मिला। चमोली में चल रहे 2 दिवसीय बद्रीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन हो गया। लोक संस्कृति और सैन्य समन्वय का संगम। देश के प्रथम गांव माड़ा में फहराया गया तिरंगा। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित किया गया मेला। कल्चरल फेस्टिवल में देखने को मिले उत्तराखंड की कला के अद्भुत रंग। कलाकारों ने पेश की एक से बढ़कर एक मिसाल। कल्चरल फेस्टिवल प्रदर्शनी का भी आयोजन। स्थानीय दस्तकारों के हुनर के मुरीद हुए लोग। मुख्यमंत्री धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। स्थानीय लोगों के साथ मनाया जश्न। कलाकारों के साथ उत्तराखंड की पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। सहारनपुर में भव्य गोगा मेले का आयोजन किया गया। आस्था परंपरा और इतिहास का संगम। सहारनपुर में 800 साल से लगातार जारी है मेले की परंपरा। दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। नीले निशान और छड़ियों के साथ पहुंचे श्रद्धालु। जयकारों की गूंज। गोगा मेले को लेकर भव्य लाइटिंग और रोशनी से नहाया पूरा शहर। सहारनपुर में गोगा मेला को लेकर किया गया सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोरखपुर की गीता वाटिका में दधिकांतोत्सव व राधारानी प्राकट्य महोत्सव के समापन पर भव्य आयोजन। गीता वाटिका मंदिर में गूंजा राधा रानी का जयकारा। अखंड हरिनाम संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। विशेष रास मंडलियों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पुरी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन। महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। पुरी में श्रीमद् भगवत कथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय। पवित्र जगन्नाथ धाम में भूमि कथा आध्यात्मिक आयोजन का भी शिरकत किया। उन्होंने एशियन गेम्स 2026 का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत के हिस्से में आए 2 मेडल। आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम्स 2026 में तीसरा मेडल हुआ हासिल। मेंस 10 मीटर एयर राइफल में मिला सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला मेडल। 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल्स में सुचिका ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल। हिमांशु ने जीता सिल्वर। रुद्रांश को ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स की पदक का तालिका में फिलहाल भारत का 10वां स्थान। अब तक भारत के खाते में 6 मेडल। INS साद्री और INS कुलिश फिलीपींस पहुंचे। दोनों युद्ध पोतो ADMM प्लस ज्वाइंट कोऑपरेशन एक्टिविटी मिलेंगे इस साल। संयुक्त अभ्यास में आसियान देशों के साथ 8 अन्य देशों की सेनाएं होंगी शामिल। एक्टिस पॉलिसी के तहत भारत अभ्यास में ले रहा है हिस्सा। INS साद्री और INS कुलिश की यात्रा से भारत फिलीपींस समुद्री संबंध होंगे मजबूत। डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग। पोखरण में काल ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ। 8 घंटे उड़ान और 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th एडिशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण कर दिया। 25 से 29 सितंबर तक नोएडा के इंडिया एक्सपो केंद्र पर होगा आयोजन। इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश सरकार का निर्यात पर रहेगा फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावा, अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है निवेश। सरकारी नौकरियों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐलान। अगले 6 महीने तक हर हफ्ते बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी देने की पहल तेज। नौशहर में रोड बनाने के साथ पुलों का निर्माण। पंजाब के दौरे पर बठिंडा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। भारत के पहले गांव माणा से नशा मुक्त भारत अभियान की हो गई शुरुआत। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के बाद लौटी रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड पर श्रद्धालु की लंबी लंबी कतार, पवित्र स्नान में जुटे श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से आई अच्छी खबर। भैरव लेम के पास नाव के पलटने से 9 मछुआरों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की वडोदरा को करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात। गंभीरा ब्रिज और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का किया गया उद्घाटन। ब्रिज से वडोदरा और आणंद के बीच का सीधा संपर्क हो गया बहाल। विकास पैकेज में 593 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी हैं शामिल। कटक में ओडिशा प्रो T20 लीग का आगाज। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बारामती स्टेडियम में किया उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी समारोह में पहुंचे। 6 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरी। चीन के झांगजियाजिया में दिखा बादलों का अद्भुत समुद्र। क्वार्ट्स सैंडस्टोन की चोटियों पर बादलों के बीच तैरती हुई नजर आई पहाड़ियां। ऑस्ट्रियन मोटोजीपी में पेड्रो अकोस्टा ने रच दिया इतिहास। हासिल की करियर की पहली मोटोजीपी जीत। अकोस्टा की रफ्तार के आगे कायम नहीं रही जॉर्ज मार्टिन की बढ़त। मार्को बेजेकी ने शानदार रेस के साथ पोडियम पर बनाई अपनी जगह। चीन में 300 से ज्यादा रोबोट की अनोखी परेड। ज़ेनजियांग के हांगजो में रोबोट्स ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन दिखाया। हांगजोउ में दिखा रोबोट्स का शानदार शक्ति प्रदर्शन। अलग अलग उद्योगों में दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। रोबोट्स ने दिखा हाईटेक रेस्क्यू का हुनर। रेस्क्यू और पेट्रोलिंग ऑपरेशन का किया प्रदर्शन। चीन में आया 3000 दवाओं को पहचानने वाला रोबोट। होंगझोउ में रोबोट ने शेल्फ के साथ दवा निकाल कर दिखाई अपनी क्षमता। चीन में मेडिकल सेक्टर में रोबोटिक्स की नई एंट्री ऑर्डर्स मिलती। संबंधित दवा तय स्थान तक पहुंचाएगा। न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क में पॉस ऑन परेड का आयोजन किया गया। डॉग्स और उनके मालिकों ने शिरकत की। परेड में डॉग्स रंग बिरंगे कपड़ों और मोतियों की माला पहने हुए नजर आए। डॉग्स को उनके मालिक का स्ट्रोलर में लेकर पहुंचे थे। वहीं पर कुछ डॉग्स ने स्केटबोर्ड चलाया। इंसानों और डॉग्स के रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए हुआ था आयोजन। कार्यक्रम में कैनाइन वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य भी पहुंचे। डॉग्स को वाटर रेस्क्यू में मदद करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। म्यूनिख में भव्य पारंपरिक पोशाक परेड का भव्य आयोजन किया गया। घोड़े पर सवार म्यूनिख के प्रतीक नजर आए। पारंपरिक पोशाकों में नजर आए परेड में हिस्सा लेने के लिए लोग का मार्चिंग बैंड और पारंपरिक परिधानों में दिल जीत लिया। साल 1950 से जारी है परेड की परंपरा। परेड को देखने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचते हैं लोग। म्यूनिख में दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल का हो गया शुरुआत। इस उत्सव में लोग पारंपरिक बियर टेंट का उठाने पहुंचे लुत्फ। बीते साल इस मशहूर फेस्टिवल में करीब 65 लाख लोग शामिल हुए थे। पर्यटकों में बियर और पारंपरिक संगीत को लेकर भी भारी उत्साह। फिल्म अनुमान अंश की शानदार कमाई 45 दिन लगभग 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन। अनुमान अंश ने 45 दिन तक भारत में लगभग 272 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। दुनिया भर में आया आंकड़ा 330 करोड़ के पार। बहुत ही छोटे बजट में बनी है फिल्म हनुमान अंश। लगभग 2 करोड़ आया था बजट। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु स्टार मिर्जापुर ने भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। रश्मिका मंदाना का नजर आया एक्शन अवतार मैसा का टीजर रिलीज। चीन में नेशनल डे की तैयारी हो गई शुरू। तैयार किया जा रहा है 18 मीटर की फूलों का टोपी। आर्टिफिशियल फूलों की इस टोकरी में समृद्धता का प्रतीक माने जाने वाले आड़ू, सेब, अनार, अंगूर और खजूर। फ्रांस की रस्सी पर चलने वाली कलाकार तातियाना का कमाल। लगभग 100 मीटर ऊंचाई पर एक रस्सी पर चली। कलाकार ने कहा इस प्रदर्शन का उद्देश्य उस क्षेत्र को श्रद्धांजलि देना जो कभी देश में कोयला खनन का केंद्र था। 6 साल की चीनी लड़की ने रूबिक का क्यूब को हल करने में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताजी क्यों रोने लगे? एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी के छलके आंसू। रेलवे ट्रैक पर हाथी के बच्चे के रेस्क्यू के वीडियो का सच। हनुमान अंश पर जिन अल्फा की क्यूट एक्टिंग। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: नन्हे कदम, मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदन कानन जू से आई नई तस्वीरें राहत देने वाली हैं। क्वारंटीन सेंटर में रखे 5 नन्हे ओरंग कुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे। गुड न्यूज ये निकल कर आई कि अब इनकी एक्टिविटीज नॉर्मल हो गई हैं, फीडिंग ठीक चल रही है और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां भी वापस लौट आई हैं। इन नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास नजर रखी जा रही है।
10: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है। साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है। दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन 5 नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदन कानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी 5 का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदन कानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, यानी नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये 5 ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गणेशोत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है बल्कि ये नंबर जो है सिर्फ वीडियोस तस्वीरें भेजने के लिए है। और याद रहे जब भी आप अपना वीडियो या फोटो हमसे साझा करें अपना नाम, शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड़ने चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में 8वें दिन भी लगा आस्था का मेला, अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सूरत में समंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन, नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का है बेहद दुर्गम और मुश्किल रास्ता। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन, हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम में स्थानीय संस्कृति की झलक, सेना के अधिकारियों के साथ सीएम धामी रहे मौजूद। उत्सव के रंग में रंगा पंजाब का फरीदकोट, बाबा फरीद आगमन पर दिखी सांस्कृतिक विरासत की झलक, सड़कों पर जुटे कलाकार। अंश की सफलता के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंची सह निर्माता अनुप्रिया नागर, विधि विधान से हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान के दर्शन पाकर हुई भावुक। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने के व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में गणपति महोत्सव अपने चरम पर है। भव्य दिव्य पंडाल में बप्पा विराजमान है और बप्पा के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है बप्पा की भक्ति में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आपको बता दें कि अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा तैयार किए गए हैं। यहां पर अंजीर और मखाने से करीब 7 फीट ऊंचे बप्पा का पंडाल विराजमान है।

0: भक्ति, आस्था और विश्वास का महापर्व। गणपति उत्सव के रंग में रंगा देश। कहीं भव्य दिव्य पंडाल में बप्पा, तो कहीं दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहे गजानन। शहर शहर बापा के भव्य दिव्य पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इस साल बापा की भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता का संदेश भी खूब चर्चा में है। महाराष्ट्र के अमरावती में गणपति उत्सव में भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कई वर्षों से प्राकृतिक सामग्री से इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। इस बार अंजीर और मखाने से करीब 7 फीट ऊंचे गणपति तैयार किए गए हैं, तो वही 21 किलो सुपारी से नवगृह का निर्माण किया गया है।
1: हम फिलहाल है बडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में, जहां पर जो है हर साल जो है इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा जो है निर्माण करते हैं। पिछले वक्त इन्होंने खारक से बनी बप्पा की प्रतिमा बनाई थी, लेकिन इस वक्त जो है अंजीर ड्राई फ्रूट से ये बप्पा की सुंदर 7 फीट की मूर्ति जो बनाई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 31 किलो जो है वो अंजीर लगे है।
0: मुंबई के शिवड़ी इलाके में गणपति पंडाल ने अपने 75 साल पूरे किए हैं और इस खास मौके पर पंडाल को अंडर वाटर द्वारका की थीम पर सजाया गया है। समुद्र की गहराइयों और द्वारका की भव्य कल्पना को पंडाल में बेहद खास अंदाज में पेश किया गया है।
2: अंडर वाटर द्वारका ये थीम सिलेक्ट करके जो गोमती और अरबी समुद्र के बीच में जो अपना द्वारका का डूब गई है, वो द्वारका बनाने का एक प्रयास किया है।
0: वहीं मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के साथ जानी मानी हस्तियां भी पहुंच रही हैं। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी लालबाग के राजा के दर्शन किए और बापा का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अंबानी परिवार भी बापा के आशीर्वाद के लिए लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे थे। इस दौरान अंबानी परिवार ने बापा की आरती और पूजा कर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति पंडाल में भगवान गणेश का 16 फीट ऊंचा भव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राम के स्वरूप में सजे गणपति को सुग्रीव की गुफा की थीम पर विराजमान किया गया है। विशाल प्रतिमा और अनोखी सजावट श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। महाराष्ट्र के जालना में गणेश उत्सव के दौरान रामायण में लंका कांड के एक दृश्य को बेहद अनोखे अंदाज में दर्शाया गया है।
3: लोक बाल गणेश मंडल ने इस बार बेहद ही खास झांकी यहां पर बनाई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बाप्पा जो है बादलों में इन पहाड़ों के बीच में विराजमान है। बेहद ही आकर्षक मूर्ति बाप्पा की यहां पर आपको दिखाई देगी। बाप्पा विराजमान है और बाप्पा के सामने यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बाप्पा विविध रूप में आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन्हीं रूपों के माध्यम से बाप्पा जो है पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं।
0: बाप्पा की भव्य दिव्य दरबार में अमरावती का अनोखा स्वरूप अमरावती के गार्डन क्लब गणेश मंडल के पंडाल में देखने को भी मिल रहा है, जहाँ गौरी पुत्र गणेश को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है।
1: फिलहाल अमरावती में है जो कृष्ण कन्हैया की ससुराल भी कही जाती है और उसी धरती पर जो है कृष्ण कन्हैया जो है अपनी जो सखी है रुक्मिणी उसे जो है यहाँ से हर ले जा रहा है, क्योंकि ये जगह ही वह है। अमरावती जो है वो कृष्णा का ससुराल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से जो है कृष्ण भगवान ने जो है रुक्मिणी को हर लिया था, ऐसी कथाओं में जो है पुरातन कथाओं में कहा जाता है। उसी धरती पर जो है गणपति बप्पा को जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुंदर यहाँ पर इंटीमेट ज्वेलरी से इतना खूबसूरत सजाया है।
0: रामनगरी अयोध्या में भी गणेश महोत्सव की तैयारियां और उत्सव पूरे उत्साह के साथ जारी है। गणपति प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूजा पाठ, भजन और उत्सव के रंग से अयोध्या का माहौल भी गणपति भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। अमरावती से धनंजय साबले, चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: गणेशोत्सव का समापन तो 25 सितंबर को होना है, लेकिन कुछ जगहों पर गणपति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। अपनी मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग 5 दिन तो कुछ लोग 7 दिन में गणपति विसर्जन करते हैं। ऐसे में अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ बप्पा की विदाई होने लगी है। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, और वो है नम आंखों से बप्पा को विदाई। गोधरा में अलग अलग पंडालों के गणपति की शोभा यात्रा निकली तो भगवान के सम्मान में पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए लोगों ने गणपति बप्पा की नम आंखों से विदाई की और अगले बरस फिर से जल्दी आने की कामना की।

जिस धूमधाम से बप्पा का आगमन हुआ उसी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बप्पा की विदाई भी शुरू हो चुकी है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े और डीजे के संगीत पर झूमते भक्त बप्पा को विदा करने चले तो सड़कों पर आस्था का सैलाब सा उमड़ आया। ये तस्वीर गुजरात के गोधरा की है जहाँ 80 से अधिक गणेश मंडलों ने अपनी मूर्तियों का विसर्जन किया। लेकिन विसर्जन से पहले जब ये शोभा यात्रा शहर की सड़कों से होकर गुजरी तो माहौल देखते ही बना। मौसम का बिगड़ा मिजाज भी बप्पा के इन भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाया। जोरदार बारिश के बीच भी भजनों पर भक्तों का झूमना जारी रहा। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या युवा, सभी ने बप्पा को अगले बरस जल्दी आने के लिए खुशी खुशी विदाई दी। उधर महाराष्ट्र के बीड तहसील के लिम्बा गणेश गांव में 225 वर्षों से चली आ रही एक गांव एक गणपति की अनूठी परंपरा

0: माहौल में डूबा दिखा। वहीं कोल्हापुर में मूर्ति विसर्जन को लेकर महानगर पालिका और जिला परिषद की ओर से एक खास अभियान चलाया गया, जिसके तहत मूर्तिदान अभियान को शहरवासियों का जबरदस्त समर्थन मिला। शहर के अलग अलग स्थानों पर 160 से अधिक आर्टिफिशियल विसर्जन कुंड बनाए गए थे, जहां लोगों ने मूर्तियों का विसर्जन किया। इस पहल से न सिर्फ नदी और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास हुआ, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इतना ही नहीं, इस बार महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने मूर्ति को विसर्जन स्थल तक लाने के लिए कोल्हापुर मेट्रो ट्रांजिट बसों का उपयोग किया, जो अपनी तरह का पहला प्रयोग था। गोधरा से भोई जयेंद्र कुमार बलवंत भाई, बीड से रोहिदास हलागले और कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और दुनिया भर में मशहूर तीर्थ स्थल अंबाजी गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर शक्ति, भक्ति और आस्था का संगम देखने के लिए मिल रहा है। अंबाजी में साल भर आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार भादरवी महामेला है, जो कि भादरवी महीने में नवमी से पूनम तक 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है भादरवी मेला में भक्ति और आस्था का संगम। अंबाजी में दाता रोड पर सिंह द्वार के पास उद्घाटन डोम से मेले की आधिकारिक शुरुआत हुई। मेले की शुरुआत माताजी का रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना करके हुई।

0: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भदवी महामेले का रविवार को पूरी आस्था श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार शुभारंभ हो गया। भदरवी महीने में नवमी से पूजन यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश माता जी का रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ हुआ। अहमदाबाद से आए व्यासवाड़ी संघ ने अंबाजी मंदिर में ध्वजा चढ़ाई। ये संघ 33 सालों से हर साल यहाँ आता है और ध्वजा चढ़ाकर महामेले की शुरुआत करता है। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भद्रवी महामेले के लिए 7 दिनों में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अंबाजी आने की उम्मीद है। ऐसे में पूरे मेले के सुचारू आयोजन के लिए प्रशासन ने 29 कमेटियों का गठन कर 7,000 कर्मचारियों को महामेले में तैनात किया है।
1: हम लाखों की संख्या में अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे की सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक संधारी कर्मचारी 24 घंटे परस्पर तैनात रहने के साथ ही साथ जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में जगत दीदी माँ अप्पा के चरणों में आने वाले तब का ये महामेला एक सुखमय और शांति पूर्वक वातावरण में संपन्न ऐसी आज माता जी प्राप्त की गई।
0: महामेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की ओर से 10 सेक्टरों के अलग अलग जोन में 6,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस विभाग की ओर से 51 शक्तिपीठ सर्कल पर एक पुलिस कंट्रोल पॉइंट शुरू किया गया है जिसमें 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है।
2: मेला में आने वाली सभी माई भक्तों का दर्शन बहुत शांति के और सुरक्षा के वातावरण में हो इसके लिए पुलिस के द्वारा 6,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारी होमगार्ड जीआरडी के जवानों के द्वारा बंदोबस्त रखा गया है। इस बंदोबस्त के माध्यम से टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी बॉडी वन कैमरा के माध्यम से बंदोबस्त किया जाएगा।
0: गुजरात के बनासकंठा मेले में अरावली पहाड़ियों के पास स्थित अंबाजी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है जिसे आघा शक्तिपीठ माना जाता है। भदरवी महामेला इस प्राचीन शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। महामेले के दौरान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं और सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। बनासकंठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भारत ने लंबी दूरी के

0: सुसाइड अटैक ड्रोन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आईज डिफेंस द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित काल नाम की लंबी दूरी के वन वे अटैक ड्रोन ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है अब सीमा पर तैनात होगा दुश्मनों का काल। आपको बता दें कि आज के समय में आधुनिक युद्ध में एक बार इस्तेमाल होने वाले अटैक ड्रोन युद्ध का बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए काल नाम की लंबी दूरी वाले वन वे अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान में बने शहेद 136 और रूस के गेरान 2 सिस्टम के इस्तेमाल ने यह दिखा दिया है कि कैसे कम लागत वाले बिना पायलट वाले सिस्टम लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता दे सकते हैं।
1: यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लगातार ड्रोन्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत का अपना पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन काल तैयार हो चुका है। काल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी कि वो दुश्मन को बहुत दूरी से मार सकता है और वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत में आईजी ड्रोन्स द्वारा बनाए गए काल की क्षमताएं एक बार फिर एक परीक्षण में साफ दिखाई दी जो पोखरण में किया गया।
0: और कभी कभी एक छोटी सी जानकारी किसी की पूरी जिंदगी की खुशियां वापस ला देती है। अमृतसर में तीर्थ यात्रा के दौरान अपनों से बिछड़े एक बुजुर्ग याददाश्त की परेशानी के बीच गलती से बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ गए और पहुंच गए गयाजी, जहां एक अजनबी ने उनका हाथ थामा, 4 दिन तक अपने घर में रखा और फिर उनके बताए गांव के नाम की जानकारी निकाली और परिवार तक उस बुजुर्ग को पहुंचाया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है एआई की मदद से भटका तीर्थयात्री पहुंचा अपने घर। जी हां, लुधियाना के फतेहगढ़ गुजरा गांव के रहने वाले बुजुर्ग चमनलाल अमृतसर में तीर्थ यात्रा के दौरान अपने साथियों से बिछड़ गए। याददाश्त की परेशानी के बीच वो अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचे और गलती से बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन उन्हें गया जी ले गई। यहां एक अजनबी ने उन्हें सहारा दिया, 4 दिन तक अपने घर में रखा और फिर चमनलाल के बताए गांव के नाम की ChatGPT और इंटरनेट के जरिए तलाश शुरू कर दी। आखिरकार बुजुर्ग को उनके परिवार से मिला दिया गया। चमनलाल 11 सितंबर को पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वो अमृतसर की जगह गया जी पहुंच गए, जहां स्थानीय निवासी नीरज की नजर चमनलाल पर पड़ी। चमनलाल परेशान और भूखे थे और अपना पूरा पता नहीं बता पा रहे थे। ऐसे में नीरज उन्हें अपने घर ले गए और नीरज ने उनके बताए गांव के नाम के आधार पर पंजाब में तलाश शुरू कर दी। उन्होंने करीब 3 दिनों तक ChatGPT और इंटरनेट पर अलग अलग सर्चेस किए। आखिरकार उन्हें पता चला कि फतेहगढ़ गुजरावाला लुधियाना जिले में माछीवाड़ा साहिब के पास है। गांव का पता चलने के बाद नीरज ने बुजुर्ग को अकेले भेजने के बजाय खुद उन्हें पंजाब पहुंचाने का फैसला किया। और एशियन गेम्स में भारत ने शूटिंग से पदकों का खाता खोल लिया है। अब तक शूटिंग में भारत 5 पदक जीत चुका है। शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर जीत कर अपने खातों का श्री गणेश कर दिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है एशियन गेम्स में भारतीय शूटर्स ने जमाया रन। जी हां, कल भारत ने शूटिंग में 2 पदक जीते थे तो आज भारत ने 4 पदक और जीतकर कुल 6 पदक जीत लिए हैं।
2: जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय शूटरों ने तहलका मचा दिया है। आज खेल के दूसरे दिन भारतीय शूटर्स ने 3 और मेडल अपने नाम करके शूटिंग में मेडलों की संख्या 5 तक पहुंचा दी है। एशियन गेम्स में भारतीय शूटिंग टीम ने रजत पदक से अपना खाता खोला और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता, जिसमें इलाविनिल मलारवन, सोनम मस्कर और विदिशा के विनोद की तिगड़ी ने कुल 1898.0 अंक हासिल करके सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इलाविनिल वलारिवन ने महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अपना दूसरा सिल्वर मेडल जीता। एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल से जीतने के बाद इलाविनिल 7वें आसमान पर पहुंच गई है।
3: since 2014, I have been associated with Gun for Glory and Gagan Naran Sports Promotion Foundation. And they have been the backbone of my shooting journey. Coach Neha has been with me throughout. I had the opportunity to work with Gagan, so I've been working with him for a very long time now. So getting to learn from his experiences, getting to learn what he has done already, I think that is some of a key learning instances for me through the years.
2: 11L महिला 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के दौरान गोल्ड जीतने के बहुत करीब थी, लेकिन अंतिम क्षणों में 11L चूक गई और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। 11L की सफलता पर उनके घर में जश्न का माहौल है।
4: नहीं, कुछ बालने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो वो सारे घर का सब कुछ छोड़ दी, उसका ओनली एम टू विन मेडल्स ऐसा थी, तो उसका विश अभी थोड़ी पूरी हुई है, अभी भी बाकी है।
5: और मैं बहुत खुश हूँ कि 12 साल के बाद इतना बड़ा मेडल मिली है, और सिल्वर मेडल थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है फैमिली के लिए और भारत के लिए भी, एंड उनके कोच और मेंटर्स बहुत बढ़िया काम किए हैं ये 12 साल उनके साथ साथ देके, एंड हम सब बहुत प्राउड है।
2: 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में पदक जीतने के साथ ही देश के पदक अभियान की शानदार शुरुआत हो गई है। 11L के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाले सोनम मस्कर ने भी शानदार प्रदर्शन किया और टीम इवेंट में सिल्वर जीता है। सोनम के परिवार में भी सोनम की सफलता के बाद खुशी का माहौल है। एशियन गेम्स के दूसरे दिन में भारत ने अब तक कुल 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 मेडल शूटिंग से आए हैं। आज भारत ने शूटिंग में कुल 3 मेडल जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में भारत ने 2 मेडल जीते हैं। भारत के हिमांशु ढुल्लो को सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जबकि टीम इवेंट में हिमांशु, रुद्राक्ष और पार्थ सिल्वर जीतने में कामयाब रहे।
6: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां पहले दिन शूटर्स ने हमें 2 मेडल दिलवाए थे, वही क्रम आज भी जारी रहा, यानी कि दूसरे दिन भी हमारे शूटर्स ने मेडल्स पर कब्जा किया। पहले टीम इवेंट यानी कि 10 मीटर एयर राइफल के टीम इवेंट में हमारी टीम को सिल्वर मेडल हासिल हुआ, वहीं दूसरी तरफ 10 मीटर एयर राइफल के इंडिविजुअल कैटेगरी में भी शूटर्स को मेडल हासिल हुए, जहां एक तरफ हिमांशु ढिल्लन सिल्वर मेडल पर कब्जा करने में कामयाब हुए, वहीं रुद्रांश पाटिल को ब्रॉन्ज मेडल मिला।
2: एशियन गेम्स में भारतीय दल शूटिंग में शानदार प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रदर्शन के बाद उनका अगला लक्ष्य 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में मेडल जीतना है। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी, गुड न्यूज टुडे।
0: भारत में चीतों की रफ्तार अब लगातार बढ़ रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत देश में चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना की मुहिम आगे रफ्तार पकड़ रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य से एक और अच्छी खबर सामने आई है। नीमच के गांधी सागर अभ्यारण्य में मादा चीता CCB2 को रिलीज किया गया है। ऐसे में हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। MP के गांधी सागर में बढ़ा चीतों का कुनबा। आपको बता दें कि गांधी सागर में अब चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जिनमें 2 नर और 2 मादा चीते शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब 56 से अधिक चीते हो गए हैं।

0: मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ भी चीतों का नया घर बनता जा रहा है। मंदसौर नीमच के जंगलों में एक बार फिर चीते की दहाड़ गूंजने जा रही है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ में रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता CC2B को बाड़े में रिलीज किया। ये CC2B चीता बोत्सवाना से 28 फरवरी को भारत लाई गई थी, जिसे अब नया नाम भी दिया गया है राधा। राधा के गांधी सागर पहुंचने के साथ ही यहां चीता परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। गांधी सागर में इससे पहले 20 अप्रैल 2025 को दो नर चीते प्रभास और पावक को लाया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को यहां छोड़ा गया और अब राधा की एंट्री के साथ गांधी सागर में कुल चार चीते हो गए हैं, दो नर और दो मादा।
1: प्रदेश में ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। ये हमारे अपनी सरकार के काम करने के तरीके भी हैं और ये हमारी वन्य जीवों के प्रति जियो और जीने दो के सद्भाव के आधार पर ये उपलब्धि भी है।
0: गांधी सागर में चीतों को बसाने का मकसद सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भारत में इस विलुप्त प्रजाति के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास तैयार करना भी है। प्रदेश में अब 56 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहचान देश में चीता स्टेट के तौर पर मजबूत हो रही है।
1: क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे जंगल को आबाद कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है।
0: गांधी सागर में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 8 क्वारंटीन बाड़े भी शामिल है। चीतों की सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है जहाँ वो सुरक्षित तरीके से रह सके और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप ढल सके। यानी गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास और संरक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में गांधी सागर के जंगलों में चीतों का कुनबा और भी बढ़ेगा। उनकी रफ्तार और दहाड़ इस जंगल की पहचान बनेगी और भारत में चीता संरक्षण की मुहिम को एक नई रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चले।
4: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताजी क्यों रोने लगे? एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी के छलके आंसू। रेलवे ट्रैक पर हाथी के बच्चे के रेस्क्यू के वीडियो का सच। हनुमान अंश पर जिन अल्फा की क्यूट एक्टिंग। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देश दुनिया की तमाम गुड न्यूज के बीच देश भर के चॉकलेट प्रेमियों के लिए एक शानदार खबर आई है। मशहूर फेरेरो रोशर अब एक बिल्कुल नए अवतार में उपलब्ध है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो शानदार गोल्डन प्रॉलिन अब भारत में एक प्रीमियम चॉकलेट बार के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये 90 ग्राम के बार को दो खास फ्लेवर में आते हैं, क्लासिक हेजलनट स्मूथ मिल्क चॉकलेट और 70% कोको हेजलनट डार्क चॉकलेट। सालों से ये जश्न का सबसे खास प्रतीक रहा है और अब वही जादू एक नए और शानदार रूप में पेश किया गया है। हम बात कर रहे हैं उन क्रंची सिग्नेचर हेजलनट के टुकड़ों की, फेरेरो रोशर के बेहद स्मूथ स्वाद और मुंह में घुल जाने वाली रिच क्रीमी फिलिंग की। ये असल में क्लासिक फेरेरो रोशर की आपकी पसंदीदा खूबियों का एक नया और शानदार रूप है, जिसे रोजाना के लग्जरी बार के तौर पर पेश किया गया है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में 8वें दिन भी लगा आस्था का मेला, अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सूरत में समंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन, नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचे भक्त, मंदिर तक जाने का बेहद दुर्गम और मुश्किल रास्ता। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन, हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम पर स्थानीय संस्कृति की झलक, सेना के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली गिरफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी फूट फूट कर रोने लगे। क्या है सच्चाई आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को सकुशल बचाने का है ये वीडियो। क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव का नतीजा 14 सितंबर को आया। खास बात यह है कि डिडवाना कूचमन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के कुछ वार्ड में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को महज एक एक वोट मिला है। अब इसी को जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, कहा यह जा रहा है कि यह व्यक्ति बीजेपी का प्रत्याशी है जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने से फूट फूट कर रोने लगा। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
11: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र चर्चा का विषय बन गए, जब नतीजे के बाद पता चला कि जिस वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां उन्हें सिर्फ एक वोट मिला। कैलाश चंद्र ने डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के वार्ड 13 से चुनाव लड़ा था। अब इसी चुनाव नतीजे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी रोने लगे। वीडियो पर लिखा है, राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, अपने घर वाले भी नहीं दिए वोट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि व्यक्ति बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की क्योंकि खबरों की बाढ़ में जरूरी है कि हमें जिस फोटो वीडियो पर संदेह हो हम उसका फैक्ट चेक कर लें, आप तक सही और सच्ची खबर हम पहुंचाएं। तो वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसे गौर से देखा और सुना भी। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो एक शब्द सुनने को मिला, मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूं और मेरे साथ ऐसा क्यों। ये सुनकर हमें ऐसा लगा कि शायद ये मामला किसी पार्टी के टिकट वितरण से जुड़ा हुआ हो सकता है और टिकट नहीं मिलने पर ये शख्स दुखी होकर रोने लगे। इसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वीडियो वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स की राजस्थानी बीजेपी से संबंध है या फिर नहीं। और सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि डीडवाना कूचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को सिर्फ एक ही वोट मिला। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि वीडियो में जो शख्स रोते हुए दिख रहे हैं वाकई वो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र है या फिर नहीं, जब हमने इसे खंगाला तो ये साफ हुआ कि वायरल हो रहे वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका राजस्थान बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। डिडवाना कूचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद वार्ड नंबर 12 के मतदाता हैं, जबकि चुनाव में उन्होंने बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाके वार्ड नंबर 13 से मैदान में उतारा था। उनके साथ कार्यकर्ता घूम जरूर रहे थे लेकिन किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया, जबकि वायरल वीडियो में जिस शख्स को बीजेपी नेता बताया जा रहा है उसकी सही बातों को सुनने में ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं मिलने की वजह से दुखी है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो में दिख रहे शख्स बीजेपी नेता नहीं है तो फिर इस शख्स की पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल कि अगर वायरल हो रहे वीडियो का संबंध राजस्थान से है तो इसके बारे में कहीं भी किसी आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में
12: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें 8 जून 2026 को बिहार के एक लोकल न्यूज चैनल के यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि मीडिया के सामने रोते हुए नजर आ रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिवचंद्र राम है, जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के तमाम पदों से इस्तीफा भी देने की घोषणा कर दी थी। इससे यही स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो का राजस्थान में हुए हालिया निकाय चुनावों से कोई वास्ता नहीं।
13: हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था।
12: इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 8 जून 2026 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार निधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने नामांकन किया था। इसके बाद आरजेडी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की नाराजगी सामने आई। बतौर रिपोर्ट शिवचंद्र राम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाने का वादा किया था लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी की गई। पड़ताल के दौरान हमें 9 जून 2026 को एक न्यूज़पेपर के फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया यही वीडियो मिला। इस पोस्ट में भी बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने रोते हुए ये व्यक्ति आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हैं, जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। पोस्ट में आगे बताया गया है कि शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान किया था लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। वायरल पोस्ट में राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को एक वोट मिलने का दावा किया गया है। हमने इस दावे की भी पड़ताल की। इस संबंध में हमें 14 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले की परबतसर नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को महज एक वोट मिला था। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को वार्ड नंबर 13 से सिर्फ एक वोट मिला था। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस की हिना खानम को 376 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रसीद खां को 195 वोट मिले। हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणामों को चेक किया। यहां परबतसर नगर पालिका के चुनाव परिणाम में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र के नाम के सामने एक वोट दर्ज है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से साफ है कि राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को एक वोट मिलने का दावा सही है, लेकिन वायरल वीडियो का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिवचंद्र राम हैं, जो बिहार में एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के बाद जून 2026 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए नजर आए थे। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
5: सोशल मीडिया पर रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भावनात्मक संदेश के साथ इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
12: रेलवे
11: ट्रैक में फंसे हाथी के बच्चे को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। बचाव कर्मी तुरंत एक्शन में आते हैं और हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के बच्चे के पैर को बाहर निकाल देते हैं।

0: पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, रेलवे ट्रैक पर फंसा हाथी का पैर लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। रेलवे ट्रैक पर एक हाथी का पैर फंस गया। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाई और हाथी को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है और इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आती हुई भी दिखती है। बचाव कर्मी हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के पैर को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने के बाद हमें कई ऐसी गलतियां नजर आई जो आम तौर पर असली वीडियो में देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी के बच्चे का पैर लोहे की भारी पटरी के आर पार ऐसे धंसता है और बाहर फिसलता है मानो पटरी लोहे की ना होकर रबड़ की हो। बचाव कर्मी जिस हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग कर रहे हैं वो पटरी पर बना कोई वास्तविक दबाव या फिर ग्रिप बनाए हाथी का पैर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा हाथी का पैर निकलने के बाद उस पर चोट या फिर खरोंच का कोई भी निशान नहीं दिखता है। ट्रैक पर हाथी का बच्चा फंसा हुआ है, पीछे से एक ट्रेन चली आ रही है, लेकिन इस दौरान कोई भी ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोकने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि जब रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को बचाया जा रहा है तो फिर ट्रेन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। हमारा दूसरा सवाल ये कि आसपास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे पेड़ पौधे स्थिर देखने को मिल रहे हैं, इनमें कोई भी हरकत देखने को क्यों नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल सीधा ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में इस घटना से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये वीडियो मौजूद हो। हालांकि इस दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मिले जिसमें यही वीडियो मौजूद है और उन पर AI कंटेंट का लेबल लगा हुआ है। इसके बाद पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को स्कैन किया। हाइव के एनालिसिस में इस वीडियो के AI से बने होने के करीब 96% 4% संकेत मिले। इसी तरह हमने एक दूसरे AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद ली और वायरल वीडियो की फ्रेम्स को चेक किया। इसने की फ्रेम्स को 94% AI संभावित बताया। हमने वायरल वीडियो को डीप फेकोमीटर पर भी चेक किया। इस टूल के 5 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। साफ है हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। रेल के पटरियों के बीच फंसे हाथी के बच्चे का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्चर के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और इन्हें पसंद भी किया जा रहा है।
8: क्लासमेट्स का यूनियन लोगों का ध्यान खींच रहा है। कई साल पहले जिस स्कूल में वो साथ पढ़ते थे, उसी जगह पर वो 5 दशक यानी 50 साल बाद दोबारा एक साथ नजर आए। पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर बचपन की यादें ताज़ा की। उम्र भले ही काफी बढ़ गई हो, लेकिन एक दूसरे से मिलने की खुशी में वही पुरानी दोस्ती और अपनापन दिखाई दिया। स्कूल की इमारत, गलियां और क्लासरूम को देखकर उनके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक साफ नजर आई। शायद उनके लिए इसे स्कूल वापस आना नहीं था, बल्कि अपने बचपन के इस दौर में लौटना था जिसे उन्होंने कभी अपने दोस्तों के साथ जिया था।
9: अरे हमें तो हनुमान जी साहब दे दो, जिसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना उतारे।
8: के डायलॉग पर बच्चे ने नीम करोड़ी बाबा के किरदार की क्यूट नकल की। कम्बल ओढ़ कर बच्चे की शानदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन ने यूजर्स का दिल जीत लिया। बच्चे की मासूमियत और उसकी कॉपी करने की कोशिश लोगों को काफी पसंद आ रही है।
9: अरे हमें तो हनुमान जी सब दे देते, जिसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना होता।
8: बच्चों को खिलौने मिल जाए तो वह घंटों खेलते रहते हैं, लेकिन इस बच्चे का खेल थोड़ा अलग है। ये बच्ची किसी महंगे खिलौने के साथ नहीं, बल्कि 2 मेंढकों के साथ खेलती नजर आ रही है। खास बात ये है कि बच्ची को इन मेंढकों से जरा भी डर नहीं लग रहा। वह बड़े आराम से उनके साथ मस्ती करती दिखाई देती है। वह कभी उन्हें हाथ से छूती है, तो कभी उनके आसपास घूमकर अपनी मस्ती में लगी रहती है। सबसे हैरान करने वाली बात बच्ची का कॉन्फिडेंस है। आमतौर पर मेंढक देखते ही कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन इस बच्ची को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके सामने कोई ऐसी चीज है जिससे उसे डरना चाहिए। वह तो उन्हें अपनी खिलौनी की तरह लेकर बैठी है।

सफर के दौरान एक थकी हुई माँ रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए चाय वाले ने जो किया उसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल एक महिला अपने बीमार बच्चे का गोरखपुर से इलाज कराकर ट्रेन से वापस लौट रही थी। महिला बुरी तरह थक चुकी थी और उसका छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। माँ के पास उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और वह बेबस नजर आ रही थी। ट्रेन के उसी डिब्बे में पटना के रहने वाले एक साधारण चाय विक्रेता राजा बाबू चाय बेच रहे थे। उन्होंने जब उस थकी हारी माँ और लगातार रोते बच्चे को देखा तो उनका दिल पसीज गया। बच्चे का ध्यान भटकाने और उसे चुप कराने के लिए राजा बाबू ट्रेन के गलियारे में ही नाचने लगे। ये देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और नाचते हुए चाय वाले को देखकर मुस्कुराने लगा। ये नजारा देख ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने भी ताली बजाकर चाय वाले की इस दरियादिली की सराहना की।

एनर्जेटिक अंकलों ने सिखाया जिंदगी जीने का असली तरीका। भागदौड़ की जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है। पार्क के बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई, उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पप्पी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पप्पी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पप्पी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।

अक्सर लोग दिन भर की भागदौड़ और थकान मिटाने के लिए सैलून जाकर सुकून भरी मसाज करवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई जानवर, वो भी बंदर नाई की कुर्सी पर आराम से बैठकर बॉडी मसाज लेने लगे तो क्या होगा। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बंदर अचानक से किसी नाई की दुकान में दाखिल होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज उसका मूड पूरी तरह से रिलैक्स करने का था। वह बिना किसी डर या झिझक के सीधे सैलून की कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया। उसके हाव भाव और शरीर की ढीली पोजीशन ये चीख चीख कर कह रही थी कि उसे आज बस जमकर मसाज चाहिए। बंदर के इस अनोखे अंदाज को देखकर नाई भी हैरान रह गया, लेकिन उसने बंदर को भगाने की बजाय उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। नाई ने बड़े प्यार से बंदर की बॉडी मसाज करना शुरू कर दिया। बंदर आंखें बंद करके इस मुफ्त के स्पा ट्रीटमेंट का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है। नाई भी पूरी शिद्दत से उसकी मालिश करने में जुटा हुआ है।

महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से आई इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसमें टाइगर का बेहद प्यारा अंदाज देखने को मिला है। टाइगर के नन्हे बच्चे एक छोटे से पानी के गड्ढे में मस्ती करते दिख रहे हैं। पानी काफी कीचड़ भरा है, लेकिन शावकों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। कोई आधा पानी में डूबा है तो कोई कीचड़ में लेट कर आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में उन्हें अपना पर्सनल स्विमिंग पूल मिल गया हो। इन सबके बीच मादा टाइगर पानी से थोड़ी दूर सतर्क होकर बैठी है और बच्चों की हरकत पर नजर रख रही है। एक पल में वो पानी की तरफ झुकती भी है, जैसे पानी पी रही हो या बच्चों का हाल पूछ रही हो।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। बप्पा के जयकारों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है मुंबई में। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दिव्य दर्शन कीजिए। जोधपुर में महाराज जापान की वायु शक्ति तेजस में जापानी एयरचीफ की उड़ान भी देखिए। और आ गया दुश्मनों का काल, 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले स्वदेशी ड्रोन की तरफ से सुरक्षा की गारंटी मिलने जा रही है। डिटेल्स आगे देंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: देशभर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में 8वें दिन भी लगा आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सूरत के में समंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त। मंदिर तक जाने का है बेहद दुर्गम और मुश्किल रास्ता। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन। हमारी विरासत हमारी भविष्य थीम पर स्थानीय संस्कृति की झलक। सेना के अधिकारियों के साथ सीएम धामी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंची सह निर्माता अनुप्रिया नागर। विधि विधान से हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान के दर्शन पाकर हुई भावुक। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन। मेहमानों के ठहरने खाने पीने के व्यापक इंतजाम। राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल। 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात गणेशोत्सव की करते हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात समेत देश भर में बप्पा की भक्ति की धारा बह रही है, जिसमें श्रद्धालु आनंद के गोते लगा रहे हैं। अलग अलग थीम पर बने दिव्य गणेश पंडाल उन्हें खूब आकर्षित कर रहे हैं और साथ ही साथ बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं भी आकर्षण का केंद्र बनी है। कहीं पुराने समय का दीदार हो रहा है तो कहीं आधुनिक रूप से आरती की जा रही है और इन सबके बीच बप्पा को धूमधाम के साथ विदाई भी दी जा रही है। इधर ही
4: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज आजकल महाराष्ट्र समेत पूरे देश में भक्ति रस का आधार बना हुआ है। जगह जगह भव्य पंडालों में विराजे बापा की दिव्य प्रतिमाएं भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं। गणेशोत्सव की दिव्य आभा के बीच लाल बाग के राजा समेत मुंबई के मशहूर पंडालों में आम से लेकर खास तक विघ्नहर्ता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर दिख रहे हैं। मुंबई में जगह जगह अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल दिख रहे हैं। घाटकोपर के राजा के दरबार को इस बार नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की थीम पर सजाया गया है।
5: मुंबई में ही आप पशुपतिनाथ महाराज का दर्शन करिए। मेरे साथ तमाम श्रद्धालु भी इस समय मौजूद हैं और अब तस्वीरें सीधे गणपति बप्पा की तरफ मोड़ते हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जी हां, नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ महाराज को मुंबई के घाटकोपर इलाके में बसाया गया है। घाटकोपर का राजा के नाम से ये पंडाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए, हर जगह जो जानवरों की तस्वीरें जो जंगलों में रहते हैं यहाँ पर लगा रखी है। और पशुपतिनाथ महाराज की क्या खासियत है, क्या डिटेल है, वो भी पोस्टर के जरिए यहाँ पर लोगों ने बना रखा है।
6: घाटकोपर में पशुपतिनाथ का आंगन हो गया, बहुत कृपा है आपका।
5: इस तरह की खुशहाली आपको मुंबई, महाराष्ट्र और देश के हर उस जगह पे देखने को मिलेगी, जो लोग बहुत ही उत्साह के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं।
4: इस पंडाल में आकर भक्त न सिर्फ बापा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पशुपतिनाथ की पौराणिक कथाओं का रसवादन भी कर रहे हैं। पशुपतिनाथ जी से जुड़ी कथाओं के भीतर छिपे भाव, संदेश और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। गिरगांव के राजा के दरबार में भक्तों को राजस्थान के श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। अपना 52वां साल मना रहे इस मंडल के पानी पर पुल वाली थीम का बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं।
5: ये मंडल बहुत ज्यादा वायरल है क्योंकि इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर। और एक अजीब सी, बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। इस बार ये पंडाल जो है 95 इयर्स पूरा कर चुका है। ये देखिए पप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी पप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है। हर कोई मिन्नतें मांग रहा है और जैसा कि उन्होंने बताया कि बप्पा खुश हो जाते हैं और जब मिन्नत पूरी कर लेते हैं तो लोग चढ़ावे के रूप में जो उनसे बन पनता है वो ला करके बप्पा के समक्ष रख देते हैं।
4: मुंबई की सड़क सड़क गली गली में एक से बढ़कर एक थीम वाले पंडाल नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक शिरडीचा राजा गणेश उत्सव मंडल का ये पंडाल है। अपने 75वें वर्ष के अवसर पर इस मंडल ने पंडाल में अंडर वाटर द्वारका की भव्य और अनोखी थीम पेश की है, जिसमें समंदर में डूबी और बसी द्वारका नगरी के अद्भुत नजारे का आनंद भक्त ले रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दिव्य पंडाल और प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं। अमरावती में अंजीर और मखाने से 7 फीट के इस गणपति प्रतिमा को तैयार किया गया है। वडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव मंडल इसके जरिए इको फ्रेंडली बापा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।
7: हम फिलहाल है बडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में, जहां पर जो है हर साल जो है इको फ्रेंडली बापा की प्रतिमा जो है निर्माण करते हैं। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 31 किलो जो है वो अंजीर लगे हैं और साथ ही जो बापा की धोती बनाई गई है वो धोती है मखाने से बनाई गई है। इको फ्रेंडली या पर्यावरण पूरक बापा की प्रतिमा बनाने की कोशिश हमेशा से ही ये बडनेरा का गणेश पंडाल करता है।
4: इसी तरह विलास नगर के गणेश उत्सव मंडल ने सुपारी और पूजन सामग्री से नवग्रह की अनोखी प्रतिमा बनाई है। बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी सजाई है, जिसमें बापा की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। चंदरपुर में तो चावल, दाल, मूंगफली और साबुदाने से तुकुम के राजा की अनोखी प्रतिमा तैयार की गई है, जो यहां भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाराष्ट्र के ही जालना में श्री अनोखा गणेश मंडल ने यहाँ एक ऐसा अनोखा दृश्य तैयार किया है, जिसमें राम भक्त हनुमान द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाते दिख रहे हैं। इसके जरिए संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश में आने का प्रसंग साकार किया जा रहा है, जो भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी एक से बढ़कर एक भव्य गणेश पंडाल के दर्शन हो रहे हैं। सूरत के सरोली इलाके में गांव की थीम पर बने गणेश पंडाल को देखने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
8: जहाँ खड़े हुए हैं, ये जो घर आपको नजर आ रहा है ये भी गणेश पंडाल का एक हिस्सा है, और आगे आसपास आप जो देखेंगे ये भी पूरा गणेश पंडाल का ही एक हिस्सा है, जहां पर गांव का एक जो जीवन हुआ करता था पहले उसे यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर तालाब भी बनाया गया है, कुएं भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो घर है, घर में किस तरह से पहले सामान हुआ करते थे, तो सारी चीजों को यहाँ पर गणेश पंडाल में बताने की कोशिश की गई है आयोजकों द्वारा।
4: इस गणेश पंडाल में गांव की गलियों के साथ ही कच्चे घर, उसके अंदर रखे पुराने जमाने के सामान सब कुछ दिखाया गया है, जिसमें ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन तक है। बैलगाड़ी, कुआं, तालाब गांव की थीम पर बने इस पंडाल में खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच विराजमान बापा के दर्शन कर भक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
9: बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है, बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है,
10: काफी इंस्पायरिंग है। ऐसे ऐसे थीम मतलब क्रिएट होने ही चाहिए, देख के काफी अच्छा लगा।
4: राजकोट में केपीएस क्लब के पंडाल में स्पीड वर्ल्ड चौक के राजा विराजे हुए हैं। यहाँ धर्म और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ इंसानों के साथ साथ रोबोट भी घंटे बजाते हुए बापा की आरती उतारते दिख रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई में बस्तर के प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता मंदिर की थीम पर प्रदेश का पहला शानदार डिजिटल गणेश पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां तमिलनाडु के मदुरई स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर की भव्य थीम पर भव्य गणेश मूर्ति बनाकर

0: साबले, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, जालना से गौरव विजयशाली, सूरत से संजय सिंह राठौर, राजकोट से रौनक बजीठिया, दुर्ग से रघुनंदन पांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए बात करते हैं जोधपुर में भारत जापान के संयुक्त हवाई अभ्यास की, जिसमें दोनों देशों की वायुवीर तो अपने कौशल का प्रदर्शन कर ही रहे हैं। भारत और जापान के एयरफोर्स चीफ भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरते नजर आए। जापान के वायुसेना प्रमुख ने मेक इन इंडिया पहल को लेकर भी अपनी खुशी जताई। 9 सितंबर से जारी इस एक्सरसाइज का आयोजन मंगलवार यानी कि 22 सितंबर यानी कल तक के लिए है।

0: ये दो देशों की साझा ताकत है, भारत और जापान के वायु योद्धाओं की ताकत। ये एक साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में 9 सितंबर से चल रहे वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ भी पहुंचे और यहां दोनों ने भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भी भरी। जोधपुर के आसमान में तेजस की इस उड़ान की गूंज दुनिया तक पहुंचने वाली रही। इस उड़ान ने भारत और जापान के बीच बढ़ते हवाई तालमेल को प्रदर्शित किया। इस खास मौके पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल ताकी हीरो मोरिता ने मेक इन इंडिया पहल की भी तारीफ की।
1: एपी सैम, इट इज अ प्रिविलेज टू बी विद यू टुडे एंड आई वुड लाइक टू शो माय अप्रिशिएशन फॉर योर वार्म वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी। I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas. As an aircraft born from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative.
0: वीर गार्जियन भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसके लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत पहुंच गए थे। अब दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख का तेजस लड़ाकू विमान को साथ में उड़ाना साफ तौर पर भारत जापान के बीच बढ़ते विश्वास को जता रहा है। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्कू लड़ाकू विमान LCA तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है, तो वहीं जापान का लड़ाकू विमान F-2 और C-2 परिवहन विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है।
1: Dear Guardian is the second bilateral fighter exercise between our services. More importantly, it marks the first ever deployment of the Kokku Jetai fighters to India. We believe that advanced training deepens mutual understanding, strengthens trust, and enhances practical cooperation.
0: दोनों देशों की वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही है। अभ्यास के अंतिम चरण में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण रहा।
2: General Morita, the chief of the Japan Air Self-Defense Force, who has taken time out to join us as a distinguished visitor in this exercise, that itself makes this exercise much, much higher level. Thank you. Thank you for sending your team here. And I am sure they will take back some happy memories. And we will continue to have these exercises at regular intervals.
0: दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। इसका मकसद ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों में समन्वय को मजबूत करना है। अभी तक हुए इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर चुके हैं। ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक के लिए आयोजित किया गया है। वीर गार्जियन 2026 सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी सीख, बेहतर इंटर ऑपरेबिलिटी और वायु योद्धाओं के बीच दोस्ती को मजबूत करने वाला अहम कदम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज शुभ।
3: आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के दुश्मनों के कार्य।

की जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सरहद पर तैनात होने के लिए तैयार है। ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि वो किसी भी युद्ध की दिशा को बदलने का मादा रखता है। आधुनिक युद्ध में ये वो नए योद्धा हैं जिनकी मौजूदगी ही सुरक्षा की पूरी गारंटी साबित हो जाती है। ड्रोन डिजाइनिंग और प्रोडक्शन से जुड़ी आईजी डिफेंस नाम की एक कंपनी की तरफ से तैयार स्वदेशी काल ड्रोन का परीक्षण किया गया है। वन वे अटैक ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है।

0: गाड़ी पर सवार एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाले इस ड्रोन का जो नाम है वैसा ही इसका काम है। ये है देश में बना ड्रोन काल, जो भारत के दुश्मनों के लिए काल ही साबित होगा। अपनी हर उड़ान के साथ उनके विनाश की पटकथा लिखेगा। आम सड़क पर दौड़ती गाड़ी को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करने वाले ये ड्रोन युद्ध, सैन्य गतिरोध, सीमा विवाद के दौरान घुसपैठ जैसी गतिविधियां होने पर अचूक सुरक्षा कवच तैयार कर सकता है। दुश्मन देश के शक्ल सूरत के साथ उसका भूगोल भी बदलने की ताकत रखता है। बेशक ये देखने में छोटा है, लेकिन गंभीर घाव करने की ताकत रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल जंग या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आधुनिक हथियारों में ड्रोन की अहमियत दुनिया को समझ में आ गई। भारत भी दुनिया के उन ताकतवर देशों में शामिल है जो बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने में जुटा है। सरहद की सुरक्षा हो या आमने सामने की टक्कर में दुश्मन पर भारी पड़ने के लिए एक के बाद एक आधुनिक ड्रोन को विकसित करने के बाद उनका सफल ट्रायल किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के पोखरण में मौजूद फील्ड फायरिंग रेंज में लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन काल का सफल परीक्षण पूरा किया गया। आईजी डिफेंस नाम की नोएडा की कंपनी ने इस ड्रोन को डिजाइन और विकसित किया है, जिसे जुड़ा परीक्षण भारत की लंबी दूरी तक हमला करने वाले स्वदेशी ड्रोन बनाने की दिशा में एक बेहद अहम और बड़ा कदम है, जिसे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की मानव रहित ड्रोन शक्ति की झलक माना जा रहा है।
1: रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लगातार ड्रोन्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत का अपना पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन काल तैयार हो चुका है। काल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी कि वो दुश्मन को बहुत दूरी से मार सकता है और वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत में आईजी ड्रोन्स द्वारा बनाए गए काल की क्षमताएं एक बार फिर एक परीक्षण में साफ दिखाई दी, जो पोखरण में किया गया।
0: भारत निरंतर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसी कवायद में उसने लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी कामिकेज ड्रोन विकसित करने के लिए एक परियोजना पर जोर देना शुरू किया है। मानव रहित कामिकेज वन वे अटैक ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन को भारतीय उद्योग के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। कामिकाजी ड्रोन वो ड्रोन होते हैं जो टारगेट पर जाकर खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए विस्फोटकों से लैस कामिकेज ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन को वन वे अटैक अंदाज में दुश्मन के इलाके में घुसना पड़ता है। लक्ष्य की पहचान करता और फिर खुद उससे टकरा कर क्रैश हो जाता है, जिससे लक्ष्य पर एक बड़ा विस्फोट हो जाता है।
1: ये 50 किलो का पेलोड लेकर दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। इससे पहले भी लगातार काल के अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं, अलग अलग टेरेन में इसे परखा जा रहा है और इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। यानी रूस और यूक्रेन के शाहिद और जेरान ड्रोन्स के मुकाबले अब भारत का काल ड्रोन तैयार है और भारत अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर रहा है। यही आत्मनिर्भर होती भारत की सेनाओं के लिए एक बड़ी मिसाल भी है और एक उपलब्धि भी।
0: यानी ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि वो किसी भी युद्ध की दिशा बदलने की मादा रखते हैं। आधुनिक युद्ध में ये नए योद्धा साबित हो रहे हैं, जिनके मौजूद की सुरक्षा की पूरी गारंटी साबित हो रही है। साफ है कि ये इन नए तरह के योद्धाओं की मौजूदगी ही हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नन्हे कदम, मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदनकानन जू से आई नई तस्वीरें राहत देने वाली हैं। क्वारंटीन सेंटर में रखे 5 नन्हे ओरंगुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और खासतौर पर उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे। और गुड न्यूज ये भी है कि अब इनकी एक्टिविटी नॉर्मल है, फीडिंग ठीक से चल रही है और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां भी लौट आई हैं। इन नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास ध्यान दिया गया।
3: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी, क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है। साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है, दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन पांचों नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदन कानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी पांचों का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदन कानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। यानी इन नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये पांचों ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: क्या है परिवर्तनी एकादशी का पूजा विधान? परिवर्तनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान और परिवर्तनी एकादशी पर होगा किन समस्याओं का समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी की बात करेंगे जिसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस दिन के प्रयोग क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:43 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 7:06 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसके बारे में नियम और शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत की महिमा ये है कि अगर आप इस व्रत को रखते हैं, उपासना करते हैं, तो जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का पालन करने से, साधना उपासना करने से इस लोक में भौतिक संपन्नता मिलती है और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में परिवर्तिनी एकादशी के समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है, इसीलिए इस व्रत को रखने से, पूजा उपासना करने से भगवान गणेश और श्री हरि यानी भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको मिल सकती है। अलग अलग एकादशी पर भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है, जिस स्वरूप में उन्होंने दान में सारी सृष्टि ले ली थी। जिन लोगों को संतान का सुख चाहिए या जिनको जीवन में धन चाहिए, उनके लिए परिवर्तिनी एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी है। और सबसे मूल्यवान बात यही है कि जाने अनजाने अगर गलतियां हो गई हैं, जाने अनजाने अगर पाप हो गए हैं और आप परिवर्तिनी एकादशी का पालन करते हैं, हृदय से क्षमा याचना करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है। परिवर्तिनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हों, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब परिवर्तिनी एकादशी की महिमा आपने जान ली, इस व्रत की विधि क्या है, तरीका क्या है। प्रातः काल 12 बजे के पहले कोशिश करें नहा करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की और गणपति गजानन की पूजा करें। श्री हरि को भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू और दूर्वा अर्पित करें। पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, और तब भगवान विष्णु के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसी भी मंत्र का जप करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। अगर आप कर सकें तो परिवर्तनी एकादशी पर अन्न का सेवन ना करें, लिक्विड ग्रहण करें या फल ग्रहण करें तो अच्छा होगा। अगर आप बीमार हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, मजबूरी है, भोजन करना ही पड़ेगा, तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। परिवर्तनी एकादशी के विशेष उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खान पान में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी के दो विशेष प्रयोगों के बारे में। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी एक साथ ये उपाय करें और पति या पत्नी की उम्र के बराबर लड्डू या मोदक भगवान गणेश को अर्पित करें और इसके बाद कम से कम 3 बार संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करिएगा। पति पत्नी एक साथ मिलकर के या ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। एक एक लड्डू पति पत्नी खा लेंगे और बाकी जो लड्डू का प्रसाद है वो लोगों में बांट देंगे। अगर ये प्रयोग परिवर्तनी एकादशी पर दोपहर के समय किया जाए, उसके बाद प्रार्थना की जाए, तो संतान की प्राप्ति आसान होगी। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, पैसे रुपए की मुश्किल है, आर्थिक समस्या है, तो क्या उपाय करेंगे? परिवर्तनी एकादशी पर दोपहर के समय भगवान गणेश की पूजा करें, उनको एक मिट्टी का या धातु चांदी तांबा पीतल सोना किसी मेटल का चूहा अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश को पीले फूल और पीला प्रसाद अर्पित करिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, कम से कम 1 माला 108 बार या 3 माला या 11 माला मंत्र का जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गंग गणपतये नमः। ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा कि आपको धन मिले और आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। और जो चूहा आपने गणपति को अर्पित किया था, इसको अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने पूजा के स्थान पर सामान्यतः घी या तिल के तेल का ही दीपक जलाइएगा। सामान्य स्थितियों में पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक कभी ना जलाएं। दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र जान लेते हैं। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर जो है सिर्फ वीडियोस तस्वीरें भेजने के लिए है। और याद रहे, जब भी आप अपना वीडियो या फोटो हमसे साझा करें, अपना नाम, शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में आठवें दिन भी लगा आस्था का मेला। अमरावती में इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा। सूरत में समंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन, नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का है बेहद दुर्गम और मुश्किल रास्ता। बद्रीनाथ धाम में दो दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन। हमारी विरासत हमारा भविष्य थीम में स्थानीय संस्कृति की झलक, सेना के अधिकारियों के साथ सीएम धामी रहे मौजूद। फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंची सह निर्माता अनुप्रिया नागर, विधि विधान से हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान के दर्शन पाकर हुई भावुक। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने के व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा 5 साल के नन्हे साहित्यकार की भी है। देखिए
5: इस नन्हे साहित्यकार से मिलिए, कौटिल्य शाही, यूपी के गोरखपुर के हैं, उम्र महज 5 साल है और इसी छोटी सी उम्र में इन्होंने एक किताब लिख दी है, कैप्टन ऑक्टोपस द ग्रेट आर्कटिक एडवेंचर। इसलिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। किताब बच्चों वाली ही है, पर बच्चों वाली किताब भी तो बड़े ही लिखते हैं। इतनी कम उम्र में तो बच्चे सिर्फ कहानियां सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कौटिल्य ने अपने माता पिता के निर्देशन में अपनी कल्पना को किताब की शक्ल दे दी है। पापा अतुल शाही इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील हैं, मामा श्यामली सिंह बताती हैं कि कौटिल्य हर सिचुएशन पर एक कहानी गढ़ने में माहिर है, लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी को कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया, कहीं स्केच के जरिए तो कहीं पेंसिल से कहानी कही जा रही है। 5 साल के बच्चे ने इतना धैर्य दिखाया, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, सेलिब्रेशन तो बनता था। सो उनका जन्मदिन चुना गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज उसके बुक लॉन्च में पहुंचे और उसे आशीर्वाद दिया। 15 मीटर लंबा तनकर खड़ा चीड़ का पेड़, और इसमें ऊंचाई पर बंधी है पत्तियां, पहाड़ी फल और कुछ पैसे भी। इन्हें हासिल करना है। जिसने कर लिया वो प्रतियोगिता जीत गया और ऊपर रखा सामान ही उसका इनाम है। पर इस पेड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल है उसे इन तस्वीरों में देखिए। नजारा दिलचस्प है। एक तो खड़ा चिकना पेड़, ऊपर से उस पर चढ़ने वालों की भीड़। कोई किसी को संभलने नहीं दे रहा, सबको जल्दी है, सबको जीतना है। चमोली के पौड़ी जिले में ये तस्वीरें हैं अनोखे पत्ती मेले की, जहाँ कबरोली, बालसिंह, पनाऊ और वीच गांव में हर साल लोग ये पारंपरिक मेले का आयोजन करते हैं। और इसी मेले का हिस्सा है ये मजेदार प्रतियोगिता। ग्रामीणों के मुताबिक माँ नंदा की विदाई के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि माँ नंदा को विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, अनाज और पहाड़ी उपज अर्पित करने से गांव की फसलें सुरक्षित रहती हैं और अच्छी पैदावार होती है। नारंगी रंग के इन जंगली बेरों ने लद्दाख के किसानों की किस्मत बदल दी है। जो जंगली बेर लोगों के लिए आम फल की तरह थे, वो अब यहाँ कमाई का जरिया बन रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस जंगली फल को पौष्टिक करार दिया है। पीएम मोदी पहले ही इसे संजीवनी बूटी कह चुके हैं। वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पहल का नतीजा ये हुआ है कि अब किसानों को इस बेरी के पिछले सालों के मुकाबले 8 गुना तक ज्यादा दाम मिलने लगे हैं। DRDO के लिए स्थित फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी ने इसके जूस और गूदे को निकालने और उसे सुरक्षित रखने की तकनीक विकसित कर ली है, और इसी तकनीक की मदद से इससे जूस, जैम, चाय और हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं। सी बकथॉर्न नाम का ये नारंगी खट्टा फल यहाँ स्थानीय भाषा में सिबकथोंग कहलाता है। ये लद्दाख के ठंडे और बंजर रेगिस्तान में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। लोगों की आस्था और सांस्कृतिक भव्यता की ये सुंदर तस्वीर छत्तीसगढ़ के भिलाई से आई है। यहाँ के सेक्टर 5 स्थित प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय तमिलनाडु के गणेश मंदिर में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें पूरे वैदिक रीति रिवाज, हल्दी, मेहंदी और मंडप की रस्मों के साथ भगवान गणेश का विवाह माता रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न कराया गया। सबसे भव्य थी भगवान गणेश की बारात, और ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से सजे इस बारात में सैकड़ों कुंवारे युवक युवतियां शामिल हुए। मान्यता है कि जिन युवक युवतियों की शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन रहे, वे अगर इस पावन बारात में शामिल होकर सच्चे मन से बप्पा की पालकी के दर्शन कर लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाता है। ये भव्य नजारा बद्रीनाथ धाम में आयोजित 2 दिवसीय देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल के समापन समारोह की है। बद्रीनाथ के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आयोजित इस आयोजन में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक कला, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और सीमांत गांवों की जीवन शैली की जीवंत झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के पहले दिन लेफ्टिनेंट DJ मिश्रा उत्तरी कमान ने माणा में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया। अब जो भी यात्री पर्यटक बद्रीनाथ धाम और माणा गाँव पहुँचेगा, उसे दूर से ही ये तिरंगा दिखाई देगा।
4: और अब बात करते हैं गुजरात के अंबाजी में लगे भादरवी मेले की। हर साल भादो महीने में अंबाजी मंदिर में लगने वाला ये बेहद भव्य और धार्मिक मेला है। आमतौर पर ये मेला 7 दिनों तक चलता है, जिसमें दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, लिहाजा देवी की प्रतिमा के स्थान पर हिंदुओं के पवित्र श्री यंत्र का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भक्त भादरवी पूनम पर माता अंबा के दर्शन कर उन्हें शारदीय नवरात्र के लिए अपने गांव और घर पधारने का आमंत्रण देते हैं।

आस्था और भक्ति की ये तस्वीरें अम्बाजी के भाद्रवी महामेला की है, जिसकी शुरुआत रविवार को बड़ी धूमधाम से हुई। अम्बाजी को देश के 51 शक्तिपीठों में से आद्या शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाता है। भाद्रवी महीने में नवमी से पूनम यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश माता जी का रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ हुआ।

0: अंबाजी की रथ यात्रा के दौरान ड्रोन के जरिए आसमान से फूल बरसाए गए। वहीं बैग पाइपर बैंड ने श्रद्धा से सराबोर अपनी धुनों से माहौल को और ज्यादा भक्तिमय बना दिया। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भाद्रवी महामेले में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से आए व्यवसायी संघ ने अंबाजी मंदिर में ध्वजा चढ़ाई। ये संघ 33 सालों से हर साल यहां आता है और अंबाजी पर ध्वजा चढ़ाकर महामेले की शुरुआत करता है। गुजरात के बनासकांठा जिले में अरावली पहाड़ियों के पास स्थित अंबाजी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे आद्या शक्तिपीठ माना जाता है। भाद्रवी महामेला इस प्राचीन शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस महामेले के दौरान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु यहां आते हैं और इस सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। राजेश्वर गुरुजी अंबाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। वे इंग्लैंड में अंबाजी माताजी का प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अंबाजी मंदिर पर लहराती ध्वजा को लेकर इंग्लैंड जा रहे हैं और जो भक्त इंग्लैंड से अंबाजी का दर्शन करने नहीं आ सकते, उन भक्तों को नवरात्रि के दौरान इंग्लैंड में इस ध्वजा के दर्शन होंगे।
1: इंग्लैंड से आकर माताजी के चरणों में दर्शन करने आया हूं और पिछले 25 साल का उत्सव हमारा इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सर इंग्लैंड का, उसका एक सिल्वर जुबिली है और 20 साल हुआ एक ही स्थान पे हम भगवती जगदम्बा की आराधना करते हुए गुजराती गरबा का कार्यक्रम हम हेरोले सेंटर में जो कर रहे हैं। इस बार जो भगवती जगदम्बा का जो धाम है अंबाजी धाम, इसके ऊपर जो ध्वजा लगेगी उसी ध्वजा को लेकर के हम इंग्लैंड जा रहे हैं और वहाँ के जो भक्त यहाँ नहीं आ रहे वो नवरात्रि में उनका दर्शन करेंगे और इस नवरात्रि का पावन पर्व पर भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी उद्देश्य में यहाँ आया हूँ।
0: 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भाद्रवी महामेले के लिए 7 दिनों में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अंबाजी आने की उम्मीद है। ऐसे में पूरे मेले के सुचारू आयोजन के लिए प्रशासन ने 29 कमेटियों का गठन कर 7,000 कर्मचारियों को महामेले में तैनात किया है।
2: हमारे भक्त प्रति वर्ष जिसकी आतुरता पूर्वक राह देखते हैं, ऐसा भाद्रवी पूनम महामेला 2026 की आज शुरुआत की गई है। जब लाखों की संख्या में पाई पल्ले 7 किलो में अंबाजी में आएंगे कि सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे फर्स्ट पर तैनात निकले। स्वामी विशेष तो भोजन लॉ एंड ऑर्डर एवं अपर संचालन सहित जितनी जिला निर्षा की समितियां भी बनाई गई है। तदुपरा अंबाजी परिसर पे 4 जी की इसम की भोजन यादवी इलेक्ट्रोदी के साथ 8 इतने रेश के रूप यानी कि विसामा केंद्र और 40 से अधिक पार्टिक्स करो भी पहचान की गई। साथ ही साथ जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में जगत तीर्थी माँ अप्पा के चरणों में आने वाले, तब का ये महामेला और शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न ऐसी आज माता जी प्रार्थना की गई।
0: महामेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की ओर से 10 सेक्टरों के अलग अलग जोन में 6,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस विभाग की ओर से 51 शक्तिपीठ सर्किल पर एक पुलिस कंट्रोल प्वाइंट शुरू किया गया है, जिसमें 750 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे मेले पर नजर रखे जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए श्री टीम की तैनाती के साथ पूरे मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबाजी मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट के माध्यम से सेवा शिविर, वाहनों और मोबाइल सेवा शिविरों के पंजीकरण की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है। मेले के दौरान स्मार्ट पार्किंग की सुविधा और बच्चों की सहायता के लिए बाल सहायता कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
3: अंबाजी धाम में भाद्रवी पूनम महामेला 2026 की आज से शुरुआत हुई है। मेला में आने वाली सभी माई भक्तों का दर्शन व शांति के

0: वहां सख्ती इसकी व्यवस्था की गई है। रास्ता के दौरान 63 जितने पुलिस सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। अंबाजी में आने वाले भारी वाहनों के ऊपर, हेवी व्हीकल्स के ऊपर प्रतिबंध रखा गया है। मेरी सभी पदयात्रियों से, आने वाले तमाम माई भक्तों से विनंती है कि आपको किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो आप 112 नंबर के ऊपर कॉल करके पुलिस की मदद ले सकते हो। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाला बंदोबस्त बहुत शांति के और सुरक्षा के वातावरण में पूरा हो।
1: पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठा भी कहा जाता है। सामान्य मंदिरों के विपरीत इस मंदिर गर्भगृह में देवी की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। इस मंदिर में देवी की प्रतिमा के स्थान पर हिंदुओं के पवित्र श्री यंत्र का पूजन होता है। इस यंत्र को भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष तौर पर सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अंबाजी मंदिर के पुजारी इस श्री यंत्र का श्रृंगार इतना अद्भुत ढंग से करते हैं कि श्रद्धालुओं को प्रतीत होता है कि माँ अंबाजी यहाँ साक्षात विराजमान है और इसके समीप ही पवित्र अखंड ज्योति जलती है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये कभी नहीं बुझी। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार भी गब्बर पर्वत पर हुआ था, और दूसरी कथा ये भी है कि भगवान श्री राम शक्ति उपासना के लिए यहाँ ठहरे थे, और जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया तब माता की खोज में अंबाजी और आबू के जंगलों में आए थे। तब राम और लक्ष्मण ने श्रृंगी ऋषि के कहने पर अंबाजी की पूजा की थी और देवी ने उन्हें एक अजय तीर दिया, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया था। वहीं महाभारत के लिए ये दंत कथा प्रचलित है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अंबाजी माता की पूजा की थी, इसलिए माता ने भीमसेन को अजय माला दी, जिनसे युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने में बहुत मदद की थी। दूसरी ओर अर्जुन को विराट के राज्य में छिपते हुए अज्ञातवास के वर्ष में वृहनलला के रूप में वेश के लिए दिव्य वेशभूषा दी थी, और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने अपने पति भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ अम्बा की पूजा की थी। विद्वानों के अनुसार यहाँ देवी की आराधना प्राचीन काल से होती आ रही है। अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित ये धाम सदियों से शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। नवरात्रि और भाद्रवी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। गुजरात के बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: दिल्ली में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में देश के पहले स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है और 50 किलोग्राम तक का विस्फोटक या पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह हवा में लगातार 7 से 8 घंटे तक टिक सकता है। इस खास ड्रोन को आईजी डिफेंस नाम की नोएडा की एक कंपनी ने डिजाइन और विकसित किया है। दिल्ली में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज एक पोर्टल लॉन्च कर इसका शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए दिल्ली के लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्ली सरकार करीब 2.25 लाख घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। सीएम के मुताबिक 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल लगाने की पूरी लागत सरकार उठाएगी। ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगी। मुंबई में गणपति उत्सव और विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे ने रात के समय 22 स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये सेवाएं 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच उपलब्ध होंगी। इससे रात में पंडाल घूमने और विसर्जन में शामिल होने वाले लोगों को आने जाने में आसानी होगी। महाराष्ट्र के अकोला में 15 से 20 फीट या उससे अधिक ऊंची प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। प्रतिमाओं को अगले साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। प्रशासन की अपील पर कई बड़े गणेश उत्सव मंडलों ने मिलकर ये निर्णय लिया है। असल में अकोला में सामान्य से कम बारिश की वजह से नदियों तालाबों का जलस्तर नीचे चला गया है। ऐसे में प्रशासन ने गणेश मंडलों से ऊंची प्रतिमाओं का विसर्जन कम पानी में नहीं करने की अपील की थी, ताकि नदियों पर दबाव कम हो और पर्यावरण को नुकसान न हो। भगवान श्री विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ में मॉनसून के बाद एक बार फिर यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम साफ होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। हालांकि सुबह और शाम के समय यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। इस साल अब तक 17,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।

और अब बात गणपति उत्सव की। देश भर में गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है और बप्पा के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे अनोखे पंडाल तैयार किए गए हैं जहां आधुनिक तकनीक के जरिए गणपति उत्सव को मनाया जा रहा है। कहीं रोबोट से आरती तो कहीं डिजिटल स्क्रीन और लाइटिंग के जरिए गणपति का भव्य दरबार सजाया गया है। वहीं कुछ जगहों पर गणपति विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अपनी मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग 5 तो कुछ लोग 7 दिन में विसर्जन करते हैं। हालांकि गणेशोत्सव का समापन 25 सितंबर को है।

0: गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया की ध्वनि से पूरा देश गूंज रहा है और शहर शहर बाप्पा के भव्य दिव्य पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गणेशोत्सव के दिव्य छटा के बीच लालबाग के राजा समेत मुंबई के मशहूर पंडालों में आम से लेकर खास तक विघ्नहर्ता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। मुंबई में जगह जगह अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। घाटकोपर के राजा के दरबार को इस बार नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की थीम पर सजाया गया है।
1: तस्वीर सीधे गणपति बप्पा की तरफ मोड़ते हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जी हाँ, नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ महाराज को मुंबई के घाटकोपर इलाके में बसाया गया है। घाटकोपर का राजा के नाम से ये पंडाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए, हर जगह जो जानवरों की तस्वीरें जो जंगलों में रहते हैं यहाँ पर लगा रखी है। और पशुपतिनाथ महाराज की क्या खासियत है, क्या डिटेल है, वो भी पोस्टर के जरिए यहाँ पर लोगों ने बना रखा है।
2: कुछ यूनिक किया जावे और इस तौर पे ये सब यूनिक किया गया है। और इस घाटकोपर के राजा की प्रकृति में आप देख सकते हो कि रुमाल भी चढ़ाए जाते हैं, जिसे को मन्नत के गणपति माने जाते हैं।
0: घाटकोपर के राजा के इस पंडाल में आकर भक्त न सिर्फ उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पशुपतिनाथ की पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानकारी मिल रही है। इसी तरह मुंबई में ही गिरगांव के राजा के दरबार में भक्तों को राजस्थान के श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपना 52वां साल मना रहे इस मंडल के पानी पर पुल वाली थीम को लेकर बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।
1: इसलिए ये मंडल बहुत ज्यादा वायरल है क्योंकि इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर। और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। इस बार ये पंडाल जो है 95 इयर्स पूरा कर चुका है। ये देखिए पप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी पप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है। हर कोई दर्शन कर रहा है, हर कोई मिन्नतें मांग रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि बप्पा खुश हो जाते हैं और जब मिन्नत पूरी कर लेते हैं तो लोग चढ़ावे के रूप में जो उनसे बन पनता है वो ला करके बप्पा के समक्ष रख देते हैं।
0: मुंबई में एक से बढ़कर एक थीम वाले पंडाल तो नजर आ ही रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में गणपति उत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां कई वर्षों से इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। इस बार अंजीर और मखाने से करीब 7 फीट ऊंचे गणपति तैयार किए गए हैं, तो वहीं 21 किलो सुपारी से नवग्रह का निर्माण किया गया है।
3: हर साल जो है इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा जो है निर्माण करते हैं। पिछले वक्त इन्होंने खारक से बनी बप्पा की प्रतिमा बनाई थी, लेकिन इस वक्त जो है अंजीर जो अमूमन जो है ड्राई फ्रूट में गिना जाता है, वो उस ड्राई फ्रूट से ये बप्पा की सुंदर 7 फीट की मूर्ति जो बनाई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 31 किलो जो है वो अंजीर लगे है। और साथ ही जो बप्पा की धोती बनाई गई है वो धोती है मखाने से बनाई गई है। इसमें मूर्ति इतनी सुंदर दिखती है, गणपति बप्पा जो है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली यहाँ पर है।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भगवान गणेश का 16 फीट ऊंचा भव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राम के स्वरूप में सजे गणपति को सुग्रीव की गुफा की थीम में विराजमान किया गया है।
4: बार जो है कि खास झांकी यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाप्पा जो है बादलों में इन पहाड़ों के बीच में विराजमान है। बेहद ही आकर्षक मूर्ति बाप्पा की यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बाप्पा विराजमान है और बाप्पा के सामने यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बाप्पा विविध रूप में आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन्हीं रूपों के माध्यम से बाप्पा जो है पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये इस ट्रेन में बप्पा के विविध रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये ट्रेन जो है ये पहाड़ों से होते हुए ऐसे बाहर आती है।
0: महाराष्ट्र के जालना में गणेश उत्सव के दौरान रामायण में लंका कांड के एक दृश्य को बेहद अनोखे अंदाज में दर्शाया है, जिसमें राम भक्त हनुमान द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके जरिए संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश में आने का प्रसंग साकार किया जा रहा है, जो भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। सूरत के सरोली इलाके में गांव के थीम पर बने गणेश पंडाल को देखने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस पंडाल में गांव की गलियों के साथ ही कच्चे घर, उसके अंदर रखे पुराने जमाने के ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन तक दिखाए गए हैं। बैलगाड़ी, कुआं, तालाब, गांव की थीम पर बने इस पंडाल में खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच विराजमान बापा के दर्शन कर भक्त बेहद खुश नजर आते हैं।
5: हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये जो घर आपको नजर आ रहा है, ये भी गणेश पंडाल का एक हिस्सा है और आगे आसपास आप जो देखेंगे ये भी पूरा गणेश पंडाल का ही एक हिस्सा है, जहाँ पर गांव का एक जो जीवन हुआ करता था पहले उसे यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर तालाब भी बनाया गया है, कुएं भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो घर है, घर में किस तरह से पहले सामान हुआ करते थे, तो सारी चीजों को यहाँ पर गणेश पंडाल में बताने की कोशिश की गई है आयोजकों द्वारा।
0: वहीं जिस धूमधाम से बापा का आगमन हुआ, उसी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बापा की विदाई भी शुरू हो चुकी है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर झूमते भक्त बापा को विदा करने निकले तो सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ आया। ये तस्वीर गुजरात के गोधरा की है, जहां 80 से अधिक गणेश मंडलों ने अपनी मूर्तियों का विसर्जन किया। लेकिन विसर्जन से पहले जब ये शोभा यात्रा शहर की सड़कों से होकर गुजरी तो माहौल भक्तिमय हो गया। मौसम का बिगड़ा मिजाज भी बापा के इन भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाया। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या युवा, सभी ने बापा को अगले बरस जल्दी आने के लिए खुशी खुशी विदाई दी। उधर महाराष्ट्र के बीड में 225 वर्षों से चली आ रही एक गांव एक गणपति की अनूठी परंपरा इस साल भी पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ निभाई गयी। सरकारवाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति का विसर्जन शाही ठाट बाट के साथ किया गया, लेकिन विसर्जन से पहले गणपति बापा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे, ढोल ताशों की गूंज, ताल मृदंग की थाप और भजनों की गूंज से पूरा लिम्बा गणेश गांव भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मूर्ति विसर्जन को लेकर महानगर पालिका और जिला परिषद की ओर से एक खास अभियान चलाया गया, जिसके तहत मूर्तिदान अभियान को शहरवासियों का जबरदस्त समर्थन मिला। शहर के अलग अलग स्थानों पर 160 से अधिक आर्टिफिशियल विसर्जन कुंड बनाए गए थे, जहां लोगों ने मूर्तियों का विसर्जन किया। प्रशासन की इस पहल से न सिर्फ नदी और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास किया गया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इतना ही नहीं, इस बार परिवहन विभाग ने मूर्ति को विसर्जन स्थल तक लाने के लिए कोल्हापुर मेट्रो ट्रांजिट बसों का उपयोग किया, जो अपनी तरह का पहला प्रयोग था। गोधरा से भोई जयेंद्र कुमार, बलवंत भाई, बीड से रोहित दास हातागले, कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी, जालना से गौरव विजय साली, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, सूरत से संजय सिंह राठौर और अमरावती से धनंजय सावले के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 564 अंक उछलकर 74,859 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 68 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 23,414 पर पहुंच गया। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती की वजह से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,56,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई और ये 5,000 रुपए फिसले। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,42,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार को रुपया 15 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 81 पैसे हो गई।
6: रॉ के संस्थापक आर्यन काव की जिंदगी पर करण जौहर बनाएंगे फिल्म। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
0: फिल्म मेकर करण जौहर ने एक नई फिल्म की घोषणा की है। ये फिल्म भारत के खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के संस्थापक आर्यन काव की जिंदगी और उनके काम पर आधारित होगी। फिल्म में आर्यन काव के साथ साथ रॉ के शुरुआती दौर और एजेंसी के पहले मिशन की कहानी को भी दिखाया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 11 अगस्त 2028 तय की है। 2028 में रॉ के 60 साल पूरे हो जाएंगे।
7: पर कुछ कहानियां हमारी पूरी जिंदगी ही बन जाती है। उठ खड़ा हो, कमर कस ले, अब ना पीछे मुड़ना है।
0: नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी की नई फिल्म कॉमन आदमी का टीजर जारी हो गया है। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में सीए देवेंद्र जैन की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में नए कलाकार अनुज अनिल शर्मा और श्रीजा दत्ता के साथ दिग्गज एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन गुप्ता और सोनाली कुलकर्णी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे।
8: रील बनाने चले तो एक भी फॉलोअर्स नहीं दिए, इतना फॉलोअर्स है आपका माँ। अच्छा, उनको एक आध फॉलोअर दी भी आप तो हीरोइन बना दी।
9: लोग क्या कहता पता है बनवारी जी, अब तो केले का बीज लगाए थे, घर में मौसमी कहाँ से आ गया।
0: ओटीटी पर चर्चित वेब सीरीज दोपहिया सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें एक बार फिर धड़कपुर गांव के लोगों की जिंदगी, वहां कदम कदम पर खड़ी होने वाली परेशानियां और उसकी वजह से खड़ा होने वाला बड़ा बवाल नजर आ रहा है। सीजन 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। गजराज राव, रेणुका शाहने, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा जैसे कलाकार एक बार फिर से अपने किरदारों में नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भी इस टीम का हिस्सा बने हैं।
10: 2,00,000 रुपए एडवांस और 17,000 रुपए प्रति माह मिलेगा।
6: न्यूज पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में अभिनेता शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से की पूजा अर्चना। सूरत में समंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिर तक जाने का है बेहद दुर्गम और मुश्किल रास्ता। सितंबर तक बंद रहेगा टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण। श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन। मेहमानों के ठहरने, खाने पीने के व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। अट्ठाईस सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होगी शामिल। 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। न्यूज पथ में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: अदाएं ऐसी कि नजर न हटे, आत्मविश्वास ऐसा कि दुनिया जीत ले जाए। आपने रैंप पर वॉक करती सुंदरियों को खूब देखा होगा, मगर जो बात इनमें है किसी और में कहां। अंदाज देखिए जरा, क्या बल खा के चली हैं, और विक्ट्री का साइन भी आंखों में आंखें डालकर दिखा रही हैं। मानो कह रही हूँ, है कोई मुझसे तो सामने आए। बच्ची का अंदाज और उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल छू रहा है। ठाट तो इनकी है, देखिए जरा कैसे हो रहा है बॉडी मसाज। मानो घर के सारे काम इन्होंने ही तो निपटाए हैं। जो भी हो, नाई जिस तरह से मंकी को मसाज दे रहा है उससे तो लगता है इनकी दोस्ती पुरानी है। वरना ना तो मंकी ऐसे बेफिक्र लेट सकता है और ना ही इनकी इतनी हिम्मत कि मंकी को बिना इनकी इजाजत के छू भी ले। जो भी हो, दोनों का ये साथ लोगों को खूब पसंद आ रहा है। देखकर यकीन करना मुश्किल है, पर सच तो ये भी है कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। हूबहू तस्वीर कागज पर उतार देने की बात तक तो ठीक थी, लेकिन यहाँ तो इस बुजुर्ग कलाकार ने लड़की जैसी हूबहू गुड़िया बना दी। अगर ये सच है तो देखकर बस यही कह सकते हैं कि करने वाले तो बस कमाल करते हैं। संगीत से कुछ ज्यादा ही लगाव है इन्हें। माइक हाथ में आते ही सुर लगने लगे हैं। क्या गा रही हैं मालूम नहीं, पर जिस अंदाज में गा रही हैं वो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है, मानो आज तो स्टेज पर आग ही लगा देंगे। बच्चे जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस की नकल कर रही है वो देखना दिलचस्प है। लोग उसकी क्यूटनेस पर दिल हार रहे हैं। कमाल है, इनको देखकर आपके मुंह से यही निकलने वाला है। इनकी फिटनेस, कॉन्फिडेंस और तालमेल सब गजब का है। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्टंट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये तो इनके खेल कूद का हिस्सा है। इनको देखना दिलचस्प है। इन बच्चों के इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
6: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बॉडी शेमिंग करने वालों को मिले करारे जवाब की। ये जवाब बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने दिया है। सलमान खान ने बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार पर इस बार किसी कंटेस्टेंट को नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ट्रोलर्स को आड़े हाथ लिया है और उनकी जमकर क्लास लगाई। आपको बता दें कि सलमान खान ने तमाम सेलिब्रिटीज की लगातार आलोचना करने पर जो निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि फिल्मी सितारों के शरीर, उम्र, लुक और पर्सनल लाइफ को लेकर ट्रोल करने वालों की उन्होंने क्लास लगाई है। शो में सलमान ने कई मुद्दों पर बात की है, जिसमें प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ने पर महिलाओं को ट्रोल किया जाना भी शामिल है। हाल ही में उनकी को-स्टार रही कैटरीना कैफ के प्रेगनेंसी के बाद के लुक को लेकर उन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार बनाया गया। सलमान ने कहा कि प्रेगनेंसी से शरीर में बदलाव आते हैं और ऐसी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि कोई महिला प्रेगनेंसी से पहले जैसी दिखने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों के सामने आ रही है। सलमान ने कहा कि कोई प्रेग्नेंट हुआ तो आप उसे ट्रोल क्यों करना चाहते हैं, जब वे पिक्चर में वापस आएंगी तो वे फिट होकर आएंगी। यही नहीं, सलमान ने उन हेटर्स को भी जवाब दिया जो उन्हें लगातार मोटा, बॉल्ड और बूढ़ा कहकर ताने मार रहे थे। सलमान ने ट्रोल करने वालों को याद दिलाया कि हाँ, वे 60 साल के हो गए हैं और अब वैसे नहीं दिख सकते हैं जैसे कि दशकों पहले दिखते थे। ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए सलमान खान ने अपनी जैकेट, टी शर्ट और कैप उतार कर अपना रियल लुक भी दिखाया। सलमान ने यह भी कहा कि कुछ पेपराजी महिलाओं की तस्वीर खींचते समय हद पार कर देते हैं और उन्हें असहज महसूस कराते हैं। सलमान ने मशहूर हस्तियों को ऑनलाइन बदसलूकी का आसान शिकार बनाने से होने वाले बड़े नुकसान के बारे में भी खुलकर बात की। जाहिर है सलमान खान पहले भी अलग अलग मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जिसमें खास तौर पर पेपराजी को लेकर उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। सलमान के मुताबिक ये लोग स्टार्स की शोहरत से अपनी कमाई करते हैं और फिर उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं। फिल्मी सितारों की बॉडी शेमिंग के मुद्दे पर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
12: मुझे काफी अच्छा लगा सलमान खान ने अपने आलोचकों को जो जवाब दिया। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्टार्स होते हैं, कई महिलाएं होती हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, आपत्तिजनक उन पर टिप्पणी करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं जो उनके मन में आता है वो लिख देते हैं, किसी को नीचा दिखाने की वो कोशिश करते हैं। तो ये बहुत गलत है जो आज चल रहा है ट्रोलिंग का, लोगों की बॉडी को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर कमेंट किए जाते हैं कि ये मोटा है, ये काला है, ये ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं और मैं इनकी आलोचना करता हूं। और जो अभी बिग बॉस के सीजन 20 के अंदर सलमान खान ने जो मैसेज दिया, जो अपने आलोचक है उनको जवाब दिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और सलमान खान ही नहीं, हर महिला को, हर व्यक्ति को, हर बेटियों को, उन सब ट्रोलर्स को करारा जवाब देना चाहिए जो बॉडी शेमिंग को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और इस तरह के कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया पे आके।
13: लोग इतना हाइप दे रखे हैं सोशल मीडिया को, लाइक उसी से लोगों को जज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज को मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ भी कोई जी रहा है, तो उन जो अपन लोग हैं वो एज अ ऑडियंस उनको देख रहे हैं, बट उनको उनसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी, कि लाइक नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आई नो कि वो लोग सब सेलिब्रिटीज हैं, उनको अपना थोड़ा सोशल मीडिया को मेंटेन रखना पड़ेगा ऑडियंस के अकॉर्डिंग, बट एज अ ह्यूमन बींग वो नॉर्मल भी है, लाइक उनको खुद की चॉइस भी है कि वो खुद क्या करना चाह रहे हैं, क्या पहनना चाह रहे हैं, तो खुद के अकॉर्डिंग भी वो लोग कुछ पहन सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि तुम उनको उस बिहाफ पे जज करो कि लाइक हाँ ठीक है मूवीज़ बना रहे हो, ये बना रहे हो, वो एक इंसान तो है ही ना, तो उनको अपने अकॉर्डिंग भी जीने का हक है। तो इसलिए मैं ये मानना चाहती हूँ कि कभी उनकी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। लाइक अभी पता चला है कि जैसे कैटरीना कैफ ने अभी उसने वेट गेन कर लिया, तो लोग उसे जज कर रहे कि ओ ये तो बूढ़ी हो चुकी है, मोटी हो गई, ये हो गई, ये वो। तो उस बिहाफ पे सलमान खान ने फिर बोला है कि लाइक है ना आपको ऐसे बॉडी शेमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके पास वो इतनी रिच है, एक एक्ट्रेस है, उसको जो मूवी मिलेगी, जो रोल मिलेगा, वो उस अकॉर्डिंग खुद की बॉडी एडजस्ट वापस कर सकती है, तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
14: जितने भी हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं जो अपने बाहर जो मूवीज वगैरह बनाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन सबको ये जो कमेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम पर, जो कमेंट्स आते हैं, ये सब कुछ टोटली गलत है। वो उनको जैसे अभी जो कैटरीना कैफ को जो अभी उसकी बॉडी जो गेन हुई है, वो अभी वेट जो गेन हुआ है, उसके ऊपर इतने लोगों ने उसको ट्रोल करा, सलमान खान को ट्रोल करा, सोहेल खान तक को ट्रोल करा, उनको ये पता नहीं है जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, अपने खुद के अपने घर में जाके अपने फैमिली को देखो, अपने मॉम डैड को देखो, तुम खुद अपने आप को खुद को देखो, तो उनको पता लगेगा, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल 100%। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ये कमेंट करते हैं, जो ये गलत जो बोलते हैं, जो भी कोई गलत ये जो इंस्टाग्राम पे इस पे जो भी गलत ये जो बोलते हैं, इनके खिलाफ हमको कुछ ना कुछ तो एक्शन हमेशा लेना चाहिए। ये बिल्कुल 100% मेरी तरफ से गलत है।
15: जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इन दिनों सेलिब्रिटीज को कैसे ट्रोल किया जाता है, बिकॉज वो जैसे कैटरीना कैफ है, अभी माँ बन चुकी हैं, तो उनकी बॉडी को बॉडी शेम किया जाता है, जो कि बिल्कुल ये हमारे राइट्स में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। हमारी एक हर चीज़ की एज होती है, उनकी एज है, उन्होंने बेबी किया, उन्होंने एक अपने फैमिली बनाई, फैमिली को आगे बढ़ाई, सोचो आप उसको ट्रॉल कर रहे हो, कितना बुरा लगता है किसी को। हम किसी को ट्रॉल करने वाले कोई नहीं होते, अप्रिशिएट किया करो, डीमोटिवेट मत किया करो, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, हमारे हम अभी यंग एज के हैं, पता नहीं आगे चल के हमारे साथ क्या हो क्या नहीं हो, हमेशा हम खूबसूरत रहेंगे या हमेशा हम इसी एज में रहेंगे, कभी हमेशा एक जैसी एज नहीं होती है। तो कभी भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसके लुक्स को, लुक्स मैटर नहीं करते हैं, वो क्या चीज़ है, उन्होंने किस दम पे अपने आप को सेलिब्रिटी बनाया है। हम सब आमतौर पे इंसान है, वो भी हमारे जैसे इंसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी अगर आजकल देखो कंटेंट क्रिएटर्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जरूरी है मोटा हो पतला हो कैसा भी हो, कोई सांवला है कोई गोरा है तो हम ट्रॉल करेंगे क्या, हम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे? आपका एक ट्रॉल करना उसको डीमोटिवेट कर सकता है, वो जिस लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, वो वहीं पर रुक जाएगा। प्लीज अप्रिशिएट करो।
6: एशियन गेम्स में 21 सितंबर का दिन भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए शानदार रहा। पहले दिन जहां भारत ने 2 सिल्वर मेडल हासिल किए, वहीं दूसरे दिन भारत की झोली में 4 मेडल आए, यानी कि भारत के खाते में अब कुल 6 मेडल हो गए हैं। खास बात यह है कि इन 6 में से 5 मेडल शूटिंग में आए, जबकि 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में आया है।
0: जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय शूटरों ने धमाल मचा दिया है। आज खेल के दूसरे दिन भारतीय शूटर्स ने 3 और मेडल अपने नाम करके शूटिंग में मेडलों की संख्या 5 तक पहुंचा दी है। एशियन गेम्स में भारतीय शूटिंग टीम ने रजत पदक से अपना खाता खोला और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जिसमें इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शक के विनोद की तिकड़ी ने कुल 1898 अंक हासिल करके सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इलावेनिल ने महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अपना दूसरा सिल्वर मेडल जीता।
16: Since 2014, I have been associated with Gun for Glory and Gagan Narang Sports Promotion Foundation, and they have been the backbone of my shooting journey. Coach Neha has been with me throughout. I had the opportunity to work with Gagan, so I've been working with him for a very long time now. So getting to learn from his experiences, getting to learn what he has done already, I think that is some of a key learning instances for me through the years.
0: इलावेनिल महिला 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के दौरान गोल्ड जीतने के बहुत करीब थी, लेकिन अंतिम क्षणों में वो चूक गईं और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। इलावेनिल की इस सफलता पर उनके घर में जश्न का माहौल है।
17: कुछ बालने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो वो सारे घर का सब कुछ छोड़ दी, उसका ओनली एम टू विन मेडल्स ऐसा थी, तो उसका विश अभी थोड़ी पूरी हुई है, अभी भी बाकी है।
18: और मैं बहुत खुश हूँ कि 12 साल के बाद इतना बड़ा मेडल मिली है, और सिल्वर मेडल थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है फैमिली के लिए और भारत के लिए भी, एंड उनके कोच और मेंटर्स बहुत बढ़िया काम किए हैं ये 12 साल उनके साथ साथ देके, एंड हम सब बहुत प्राउड है।
0: एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में पदक जीतने के साथ ही देश के पदक अभियान की शानदार शुरुआत हो गई है। इलावेनिल के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली सोनम मस्कर ने भी शानदार प्रदर्शन किया और टीम इवेंट में सिल्वर जीता है। सोनम के परिवार में भी सफलता के बाद खुशी का माहौल है। एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत ने अब तक कुल 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 मेडल शूटिंग से आए हैं। आज भारत ने शूटिंग में कुल 3 मेडल जीते। मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में भारत ने 2 मेडल जीते। भारत के हिमांशु ढिल्लों को सिल्वर और रुद्रांक्ष पाटिल को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जबकि टीम इवेंट में हिमांशु, रुद्रांक्ष और पार्थ सिल्वर जीतने में कामयाब रहे।
19: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां पहले दिन शूटर्स ने हमें 2 मेडल दिलवाए थे, वही क्रम आज भी जारी रहा, यानी कि दूसरे दिन भी हमारे शूटर्स ने मेडल्स पर कब्जा किया। पहले टीम इवेंट यानी कि 10 मीटर एयर राइफल के टीम इवेंट में हमारी टीम को सिल्वर मेडल हासिल हुआ, वहीं दूसरी तरफ 10 मीटर एयर राइफल के इंडिविजुअल कैटेगरी में भी शूटर्स को मेडल हासिल हुए, जहां एक तरफ हिमांशु ढिल्लन सिल्वर मेडल पर कब्जा करने में कामयाब हुए, वहीं रुद्रांक्ष पाटिल को ब्रॉन्ज मेडल मिला।
0: एशियन गेम्स में भारतीय दल शूटिंग में शानदार प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रदर्शन के बाद उनका अगला लक्ष्य 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में मेडल जीतना है। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी, गुड न्यूज टुडे।
6: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
6: जहीर खान चेन्नई सुपर किंग्स के नए हेड कोच होंगे। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
0: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान चेन्नई सुपर किंग्स के नए हेड कोच होंगे। फ्रेंचाइजी ने आज इसका ऐलान किया। जहीर अब स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे। फ्लेमिंग 2009 से 2026 तक सीएसके के हेड कोच रहे। उनका टीम के साथ जुड़ाव 2008 में खिलाड़ी के तौर पर शुरू हुआ था। ये पहली बार होगा जब जहीर आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी के हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि वे पिछले कई साल से टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के विकास से जुड़े रहे हैं। गुजरात के राजकोट में खेले गए अंडर 19 दूसरे यूथ वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 103 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 341 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.1 ओवर में 238 रन पर ऑल आउट हो गई। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग अर्धशतक से चूक गए, वो 47 रन बनाकर रन आउट हो गए। वहीं यशवर्धन चौहान ने 122 रन की पारी खेली। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे 46वें चेस ओलंपियाड के 5वें राउंड में भारतीय मेंस टीम ने नीदरलैंड्स को 3-1 से हरा दिया। आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड्स के नंबर एक खिलाड़ी अनीश गिरी को हराया, जबकि वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने भी जीत दर्ज की। अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरीन के मुकाबले ड्रॉ रहे। इस जीत के साथ भारत 10 मैच पॉइंट के साथ उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर है।
6: 2000 साल पुरानी रोमन विरासत और उसी पर दौड़ती रोशनी की आधुनिक रंगीन दुनिया, क्रोएशिया के पुला में इतिहास और टेक्नोलॉजी का ऐसा संगम दिखा जहां प्राचीन इमारतें लाइट आर्ट का विशाल कैनवास बन गई।
1: एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा क्रोएशिया का ऐतिहासिक शहर पुला, 2000 साल पुरानी रोमन विरासत को खुद में समेटे ये शहर रात होते ही रोशनी और डिजिटल आर्ट का विशाल कैनवास बन गया। विजुएलिया लाइट फेस्टिवल में 16 जगहों पर 23 आर्टवर्क दिखाए गए। इस साल की थीम रही स्पेस एंड कॉस्मोस, यानी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड। प्रोजेक्शन, इंस्टॉलेशन और लाइट आर्ट ने शहर की पुरानी इमारतों को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया।
2: जब हमने 2013 में फेस्टिवल शुरू किया और इस शहर को देखा तो ये बिल्कुल एक खाली कैनवस जैसा लगा। प्रोजेक्शन और लाइट इंस्टॉलेशन ने पूरे शहर का रंग बदल दिया और इसे एक अलग नजरिए से देखना अद्भुत था।
1: और ये बदलाव सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रहा। यूक्रेनी कलाकार जूलिया शमशीवा के वॉइस ऑफ यूक्रेन ने पुरातत्व संग्रहालय की दीवारों को रोशन किया। वही मुख्य रोमन चौक पर जर्मन कलाकार क्लाउडिया रेह का फ्रिक्शंस और थाई आर्टिस्ट ग्रुप डिसाइड किट का अ बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स भी नजर आया।
3: बिल्डिंग्स लुक एस्टनिशिंग।
2: ये पुरानी इमारतें बिना लाइट के भी अद्भुत लगती हैं, लेकिन लाइट के साथ तो ये बिल्कुल जबरदस्त लगती हैं।
1: रोशनी ने आसमान और ब्रह्मांड की कल्पना दिखाई, तो कहीं ध्वनि, प्रकृति और इंसानी एहसास को एक नई कहानी में ढाला गया। हांगकांग के कलाकार च्यूंग वोंग का द टावर ऑफ लाइट, फिनिश कलाकार निको टियानिन का रेजोनेंस और फ्रेंच कलाकार लू चैपल का बर्ड सॉन्ग्स, हर प्रस्तुति ने दर्शकों को एक अलग दुनिया का अनुभव कराया। और पेड़ों के बीच मैजिक गार्डन ने तो पूरे माहौल को ही किसी जादुई दुनिया जैसा बना दिया।
4: मेरे लिए शांति का मतलब है सुकून से रहना, अपने परिवार के साथ, अपने आसपास और खुद के साथ शांत से रहना। मेरे लिए शांति की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, एक शांत घर, परिवार और प्रकृति के साथ सुकून भरी जिंदगी।
1: रोशनी की इस दुनिया में सिर्फ रंग और चमक नहीं थी, बल्कि शांति, पहचान और इंसानी रिश्तों की कहानी भी थी। डच कलाकार कात्या हेटमैन का पर्क पिचुम हो, या क्रोएशियाई कलाकार पेटार स्कुलाक का स्टेयर्स बिटवीन वॉर्स, या फिर इटालियन कलाकार एलेसांड्रो लुपी का आइडेंटिटी, हर कलाकृति ने अपने ही अंदाज में एक अलग एहसास जगाया। और नॉर्वेजियन आर्टिस्ट ग्रुप वॉइड का नादिर, जिसने शहर की सड़क को ही बदल दिया एक खुले आसमान के नीचे बने आर्ट स्पेस में।
5: For me, means being at peace.
2: मेरे लिए शांति सिर्फ एक विचार नहीं, ये गहरा एहसास है जिसे मैं अंदर से महसूस करता हूँ। शायद शांति का सबसे गहरा रिश्ता खामोशी से है। जब सब कुछ शांत हो जाए, वही असली शांति है।
1: एस्ट्रोनॉट की मस्ती से लेकर चमकती ऐतिहासिक दीवारों तक, पुला की इन रातों में इतिहास और भविष्य आमने सामने नजर आए। 2000 साल पुरानी रोमन विरासत और उस पर आधुनिक रोशनी की नई कहानी। विजुएलिया लाइट फेस्टिवल ने पुला को सिर्फ रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे शहर को बना दिया कला, टेक्नोलॉजी और कल्पना का एक शानदार कैनवास। ब्यूरो रिपोर्ट, मूवीज टुडे।
6: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे का जनन का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर जो है सिर्फ वीडियोस तस्वीरें भेजने के लिए है। और याद रहे जब भी आप अपना वीडियो या फोटो हमसे साझा करें, अपना नाम, शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
10: मुंबई में लालबाग शाहराजा के दरबार में अभिनेता शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जनन, नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का बहुत दुर्गम मुश्किल रास्ता। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रूपवे, अगले 10 दिनों तक होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं गणपति और उनके भव्य पंडालों की। महाराष्ट्र खासकर अगर हम देखें तो मुंबई में इस वक्त गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज आपको मुंबई के ऐसे पंडालों में लिए चलेंगे जहां पर अगर आप देखेंगे सजावट जो है श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर रही है। एक पंडाल में कृष्ण की जलमग्न हो गई नगरी द्वारका के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं, तो दूसरे में बप्पा पशुपतिनाथ के अवतार में आपको नजर आते हैं। आज आपको अमरावती का एक ऐसा पंडाल भी दिखाने जा रहे हैं जिसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि इस पंडाल में बप्पा भगवान कृष्ण के अवतार में रुक्मिणी के संग नजर आ रहे हैं। और इसी तरह एक पंडाल ऐसा भी है जहां पर गणपति को न्यायमूर्ति यानी जज के रूप में दिखाया गया है। गणपति की ये अलग अलग प्रतिमाएं और शानदार पंडाल उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंबई के पंडालों से। यकीनन लालबाग शाहराजा जैसे पंडालों में श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ है, लेकिन ऐसे कई पंडाल हैं जो अपनी साज सज्जा और थीम की वजह से चर्चा में लगातार बने हुए हैं। इन सभी पंडालों में रोज दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में भक्त उमड़ रहे हैं और नए नवेले अंदाज में बनाए गए पंडालों को देखकर हैरान भी हो रहे हैं। चलिए आपको शिवड़ी, परेल और घाटकोपर समेत गिरगांव के गणपति के दर्शन कराते हैं।

0: ये किसी कलाकार की कोरी कल्पना नहीं, बल्कि कृष्ण की वो द्वारका है जो श्राप से या संयोग से हजारों साल पहले समंदर में समा गई। पानी के अंदर उसी द्वारका को उसकी भव्यता के साथ साकार किया गया है, ताकि गणपति के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु द्वारकाधीश के धाम का एहसास कर सके। अद्भुत थीम बनाई गई है मुंबई के शिवडीचा राजा के पंडाल में, जो इस साल अपना 75वां गणपति उत्सव मना रहा है। पंडाल में एंट्री करते ही समुद्र के बीच से गुजरने का एहसास होता है। रोशनी के इफेक्ट से लगता है जैसे फ्लोर पर पानी भरा हो और सामने स्क्रीन पर नीला समंदर हो, जिसमें भव्य राजमहल नजर आता है और बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी होते हैं। पानी के अंदर का ये संसार वास्तविक लगता है, और खूबी ये है कि गहराई में शेषनाग पर विश्राम करते भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी नजर आती है। पंडाल के अंदर ये असाधारण थीम लोगों को अभिभूत करने वाली है।
1: ये साल हमारे शिवडी का राजा का 75 साल है। ये 75 साल में शिवडी में एक राजा मंडल के माध्यम से हम लोग ने बहुत सारे सामाजिक देखावया जो हर साल करते थे, ये साल हम लोग ने कुछ यूनिक करने का सोचा है। तो हम लोग ने अंडर वाटर द्वारका ये थीम सिलेक्ट करके जो गोमती और अरबी समुंदर के बीच में जो अपना द्वारका का डूब गई है वो द्वारका बनाने का एक प्रयास किया है।
0: मुंबई के शिवडीचा राजा का पंडाल हर साल अपनी यूनिक थीम की वजह से चर्चा में रहता है। इस साल पंडाल के मेन गेट पर ही भगवान कृष्ण की विशाल तस्वीर है और पंडाल के अंदर भी उनकी जीवन यात्रा को तस्वीरों के जरिए खूबसूरती से दिखाया गया है। बप्पा के दर्शन के साथ भगवान कृष्ण की द्वारका को देखने का अनुभव श्रद्धालुओं को गदगद करने वाला है। इस साल मुंबई के कई पंडालों में तीर्थ स्थलों और महत्वपूर्ण मंदिरों की थीम रखी गई है, जो बप्पा के भक्तों को खूब पसंद आ रही है। घाटकोपर के राजा के पंडाल की थीम पशुपतिनाथ मंदिर की है, तो गिरगांव के महाराजा के दरबार में बप्पा श्रीनाथ देव के अवतार में पधारे हैं। वहीं परेल में बप्पा दिव्य पंचमुखी हनुमान जी के रूप में नजर आ रहे हैं। घाटकोपर के राजा ने इस साल नेपाल के पशुपतिनाथ का स्वरूप धारण किया है। गले में बाहों में रुद्राक्ष, सर्प की माला, एक हाथ में धरती और साथ में प्रकृति, प्रकृति यानी जंगल, पशु और पक्षी।
2: मुंबई में ही आप पशुपतिनाथ महाराज का दर्शन करिए। मेरे साथ तमाम श्रद्धालु भी इस समय मौजूद हैं और अब तस्वीरें सीधे गणपति बप्पा की तरफ मोड़ते हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जी हां, नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ महाराज को मुंबई के घाटकोपर इलाके में बसाया गया है। घाटकोपर का राजा के नाम से ये पंडाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस साल अपना 26वां साल मना रहा है पशुपतिनाथ महाराज यानी कि जंगल के राजा, और पूरी की पूरी थीम जो है उस पर ही दी गई है। ऊपर से नीचे देखें बप्पा इस समय बहुत ज्यादा सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बारात इन्होंने जानवरों के साथ निकाली है वो देखने लायक बन रही है। और देखिए हर जगह जो जानवरों की तस्वीरें जो जंगलों में रहते हैं यहाँ पर लगा रखी है। और पशुपतिनाथ महाराज की क्या खासियत है, क्या डिटेल है, वो भी पोस्टर के जरिए यहाँ पर लोगों ने बना रखा है।
0: घाटकोपर की महाराजा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी चीज मांगी जाती है वो मिल जाती है।
3: श्री गणेश आज बैठे विराजमान शिवलिंग पे और उसके शिवलिंग के ऊपर जटाधारी है और श्री गणेश बैठे शिवलिंग पे और इसमें आज 25 बर्ड्स जैसे कि पशुपतिनाथ के जो भी है प्रकृति में आते हुए वो सब गणेश भक्त जो देख रहे हैं। प्रकृति एक पशुपतिनाथ के ऊपर बनाई गई है और विचारधारा मंडल के सभी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनके दिमाग में आई कि कुछ यूनिक किया जावे और इस तौर पे ये सब यूनिक किया गया है। और इस घाटकोपर के राजा की प्रकृति में आप देख सकते हो कि रुमाल भी चढ़ाए जाते हैं, जिसे को मन्नत के गणपति माने जाते हैं।
2: क्या कुछ लिखते हैं लोग?
3: क्या होते हैं कि करीबन
2: वादा से बोलूंगा, थोड़ा सा दिखाएं रुमाल जी, आप बताते हैं
3: जी। आज 2020 से अपना लॉकडाउन के पहले से जब इधर किसी की मन्नत पूरी हुई थी, जो श्री गणेश के चरणों से दुर्वा और कंकू लेके अपनी मन्नत मान के गए थे, अपने तिजोरी में रखे थे, एक साल के बाद उनकी मन्नत पूरी, उन्होंने रुमाल रखा। तो अभी उसकी प्रख्या थी घाटकोपर राजा के साथ, रुमाल वाले गणपति बापा के नाम पे भी पहचानी जाती है।
2: अच्छा, आए कोई ऐसा भी धन्यवाद लिख के भेजा हो किसी ने पापा को?
3: या जी, धन्यवाद लिख के भेजा है। धन्यवाद लिखने के बाद पापा के चरणों में काफी ऐसी चीजें अर्पण की गई है जो पापा के लिए ही है, जैसे कि पापा की स्थापना की मूर्ति है चांदी की, वो भी अर्पित की गई है मंडल को, जिनकी मन्नत पूरी हुई है। बस यही कहना चाहता हूँ, पापा सबके लिए खुशियां लावे।
0: पशुपतिनाथ के बाद चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं पंचमुखी हनुमान जी के विशाल प्रतिमा भव्य रूप, आगे अट्ठहास करता दशानन और बप्पा के साथ भगवान राम और लक्ष्मण।
2: मैं इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के परेल इलाके में विद्यार्थी सेवा मंडल में, और यहां के गणेश जी के दरबार में आप देखिए किस तरीके से उनकी एक विशाल प्रतिमा को विराजमान किया गया है। बेहद ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और जब इनका आगमन हुआ था तो एक बड़ी संख्या में आ

0: उन्हीं से संबंधित आसपास की भी थीम है, क्या कुछ खास अपडेट है ये भी जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा तस्वीरों और दृश्यों में देख करके ये चीजें पता चल रही है, कहीं ना कहीं श्री राम की लीला यहाँ पर दिखाई जाने वाली है। बप्पा तक हर कोई उनके चरणों तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए पास में ही एक छोटे बप्पा को भी यहाँ पे विराजमान कर दिया जाता है। यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, वो यहाँ आकर के उनके चरणों का दर्शन करते हैं और अपनी बातें रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ के पदाधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज आप सब यहाँ पे आ जाए। गणपति बप्पा
1: मोरिया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरिया।
0: क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपने गणपति बप्पा की प्रतिमा यहाँ पे है। शुरुआत आपसे करते हैं, अध्यक्ष महोदय क्या नाम है साहब आपका?
2: संतोष ड्यूटे।
0: संतोष भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर बप्पा लग रहे हैं, किस किरदार में है, किस अवतार में है, कितना साल इस समय आप मना रहे हैं और क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
2: इस साल का हमला 68वां साल है, जो कि एक कथा है प्रभु श्री राम का रामायण में। पंचमुखी हनुमान रूप एक कभी लिया था, ये भक्तों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए इस साल हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट यानी पंचमुखी हनुमान का करने की एक कोशिश की थी, जो हम लोग की सफल हो गई है।
3: बप्पा के इस 23 फीट ऊंची प्रतिमा की मुंबई में खूब चर्चा है। परेल का विद्यार्थी सेवा मंडल इस बार 68वां साल मना रहा है और इस साल भी पंडाल में मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहां लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है और जरूरी दवाओं का भी इंतजाम है। बप्पा की भव्य प्रतिमा सजे संवरे खूबसूरत पंडाल और दर्शन के लिए उमड़ रही भारी भीड़। जिन पंडालों की चर्चा ज्यादा है, उनमें गिरगांव के महाराजा भी हैं, जहां इस साल बप्पा नाथद्वार के श्रीनाथ देव के अवतार में पधारे हैं।
4: मैं मौजूद हूं मुंबई के गिरगांव का महाराजा के दरबार में, और इसलिए ये मंडल बहुत ज्यादा वायरल है क्योंकि इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर, और एक अजीब सी बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। थोड़ा सा कैसा लगा बेटा?
5: बहुत फन है, एकदम अमेजिंग, वेरी नाइस।
4: क्या नाम है आपका?
5: व्यूमा।
4: डर नहीं लगा आपको वहाँ पे?
5: नहीं।
4: मतलब एंजॉय कर लिया ना?
5: हाँ।
4: ओके ओके, थैंक यू। आ जाओ आप लोग आ जाओ। कैसा लगा?
5: अच्छा,
4: मजा आया। आपको कैसा लगा भाई? आप लोग तो मंडल वाले हो, एक्सपीरियंस होगा आपको
5: ना।
4: दिन में कितनी बार ऐसे जाते आते हो?
5: तीन चार
4: बार। अच्छा राहुल, आप तो देखते रहोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वगैरह आते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं लोग?
5: लोग को बहुत मजा आता है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है यहाँ पर।
4: ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो इसलिए ये तराफा लगाया हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन आपको कराते हैं। इस बार ये पंडाल जो है 95 ईयर्स पूरा कर चुका है। ये देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है, और इन्हें देखने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आते हैं।
3: गिरगांव की शोहरत चौपाटी की वजह से भी है, जहां तमाम बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, पर यहां के गणपति के पंडाल की भी अपनी शान है। इस साल करीब 33 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। 52वें साल में पंडाल को और सुंदर बनाने के लिए पानी का पुल भी बनाया गया है, लेकिन बप्पा का श्रीनाथ देव स्वरूप सबसे अलग और सबसे भव्य है।
6: हमारे मंडल की खासियत है 95 ईयर से पूरा का पूरा पर्यावरण जो इको फ्रेंडली गणपति है, यानी अब कहाँ से भी मिट्टी को छुएंगे तो मिट्टी मिलेगी, पप्पा के पैर के नाखून से लेके
0: प्लास्टिक का पैर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसी बात पे गणपति बप्पा
1: मोरिया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरिया,
6: गिरगावचा महाराजाचा
1: जय हो।
3: घाट कोपर हो या परेल, शिवडी हो या अंधेरी या फिर लालबागचा राजा, मुंबई बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। सामान्य लोग हो या विशेष, सभी बप्पा के दरबार में जा रहे हैं, सर झुका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए गणेशोत्सव की धूम मुंबई के अलावा अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रही है। अमरावती के कई खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर बप्पा को अलग अलग अंदाज में स्थापित किया गया है। कहीं बप्पा भगवान कृष्ण के रूप में आपको रुक्मिणी के संग नजर आएंगे, तो कहीं पर उनकी प्रतिमा अंजीर और मखाने से तैयार की गई है। ऐसी

माओं को देखकर श्रद्धालु गदगद हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी खूब चर्चा हो रही है। सूरत में तो गणपति के पंडाल के तौर पर एक गांव का निर्माण बकायदा किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं।

0: ये अंदाज तो कान्हा का है, पर देखिए उनकी छवि में बाप्पा की ये प्रतिमा कितनी मनमोहक है। फूलों से सजे दरबार में रुक्मणी का पकड़े हाथ और चलने को तैयार। जो कृष्ण भक्त हैं वो जानते हैं कि ये रुक्मणी हरण का दृश्य है, लेकिन खूबी ये है कि यशोदा नंदन की जगह गौरी नंदन है।
1: अलग अलग थीम पर प्रतिमाएं जो है विराजमान होती है, लेकिन हम फिलहाल अमरावती में है जो कृष्ण कन्हैया की ससुराल भी कही जाती है, और उसी धरती पर जो है कृष्ण कन्हैया जो है अपनी जो सखी है रुक्मिणी उसे जो है यहाँ से हर ले जा रहा है, क्योंकि ये जगह ही वह है। अमरावती जो है वो कृष्णा का ससुराल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से जो है कृष्ण भगवान ने जो है रुक्मिणी को हर लिया था, ऐसी कथाओं में जो है पुरातन कथाओं में कहा जाता है। उसी धरती पर जो है गणपति बाप्पा को जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुंदर यहाँ पर इंटीमेट ज्वेलरी से इतना खूबसूरत सजाया है, और दुल्हन बनी रुक्मिणी जो है वो उसे गणपति बाप्पा जो है कृष्ण अवतार में उसे हर ले रहे हैं। मानो ये भूमि ही वो है जहाँ से कृष्ण भगवान ने जो है वो रुक्मिणी को हर लिया था, और इसी धरती पर जो है गणपति बाप्पा कृष्ण के रूप में है।
0: अमरावती में कृष्ण रूप वाली बप्पा की ये प्रतिमा भक्तों को खूब पसंद आई है, और दावा किया जा रहा है कि इस प्रतिमा को इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
2: जैसे अम्बा नगरी की कहानी है ना, कि यहाँ से मतलब मूर्ति को देख के यहाँ पे मतलब पता चलता है कि जैसे कृष्ण ने यहाँ से रुक्मिणी का हरण करके उनको भगा के शादी की थी अपने यहाँ कौंडन्यपुर में, है ना। तो वहाँ का ये दृश्य है जैसे आप देख रहे हैं, तो देख के ही मतलब बहुत अप्रतिम ऐसा देखा हुआ यहाँ पे हमने सादर किया है कृष्णा नगर में।
0: अमरावती में ही बापा की ये यूनिक प्रतिमा देखी। करीब 7 फीट की गणपति को अंजीर और मखाने से बनाया गया है, जबकि ये प्रतिमा 21 किलो सुपारी से बनी है। बापा की इस प्रतिमा के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश है।
1: हम फिलहाल है बडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में, जहाँ पर जो है हर साल जो है इको फ्रेंडली बापा की प्रतिमा जो है निर्माण करते है। पिछले वक्त इन्होंने खारक से बनी बापा की प्रतिमा बनाई थी, लेकिन इस वक्त जो है अंजीर जो अमूमन जो है ड्राई फ्रूट में गिना जाता है, वो उस ड्राई फ्रूट से ये बाप्पा की सुंदर 7 फीट की मूर्ति जो बनाई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 31 किलो जो है वो अंजीर लगे हैं, और साथ ही जो बाप्पा की धोती बनाई गई है वो धोती है मखाने से बनाई गई है। इसमें मूर्ति इतनी सुंदर दिखती है, गणपति बाप्पा जो है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली यहाँ पर है, क्योंकि अब जो है पर्यावरण के रक्षण के लिए हर कोई गणपति बप्पा आस्था के साथ पर्यावरण की भी आस्था जो है वो बरकरार रखे, इसीलिए हर
0: बप्पा की भक्ति श्रद्धालुओं को इस पंडाल तक खींच लाई है। लेकिन यहाँ प्रतिमाओं के निर्माण में जो नया प्रयोग है उसे देखकर खुशी लाजिमी है। अब आपको ले चलते हैं सूरत, जहाँ गाँव की थीम पर बने इस पंडाल को देख कर आप दंग रह जाएंगे। हूबहू गांव जैसा माहौल, कुएं, तालाब, गाय, बैल, कच्चे घर और घरों के अंदर पुरानी चीजें। गांव की इन्हीं गलियों से गुजरते हुए बापा के दर्शन होते हैं।
3: गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग गणेश पंडालों में अलग अलग थीम देखने को मिल रही है, और इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत के सरोली इलाके में, जहां पर आप देखेंगे पूरा एक गांव तैयार किया गया है। जो हम जहां खड़े हुए हैं, ये जो घर आपको नजर आ रहा है, ये भी गणेश पंडाल का एक हिस्सा है, और आगे आसपास आप जो देखेंगे ये भी पूरा गणेश पंडाल का ही एक हिस्सा है, जहां पर गांव का एक जो जीवन हुआ करता था पहले उसे यहां पर बताने की कोशिश की गई है। यहां पर तालाब भी बनाया गया है, कुएं भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो घर है, घर में किस तरह से पहले सामान हुआ करते थे, तो सारी चीजों को यहाँ पर गणेश पंडाल में बताने की कोशिश की गई है आयोजकों द्वारा। तो अब हम आपको अंदर की भी तस्वीरें ले जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कि भला इस नजारे को देखकर आप भी सोच रहे होंगे तो ये किस तरह का गणेश पंडाल है, ये तो पूरा गांव जैसा नजर आ रहा है। तो हम बिल्कुल आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस गणेश पंडाल की और भी क्या विशेषता है। जैसे कि इस घर में प्रवेश करते ही आपको पुराने गांव का जीवन जो है याद आएगा, पुरानी चीजें याद आएंगी। यहाँ आप देखेंगे जो पुराने जमाने में जो टेलीफोन चला करते थे, उस टेलीफोन को भी यहाँ पर रखा गया है। ये टैप रिकॉर्डर चला करता था, जो आज की पीढ़ी जिसे नहीं देखा है, जिसे नहीं जानती है, तो ये टैप रिकॉर्डर रखा है। ये कैसेट वगैरह है जो अब एकदम लुप्त हो चुकी है वो कैसेटों को भी यहाँ पर रखा गया। तो ये पुराना जीवन जो गाँव का हुआ करता था उसे यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और ये गणेश पंडाल ही है, ये कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, लेकिन गांव के स्वरूप में गणेश पंडाल तैयार किया गया। यहाँ आप देखेंगे पूरे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, पुराने जमाने में किस तरह के बर्तन हुआ करते थे, किस तरह से चूल्हे पर खाना बनता था, क्या क्या आइटम होते थे, लालटेन किस तरह से जलती थी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर गणेश पंडाल में बताई गई है। लोगों को गाँव से जोड़ने का प्रयास किया गया।
0: सूरत के उलपाड़ इलाके में किया गया ये प्रयोग हैरान करने वाला है, क्योंकि इसे बनाने वालों ने आधुनिक चकाचौंध की बजाय ग्रामीण संस्कृति को चुना है। जैसी भावना वैसी भक्ति, और बापा तो हर रूप में भव्य और सुंदर देखते हैं, इसीलिए बापा को भी कलाकार अलग अलग छवियों में गढ़ते हैं। पंडालों को भांति भांति से सजाया जाता है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बापा के ये अद्वितीय और अद्भुत रूप भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। एक से बढ़कर एक भव्य और अद्भुत पंडालों में बप्पा शान से विराजमान है। पंडालों में कहीं सामाजिक संदेश दिए जा रहे हैं, तो कहीं पर पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तेलंगाना के वारंगल में बप्पा के एक अनोखे स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ पर बप्पा न्यायमूर्ति के रूप में विराजमान है, जबकि एक दूसरे पंडाल में बप्पा का नोटों से श्रृंगार किया गया है। देखिए रिपोर्ट।

0: देश भर में सजे इन गणेश पंडालों में इन दिनों आस्था और भक्ति के साथ साथ कला संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इन्हीं में एक गणपति पंडाल तेलंगाना के वारंगल में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। भगवान गणेश को हम मंगल मूर्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन तेलंगाना के वारंगल में इस बार बाप्पा एक बिल्कुल अनोखे और दिव्य रूप में विराजमान हैं। सुप्रीम कोर्ट की थीम पर तैयार किए गए इस पंडाल में बाप्पा न्यायमूर्ति गणपति के रूप में विराजमान हैं। वेदा गणपति यूथ एसोसिएशन की ओर से तैयार किए गए इस पंडाल में कोर्ट रूम जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कटघरा भी बनाया गया है, वकील भी मौजूद हैं और न्यायमूर्ति के रूप में बाबा की मौजूदगी भी है। क्योंकि भगवान गणेश सभी के लिए न्याय और निर्णय के सर्वोच्च प्रतीक हैं, इसी सोच के साथ इस बार पंडाल की इस खास थीम को चुना गया है। नोटों की माला, फूलों का हार, दमक रहा है बाबा का दरबार। ये तस्वीरें तेलंगाना के पालवंचा की हैं, जहां बाप्पा के पंडाल को करेंसी नोटों से सजाया गया है। यहां दो अलग अलग पंडालों को करेंसी नोटों की थीम पर सजाया गया है, लेकिन इन पंडालों को देखकर जहां हर कोई हैरान है, वहीं सजाने के लिए प्रयोग की गई रकम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहले बापूजी नगर में स्थापित किए गए पंडाल की सजावट पर करीब 1.40 करोड़ रुपए के नोट लगाए गए थे, जबकि यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंडाल ने गणेश प्रतिमा को करीब 1.50 करोड़ रुपए के करेंसी नोटों से सजाया। दोनों की रकम को जोड़ लें तो बापा के पंडाल को सजाने के लिए 2.90 करोड़ के करेंसी नोट प्रयोग किए गए हैं, जिनमें 10 और 20 रुपए के नोट से लेकर 50, 200 और 500 रुपए के नोट मौजूद हैं। इनमें बापा की प्रतिमा को पहनाए गए नोटों के हार के साथ ही छत और पंडाल की दीवारों को भी नोटों की लड़ियां बनाकर सजाया गया। अब इस पंडाल को ही देख लीजिए, जिसमें खाटू श्याम मंदिर की अनोखी झांकी बनाई गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने इस बार खाटू श्याम की एक खास धार्मिक थीम तैयार की है, जिसमें बापा को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पंडाल में आने वाले हर शख्स पहले भगवान गणेश और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। इस गणपति पंडाल की बारीक सजावट और धार्मिकता से भरपूर माहौल ही लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है।
1: आजाद हिंद मंडल का 99th ईयर थे, इसमें खाटू श्याम बाबा का हमने दरबार सजाने का इसमें मानस किया था और उसको 99th ईयर जो है हमारा, उसमें खाटू श्याम बाबा का पूरा दरबार हमने सजाया है। 1928 में अब हमारे मंडल की स्थापना थी और तब से लेके अब तक कई साल से हम ये हर साल गणेश उत्सव का जो है आयोजन करते हैं। मैं रेवन पुसतकर इस साल के गणेश उत्सव का सचिव हूँ।
0: अब जालना की ये तस्वीर देखिए, जहाँ रामायण में लंका कांड के एक दृश्य को बेहद अनोखे अंदाज में दर्शाया गया। कहने को ये श्री अनोखा गणेश मंडल का पंडाल है, लेकिन इसी पंडाल में जब बजरंगबली द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के होश में आने का प्रसंग तकनीक के साथ साकार किया गया, तो हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाने का ये दृश्य वहाँ मौजूद लोगों को खूब आनंदित कर गया। गणपति उत्सव के दौरान बापा अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। पूरे देश से गजानन के ऐसे ही अनेकों दिव्य और भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं, जहां पहुंचकर श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोस आ रहे हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से प्रमोद कुमार ने बप्पा की खूबसूरत प्रतिमा घर में स्थापित किए, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान भगवान गजानन को फल और मिष्ठान का बकायदा भोग लगाया गया है। मंगल मूर्ति के सिंहासन के पीछे मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू भी आपको नजर आएगा। और दूसरी तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर से अंश ने दूसरी तस्वीर भेजी है, यहां पर गणेशोत्सव के दौरान बप्पा का पंडाल शानदार तरीके से सजाया गया है, खूबसूरत गुलाबी पगड़ी में विराजमान बप्पा के सिंहासन को भी गुलाबी कलर से बिल्कुल सजाया गया है, पूरा परिवार भगवान गजानन की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुंदर के बीच शॉर्ट आबू पर विराजमान भगवान गजानन नाव पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का है बहुत दुर्गम मुश्किल रास्ता। 30 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकांडा देवी रूप, अगले 10 दिनों तक होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी पर निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने के व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा है वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
7: मुंबई के घाटकोपर में नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, घाटकोपर के राजा के नाम से जाना जाता है पंडाल। जंगल की थीम पर तैयार किया गया बप्पा का पंडाल, मुख्य प्रतिमा के साथ अन्य जानवरों की प्रतिमाएं भी सजाई गई। पिछले 26 साल से घाटकोपर के राजा पशुपतिनाथ थीम पर रही किए जाते हैं स्थापित, हर साल बप्पा का होता है बिल्कुल नया श्रृंगार। पंडाल में बप्पा को शिवलिंग पर विराजमान दिखाया गया, गजानन की ये प्रतिमा करीब 52 फीट ऊंची। बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और पंडाल की सुंदरता को निहार रहे हैं। मुंबई के गिरगांव में भी सजा बप्पा का अद्भुत दरबार, यहां पर स्थापित विग्रहता की अद्भुत प्रतिमा लोगों को कर रही आकर्षित। राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में यहां पर बप्पा हैं विराजमान, लगभग 33 फीट ऊंची प्रतिमा। बड़ी प्रतिमा के साथ यहां पर गजानन की छोटी प्रतिमा भी है मौजूद। बप्पा की दोनों ही प्रतिमाएं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, कई स्थानों की मिट्टी से प्रतिमा तैयार की गई। पंडाल बच्चों को आकर्षित करने के लिए पानी पर पुल वाली थीम पर बनाया गया है रास्ता, बच्चे कर रहे हैं खूब एंजॉय। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दुर्गा रूप में हो रहे हैं बप्पा के दिव्य दर्शन, राक्षसों का संहार कर बुराई मिटाने का संदेश। गजानन की 6 भुजाधारी प्रतिमा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। इस पंडाल में पिछले 90 वर्षों से हो रहा है बप्पा की स्थापना, हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग। पुणे में 7 दिन बप्पा की आराधना के बाद भक्ति भाव से की गई बप्पा की प्रतिमा की विदाई। बप्पा की विदाई में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए, डीजे की धुन पर जमकर थिर गए। जालना में गणेश उत्सव के मौके पर चमनचा राजा गणपति मंडप में मनाया गया खाटू श्याम बाबा का भव्य दृश्य। बड़ी संख्या में दर्शन को आ रहे हैं भक्त, जालना शहर के साथ ही आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस्पात नगरी भिलाई में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय तमिलनाडु के गणेश मंदिर में आयोजित हुआ विघ्नहर्ता का भव्य कल्याणम महोत्सव। ढोलगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के साथ निकाली गई बप्पा की बारात। वैदिक रीति रिवाज के साथ हल्दी, मेहंदी और मंडप की रस्में भी निभाई गई, इस अनूठी धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई लोगों की गहरी आस्था। अकोला में पानी की कमी के चलते 5 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का नहीं किया जाएगा विसर्जन। प्रशासन ने बड़े गणेश पंडालों से किया मूर्ति विसर्जन टालने का आह्वान, केवल छोटी मूर्तियों का ही होगा विसर्जन। कई गणेश मंडलों ने प्रशासन की अपील को किया स्वीकार। घरेलू गणपति और छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड किए जा रहे हैं तैयार। छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले बड़ी प्रतिमाओं के साथ निकाली जा रही है शोभा यात्रा। सूरत में समुद्र के बीच टापू पर विराजमान भगवान गजानन नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते भक्त। यहां विराजमान गणपति बप्पा की प्रतिमा को लेकर स्थानीय लोगों की करीब 50 साल पुरानी मान्यता है। पौड़ी में अनूठी पत्ती मेले का आयोजन हुआ। ग्रामीण ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। मान्यता के अनुसार पेड़ के सबसे ऊपर पत्तियां, पहाड़ी फल और कुछ पैसे रखे जाते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने और मेले का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण शामिल हुए। पंजाब के फरीदकोट में 57वें बाबा शेख फरीद आगमन पर्व मेले का हुआ शुभारंभ। खेला मुबारक से शुरू हुआ विरासती काफिला शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। कई स्कूलों के छात्रों ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम की मिसाल। 23 सितंबर तक चलेगा बाबा शेख फरीद आगमन मेला। देखने को मिलेंगे पंजाब की संस्कृति के अद्भुत रंग। मेले में प्रदर्शन का भी हो रहा है आयोजन। स्थानीय दस्तकारों का अपना हुनर दिखाने का मौला मौका। चमोली में चल रहे 2 दिवसीय बद्रीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल का भव्य समापन। देश के प्रथम गांव माणा में फहराया गया तिरंगा। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित किया गया मेला। कल्चरल फेस्टिवल में देखने को मिला उत्तराखंड की कला। अद्भुत रंग कलाकारों ने पेश की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। कल्चरल फेस्टिवल में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। स्थानीय दस्तकारों ने अपने हुनर दिखाए। मुख्यमंत्री धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। स्थानीय लोगों के साथ मनाया जश्न। सहारनपुर में भव्य गोगा मेले का आयोजन हो गया। आस्था परंपरा और इतिहास। सहारनपुर में 800 साल से लगातार जारी है मेले की परंपरा। दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। नीले निशान और छड़ियों के साथ पहुंचे श्रद्धालु। जयकारों की गूंज। गोगा मेले को लेकर भव्य लाइटिंग रोशनी से नहाया पूरा शहर। सहारनपुर में गोगा मेले को लेकर किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे से नजर। एनटीएफ के राष्ट्रीय सम्मेलन का मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंची सह निर्माता अनुप्रिया नागर। दिल्ली फिल्म हनुमान अंश की कास्ट से मिले गृहमंत्री अमित शाह। फिल्म की सफलता पर बधाई दी। नागपुर में 23 सितंबर के बाद अच्छी बारिश का अनुमान। गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में 24 और 25 तारीख को बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हैदराबाद में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी। राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का ढोलंगाड़ों के साथ हुआ जश्न। बीजेपी ने अजमेर, अलवर, उदयपुर, पाली में मेयर पद जीते। त्योहारी सीजन में संभाजीनगर में फूड डिपार्टमेंट की बड़ी कामयाबी। 4,765 किलो नकली मावा जब्त। 7 लाख रुपए कीमत। जहीर खान आईपीएल 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच नियुक्त। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम की जर्सी लॉन्च। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में लॉन्च। रेगिस्तान में दुर्लभ कैराकाल के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। वन विभाग की टीम ने रेडियो कॉलर युक्त मादा कैराकाल को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। तीर्थयात्रियों के लिए IRCTC का नया पैकेज। हवाई जहाज से करें और ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन। 3-स्टार होटल में स्टे। सुंदरकांड देवी रोपवे को वार्षिक रूटीन मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण के लिए 21-30 सितंबर 2026 तक रखा जाएगा बंद। छत्तीसगढ़ के पालोद में एक किसान का अनूठा देश प्रेम। अपने खेत में लगाए देश के लिए जवान जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की प्रतिमाएं। किसान लोकेंद्र साहू हैं क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेटर सूर्य कुमार और अन्य खिलाड़ियों की प्रतिमाएं भी उन्होंने स्थापित की। आगरा के एक सरकारी स्कूल में करीब 30 रिटायर्ड दोस्तों का ग्रुप अपना बचपन जीने पहुंचा। सभी ने स्कूल पहुंचकर खूब मस्ती की, कोई नाश्ता हुआ नजर आया तो कोई स्कूल में दौड़ता हुआ नजर आया। दरअसल ये सभी दोस्त रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, अकाउंटेंट, शिक्षक और अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे शाहरुख खान, बप्पा के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। शाहरुख खान पत्नी गौरी, बेटी सुहाना के साथ पहुंचे। पंजाब के दौरे पर बठिंडा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। भारत के पहले गांव माणा से नशा मुक्त अभियान की हो गई शुरुआत। बद्रीनाथ धाम में मानसून के बाद लौटी रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उठा रहे हैं लुत्फ। बद्रीनाथ धाम में दत्तकुंड पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, पवित्र स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से अच्छी खबर, भैरव लेम के पास नाव के पलटने से फंसे 9 मछुआरों को बाहर निकाला गया। एशियन गेम्स 2026 का आज दूसरा दिन, पहले दिन भारत के हिस्से में आए 2 मेडल्स, आज भी कई खेलों में पदक की उम्मीद। भारत को एशियन गेम्स 2026 में 3रा मेडल हासिल हुआ, मेंस 10 मीटर एयर राइफल में मिला सिल्वर। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी भारत को मिला मेडल, 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल्स में सुचिका ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का डबल धमाल, हिमांशु ने जीता सिल्वर, रुद्रांश को ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स की पदक तालिका में फिलहाल भारत 10वें पायदान पर। चीन के शहर तियानजिन में 10वें पारंपरिक अल्पसंख्यक स्पोर्ट्स का शुभारंभ हुआ। उइगुर स्कूली छात्राओं ने मात्र 15 सेकंड्स में 8 बार चेहरे बदले। समारोह में विभिन्न जातीय समूहों के लोग भी शामिल हुए। चीन के हेनान प्रांत में चल रहे 12वें एक्रोबैटिक्स गोल्डन नेशनल अवार्ड फेस्टिवल का भव्य समापन। फिनाले में पहुंचने वाले 26 प्रदर्शनों में से 10 ने जीते पुरस्कार। महोत्सव के दौरान चाइना एक्रोबैट्स एसोसिएशन और रासक टू सोलेल के साथ एक समझौता भी हुआ। चीन में नेशनल डे की तैयारियां शुरू, तैयार किए जा रहे हैं 18 मीटर के फूलों की टोकरी। आर्टिफिशियल फूलों की इस टोकरी में समृद्धता का प्रतीक देखने को मिलेगा। फ्रांस की रस्सी पर चलने वाले कलाकार तातियाना का कमाल, लगभग 100 मीटर ऊंचाई पर एक रस्सी पर चलकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार ने कहा कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य उस क्षेत्र को श्रद्धांजलि देना है जो कभी देश में कोयला खनन का केंद्र था। 6 साल की चीनी लड़की ने रूबिक क्यूब को हल करने में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिल्म हनुमान अंश की शानदार कमाई, 45वें दिन लगभग 14 करोड़ का आंकड़ा पार। फिल्म हनुमान अंश ने 45वें दिन तक भारत में लगभग 272 करोड़ की कमाई की, वर्ल्ड वाइड 330 करोड़। बहुत ही छोटे बजट में बनी है फिल्म हनुमान अंश, लगभग 2 करोड़ आया था बजट। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दुविंदु स्टार मिर्जापुर ने भारत में कमाया 200 करोड़। रश्मिका मंदाना का नजर आया एक्शन अवतार, मैसा का टीजर रिलीज। करण जौहर ने एक नई फिल्म की घोषणा कर दी, रॉक के संस्थापक आर.एन. काव की जिंदगी पर आधारित होगी ये फिल्म। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 11 अगस्त 2028 तय की है। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्मेकर रामकमल मुखर्जी की नई फिल्म कॉमन आदमी का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में नए कलाकार अनुज अनिल शर्मा और श्रीजा दत्त साथ नजर आएंगे। ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज दोपहिया सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी। रश्मिका मंदना की फिल्म मायसा का हिंदी ट्रेलर हुआ आउट, टीजर में रश्मिका का अलग अंदाज। फिल्म में रश्मिका का लुक सोशल मीडिया पर बना चर्चा का मुख्य विषय। राष्ट्रीय बैनर की फिल्म ये प्रेम मोल लिया का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: मुंबई सहित देश भर में गणेश उत्सव की भव्य रौनक देखने को मिल रही है। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान मुंबई के किंग यानी वो लालबाग चौराहे के दर्शन करने के लिए पहुंची। शाहरुख के साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान भी मौजूद रहीं। बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे शाहरुख खान यहां ट्रेडिशनल लुक में नीले रंग की कुर्ती में बिल्कुल नजर आए। गौरी ने येलो कलर का खूबसूरत सूट पहना हुआ था। वहीं पर देखिए सुहाना खान ग्रीन कलर के एथनिक आउटफिट में नजर आई। बप्पा की आरती में लीन शाहरुख खान ने भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें देखिए।

0: वो न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारे का जनन का वीडियो बनाकर हमें भेज देना है। हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र के पुणे से ईरा जैन ने गणेश उत्सव की तस्वीरें हमसे शेयर की हैं। शानदार लाइटिंग के साथ बप्पा का पंडाल सजाया गया है। सुंदर फूल और मालाओं के साथ सजे पंडाल में बप्पा की मूर्ति ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। भगवान गजानन को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, राजस्थान के राजसमंद से कार्तिक के आवास की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर मंगल मूर्ति की अनुपम प्रतिमा स्थापित की गई है। बाल स्वरूप में भगवान गजानन भक्तों को अभय होने का वरदान देते हुए नजर आ रहे हैं। सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए हुए बप्पा की विधि विधान से पूजा जारी है। नन्हे कदम मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदन कानन जू से आई ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं, क्योंकि देखिए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 5 नन्हे ओरांगुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा बात हो रही है जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे। गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि अब इनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो गई है बिल्कुल, और फीडिंग ठीक चल रही है, और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां फिर से वापस लौट आई। नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास फोकस किया जा रहा है।
1: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी, क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है। साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है। दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन 5 नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदन कानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी 5 का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदन कानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, यानी नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये 5 ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
0: मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास एपिसोड में हम बच्चों को शुभ संस्कार किस प्रकार दें, अलग अलग उम्र में किस तरह से उपाय करें जिससे उन्हें शुभ संस्कार मिले, इस बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसे बचपन से गायत्री मंत्र का जप करना अवश्य सिखाइए। हर बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करना सिखाना चाहिए। अगर बच्चा बचपन से ही गायत्री मंत्र का जप करेगा तो बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि तेज होगी और उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी।
0: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे 22 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:43 तक, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 7:06 तक, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चे किस प्रकार संस्कारी बनते हैं, इसके पीछे की रहस्य क्या होते हैं।
1: जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि आप कौन से उपाय करें, अपने बच्चे के किस उम्र में किस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा संस्कारी बने। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार संस्कारी बनते हैं और इसके पीछे की कुल स्थिति क्या है। देखिए, किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर 21 साल तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है और जन्म से लेकर 21 वर्ष तक जो आदतें आपके बच्चों को पड़ती हैं वो आगे चल करके संस्कार का रूप ले लेती हैं। खान पान से लेकर मित्रता तक, पूजा उपासना तक, हर बड़ी छोटी चीज का अपना महत्व होता है।

0: मन लगाता है, ये तमाम चीजें उसके ऊपर असर डालती हैं। बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का प्रभाव भी पड़ता है, माता पिता की आदतों का भी प्रभाव पड़ता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी संस्कार के लिए केवल बच्चे की आदतें जिम्मेदार नहीं हैं, उसके माता पिता की आदतें, उसके माता पिता का खान पान भी बच्चे के संस्कार पर असर डालता है।
1: तो वहीं पंडित जी से इस बारे में भी जान लेंगे कि जन्म से लेकर 5 साल तक की आयु तक किन बातों का ध्यान हमें बच्चों के लिए रखना चाहिए।
0: किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर 5 साल की आयु तक किन बातों का ध्यान रखें संस्कार के मामले में? देखिए, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की उम्र में बच्चे के आहार का और खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जन्म से लेके 5 साल तक जो खाने पीने की आदत पड़ जाती है वो जीवन भर नहीं छूटती है, और चूंकि खान पान से सोच और विचार बनते हैं, इसीलिए बच्चे को सोच समझकर खान पान और आहार देना चाहिए। मांसाहार, फास्ट फूड, बासी और तेल मसाले वाले भोजन से शुरुआत में जन्म से लेकर 5 साल तक आपको अपने बच्चे को बचाना चाहिए, ताकि वहां से खान पान के संस्कार बेहतर होने शुरू हो जाएं।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है दैनिक राशिफल जानने का। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, संतान को लेकर परेशान ना हों, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पंडित जी से ये जान लेंगे कि 6 साल से 10 साल के बच्चों के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है।
0: अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी उम्र है 6 साल से लेकर 10 साल तक। ऐसे बच्चों के संस्कार में किन बातों का ध्यान रखें? 6 साल से 10 साल की उम्र के जब बच्चे होते हैं तो इस उम्र में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। बच्चे को धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में और अपने व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। तो जब आपका बच्चा 6 साल से 10 साल के बीच का हो, उस समय घर का माहौल शुद्ध और सात्विक रखिए और घर के लोग अपने व्यवहार और अपने आचरण को ठीक रखिए। घर में गाली गलौज करना, झगड़े लड़ाई करना, चीखना चिल्लाना ये सब बंद करिए और 6 से 10 साल के बीच की उम्र में बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाइए, क्योंकि इस समय आपका बच्चा गलत और सही चीजों के बीच में पड़ेगा। तो इसी समय आपको आपके बच्चे को एजुकेट करना है, अच्छा व्यवहार सिखाना है और बच्चे को झूठ सच गलत

मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज सबसे पहला सवाल आप किसका लेंगे
0: जी। आज का पहला प्रश्न अस्मिता जी ने हमें लिखा है और अस्मिता जी हमें उज्जैन से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 जून 1996, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है उज्जैन। अस्मिता जी कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब के लिए काफी समय से कोशिश कर रही हूं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग जॉब मिल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अस्मिता जी, आप शिक्षा क्षेत्र के लिए जो प्रयास कर रही हैं वो प्रयास करते रहिए। कुंडली के हिसाब से साल 2027 में शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आने वाला समय आपका बेहतर है। करियर को लेकर, जीवन को लेकर आप शांति से रह सकेंगी। करियर में आपको जल्दी सफलता मिले, आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पुखराज बनवा के पहनिए। एक पीला पुखराज 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको सफलता मिलेगी।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित जी, आप दूसरा प्रश्न किसका लेने वाले हैं
0: जी? अगला प्रश्न

0: सपना जी ने हमें लिखा है और सपना जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी की जन्म की तारीख है 25 नवंबर 2004, जन्म का समय दोपहर के 2:45, जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, आगे उसे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से मैं कहूंगा कि अगर ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, अगर ये फाइनेंस में जाएं, अकाउंटिंग में जाएं, तो ऐसे क्षेत्रों में जाने पर इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा दें तो मुझे लगता है इनके लिए काफी बेहतर होगा। आपकी बेटी के भटकने और बिगड़ने की संभावना बनती है तो थोड़ा सा इनके शिक्षा के दौरान इनके जीवन पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी है। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको धारण कराएं और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह इनके लिए बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर जप किया जाए और बेटी के लिए आप प्रार्थना करें तो जीवन बेहतर होगा।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि 11 साल से 15 साल की उम्र के बीच बच्चों के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: अगर आपके बच्चे की उम्र 11 साल से 15 साल के बीच की है तो बच्चे के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, 11 साल से 15 साल वाली उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के मामले में सजग होता है, शिक्षा और ज्ञान पर ध्यान देता है और इसी उम्र से बच्चे को अपनी पढ़ाई के विषय की, अपने करियर की और अपने सफलता की चिंता होने लगती है। जब आपका बच्चा 11 साल से 15 साल के बीच का हो तो बच्चे को मंत्रों के बारे में, योग के बारे में और आसन के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके। बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए। बच्चे पर अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट मत थोपिए। बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने दीजिए, बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट या विषय लेने दीजिएगा।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब जान लेते हैं कि 17 साल से 21 साल तक बच्चों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें शुभ संस्कार मिले।
0: अगर आपके बच्चे की उम्र 17 साल से 21 साल के बीच की है तो इसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, 17 से 21 साल किशोरावस्था से युवावस्था में जाने का समय है। टीन एज से बच्चा यंग एज में जाता है। ये उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की होती है। मानसिक और शारीरिक बदलाव बड़ी तेजी से होते हैं। सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। बच्चा 17 से 21 साल के बीच का है तो इस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दें, जिम्मेदारी निभाने में, काम करने में, आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। उनके कपड़ों का, उनकी जीवनचर्या का और उनकी संगति का ध्यान रखें। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका रूटीन कैसा है, उनकी संगति कैसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस उम्र में बच्चों को बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दीजिएगा। बुजुर्गों के साथ समय बिताने को कहिए और धीरे धीरे इस उम्र से बच्चों को व्रत उपवास रखने की आदत डालिएगा, काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं, दैनिक राशिफल जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल पंडित जी से जानेंगे।
0: मकर राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पंडित जी आज आप तीसरा सवाल किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1978। जन्म का समय सुबह के 6:30। जन्म स्थान है दिल्ली। नवीन जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूटने की नौबत आ गई है, तो क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? क्या मुझे दूसरी नौकरी आगे मिल सकती है? नवीन जी, आपकी कुंडली में नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है, तो आपको दूसरी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इस बात की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है और नई नौकरी आपको दिसंबर या जनवरी के महीने में मिलेगी और लगभग पहले के समान ही होगी, एट पार होगी, ये संभावना कुंडली में बन रही है। आप ऐसा करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार और एक मूंगा बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब आपका चौथा सवाल ले लेते हैं पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अंजलि ने हमें लिखा है और अंजलि हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। 2 जुलाई 1993 का जन्म है, सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय चल रहा है अगस्त 2026 से, और जून 2027 का जो समय है इसमें आपके विवाह होने की संभावना बनती है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा ऐसा लग रहा है। विवाह के बाद यानी जून 27 के बाद आपके करियर और आपके स्थान में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं और आपका आने वाला समय बेहतर दिखाई दे रहा है। शीघ्र विवाह और बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 22 सितंबर को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 22 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। धन और संपत्ति से संबंधित लाभ के योग हैं। इस साल स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार भी होगा। हालांकि अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ने का और आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या समय ना होने पर भी चलते फिरते मंत्र पढ़ सकते हैं, चलते फिरते स्तुति कर सकते हैं? देखिए, मंत्र और स्तुति बैठ कर पढ़ना, बैठ कर करना ज्यादा उचित होता है। जब आप मंत्र पढ़ें, स्तुति करें, उस समय शरीर आपका स्थिर हो और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। भगवान के नाम का जप, नाम मंत्र का जप किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि 22 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से जीवन में आ रही तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 22 सितंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जान लेने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपनी पूजा में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है सिंह। इनको पूजा में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होता जाएगा।
1: और चलिए अंत में आगे बढ़ते हैं अपने सबसे जरूरी सवाल की ओर, जो है कि आज का महा उपाय कौन सा है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके प्रेम संबंध टूट रहे हों, आप रिश्ते को बचाना चाहते हों, तो क्या करेंगे। इसके लिए रोज सुबह श्री राधा कृष्ण की पूजा करिएगा, उनको गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा और इसके बाद सुबह के समय ही ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: तो इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: बुरी खबरें देखिए सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें। जुड़िए जीएनटी के व्हाट्सएप चैनल से।
1: जुड़ने के लिए अपने फोन में व्हाट्सएप खोलें, अपडेट्स में जाकर प्लस बटन पर टैप करें, फाइंड चैनल में जाकर गुड न्यूज टुडे टाइप, ज्वाइन करने के लिए फॉलो बटन।
2: गणेशोत्सव की महाराज से लेकर गुजरात समेत देश भर में बप्पा की भक्ति की धारा बह रही है, जिसमें श्रद्धालु आनंद के गोते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग थीम पर बने दिव्य गणेश पंडाल उन्हें खूब आकर्षित कर रहे हैं। साथ में बप्पा की को फ्रेंडली प्रतिमाएं भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कहीं पुराने समय का दीदार हो रहा है तो कहीं पर आधुनिक रूप से आरती की जा रही है। इन सबके बीच बप्पा को धूमधाम से विदाई भी दी जा रही है।
3: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज आजकल महाराष्ट्र समेत पूरे देश में भक्ति रस का आधार बना हुआ है। जगह जगह भव्य पंडालों में विराजे बापा की दिव्य प्रतिमाएं भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं। गणेशोत्सव की दिव्य आभा के बीच लाल बाग के राजा समेत मुंबई के मशहूर पंडालों में आम से लेकर खास तक विघ्नहर्ता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर दिख रहे हैं। मुंबई में जगह जगह अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल दिख रहे हैं। घाटकोपर के राजा के दरबार को इस बार नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की थीम पर सजाया गया है।
4: मुंबई में ही आप पशुपतिनाथ महाराज का दर्शन करिए। मेरे साथ तमाम श्रद्धालु भी इस समय मौजूद हैं और अब तस्वीरें सीधे गणपति बप्पा की तरफ मोड़ते हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जी हां, नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ महाराज को मुंबई के घाटकोपर इलाके में बसाया गया है। घाटकोपर का राजा के नाम से ये पंडाल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए, हर जगह जो जानवरों की तस्वीरें जो जंगलों में रहते हैं यहाँ पर लगा रखी है। और पशुपतिनाथ महाराज की क्या खासियत है, क्या डिटेल है, वो भी पोस्टर के जरिए यहाँ पर लोगों ने बना रखा है।
5: घाटकोपर में पशुपतिनाथ का आंगन हो गया, बहुत कृपा है आपका।
4: इस तरह की खुशहाली आपको मुंबई, महाराष्ट्र और देश के हर उस जगह पे देखने को मिलेगी, जो लोग बहुत ही उत्साह के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं।
3: इस पंडाल में आकर भक्त न सिर्फ बापा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पशुपतिनाथ की पौराणिक कथाओं का रसवादन भी कर रहे हैं। पशुपतिनाथ जी से जुड़ी कथाओं के भीतर छिपे भाव, संदेश और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। गिरगांव के राजा के दरबार में भक्तों को राजस्थान के श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। अपना 52वां साल मना रहे इस मंडल के पानी पर पुल वाली थीम का बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं।
4: ये मंडल बहुत ज्यादा वायरल है क्योंकि इस तरह से तराफा रखा हुआ है और बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं बकायदा यहाँ पर। और एक अजीब सी, बड़ी ही प्यारी सी खुशी, बहुत ही अच्छी स्माइल इन बच्चों के फेस पे है। इस बार ये पंडाल जो है 95 इयर्स पूरा कर चुका है। ये देखिए बप्पा का दर्शन, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी जिस किसी ने भी बप्पा की इस प्रतिमा को बनाया है। मुझे लगता है 32-33 फीट ऊंचे हैं गणपति बप्पा और राजस्थान के श्रीनाथ के अवतार में आए हुए हैं। बकायदा देखिए कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर बप्पा विराजमान है। हर कोई मिन्नतें मांग रहा है और जैसा कि उन्होंने बताया कि बप्पा खुश हो जाते हैं और जब मिन्नत पूरी कर लेते हैं तो लोग चढ़ावे के रूप में जो उनसे बन पनता है वो ला करके बप्पा के समक्ष रख देते हैं।
3: मुंबई की सड़क सड़क गली गली पे एक से बढ़कर एक थीम वाले पंडाल नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक शिरडीचा राजा गणेश उत्सव मंडल का ये पंडाल है। अपने 75वें वर्ष के अवसर पर इस मंडल ने पंडाल में अंडर वाटर द्वारका की भव्य और अनोखी थीम पेश की है, जिसमें समंदर में डूबी और बसी द्वारका नगरी के अद्भुत नजारे का आनंद भक्त ले रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दिव्य पंडाल और प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं। अमरावती में अंजीर और मखाने से 7 फीट के इस गणपति प्रतिमा को तैयार किया गया है। वडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव मंडल इसके जरिए इको फ्रेंडली बापा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।
6: हम फिलहाल है वडनेरा के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में, जहां पर जो है हर साल जो है इको फ्रेंडली बापा की प्रतिमा जो है निर्माण करते हैं। इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 31 किलो जो है वो अंजीर लगे है, और साथ ही जो बापा की धोती बनाई गई है वो धोती है मखाने से बनाई गई है। इको फ्रेंडली या पर्यावरण पूरक बप्पा की प्रतिमा बनाने की कोशिश हमेशा से ही ये बडनेरा का गणेश पंडाल करता है।
3: इसी तरह विलास नगर के गणेश उत्सव मंडल ने सुपारी और पूजन सामग्री से नवग्रह की अनोखी प्रतिमा बनाई है। बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी सजाई है, जिसमें बापा की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। चंदरपुर में तो चावल दाल मूंगफली और साबुदाने से तुकुम के राजा की अनोखी प्रतिमा तैयार की गई है, जो यहां भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाराष्ट्र के ही जालना में श्री अनोखा गणेश मंडल ने यहाँ एक ऐसा अनोखा दृश्य तैयार किया है, जिसमें राम भक्त हनुमान द्रोणागिरी पर्वत लेकर जाते दिख रहे हैं। इसके जरिए संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश में आने का प्रसंग साकार किया जा रहा है, जो भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी एक से बढ़कर एक भव्य गणेश पंडाल के दर्शन हो रहे हैं। सूरत के सरोली इलाके में गांव की थीम पर बने गणेश पंडाल को देखने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
7: जहां खड़े हुए हैं ये जो घर आपको नजर आ रहा है, ये भी गणेश पंडाल का एक हिस्सा है, और आगे आसपास आप जो देखेंगे ये भी पूरा गणेश पंडाल का ही एक हिस्सा है, जहां पर गांव का एक जो जीवन हुआ करता था पहले, उसे यहां पर बताने की कोशिश की गई है। यहां पर तालाब भी बनाया गया है, कुएं भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो घर है, घर में किस तरह से पहले सामान हुआ करते थे, तो सारी चीजों को यहां पर गणेश पंडाल में बताने की कोशिश की गई है आयोजकों द्वारा।
3: इस गणेश पंडाल में गांव की गलियों के साथ ही कच्चे घर, उसके अंदर रखे पुराने जमाने के सामान, सब कुछ दिखाया गया है, जिसमें ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन तक है। बैलगाड़ी, कुआं, तालाब गांव की थीम पर बने इस पंडाल में खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच विराजमान बापा के दर्शन कर भक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
8: बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है, बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है,
9: काफी इंस्पायरिंग है। ऐसे ऐसे थीम मतलब क्रिएट होने ही चाहिए, देख के काफी अच्छा लगा।
3: राजकोट में केपीएस क्लब के पंडाल में स्पीड वर्ल्ड चौक के राजा विराज हुए हैं। यहाँ धर्म और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ इंसानों के साथ साथ रोबोट भी घंटे बजाते हुए बापा की आरती उतारते दिख रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई में बस्तर के प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता मंदिर की थीम पर प्रदेश का पहला शानदार डिजिटल गणेश पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां तमिलनाडु के मदुरे स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर की भव्य थीम पर भव्य गणेश मूर्ति बनाकर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इन सब के अलावा गणपति विसर्जन का सिलसिला भी चल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक में बापा को पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ विदाई दी गई है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अमरावती से धनंजय साबले, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, जालना से गौरव विजयशाली, सूरत से संजय सिंह राठौर, राजकोट से रौनक बजीठिया, दुर्ग से रघुनंदन पांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात करते हैं जोधपुर में भारत जापान के संयुक्त हवाई अभ्यास की, जिसमें दोनों देशों के वायुवीर तो अपने कौशल का प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत और जापान के एयरफोर्स चीफ भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। जापान के वायुसेना प्रमुख ने मेक इन इंडिया पहल को लेकर भी अपनी खुशी जताई। 9 सितंबर से जारी इस एक्सरसाइज का आयोजन मंगलवार 22 सितंबर यानी कल तक के लिए किया गया है।
10: ये दो देशों की साझा ताकत है, भारत और जापान के वायु योद्धाओं की ताकत। ये एक साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में 9 सितंबर से चल रहे वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ भी पहुंचे और यहां दोनों ने भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भी भरी। जोधपुर के आसमान में तेजस की इस उड़ान की गूंज दुनिया तक पहुंचने वाली रही। इस उड़ान ने भारत और जापान के बीच बढ़ते हवाई तालमेल को प्रदर्शित किया। इस खास मौके पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल ताकी हीरो मोरिता ने मेक इन इंडिया पहल की भी तारीफ की।
11: एपी सैम, इट इज अ प्रिविलेज टू बी विद यू टुडे एंड आई वुड लाइक टू शो माय अप्रिशिएशन फॉर योर वार्म वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी। I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas as an aircraft borne from indigenous defense capabilities. Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative.
10: वीर गार्जियन भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसके लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत पहुंच गए थे। अब दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख का तेजस लड़ाकू विमान को साथ में उड़ाना साफ तौर पर भारत जापान के बीच बढ़ते विश्वास को जता रहा है। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है, तो वही जापान का लड़ाकू विमान F-2 और C-2 परिवहन विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है।
11: Dear Guardian is the second bilateral fighter exercise between our services. More importantly, it marks the first ever deployment of the Kokku Jetai fighters to India. We believe that advanced training deepens mutual understanding, strengthens trust, and enhances practical cooperation.
10: दोनों देशों की वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही है। अभ्यास के अंतिम चरण में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण रहा।
12: General Morita, the chief of the Japan Air Self-Defense Force, who has taken time out to join us as a distinguished visitor in this exercise, that itself makes this exercise much, much higher level. Thank you. Thank you for sending your team here. And I am sure they will take back some happy memories. And we will continue to have these exercises at regular intervals.
10: दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। इसका मकसद ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों में समन्वय को मजबूत करना है। अभी तक हुए इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर चुके हैं। ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक के लिए आयोजित किया गया है। वीर गार्जियन 2026 सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी सीख, बेहतर इंटर ऑपरेबिलिटी और वायु योद्धाओं के बीच दोस्ती को मजबूत करने वाला अहम कदम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNTV पर बनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना से करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमें भेज देना है, हम इसको दुनिया तक पहुंचाते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से रमाकांत साहू ने गणेश उत्सव की तस्वीरें भेजी हैं। खूबसूरत सजे पंडाल में बप्पा की अनुपम प्रतिमा स्थापित की गई है। सुगंधित पुष्पों से भगवान गजानन का श्रृंगार किया गया है। मनमोहक पगड़ी इसमें आपको नजर आएगी। धारण किए गए बप्पा भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है अहमदाबाद से दिनेश शर्मा ने, उन्होंने भेजी है। यहाँ पर देखिए विधि विधान से बप्पा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। पंडाल को सुंदर पुष्पों से सजाया गया है। सुंदर पगड़ी और वस्त्रों से सुशोभित भगवान गजानन को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया।
13: गुड न्यूज टुडे।
0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: को पावर्ड बाय लंबा बैकअप लंबी लाइफ, सुंदर भी स्मार्ट भी एटमवर्क BLDC फैंस।
2: गणेशोत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे का जनन का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर जो है सिर्फ वीडियोस तस्वीरें भेजने के लिए है। और याद रहे जब भी आप अपना वीडियो या फोटो हमसे साझा करें अपना नाम, शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
14: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: गुड न्यूज
1: GNT यानी गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: जय श्री बालाजी सरकार। आप सभी के सामने मैं आपका आचार्य परमानंद पुनः आपका स्वागत करता हूं। गुड़नी जुड़ चुके हैं एक कॉलर, जानना चाहेंगे उनकी समस्या क्या है और बताना चाहेंगे उसका समाधान क्या है। जय श्री बालाजी।
1: जय श्री बालाजी सरकार महाराज।
0: जय श्री बालाजी, कहां से बात कर रहे हैं?
1: हम आशीष बात कर रहे हैं, आशीष जी एमपी मध्य प्रदेश।
0: जी आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या आपके जीवन में?
1: जी पंडित जी, हमारा जो है सर दर्द होता रहता है।
0: ठीक है
1: जी।
0: स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है
1: जी।
0: माफ कीजिएगा आशीष जी,
1: जी
0: आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करेंगे कि आप अभी कुछ दिन पहले कहीं बाहर घूमने गए थे क्या?
1: हाँ जी।
0: और वहां पे आपने रास्ते में चलते हुए मीठा खाया होगा?
1: जी हाँ।
0: तो भैया, मीठा खाने के साथ साथ में आप इस बात का ध्यान रखते कि मीठा रास्ते में चलते हुए नहीं खाते, क्योंकि जब मीठा खाते हैं तो किसी प्रकार के दुष्ट शक्तियां जो हैं वो हमारे आसपास होती हैं, वो परेशानियां खड़ी करती हैं, जिस वजह से क्या है कि आप दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आ चुके हैं, परेशानियां ज्यादा बन रही हैं और काफी समय से आप दिक्कत में आ रहे होंगे, परेशानियों में आ रहे होंगे। आशीष जी, मैं आप
1: बहुत करवाए हैं गुरुजी।
0: हाँ, दवा कराए होंगे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं होगा, दवा का असर नहीं होगा
1: जी।
0: आशीष जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, उसको आप
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो
0: पर रख
2: गुड़नी
1: जी
0: चौमुखा दिया जलाना है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने घर चले जाना है
1: जी।
0: ये उपाय करना है इतवार को। 5 उपाय करेंगे, आपके जीवन में परेशानी काफी तक दूर हो जाएंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। बालाजी आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते रहे, आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। जय श्री बालाजी। दर्शकों, हमारे जीवन में परेशानी जो आती है, स्वास्थ्य को लेकर के हो चाहे कैसे भी हो, उनका सभी का समस्या का समाधान है। दर्शकों, जीवन को जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी बेटा।
2: गुड़नी चुड़ी
0: जी शरद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: मैं बोरीवली मुंबई से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताएं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है?
3: पंडित जी, मैं एक लड़की के साथ पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में था।
0: ठीक है।
3: और हम दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध था, हम एक पति पत्नी के साथ रह रहे थे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी
0: जी।
3: लेकिन अचानक से उस लड़की का स्वभाव इतना ज्यादा बदल गया कि मुझे लग रहा है कि मैं उसके कभी करीब ही नहीं था या हम दोनों का कभी कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब अचानक से उसका प्रभाव मेरे प्रति इतना नेगेटिव हो जाना, मैं बहुत चिंतित हूँ।
0: पिछले 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है क्या?
3: नहीं सर, पंडित जी लगभग 7-8 महीने से प्रॉब्लम हो रही है मुझे।
0: और क्या वो जो लड़की है वो जॉब करती है?
3: हाँ पंडित जी, वो जॉब कर रही है वो।
0: ठीक है भैया, ऐसा है कि उस लड़की का जो है आपका और उसका विद्वेषण कर दिया गया है, मन दूसरे एक दूसरे से हट गया है। चाहे बेशक आप कितना ही उसके लिए कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसका मन आपके प्रति आसक्त नहीं है, जिस कारण से क्या है, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है। उसने विद्वेषण के माध्यम से ये कार्य को आप उसने क्रियान्वित किया है, जिस कारण, क्योंकि पहले ही वो उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन जब आपका और उसका संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो उसने विद्वेषण क्रिया की हुई है। आपने कार्य ये करना है, पान लेना है, पान का पत्ता, उस पर कत्था लगाना है और माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए, बालाजी सरकार का ध्यान करते हुए आपने उसको खिला देना है और बालाजी से प्रार्थना करनी है, बाबा अगर मेरा प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है और किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है, तो उसको आप दूर करें और हमें पुनः मिलाएं, कैसे, जैसे भगवान श्री राम और सीता को मिलाया था। आप एक बार ही यदि ये करते हैं तो निसंदेह आपको आपका प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। और कत्था के साथ में आपने थोड़ी केसर और डाल लेनी है बेटा, ये कार्य करेंगे। जय श्री बालाजी।
3: जय श्री बालाजी
0: जी। बेटा देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे वैवाहिक जीवन क्यों ना हो और चाहे व्यापार संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं और जब रास्ता नहीं मिलता, अगर स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं उसका आप उपाय नहीं बता पा रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां दर परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा अथवा तो किसी प्रकार का भी और तंत्र मंत्र का चक्कर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों
0: लोग
2: गुड न्यूज टुडे।
0: जय श्री बालाजी बेटा।
3: जय श्री बालाजी सुखा।
0: हाँ बेटा, क्या नाम आपका?
3: रवि बात कर रहा हूँ गुरु
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा?
3: नोएडा से बात कर रहा हूँ जी।
0: हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो, क्या समस्या आ गई है?
3: जी, एक लड़की से प्रेम करता हूँ गुरु
0: जी। जी,
3: घर वाले नहीं मानते हैं।
0: जी
3: जी
0: बेटा, ऐसा है घर इंटरकास्ट है क्या वो?
3: जी
0: अंतर जातीय है क्या? आपकी कास्ट के नहीं है
3: जी गुरु जी, अंतर जाती है।
0: कितने वर्ष हो गए? 5 वर्षों से उससे प्रेम कर रहे हो?
3: जी जी जी जी गुरु जी।
0: उसका नाम ना से शुरू होता है, ना से नल।
3: जी जी जी।
0: बेटा ऐसा है कि घर वाले मान जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक कार्य करना पड़ेगा तुम्हें।
3: जी गुरु जी बताइए।
0: हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाना और हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर ले लेना आप
3: जी,
0: खुद लगाना और खुद लगा करके माता पिता को लगा देना, ठीक है
3: जी।
0: और उनसे हनुमान जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है आप उसको दूर करें और जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे उसको मेरे परिवार वाले उसको स्वीकार करें और मेरे जीवन की परेशानी को दूर करें। बालाजी कृपा हो, 5 मंगलवार करोगे आपका कार्य बन जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी।
3: जय बालाजी, मेरा भी प्रणाम।
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम बेटा?
3: हर्षवर्धन तिवारी।
0: कहाँ से बोल रहे हो हर्षवर्धन?
3: जी छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं महाराज जी।
0: क्या समस्या आ गई बेटा जीवन में?
3: भट्टे का कार्य है, कार्य चल नहीं रहा है हमारा।
0: कार्य चल नहीं रहा है, काय का कार्य करते हैं आप? क्या कार्य है आपका?
3: ईंट का है, ईंट बनाते हैं।
0: ईंट भट्टे का कार्य है बेटा? ईंट भट्टे का कार्य लगभग लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं बंद हुए
3: जी। हाँ।
0: और इसमें मुझे आप एक बार बताएं, ये जब आप पिछले दिनों जब आप भट्टे पे गए थे उस समय किसी प्रकार का एक व्यक्ति जिसका नाम र से शुरू होता है, रा से राकेश इत्यादि करके, वो था क्या?
3: जी जी राघव।
0: राघव था, और उससे आपका झगड़ा भी हुआ और उसको आपने बाहर निकाल दिया?
3: जी हाँ।
0: उसके निकलने के बाद ही परेशानियां चालू हुई आपके जीवन में?
3: जी जी गुरु जी।
0: तो बेटा उसने तांत्रिक प्रयोग कराया है, तांत्रिक प्रयोग करा करके आपके भट्टे को बांध दिया है। बांधने की वजह से सारा का सारा परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और भट्टे का काम नहीं चल रहा, आपको नुकसान पे नुकसान होगा, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा होगा।
3: जी जी।
0: बेटा एक कार्य तुम्हें करना है, पीली सरसों लेनी है, लोवान और गूगल लेना है, उसमें हनुमान जी का 12 नाम जो है, 12 नाम का जाप करना है और उसको अभिमंत्रित करके 12 नामों से आपने भट्टे के चारों तरफ डाल देना है। शनिवार को यह कार्य करना है, आपका भट्टा चालू हो जाएगा, 7 शनिवार लगातार करना होगा, धीरे धीरे परेशानी जो है काफी तक दूर हो जाएंगे। और राघव नाम का व्यक्ति जो है उसको आप संपर्क में मत रखिएगा, वो दोबारा उसने प्रयास किया होगा आने के लिए और आपका विचार बन रहा होगा उसको दोबारा रखने के लिए। तो बेटा उसको रखना मत, परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा जो उपाय बताया जा रहा है आप उसको करने का प्रयास करना। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।
4: जय श्री राम गुरु
0: जी। जय श्री राम बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है?
4: जी मैं विंध्याचल से बोल रही हूँ।
0: हाँ बेटा, समस्या बताओ, क्या परेशानी आ गई है?
4: मेरे घर में बहुत कलेश रहता है गुरु जी।
0: घर में कलेश रहता है, पिछले दिनों में कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी तुम्हें छत पे, कोई कूद रहा है, कुछ आ रहा जा रहा है?
4: मतलब आपस में सब लोगों की नहीं बनती है, सब लोग आपस में किसी की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती।
0: बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा लगा पिछले दिनों रात को सोते समय 12-1 बजे के आसपास कि छत पे कोई चल रहा है, छत पे कोई आवाज आ रही है?
4: जी जी।
0: और जब तुम जाके देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला? बेटा ऐसा है कि समस्या ये आ रही है कि तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी परेशानी भरी हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा प्रयोग किया है कि तुम्हारे घर में किसी की मति एक जैसी ना हो, किसी की मति जो है सबकी मति फ्री रहे, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, सुख शांति घर की खत्म हो जाए, और जिस वजह से क्या है कि तुम्हारे पड़ोस में किसी सौ नाम की कोई औरत रहती है क्या? हेलो।
4: हाँ जी जी जी जी
0: उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है बेटा, उस वजह से थोड़ा कोई ना कोई परेशानी बनाई है उसने, तो परेशानी आ रही है। तुम्हें एक काम करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5 पाठ करने हैं रोजाना 1 हफ्ते तक, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में गंगा जल लेना है कटोरी में, और 5 पाठ करने के बाद गंगा जल में फूक मारनी है, 3 फूक मारनी है और पूरा गंगा जल घर में छिड़क देना तुमने, और थोड़ा सा गंगा जल पीने वाले पानी में डाल देना बेटा, तो तुम्हारी सारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे बालाजी अपनी कृपा करेंगे और तुम्हारी परेशानियों को दूर करके तुम्हारे परिवार में खुशहाली सुख संपत्ति लेके आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे बेटा। जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
3: उनका साथ बिल्कुल ही ठीक लगा था गुरु जी, मान लीजिए कि हर प्रत्येक महीने 15,000 रुपए का इलाज में करवाना ही पड़ता है।
0: और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा?
3: रिपोर्ट में नॉर्मल सब डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है पैसा खाए जा रहे हैं मेरा।
0: हाँ बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि तुम्हारे घर में किसी प्रेतात्मा का जो है वो वास हो चुका है। प्रेतात्मा का वास होने के कारण ही सारी समस्याएं बन रही हैं, और जो प्रेतात्मा का जब वास वैसे नहीं हुआ, किसी ने कराया हुआ है, तो मंत्रों के ताकत से तुम्हारा प्रेतात्मा का जो वास हो रखा है घर में, इस वजह से तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब रहेगी, पैसा खराब होगा, काम धंधा चलेगा नहीं, झगड़ा बनेगा और परेशानी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, जिस वजह से।
3: किसने कराया है
0: बेटा? ऐसा है, किसने कराया ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसमें यह है कि आपको उपाय जरूर बता देंगे कि किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
3: उपाय बता दीजिए
0: बेटा। एक काम करना, तुमने गोला लेना है, गोले में बताशे रखने हैं, लौंग रखनी है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक जायफल रखना है, नींबू काट के रख लेना, घर के पर वार करके आपने चौराहे पे जा करके उसको जला देना है।
3: जी।
0: आप जब ऐसा करो, अथवा तो पानी में बहा देना दोनों।
3: कितने दिन करना है
0: बेटा? ये करना है तुम्हें लगभग 21 दिन करना होगा बेटा।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: 21 दिन करोगे तो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी, परेशानी खत्म हो जाएंगे, घर में सुख शांति इत्यादि का वास होगा और सारी परेशानी जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी बेटा। बालाजी कृपा करेंगे, बालाजी कृपा हुई तो तुम्हें पुनः परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए जो प्रेतात्मा का वास है वो खत्म हो जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। मेरे प्यारे दर्शकों, बालाजी की कृपा जिसके घर के ऊपर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसको परेशानी छू भी नहीं सकती। अगर परेशानियां आई हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे क्या समस्या है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी बेटा।
3: श्री बालाजी महाराज,
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम तुम्हारा?
3: ऋषि नाम है महाराज।
0: कहाँ से बोल रहे हो ऋषि?
3: मैं गाजीपुर से बात कर रहा हूँ।
0: गाजीपुर से बेटा, समस्या बताओ, समस्या क्या है?
3: महाराज जी, हमारा एक लव लेटर है, मैं किसी को लाइक करता था।
0: अच्छा।
3: तो नियंत्रण देखा जाए उसमें लगभग 4-5 महीने से ब्रेकअप चल रहा है, शादी भी करना चाहता था।
0: ठीक है।
3: और लड़की भी तो राजी है, एग्री है, तो घर वाले नहीं मान रहे हैं हमारे।
0: आपके घर वाले नहीं मान रहे?
3: जी महाराज।
0: कोई बात नहीं, घर वाले मान जाएंगे। एक काम करना है, शुक्रवार के दिन तुमने पेड़ा लेने हैं 5, और 5 पेड़ा में माँ भगवती का नाम लेना है, माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको चाहता हूँ, उससे मेरा विवाह कराइए, मेरे घर वालों को मनाइए। उसमें माता पिता जो जो नहीं मान रहे उन सब का नाम लेना और माँ से प्रार्थना करना, मैया कृपा करेंगे, तुम्हारा विवाह जो है उसी के साथ कराने के लिए राजी हो जाएंगे, जिसको तुम्हें चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो। टेलीविजन स्क्रीन पे जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आकर के पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें और आप अपने आचार्य परमानंद को इजाजत दें, आज्ञा दें। बालाजी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त

0: जय श्री बालाजी सरकार। आप सभी के सामने मैं आपका आचार्य परमानंद पुनः आपका स्वागत करता हूं। जीवन की समस्याओं को लेकर के आप आएंगे, समाधान मैं बताऊंगा, और इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर। जानना चाहेंगे उनकी समस्या क्या है और बताना चाहेंगे उसका समाधान क्या है। जय श्री बालाजी।
1: जय श्री बालाजी सरकार महाराज।
0: जय श्री बालाजी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आशीष बात कर रहे हैं, आशीष जी एमपी मध्य प्रदेश।
0: जी आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या आपके जीवन में?
1: जी पंडित जी, हमारा जो है सर दर्द होता रहता है।
0: ठीक है
1: जी,
0: स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है
1: जी।
0: माफ कीजिएगा आशीष जी,
1: जी
0: आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करेंगे कि आप अभी कुछ दिन पहले गुंडी,
1: हाँ जी
0: मीठा पहले गुंडी,
1: हाँ जी
2: गुंडी चुड़ी, इसलिए अच्छा लगता है से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सभी का।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार।
0: जय श्री बालाजी बेटा।
1: जय श्री बालाजी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे
1: बहुत ही अच्छा संबंध था, हम एक पति पत्नी के साथ रह रहे थे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी
0: जी।
1: लेकिन अचानक से उस लड़की का स्वभाव इतना ज्यादा बदल गया कि मुझे लग रहा है कि मैं उसके कभी करीब ही नहीं था या हम दोनों का कभी कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब अचानक से उसका प्रभाव मेरे प्रति इतना नेगेटिव हो जाना, मैं बहुत चिंतित हूँ।
0: पिछले 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है क्या?
1: नहीं सर, पंडित जी लगभग 7-8 महीने से प्रॉब्लम हो रही है मुझे।
0: और क्या वो जो लड़की है वो जॉब करती है?
1: हाँ पंडित जी, वो जॉब कर रही है, टिकट में है वो।
0: ठीक है भैया, ऐसा है कि उस लड़की का जो है आपका और उसका विद्वेषण कर दिया गया है, मन दूसरे एक दूसरे से हट गया है। चाहे बेशक आप कितना ही उसके लिए कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसका मन आपके प्रति आसक्त नहीं है, जिस कारण से क्या है, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है। उसने विद्वेषण के माध्यम से ये कार्य को आप उसने क्रियान्वित किया है, जिस कारण, क्योंकि पहले ही वो उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन जब आपका और उसका संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो उसने विद्वेषण क्रिया की हुई है। आपने कार्य ये करना है, पान लेना है, पान का पत्ता उस पर कत्था लगाना है, और माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए, बालाजी सरकार का ध्यान करते हुए आपने उसको खिला देना है, और बालाजी से प्रार्थना करनी है, बाबा अगर मेरा प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है और किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है, तो उसको आप दूर करें और हमें पुनः मिलाएं, कैसे, जैसे भगवान श्री राम और सीता को मिलाया था। आप एक बार ही यदि ये करते हैं तो निसंदेह आपको आपका प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, और कत्था के साथ में आपने थोड़ी केसर और डाल लेनी है बेटा, ये कार्य करेंगे। जय श्री बालाजी।
1: जय श्री बालाजी।
0: जी बेटा देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे वैवाहिक जीवन क्यों ना हो, और चाहे व्यापार संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं और जब रास्ता नहीं मिलता, अगर स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं उसका आप उपाय नहीं बता पा रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां दर

0: परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा अथवा तो किसी प्रकार का भी और तंत्र मंत्र का चक्कर वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज के युग में लोग विश्वास नहीं करते, परंतु सत्यता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। जय श्री बालाजी बेटा।
1: जय श्री बालाजी सरकार।
0: हाँ बेटा, क्या नाम आपका?
1: रवि बात कर रहा हूँ गुरु जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा?
1: नोएडा से बात कर रहा हूँ जी।
0: हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो, क्या समस्या आ गई है?
1: जी, एक लड़की से प्रेम करता हूँ गुरु जी।
0: जी।
1: घर वाले नहीं मानते हैं।
0: जी
1: जी
0: बेटा, ऐसा है, घर इंटरकास्ट है क्या वो?
1: जी
0: अंतर जातीय है क्या? आपकी कास्ट के नहीं है?
1: जी गुरु जी, अंतर जाती है।
0: कितने वर्ष हो गए? 5 वर्षों से उससे प्रेम कर रहे हो?
1: जी जी जी जी गुरु जी।
0: उसका नाम ना से शुरू होता है, ना से नल?
1: जी जी जी।
0: बेटा ऐसा है कि घर वाले मान जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये कार्य करना पड़ेगा तुम्हें।
1: जी गुरु जी बताइए।
0: हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाना और हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर ले लेना आप।
1: जी।
0: खुद लगाना और खुद लगा करके माता पिता को लगा देना, ठीक है?
1: जी।
0: और उनसे हनुमान जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है आप उसको दूर करें और जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे उसको मेरे परिवार वाले उसको स्वीकार करें और मेरे जीवन की परेशानी को दूर करें। बालाजी कृपा हो, 5 मंगलवार करोगे आपका कार्य बन जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी।
2: जय बालाजी, मेरा प्रणाम।
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम बेटा?
2: हर्षवर्धन तिवारी।
0: कहाँ से बोल रहे हो हर्षवर्धन?
2: जी छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं महाराज जी।
0: क्या समस्या आ गई बेटा जीवन में?
2: भट्टे का कार्य है, कार्य चल नहीं रहा है हमारा।
0: कार्य चल नहीं रहा है, काय का कार्य करते हैं आप? क्या कार्य है आपका?
2: ईंट का है, ईंट का बनाते हैं।
0: ईंट भट्टे का कार्य है बेटा? ईंट भट्टे का कार्य लगभग लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं बंद हुए।
2: जी हाँ।
0: और इसमें मुझे आप एक बार बताएं, ये जब आप पिछले दिनों जब आप भट्टे पे गए थे उस समय किसी प्रकार का एक व्यक्ति जिसका नाम र से शुरू होता है, राकेश इत्यादि करके, वो था क्या?
2: जी जी राघव।
0: राघव था, और उससे आपका झगड़ा भी हुआ और उसको आपने बाहर निकाल दिया?
2: जी हाँ।
0: उसके निकलने के बाद ही परेशानियां चालू हुई आपके जीवन में?
2: जी जी गुरु जी।
0: तो बेटा उसने तांत्रिक प्रयोग कराया है, तांत्रिक प्रयोग करा करके आपके भट्टे को बांध दिया है। बांधने की वजह से सारा का सारा परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और भट्टे का काम नहीं चल रहा, आपको नुकसान पे नुकसान हो रहा, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा होगा। बेटा एक कार्य तुम्हें करना है, पीली सरसों लेनी है, लोवान और गूगल लेना है, उसमें हनुमान जी का 12 नाम जो है, 12 नाम का जाप करना है और उसको अभिमंत्रित करके 12 नामों से आपने भट्टे के चारों तरफ डाल देना है। शनिवार को यह कार्य करना है, आपका भट्टा चालू हो जाएगा, 7 शनिवार लगातार करना होगा, धीरे धीरे परेशानी जो है काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और राघव नाम का व्यक्ति जो है उसको आप संपर्क में मत रखिएगा, वो दोबारा उसने प्रयास किया होगा आने के लिए और आपका विचार बन रहा होगा उसको दोबारा रखने के लिए। तो बेटा उसको रखना मत, परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा जो उपाय बताया जा रहा है आप उसको करने का प्रयास करना। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।
3: जय श्री राम गुरु जी।
0: जय श्री राम बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा फल फूलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है?
3: जी मैं विंध्याचल से बोल रही हूँ।
0: हाँ बेटा, समस्या बताओ, क्या परेशानी आ गई है?
3: मेरे घर में बहुत कलेश रहता है गुरु जी।
0: घर में कलेश रहता है? पिछले दिनों में कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी तुम्हें छत पे, कोई कूद रहा है, कुद आ रहा जा रहा है?
3: मतलब आपस में सब लोगों की नहीं बनती है, सब लोग आपस में किसी की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती।
0: बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा लगा पिछले दिनों रात को सोते समय 12-1 बजे के आसपास कि छत पे कोई चल रहा है, छत पे कोई आवाज आ रही है?
3: जी जी।
0: और जब तुम जाके देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला? बेटा ऐसा है कि समस्या ये आ रही है कि तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी परेशानी भरी हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा प्रयोग किया है कि तुम्हारे घर में किसी की मति एक जैसी ना हो, किसी की मति जो है सबकी मति फ्री रहे, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, सुख शांति घर की खत्म हो जाए। और जिस वजह से क्या है कि तुम्हारे पड़ोस में किसी सा नाम की कोई औरत रहती है क्या? हेलो,
3: हाँ जी,
0: उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है
3: जी।
0: बेटा, उस वजह से थोड़ा कोई ना कोई परेशानी बनाई है उसने, तो परेशानी आ रही है। तुम्हें एक काम करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5 पाठ करने हैं रोजाना 1 हफ्ते तक। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में गंगा जल लेना है कटोरी में, और 5 पाठ करने के बाद गंगा जल में फूंक मारनी है, 3 फूंक मारनी है, और पूरा गंगा जल घर में छिड़क देना तुमने। और थोड़ा सा गंगा जल पान पीने वाले पानी में डाल देना बेटा, तो तुम्हारी सारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे बालाजी अपनी कृपा करेंगे और तुम्हारी परेशानियों को दूर करके तुम्हारे परिवार में खुशहाली सुख संपत्ति लेके आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे बेटा। जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
1: उनका साथ बिल्कुल ही ठीक रहता है गुरु जी, मान लीजिए कि हर प्रत्येक महीने 15,000 रुपए का इलाज में करवाना ही पड़ता है।
0: और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा?
1: रिपोर्ट में नॉर्मल सब डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है पैसा खाए जा रहे हैं मेरा।
0: हाँ बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि तुम्हारे घर में किसी प्रेतात्मा का जो है वो वास हो चुका है। प्रेतात्मा का वास होने के कारण ही सारी समस्याएं बन रही हैं। और जो प्रेतात्मा का जब वास वैसे नहीं हुआ, किसी ने कराया हुआ है, तो मंत्रों की ताकत से तुम्हारा प्रेतात्मा का जो वास हो रखा है घर में, इस वजह से तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब रहेगी, पैसा खराब होगा, काम धंधा चलेगा नहीं, झगड़ा बनेगा और परेशानी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। जिस वजह से बेटा ऐसा है, किसने कराया ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसमें यह है कि आपको उपाय जरूर बता देंगे कि किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
1: उपाय बता दीजिए
0: बेटा। एक काम करना, तुमने एक गोला लेना है, गोले में बताशे रखने हैं, लौंग रखनी है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक जायफल रखना है, नींबू काट के रख लेना, घर के ऊपर वार करके आपने चौराहे पे जा करके उसको जला देना है।
1: जी।
0: आप जब ऐसा करो, अथवा तो पानी में बहा देना दोनों।
1: कितने दिन करना है
0: बेटा? ये करना है तुम्हें लगभग लगभग 21 दिन करना होगा बेटा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: 21 दिन करोगे तो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगे, परेशानी खत्म हो जाएंगे, घर में सुख शांति इत्यादि का वास होगा और सारी परेशानी जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी बेटा। बालाजी कृपा करेंगे, बालाजी कृपा हुई तो तुम्हें पुनः परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। जो प्रेतात्मा का वास है वो खत्म हो जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। मेरे प्यारे दर्शकों, बालाजी की कृपा जिसके घर के ऊपर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसको परेशानी छू भी नहीं सकती। अगर परेशानियां आई हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे क्या समस्या है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी बेटा।
1: श्री बालाजी महाराज,
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम तुम्हारा?
1: ऋषि नाम है महाराज।
0: कहाँ से बोल रहे हो ऋषि?
1: मैं गाजीपुर से बात कर रहा हूँ।
0: गाजीपुर से बेटा, समस्या बताओ, समस्या क्या है?
1: महाराज जी, हमारा एक लव लेटर है, मैं किसी को लाइक करता था।
0: अच्छा।
1: तो नियंत्रण देखा जाए उसमें लगभग 4-5 महीने से ब्रेकअप चल रहा है, शादी भी करना चाहता था।
0: ठीक है।
1: और लड़की भी तो राजी है, एग्री हो, तो पूर्ण रूप से, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं हमारे।
0: आपके घर वाले नहीं मान रहे?
1: जी महाराज।
0: कोई बात नहीं, घर वाले मान जाएंगे। एक काम करना है, शुक्रवार के दिन तुमने पेड़ा लेने हैं 5, और 5 पेड़ा में माँ भगवती का नाम लेना है, माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको चाहता हूँ, उससे मेरा विवाह कराइए, मेरे घर वालों को मनाइए। उसमें माता पिता जो जो नहीं मान रहे उन सब का नाम लेना और माँ से प्रार्थना करना, मैया कृपा करेंगे, तुम्हारा विवाह जो है उसी के साथ कराने के लिए राजी हो जाएंगे, जिसको तुम्हें चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो। टेलीविजन स्क्रीन पे जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आकर के पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें और आप अपने आचार्य परमानंद को इजाजत दें, आज्ञा दें, बालाजी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहे। जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री राम।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
6: मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीमें।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। देश में यूं तो उत्सवों का मौसम चल रहा है, लेकिन आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे शौर्य के उस उत्सव की जिसकी छटा देश में जमी से आसमान तक आप देखेंगे तो नजर आएगी। बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान के रण तक वीरों की गर्जना देखने को मिल रही है। भारत की सेना इस समय अलग अलग मोर्चों पर धुआंधार युद्ध अभ्यासों में जुटी हुई है। देखिए, तीन तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर है भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति की। भारत में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शुमार हो गया है, आगे बढ़ चला है, जिनके पास कम लागत में लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाले ड्रोन बनाने की क्षमता है। भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया। वहीं पर एक और तस्वीर राजस्थान से ही निकल कर आई है। जोधपुर में भारत और जापान पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। दोनों देशों के वायुवीर अपनी अपनी क्षमताओं के उनको परख रहे हैं और आपसी साझेदारी को और बेहतर बना रहे हैं। तीसरी तस्वीर है भारत और अमेरिका के बीच हो रहे युद्धाभ्यास की। भारत और अमेरिका के बीच देश के दो अलग अलग क्षेत्रों में युद्धाभ्यास लगातार जारी है। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का जबरदस्त परिचय दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास 2004 से होता आ रहा है, लेकिन पहली बार जो है ये युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। और आखिर क्या वजह है कि एक युद्धाभ्यास के लिए दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों को चुनाव उनका किया गया और दोनों देशों के लिए क्यों इतना महम है ये युद्धाभ्यास, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जाबाज देश के दो छोरों पर हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार में अब की बार साझेदार है वो सेना जिसके साथ अब तक भारत ने सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ, एक अभ्यास उत्तराखंड की औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। 15 से 28 सितंबर की तारीखों के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के लगभग 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों को आजमाया जा रहा है, जिनमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभ्यास के जितना ही खास इसका नाम भी है। अब चूंकि तैयारी वाकई युद्ध के लिए है, अभ्यास वाकई युद्ध जैसे हालात में ऑपरेशन रेडीनेस के लिए है, तो जो काम है सीधे सीधे वैसा ही नाम रखा गया है। बिना शब्दों के हेर फेर के भारत अमेरिका की साझा वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास 2026।
1: भारतीय सेना यूं तो लगातार कई देशों के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करती है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका युद्ध अभ्यास बेहद खास है और इसीलिए इसे खास नाम युद्ध अभ्यास दिया गया है। यानी दुनिया की जब दो सर्वश्रेष्ठ सेनाएं मिलती हैं और एक साथ अपने रण कौशल को बांटती हैं, तो वाकई में ये दिखाता है कि कैसे उस देश की दो सेनाओं के बीच के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। इस बार युद्धाभ्यास न सिर्फ रेगिस्तान में हो रहा है बल्कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर भी हो रहा है, जहां औली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर और अलग अलग तरह की स्किल्स को भारत और अमेरिका के जाबाज साझा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर तमाम अलग अलग एक्शन और ड्रिल्स कर रहे हैं, रियल टाइम वॉर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और किस तरह से किसी भी युद्ध में इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाता है, ये युद्धाभ्यास में बखूबी देखा जा रहा है।
0: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। ये अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है, तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे की राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लियरेंस और रूम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रूम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेंड डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेंड डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना, क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रूम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली एलएसी यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। पहली बार दो अलग भूभागों पर एक साथ हो रहा अभ्यास भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सेना को एक ही समय में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर संभावित खतरों से एक साथ निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये युद्धाभ्यास दिखाता है कि क्वाड देशों में भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी बेहद मजबूत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है, जो न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करेगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास है, तो वहीं पर जोधपुर में भारत और जापान के सैनिक हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और राफेल के साथ साथ जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। 22 सितंबर तक चलने वाला यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, ऑपरेशन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में किस तरीके से मददगार होगा, आपको पहले ये बताते हैं।

0: वीरों की धरा है, वीरों का आसमान है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में ये शौर्य की उड़ान है। जोधपुर एयरबेस इन दिनों हिंदुस्तान और जापान के बीच हवाई ताकत की बेहतरीन साझेदारी का गवाह बन रहा है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2026 में भारत की वायुसेना अपनी ताकत परखने के लिए जापान के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में रविवार 20 सितंबर को ऐतिहासिक मौका तब आया जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर एयरबेस पर एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी।
1: जापान की एयरफोर्स पहली बार अपने फाइटर्स के साथ भारत में एक एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन कर रही है। वीर गार्जियन इसलिए खास है क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक राजस्थान में किया जा रहा है, और जोधपुर के आसमान में जब भारत और जापान के फाइटर्स एक साथ उड़ान भर रहे हैं तो ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ है। इतना ही नहीं, जापान के एयर चीफ और भारत के एयर चीफ ने एक साथ एक सॉटी की, भारत के तेजस विमान को उड़ाया और ये दिखा दिया कि भारत के कौशल के साथ साथ भारत में बना हुआ भारत का अपना फाइटर भी बेहद खास है।
0: उड़ान के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मुख्य पायलट की भूमिका निभाई, जबकि जापानी वायुसेना प्रमुख क्विन सीटर तेजस में सह पायलट के रूप में शामिल हुए। ये उड़ान न केवल भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी, बल्कि ये उड़ान भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता पर जापान के भरोसे का प्रतीक भी बनी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकेहिरो मोरिता ने एलसीए तेजस की तारीफ की।
2: I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas as an aircraft born from indigenous defense capabilities. Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
0: दोनों देशों के वायु सेना प्रमुखों की ओर से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच मुख्य रूप से दो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। दोनों देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन नाम से, जबकि वायु सेनाओं का युद्धाभ्यास वीर गार्जियन नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों युद्धाभ्यास समय समय पर भारत और जापान में बारी बारी से होते हैं। अब तक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कुल 7 बार आयोजित हो चुका है। इसका 7वां संस्करण इसी साल 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया

0: सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं जापानी वायुसेना ने अपने F-2A और कावासाकी C-2 जैसे विमानों के साथ शिरकत की है। युद्ध जैसे हालात में दोनों वायुसेनाएं अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। हालांकि यह अभ्यास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। 22 सितंबर तक जोधपुर में चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। इसीलिए दोनों वायु सेनाएं जोधपुर में अब तक कई तरह के हवाई अभियानों और वार एक्टिविटीज का अभ्यास कर चुकी हैं। दोनों वायु सेनाओं के पायलट और कमांडरों ने आधुनिक युद्ध तकनीकों, एडवांस्ड ऑपरेशनल मिशन और संयुक्त मिशन प्लानिंग पर काम किया है। इसमें दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की ऑपरेशनल टैक्टिक्स को समझा ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर काम किया जा सके। हवाई युद्ध अभ्यास के अलावा दोनों देशों के तकनीकी और इंजीनियरिंग दलों के बीच भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें विमानों के रखरखाव, कठिन मौसम में इंजीनियरिंग सहायता और एयरोस्पेस सेफ्टी सुनिश्चित करने की बेस्ट तकनीकों को साझा किया गया, ताकि वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल में जुटी हैं, अपनी तैयारियों को परख रही हैं, तो वहीं युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करेंगे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। अब से कुछ ही दिनों में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। आपको बता दें कि देखिए ऑपरेशनल तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय वायुसेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तब ये युद्धाभ्यास जो है दो चरणों में हुआ था। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में, जबकि दूसरा राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर आयोजित हुआ था। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, UAE, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अब एक बार फिर से हमारे वायुवीर तैयार हैं दुनिया भर की वायुसेनाओं का स्वागत भारत के आसमान पर करने के लिए। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का अवसर मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका भी मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। तो ये तो थी बात युद्धाभ्यासों में अपने रण कौशल को परखने की, निखारने की। लेकिन अब आपको भारत की बढ़ती डिफेंस क्षमताओं की एक शानदार झलक भी दिखा देते हैं। 20 सितंबर 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए काल स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। वो ड्रोन है जो काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और टारगेट्स को तबाह करने में सक्षम है। इसकी खूबियों की अगर हम बात करें तो देखिए काल की रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक है। ये 7 से 8 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम तक है, यानी ये 50 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये भारत की अपनी लंबी दूरी की मानव रहित मारक क्षमता के विकास में अहम उपलब्धि है। चूंकि अब लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन आधुनिक युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, इसी को देखते हुए काल को विकसित किया गया है। ये भारत की लंबी दूरी की अनमैंड स्ट्राइक क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्यों खास है काल और क्यों है इसकी खासियत, इस पर और जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा।
2: रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लगातार ड्रोन्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत का अपना पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन काल तैयार हो चुका है। काल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी कि वो दुश्मन को बहुत दूरी से मार सकता है और वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत में IG ड्रोन्स द्वारा बनाए गए काल की क्षमताएं एक बार फिर एक परीक्षण में साफ दिखाई दी, जो पोखरण में किया गया। ये 50 किलो का पेलोड लेकर दुश्मन

0: उनके इलाके में पहुंच सकता है और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। इससे पहले भी लगातार काल के अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं, अलग अलग टेरेन में इसे परखा जा रहा है और इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है।
1: तो भारत की हवाई स्ट्राइक क्षमता को मजबूती देने आ चुका है। चलिए बढ़ती क्षमताओं वाली गुड न्यूज के बाद अब आपको एक झलक वायुवीरों के शौर्य की भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वीकेंड वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम के एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया और इस शो में वायु सेना के जाबाजों ने अपने जानदार और शानदार करतबों से सबका दिल जीत लिया।

0: आसमान को तिरंगे के रंगों से नहलाने वाली ये तस्वीरें यूपी के मेरठ से आई हैं। मेरठ के आसमान पर 19 और 20 सितंबर को भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने यहां पर हैरतअंगेज करतब दिखाए। टीम ने मेरठ के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेरठ के मोहिउद्दीनपुर के न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आयोजित एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉक MK-132 विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर लोग रोमांचित हो उठे। शो के दौरान 9 हॉक Mark 132 फाइटर जेट्स पर सवार पायलट्स ने महज 5 मीटर की दूरी पर रहते हुए जमीन से लगभग 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर कई शानदार मैन्यूवर पेश किए। जिसमें सूर्य किरण टीम के सिग्नेचर बैरल रोल और डायमंड जैसे फॉर्मेशन शामिल थे। सूर्य किरण टीम के हर स्टंट ने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। सूर्य किरण टीम ने अपने फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक दिखाई। मेरठ का आसमान केसरिया सफेद और हरे रंग के धुएं से रंगा हुआ था। ये सटीकता, अनुशासन और टीम स्पिरिट का अनोखा प्रदर्शन था। आपको बता दें कि ऐसा एक शो करने के लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलट्स को 6 से 8 महीने के कठिन अभ्यास से गुजरना होता है। सूर्य किरण टीम अलग अलग मौकों पर ऐसे एरोबेटिक शोज का आयोजन करती रहती है। बता दें कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम सारी दुनिया में विख्यात है। इसका गठन 1996 में किया गया था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम को SKAT यानी स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है। ये टीम अब तक दुनिया भर में सैकड़ों रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। सूर्य किरण टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक Mark 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपने जानदार कर्तव्य दिखाती है। बात अगर टीम की करे तो इस टीम में कुल 13 पायलट्स हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट ही एक शो में भाग लेते हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के लिए साल में 2 बार पायलट्स का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम में 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है। एरोबेटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का अनुभव होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। मेरठ में हुए एयर शो में सूर्य किरण टीम की वही शानदार साझेदारी नजर आई। वायुसेना के इन जावाजों ने अपने साहस से एक बार फिर सबको यकीन दिला दिया कि क्यों इस टीम का ध्येय वाक्य सदैव सर्वोत्तम है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने रोमांचक कर्तव्यों से मेरठ और सारे देश का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: नन्हे कदम मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदन कानन जू से आई ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं, क्योंकि देखिए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 5 नन्हे ओरांगुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा बात हो रही है जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे। गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि अब इनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो गई है बिल्कुल और फीडिंग ठीक चल रही है और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां फिर से वापस लौट आई। नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास फोकस किया जा रहा है।
3: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है। साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है। दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन 5 नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदन कानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी 5 का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदन कानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, यानी इन नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये 5 ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी फूट फूट कर रोने लगे। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को सकुशल बचाने का है ये वीडियो। क्या है सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव का नतीजा 14 सितंबर को आया। खास बात यह है कि डिडवाना कूचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के कुछ वार्ड में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को महज एक एक वोट मिला है। अब इसी को जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया, कहा यह जा रहा है कि यह व्यक्ति बीजेपी का प्रत्याशी है जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने से फूट फूट कर रोने लगा। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र चर्चा का विषय बन गए, जब नतीजे के बाद पता चला कि जिस वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां उन्हें सिर्फ एक वोट मिला। कैलाश चंद्र ने डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के वार्ड 13 से चुनाव लड़ा था। अब इसी चुनाव नतीजे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी रोने लगे। वीडियो पर लिखा है, राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, अपने घर वाले भी नहीं दिए वोट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि व्यक्ति बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की क्योंकि खबरों की बाढ़ में जरूरी है कि हमें जिस फोटो वीडियो पर संदेह हो हम उसका फैक्ट चेक कर ले, आप तक सही और सच्ची खबर हम पहुंचाएं। तो वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसे गौर से देखा और सुना भी। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो एक शब्द सुनने को मिला, मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूं और मेरे साथ ऐसा क्यों। ये सुनकर हमें ऐसा लगा कि शायद ये मामला किसी पार्टी के टिकट वितरण से जुड़ा हुआ हो सकता है और टिकट नहीं मिलने पर ये शख्स दुखी होकर रोने लगे। इसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वीडियो वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स की राजस्थानी बीजेपी से संबंध है या फिर नहीं। और सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद को सिर्फ एक ही वोट मिला। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि वीडियो में जो शख्स रोते हुए दिख रहे हैं वाकई वो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद है या फिर नहीं, जब हमने इसे खंगाला तो ये साफ हुआ कि वायरल हो रहे वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका राजस्थान बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद वार्ड नंबर 12 के मतदाता हैं, जबकि चुनाव में उन्होंने बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाके वार्ड नंबर 13 से मैदान में उतारा था। उनके साथ कार्यकर्ता घूम जरूर रहे थे लेकिन किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया। जबकि वायरल वीडियो में जो शख्स को बीजेपी नेता बताया जा रहा है उसकी सही बातों को सुनने में ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं मिलने की वजह से दुखी है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो में दिख रहे शख्स बीजेपी नेता नहीं है तो फिर इस शख्स की पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल कि अगर वायरल हो रहे वीडियो का संबंध राजस्थान से है तो इसके बारे में कहीं भी किसी आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में
5: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें 8 जून 2026 को बिहार के एक लोकल न्यूज चैनल के YouTube अकाउंट पर अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि मीडिया के सामने रोते हुए नजर आ रहे व्यक्ति RJD नेता शिव चंद्र राम है, जो MLC का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान उन्होंने RJD के तमाम पदों से इस्तीफा भी देने की घोषणा कर दी थी। इससे यही स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो का राजस्थान में हुए हालिया निकाय चुनावों से कोई वास्ता नहीं।
6: नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था।
5: इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 8 जून 2026 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार निधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। महागठबंधन की ओर से RJD के सुनील सिंह ने नामांकन किया था। इसके बाद RJD नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम की नाराजगी सामने आई। बतौर रिपोर्ट शिव चंद्र राम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें MLC बनाने का वादा किया था लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी की गई। पड़ताल के दौरान हमें 9 जून 2026 को एक न्यूज़पेपर के फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया यही वीडियो मिला। इस पोस्ट में भी बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने रोते हुए ये व्यक्ति RJD के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम हैं, जो MLC का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। पोस्ट में आगे बताया गया है कि शिव चंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान किया था लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। वायरल पोस्ट में राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को एक वोट मिलने का दावा किया गया है। हमने इस दावे की भी पड़ताल की। इस संबंध में हमें 14 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले की परबतसर नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को महज एक वोट मिला था। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को वार्ड नंबर 13 से सिर्फ एक वोट मिला था। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस की हिना खानम को 376 वोट मिले जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रसीद खां को 195 वोट मिले। हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणामों को चेक किया। यहां परबतसर नगर पालिका के चुनाव परिणाम में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र के नाम के सामने एक वोट दर्ज है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से साफ है कि राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को एक वोट मिलने का दावा सही है, लेकिन वायरल वीडियो का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिवचंद्र राम हैं, जो बिहार में एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के बाद जून 2026 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए नजर आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भावनात्मक संदेश के साथ इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
5: रेलवे ट्रैक में फंसे हाथी के बच्चे को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। बचाव कर्मी तुरंत एक्शन में आते हैं और हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के बच्चे के पैर को बाहर निकाल देते हैं।

0: इसके कैप्शन में लिखा है, रेलवे ट्रैक पर फंसा हाथी का पैर लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। रेलवे ट्रैक पर एक हाथी का पैर फंस गया। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाई और हाथी को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है और इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आती हुई भी दिखती है। बचाव कर्मी हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के पैर को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने के बाद हमें कई ऐसी गलतियां नजर आई जो आमतौर पर असली वीडियो में देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी के बच्चे का पैर लोहे की भारी पटरी के आर पार ऐसे धंसता है और बाहर फिसलता है मानो पटरी लोहे की ना होकर रबड़ की हो। बचाव कर्मी जिस हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग कर रहे हैं वो पटरी पर बना कोई वास्तविक दबाव या फिर ग्रिप बनाए हाथी का पैर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा हाथी का पैर निकलने के बाद उस पर चोट या फिर खरोंच का कोई भी निशान नहीं दिखता है। ट्रैक पर हाथी का बच्चा फंसा हुआ है, पीछे से एक ट्रेन चली आ रही है, लेकिन इस दौरान कोई भी ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोकने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि जब रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को बचाया जा रहा है तो फिर ट्रेन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। हमारा दूसरा सवाल ये कि आसपास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे पेड़ पौधे स्थिर देखने को मिल रहे हैं, इनमें कोई भी हरकत देखने को क्यों नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल सीधा ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में इस घटना से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये वीडियो मौजूद हो। हालांकि इस दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मिले जिसमें यही वीडियो मौजूद है और उन पर AI कंटेंट का लेबल लगा हुआ है। इसके बाद पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को स्कैन किया। हाइव के एनालिसिस में इस वीडियो के AI से बने होने के करीब 96% 4% संकेत मिले। इसी तरह हमने एक दूसरे AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद ली और वायरल वीडियो की फ्रेम्स को चेक किया। इसने की फ्रेम्स को 94% AI संभावित बताया। हमने वायरल वीडियो को डीप फेकोमीटर पर भी चेक किया। इस टूल के 5 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। साफ है हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। रेल के पटरियों के बीच फंसे हाथी के बच्चे का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और इन्हें पसंद भी किया जा रहा है।
3: इन क्लास क्लासमेट्स का रियूनियन लोगों का ध्यान खींच रहा है। कई साल पहले जिस स्कूल में वो साथ पढ़ते थे उसी जगह पर वो 5 दशक यानी 50 साल बाद दोबारा एक साथ नजर आए। पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर बचपन की यादें ताजा की। उम्र भले ही काफी बढ़ गई हो लेकिन एक दूसरे से मिलने की खुशी में वही पुरानी दोस्ती और अपनापन दिखाई दिया। स्कूल की इमारत, गलियां और क्लासरूम को देखकर उनके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक साफ नजर आई। शायद उनके लिए ये सिर्फ स्कूल वापस आना नहीं था बल्कि अपने बचपन के इस दौर में लौटना था जिसे उन्होंने कभी अपने दोस्तों के साथ जिया था।
4: अरे हमें तो हनुमान जी सब दे दे। इनसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना उतारे।
3: हनुमान अंश के डायलॉग पर बच्चे ने नीम करोली बाबा के किरदार की क्यूट नकल की। कम्बल ओढ़कर बच्चे की शानदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन ने यूजर्स का दिल जीत लिया। बच्चे की मासूमियत और उसकी कॉपी करने की कोशिश लोगों को काफी पसंद आ रही है।
4: अरे हमें तो हनुमान जी सब दे देते। इनसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना होता।
3: बच्चों को खिलौने मिल जाए तो वह घंटों खेलते रहते हैं लेकिन इस बच्चे का खेल थोड़ा अलग है। ये बच्ची किसी महंगे खिलौने के साथ नहीं बल्कि 2 मेंढकों के साथ खेलती नजर आ रही है। खास बात ये है कि बच्ची को इन मेंढकों से जरा भी डर नहीं लग रहा। वह बड़े आराम से उनके साथ मस्ती करती दिखाई देती है। वह कभी उन्हें हाथ से छूती है तो कभी उनके आसपास घूमकर अपनी मस्ती में लगी रहती है। सबसे हैरान करने वाली बात बच्ची का कॉन्फिडेंस है। आमतौर पर मेंढक देखते ही कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं लेकिन इस बच्ची को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके सामने कोई ऐसी चीज है जिससे उसे डरना चाहिए। वह तो उन्हें अपनी खिलौने की तरह लेकर बैठी है।

सफर के दौरान एक थकी हुई माँ रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए चाय वाले ने जो किया उसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल एक महिला अपने बीमार बच्चे का गोरखपुर से इलाज कराकर ट्रेन से वापस लौट रही थी। महिला बुरी तरह थक चुकी थी और उसका छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। माँ के पास उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और वह बेबस नजर आ रही थी। ट्रेन के उसी डिब्बे में पटना के रहने वाले एक साधारण चाय विक्रेता राजा बाबू चाय बेच रहे थे। उन्होंने जब उस थकी हारी माँ और लगातार रोते बच्चे को देखा तो उनका दिल पसीज गया। बच्चे का ध्यान भटकाने और उसे चुप कराने के लिए राजा बाबू ट्रेन के गलियारे में ही नाचने लगे। ये देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और नाचते हुए चाय वाले को देखकर मुस्कुराने लगा। ये नजारा देख ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने भी ताली बजाकर चाय वाले की इस दरियादिली की सराहना की।

एनर्जेटिक अंकलों ने सिखाया जिंदगी जीने का असली तरीका। भागदौड़ की जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है। पार्क के बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है। टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई पप्पी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पप्पी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पप्पी के चेहरे की खुशी देख कर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गयी।

अक्सर लोग दिन भर की भागदौड़ और थकान मिटाने के लिए सैलून जाकर सुकून भरी मसाज करवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई जानवर, वो भी बंदर नाई की कुर्सी पर आराम से बैठकर बॉडी मसाज लेने लगे तो क्या होगा। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बंदर अचानक से किसी नाई की दुकान में दाखिल होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज उसका मूड पूरी तरह से रिलैक्स करने का था। वह बिना किसी डर या झिझक के सीधे सैलून की कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया। उसके हाव भाव और शरीर की ढीली पोजीशन ये चीख चीख कर कह रही थी कि उसे आज बस जमकर मसाज चाहिए। बंदर के इस अनोखे अंदाज को देखकर नाई भी हैरान रह गया, लेकिन उसने बंदर को भगाने की बजाय उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। नाई ने बड़े प्यार से बंदर की बॉडी मसाज करना शुरू कर दिया। बंदर आंखें बंद करके इस मुफ्त के स्पा ट्रीटमेंट का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है। नाई भी पूरी शिद्दत से उसकी मालिश करने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से आई इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसमें टाइगर का बेहद प्यारा अंदाज देखने को मिला है। टाइगर के नन्हे बच्चे एक छोटे से पानी के गड्ढे में मस्ती करते दिख रहे हैं। पानी काफी कीचड़ भरा है, लेकिन शावकों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। कोई आधा पानी में डूबा है तो कोई कीचड़ में लेटकर आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में उन्हें अपना पर्सनल स्विमिंग पूल मिल गया हो। इन सबके बीच मादा टाइगर पानी से थोड़ी दूर सतर्क होकर बैठी है और बच्चों की हरकत पर नजर रख रही है। एक पल में वो पानी की तरफ झुकती भी है जैसे पानी पी रही हो या बच्चों का हाल पूछ रही हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: बात करते हैं जोधपुर में भारत जापान के संयुक्त हवाई अभ्यास की, जिसमें दोनों देशों के वायुवीर तो अपने कौशल का प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत और जापान के एयरफोर्स चीफ भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। जापान के वायुसेना प्रमुख ने मेक इन इंडिया पहल को लेकर भी अपनी खुशी जताई। 9 सितंबर से जारी इस एक्सरसाइज का आयोजन मंगलवार 22 सितंबर यानी कल तक के लिए किया गया है।
3: ये दो देशों की साझा ताकत है, भारत और जापान के वायु योद्धाओं की ताकत। ये एक साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में 9 सितंबर से चल रहे वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ भी पहुंचे और यहां दोनों ने भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भी भरी। जोधपुर के आसमान में तेजस की इस उड़ान की गूंज दुनिया तक पहुंचने वाली रही। इस उड़ान ने भारत और जापान के बीच बढ़ते हवाई तालमेल को प्रदर्शित किया। इस खास मौके पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल ताकी हीरो मोरिता ने मेक इन इंडिया पहल की भी तारीफ की।
4: एपी सैम, इट इज अ प्रिविलेज टू बी विद यू टुडे एंड आई वुड लाइक टू शो माय अप्रिशिएशन फॉर योर वार्म वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी। I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas as an aircraft born from indigenous defense capabilities. Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative.
3: वीर गार्जियन भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसके लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत पहुंच गए थे। अब दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख का तेजस लड़ाकू विमान को साथ में उड़ाना साफ तौर पर भारत जापान के बीच बढ़ते विश्वास को जता रहा है। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के अलावा सुखोई 30 एमकेआई और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है, तो वहीं जापान का लड़ाकू विमान F-2 और C-2 परिवहन विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है।
4: Pear Guardian is the second bilateral fighter exercise between our services. More importantly, it marks the first ever deployment of the Kokku Jetai fighters to India. We believe that advanced training deepens mutual understanding, strengthens trust, and enhances practical cooperation.
3: दोनों देशों की वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही है। अभ्यास के अंतिम चरण में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण रहा।
5: General Morita, the chief of the Japan Air Self-Defense Force, who has taken time out to join us as a distinguished visitor in this exercise, that itself makes this exercise much, much higher level. Thank you. Thank you for sending your team here. And I am sure they will take back some happy memories. And we will continue to have these exercises at regular intervals.
3: दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। इसका मकसद ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों में समन्वय को मजबूत करना है। अभी तक हुए इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर चुके हैं। ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक के लिए आयोजित किया गया है। वीर गार्जियन 2026 सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी सीख, बेहतर इंटर ऑपरेबिलिटी और वायु योद्धाओं के बीच दोस्ती को मजबूत करने वाला अहम कदम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: कि भाग्य
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुंबई में लालबाग शाहराजा के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। देश में यूं तो उत्सवों का मौसम चल रहा है, लेकिन आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे शौर्य के उस उत्सव की जिसकी छटा देश में जमीन से आसमान तक अगर आप देखेंगे तो नजर आएगी। बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान के रण तक वीरों की गर्जना देखने को मिल रही है। भारत की सेना इस समय अलग अलग मोर्चों पर धुआंधार युद्धाभ्यासों में जुटी हुई है। देखिए, तीन तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर है भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति की। भारत में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शुमार हो गया है, आगे बढ़ चला है, जिनके पास कम लागत में लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाले ड्रोन बनाने की क्षमता है। भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया। वहीं पर एक और तस्वीर राजस्थान से ही निकलकर आई है। जोधपुर में भारत और जापान पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। दोनों देशों के वायुवीर अपनी अपनी क्षमताओं के उनको परख रहे हैं और आपसी साझेदारी को और बेहतर बना रहे हैं। तीसरी तस्वीर है भारत और अमेरिका के बीच हो रहे युद्धाभ्यास की। भारत और अमेरिका के बीच देश के दो अलग अलग क्षेत्रों में युद्धाभ्यास लगातार जारी है। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का जबरदस्त परिचय दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास 2004 से होता आ रहा है, लेकिन पहली बार जो है यह युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। और आखिर क्या वजह है कि एक युद्धाभ्यास के लिए दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों को चुनाव उनका किया गया और दोनों देशों के लिए क्यों इतना महम है ये युद्धाभ्यास, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जाबाज देश के दो छोरों पर हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार में अब की बार साझेदार है वो सेना जिसके साथ अब तक भारत ने सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ, एक अभ्यास उत्तराखंड के औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। 15 से 28 सितंबर की तारीखों के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के लगभग 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों को आजमाया जा रहा है, जिनमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभ्यास के जितना ही खास इसका नाम भी है। अब चूंकि तैयारी वाकई युद्ध के लिए है, अभ्यास वाकई युद्ध जैसे हालात में ऑपरेशन रेडीनेस के लिए है, तो जो काम है सीधे सीधे वैसा ही नाम रखा गया है। बिना शब्दों के हेर फेर के भारत अमेरिका की साझा वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास 2026।
1: भारतीय सेना यूं तो लगातार कई देशों के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करती है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका युद्ध अभ्यास बेहद खास है और इसीलिए इसे खास नाम युद्ध अभ्यास दिया गया है। यानी दुनिया की जब दो सर्वश्रेष्ठ सेनाएं मिलती हैं और एक साथ अपने रण कौशल को बांटती हैं, तो वाकई में ये दिखाता है कि कैसे उस देश की दो सेनाओं के बीच के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। इस बार युद्धाभ्यास न सिर्फ रेगिस्तान में हो रहा है बल्कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर भी हो रहा है, जहां औली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर और अलग अलग तरह की स्किल्स को भारत और अमेरिका के जाबाज साझा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर तमाम अलग अलग एक्शन और ड्रिल्स कर रहे हैं, रियल टाइम वॉर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और किस तरह से किसी भी युद्ध में इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाता है, ये युद्धाभ्यास में बखूबी देखा जा रहा है।
0: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है, तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा अभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लीयरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेन डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिटीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना, क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली एलएसी यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। पहली बार दो अलग भूभागों पर एक साथ हो रहा अभ्यास भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सेना को एक ही समय में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर संभावित खतरों से एक साथ निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये युद्धाभ्यास दिखाता है कि क्वाड देशों में भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी बेहद मजबूत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है, जो न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करेगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास है तो वहीं पर जोधपुर में भारत और जापान के सैनिक हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और राफेल के साथ साथ जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। 22 सितंबर तक चलने वाला यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, ऑपरेशन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में किस तरीके से मददगार होगा, आपको पहले ये बताते हैं।

0: वीरों की धरा है, वीरों का आसमान है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में ये शौर्य की उड़ान है। जोधपुर एयरबेस इन दिनों हिंदुस्तान और जापान के बीच हवाई ताकत की बेहतरीन साझेदारी का गवाह बन रहा है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2026 में भारत की वायुसेना अपनी ताकत परखने के लिए जापान के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में रविवार 20 सितंबर को ऐतिहासिक मौका तब आया जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर एयरबेस पर एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी।
1: जापान की एयरफोर्स पहली बार अपने फाइटर्स के साथ भारत में एक एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन कर रही है। वीर गार्जियन इसलिए खास है क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक राजस्थान में किया जा रहा है, और जोधपुर के आसमान में जब भारत और जापान के फाइटर्स एक साथ उड़ान भर रहे हैं तो ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ है। इतना ही नहीं, जापान के एयर चीफ और भारत के एयर चीफ ने एक साथ एक सॉटी की, भारत के तेजस विमान को उड़ाया और ये दिखा दिया कि भारत के कौशल के साथ साथ भारत में बना हुआ भारत का अपना फाइटर भी बेहद खास है।
0: उड़ान के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मुख्य पायलट की भूमिका निभाई, जबकि जापानी वायुसेना प्रमुख ट्विन सीटर तेजस में सह पायलट के रूप में शामिल हुए। ये उड़ान न केवल भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी, बल्कि ये उड़ान भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता पर जापान के भरोसे का प्रतीक भी बनी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकेहिरो मोरिता ने एलसीए तेजस की तारीफ की।
2: आई एम ग्रेटफुल फॉर द इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई ऑन द तेजस एज एन एयरक्राफ्ट बॉम फ्रॉम इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज। Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
0: दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ओर से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच मुख्य रूप से दो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। दोनों देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन नाम से, जबकि वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास वीर गार्जियन नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों युद्धाभ्यास समय समय पर भारत और जापान में बारी बारी से होते हैं। अब तक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कुल 7 बार आयोजित हो चुका है। इसका 7वां संस्करण इसी साल 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था, जबकि वायुसेनाओं की वॉर एक्सरसाइज वीर गार्जियन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में जापान के हायाकुरी एयरबेस पर आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं जापानी वायुसेना ने अपने F-2A और कावासाकी C-2 जैसे विमानों के साथ शिरकत की है। युद्ध जैसे हालात में दोनों वायुसेनाएं अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। हालांकि यह अभ्यास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। 22 सितंबर तक जोधपुर में चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। इसीलिए दोनों वायु सेनाएं जोधपुर में अब तक कई तरह के हवाई अभियानों और वार

0: इसमें विमानों के रखरखाव, कठिन मौसम में इंजीनियरिंग सहायता और एयरोस्पेस सेफ्टी सुनिश्चित करने की बेस्ट तकनीकों को साझा किया गया, ताकि वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल में जुटी है, अपनी तैयारियों को परख रही है, तो वहीं युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
1: बात करेंगे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। अब से कुछ ही दिनों में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। आपको बता दें कि देखिए ऑपरेशनल तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय वायुसेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तब ये युद्धाभ्यास जो है दो चरणों में हुआ था। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में, जबकि दूसरा राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर आयोजित हुआ था। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अब एक बार फिर से हमारे वायुवीर तैयार हैं दुनिया भर की वायुसेनाओं का स्वागत भारत के आसमान पर करने के लिए। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का अवसर मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवा योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका भी मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। तो ये तो थी बात युद्धाभ्यासों में अपने रण कौशल को परखने की, निखारने की, लेकिन अब आपको भारत की बढ़ती डिफेंस क्षमताओं की एक शानदार झलक भी दिखा देते हैं। 20 सितंबर 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए काल स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। वो ड्रोन है जो काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और टारगेट्स को तबाह करने में सक्षम है। इसकी खूबियों की अगर हम बात करें तो देखिए काल की रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक है। ये 7 से 8 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम तक है, यानी ये 50 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये भारत की अपनी लंबी दूरी की मानव रहित मारक क्षमता के विकास में अहम उपलब्धि है। चूंकि अब लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन आधुनिक युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, इसी को देखते हुए काल को विकसित किया गया है। ये भारत की लंबी दूरी की अनमैन्ड स्ट्राइक क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्यों खास है काल और क्यों है इसकी खासियत, इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा।
2: रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लगातार ड्रोन्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत का अपना पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन काल तैयार हो चुका है। काल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी कि वो दुश्मन को बहुत दूरी से मार सकता है और वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत में आईजी ड्रोन्स द्वारा बनाए गए काल की क्षमताएं एक बार फिर एक परीक्षण में साफ दिखाई दी, जो पोखरण में किया गया। ये 50 किलो का पेलोड लेकर दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। इससे पहले भी लगातार काल के अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं, अलग अलग टेरेन्स में इसे परखा जा रहा है और इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है।
1: तो भारत की हवाई स्ट्राइक क्षमता को मजबूती देने आ चुका है। चलिए बढ़ती क्षमताओं वाली गुड न्यूज के बाद अब आपको एक झलक वायुवीरों के शौर्य की भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वीकेंड वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम के एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया और इस शो में वायु सेना के जाबाजों ने अपने जानदार और शानदार करतबों से सबका दिल जीत लिया।

0: आसमान को तिरंगे के रंगों से नहलाने वाली ये तस्वीरें यूपी के मेरठ से आई हैं। मेरठ के आसमान पर 19 और 20 सितंबर को भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने यहां पर हैरतअंगेज करतब दिखाए। टीम ने मेरठ के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेरठ के मोहिउद्दीनपुर के न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आयोजित एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉक MK-132 विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर लोग रोमांचित हो उठे। शो के दौरान 9 हॉक Mark 132 फाइटर जेट्स पर सवार पायलट्स ने महज 5 मीटर की दूरी पर रहते हुए जमीन से लगभग 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर कई शानदार मैन्यूवर पेश किए। जिसमें सूर्य किरण टीम के सिग्नेचर बैरल रोल और डायमंड जैसे फॉर्मेशन शामिल थे। सूर्य किरण टीम के हर स्टंट ने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। सूर्य किरण टीम ने अपने फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक दिखाई। मेरठ का आसमान केसरिया सफेद और हरे रंग के धुएं से रंगा हुआ था। ये सटीकता, अनुशासन और टीम स्पिरिट का अनोखा प्रदर्शन था। आपको बता दें कि ऐसा एक शो करने के लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलट्स को 6 से 8 महीने के कठिन अभ्यास से गुजरना होता है। सूर्य किरण टीम अलग अलग मौकों पर ऐसे एरोबेटिक शोज का आयोजन करती रहती है। बता दें कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम सारी दुनिया में विख्यात है। इसका गठन 1996 में किया गया था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम को SKAT यानी स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशन बनाती है। ये टीम अब तक दुनिया भर में सैकड़ों रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। सूर्य किरण टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक Mark 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपने जानदार कर्तव्य दिखाती है। बात अगर टीम की करें तो इस टीम में कुल 13 पायलट हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट ही एक शो में भाग लेते हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के लिए साल में 2 बार पायलट्स का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम में 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है। एरोबेटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का अनुभव होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। मेरठ में हुए एयर शो में सूर्य किरण टीम की वही शानदार साझेदारी नजर आई। वायुसेना के इन जावाजों ने अपने साहस से एक बार फिर सबको यकीन दिला दिया कि क्यों इस टीम का ध्येय वाक्य सदैव सर्वोत्तम है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने रोमांचक कर्तव्यों से मेरठ और सारे देश का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: नन्हे कदम मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदन कानन जू से आई ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं, क्योंकि देखिए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 5 नन्हे ओरांगुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा बात हो रही है जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे। गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि अब इनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो गई है बिल्कुल, और फीडिंग ठीक चल रही है, और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां फिर से वापस लौट आई। नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास फोकस किया जा रहा है।
2: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी, क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है, साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है, दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन 5 नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदन कानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी 5 का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदन कानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, यानी इन नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये 5 ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: मुंबई में लालबाग शाहराजा के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार। कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण। चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी फूट फूट कर रोने लगे। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को सकुशल बचाने का है ये वीडियो। क्या है सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव का नतीजा 14 सितंबर को आया। खास बात यह है कि डिडवाना कूचमन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के कुछ वार्ड में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को महज एक एक वोट मिला है। अब इसी को जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, कहा यह जा रहा है कि यह व्यक्ति बीजेपी का प्रत्याशी है जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने से फूट फूट कर रोने लगा। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र चर्चा का विषय बन गए, जब नतीजे के बाद पता चला कि जिस वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां उन्हें सिर्फ एक वोट मिला। कैलाश चंद्र ने डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के वार्ड 13 से चुनाव लड़ा था। अब इसी चुनाव नतीजे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी रोने लगे। वीडियो पर लिखा है, राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, अपने घर वाले भी नहीं दिए वोट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि व्यक्ति बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि खबरों की बाढ़ में जरूरी है कि हमें जिस फोटो वीडियो पर संदेह हो हम उसका फैक्ट चेक कर ले, आप तक सही और सच्ची खबर हम पहुंचाएं। तो वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसे गौर से देखा और सुना भी। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो एक शब्द सुनने को मिला, मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूं और मेरे साथ ऐसा क्यों। ये सुनकर हमें ऐसा लगा कि शायद ये मामला किसी पार्टी के टिकट वितरण से जुड़ा हुआ हो सकता है, और टिकट नहीं मिलने पर ये शख्स दुखी होकर रोने लगे। इसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वीडियो वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स की राजस्थानी बीजेपी से संबंध है या फिर नहीं, और सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि डीडवाना कूचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को सिर्फ एक ही वोट मिला। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि वीडियो में जो शख्स रोते हुए दिख रहे हैं वाकई वो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र है या फिर नहीं, जब हमने इसे खंगाला तो ये साफ हुआ कि वायरल हो रहे वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका राजस्थान बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद वार्ड नंबर 12 के मतदाता हैं, जबकि चुनाव में उन्होंने बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाके वार्ड नंबर 13 से मैदान में उतारा था। उनके साथ कार्यकर्ता घूम जरूर रहे थे लेकिन किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया, जबकि वायरल वीडियो में जो शख्स को बीजेपी नेता बताया जा रहा है उसकी सही बातों को सुनने में ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं मिलने की वजह से दुखी है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो में दिख रहे शख्स बीजेपी नेता नहीं है तो फिर इस शख्स की पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल कि अगर वायरल हो रहे वीडियो का संबंध राजस्थान से है तो इसके बारे में कहीं भी किसी आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें 8 जून 2026 को बिहार के एक लोकल न्यूज चैनल के यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि मीडिया के सामने रोते हुए नजर आ रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिवचंद्र राम है, जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के तमाम पदों से इस्तीफा भी देने की घोषणा कर दी थी। इससे यही स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो का राजस्थान में हुए हालिया निकाय चुनावों से कोई वास्ता नहीं।
5: हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था।
4: इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 8 जून 2026 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार निधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने नामांकन किया था। इसके बाद आरजेडी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की नाराजगी सामने आई। बतौर रिपोर्ट शिवचंद्र राम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाने का वादा किया था लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी की गई। पड़ताल के दौरान हमें 9 जून 2026 को एक न्यूज़पेपर के फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया यही वीडियो मिला। इस पोस्ट में भी बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने रोते हुए ये व्यक्ति आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हैं, जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। पोस्ट में आगे बताया गया है कि शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान किया था लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। वायरल पोस्ट में राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को एक वोट मिलने का दावा किया गया है। हमने इस दावे की भी पड़ताल की। इस संबंध में हमें 14 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले की परबतसर नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को महज एक वोट मिला था। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को वार्ड नंबर 13 से सिर्फ एक वोट मिला था। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस की हिना खानम को 376 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रसीद खां को 195 वोट मिले। हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणामों को चेक किया। यहां परबतसर नगर पालिका के चुनाव परिणाम में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र के नाम के सामने एक वोट दर्ज है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से साफ है कि राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को एक वोट मिलने का दावा सही है, लेकिन वायरल वीडियो का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिवचंद्र राम हैं, जो बिहार में एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के बाद जून 2026 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए नजर आए थे। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भावनात्मक संदेश के साथ इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
4: रेलवे ट्रैक में फंसे हाथी के बच्चे को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। बचाव कर्मी तुरंत एक्शन में आते हैं और हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के बच्चे के पैर को बाहर निकाल देते हैं।

0: के कैप्शन में लिखा है, रेलवे ट्रैक पर फंसा हाथी का पैर, लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। रेलवे ट्रैक पर एक हाथी का पैर फंस गया। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाई और हाथी को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है और इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आती हुई भी दिखती है। बचाव कर्मी हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के पैर को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने के बाद हमें कई ऐसी गलतियां नजर आई जो आम तौर पर असली वीडियो में देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी के बच्चे का पैर लोहे की भारी पटरी के आर पार ऐसे धंसता है और बाहर फिसलता है मानो पटरी लोहे की ना होकर रबड़ की हो। बचाव कर्मी जिस हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग कर रहे हैं वो पटरी पर बना कोई वास्तविक दबाव या फिर ग्रिप बनाए हाथी का पैर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा हाथी का पैर निकलने के बाद उस पर चोट या फिर खरोंच का कोई भी निशान नहीं दिखता है। ट्रैक पर हाथी का बच्चा फंसा हुआ है, पीछे से एक ट्रेन चली आ रही है, लेकिन इस दौरान कोई भी ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोकने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि जब रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को बचाया जा रहा है तो फिर ट्रेन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। हमारा दूसरा सवाल ये कि आसपास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे पेड़ पौधे स्थिर देखने को मिल रहे हैं, इनमें कोई भी हरकत देखने को क्यों नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल सीधा ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में इस घटना से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये वीडियो मौजूद हो। हालांकि इस दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मिले जिसमें यही वीडियो मौजूद है और उन पर AI कंटेंट का लेबल लगा हुआ है। इसके बाद पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को स्कैन किया। हाइव के एनालिसिस में इस वीडियो के AI से बने होने के करीब 96% 4% संकेत मिले। इसी तरह हमने एक दूसरे AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद ली और वायरल वीडियो के की फ्रेम्स को चेक किया। इसने की फ्रेम्स को 94% AI संभावित बताया। हमने वायरल वीडियो को डीप फेकोमीटर पर भी चेक किया। इस टूल के 5 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। साफ है हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। रेल के पटरियों के बीच फंसे हाथी के बच्चे का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और इन्हें पसंद भी किया जा रहा है।
2: क्लासमेट्स का रियूनियन लोगों का ध्यान खींच रहा है। कई साल पहले जिस स्कूल में वो साथ पढ़ते थे उसी जगह पर वो 5 दशक यानी 50 साल बाद दोबारा एक साथ नजर आए। पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर बचपन की यादें ताजा की। उम्र भले ही काफी बढ़ गई हो लेकिन एक दूसरे से मिलने की खुशी में वही पुरानी दोस्ती और अपनापन दिखाई दिया। स्कूल की इमारत, गलियां और क्लासरूम को देखकर उनके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक साफ नजर आई। शायद उनके लिए ये सिर्फ स्कूल वापस आना नहीं था बल्कि अपने बचपन के इस दौर में लौटना था जिसे उन्होंने कभी अपने दोस्तों के साथ जिया था।
3: अरे हमें तो हनुमान जी साहब दे दो, जिसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना उतारे।
2: के डायलॉग पर बच्चे ने नीम करोड़ी बाबा के किरदार की क्यूट नकल की। कम्बल ओढ़ कर बच्चे की शानदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन ने यूजर्स का दिल जीत लिया। बच्चे की मासूमियत और उसकी कॉपी करने की कोशिश लोगों को काफी पसंद आ रही है।
3: अरे हमें तो हनुमान जी सब दे देते, जिसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना होता।
2: बच्चों को खिलौने मिल जाए तो वह घंटों खेलते रहते हैं लेकिन इस बच्चे का खेल थोड़ा अलग है। ये बच्ची किसी महंगे खिलौने के साथ नहीं बल्कि 2 मेंढकों के साथ खेलती नजर आ रही है। खास बात ये है कि बच्ची को इन मेंढकों से जरा भी डर नहीं लग रहा। वह बड़े आराम से उनके साथ मस्ती करती दिखाई देती है। वह कभी उन्हें हाथ से छूती है तो कभी उनके आसपास घूमकर अपनी मस्ती में लगी रहती है। सबसे हैरान करने वाली बात बच्ची का कॉन्फिडेंस है। आमतौर पर मेंढक देखते ही कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं लेकिन इस बच्ची को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके सामने कोई ऐसी चीज है जिससे उसे डरना चाहिए। वह तो उन्हें अपनी खिलौनी की तरह लेकर बैठी है।

सफर के दौरान एक थकी हुई माँ रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए चाय वाले ने जो किया उसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल एक महिला अपने बीमार बच्चे का गोरखपुर से इलाज कराकर ट्रेन से वापस लौट रही थी। महिला बुरी तरह थक चुकी थी और उसका छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। माँ के पास उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और वह बेबस नजर आ रही थी। ट्रेन के उसी डिब्बे में पटना के रहने वाले एक साधारण चाय विक्रेता राजा बाबू चाय बेच रहे थे। उन्होंने जब उस थकी हारी माँ और लगातार रोते बच्चे को देखा तो उनका दिल पसीज गया। बच्चे का ध्यान भटकाने और उसे चुप कराने के लिए राजा बाबू ट्रेन के गलियारे में ही नाचने लगे। ये देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और नाचते हुए चाय वाले को देखकर मुस्कुराने लगा। ये नजारा देख ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने भी ताली बजाकर चाय वाले की इस दरियादिली की सराहना की।

इन एनर्जेटिक अंकलों ने सिखाया जिंदगी जीने का असली तरीका। भाग दौड़ की जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है। पार्क के बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई, उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है। टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पप्पी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पप्पी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पप्पी के चेहरे की खुशी देख कर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।

अक्सर लोग दिन भर की भागदौड़ और थकान मिटाने के लिए सैलून जाकर सुकून भरी मसाज करवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई जानवर, वो भी बंदर नाई की कुर्सी पर आराम से बैठकर बॉडी मसाज लेने लगे तो क्या होगा। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बंदर अचानक से किसी नाई की दुकान में दाखिल होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज उसका मूड पूरी तरह से रिलैक्स करने का था। वह बिना किसी डर या झिझक के सीधे सैलून की कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया। उसके हाव भाव और शरीर की ढीली पोजीशन ये चीख चीख कर कह रही थी कि उसे आज बस जमकर मसाज चाहिए। बंदर के इस अनोखे अंदाज को देखकर नाई भी हैरान रह गया, लेकिन उसने बंदर को भगाने की बजाय उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। नाई ने बड़े प्यार से बंदर की बॉडी मसाज करना शुरू कर दिया। बंदर आंखें बंद करके मुफ्त के स्पा ट्रीटमेंट का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है। नाई भी पूरी शिद्दत से उसकी मालिश करने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से आई इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसमें टाइगर का बेहद प्यारा अंदाज देखने को मिला है। टाइगर के नन्हे बच्चे एक छोटे से पानी के गड्ढे में मस्ती करते दिख रहे हैं। पानी काफी कीचड़ भरा है, लेकिन शावकों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। कोई आधा पानी में डूबा है तो कोई कीचड़ में लेट कर आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में उन्हें अपना पर्सनल स्विमिंग पूल मिल गया हो। इन सबके बीच मादा टाइगर पानी से थोड़ी दूर सतर्क होकर बैठी है और बच्चों की हरकत पर नजर रख रही है। एक पल में वो पानी की तरफ झुकती भी है जैसे पानी पी रही हो या बच्चों का हाल पूछ रही हो।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करते हैं जोधपुर में भारत जापान के संयुक्त हवाई अभ्यास की, जिसमें दोनों देशों के वायुवीर तो अपने कौशल का प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत और जापान के एयरफोर्स चीफ भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। जापान के वायुसेना प्रमुख ने मेक इन इंडिया पहल को लेकर भी अपनी खुशी जताई। 9 सितंबर से जारी इस एक्सरसाइज का आयोजन मंगलवार 22 सितंबर यानी कल तक के लिए किया गया है।
3: ये दो देशों की साझा ताकत है, भारत और जापान के वायु योद्धाओं की ताकत। ये एक साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में 9 सितंबर से चल रहे वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ भी पहुंचे और यहां दोनों ने भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भी भरी। जोधपुर के आसमान में तेजस की इस उड़ान की गूंज दुनिया तक पहुंचने वाली रही। इस उड़ान ने भारत और जापान के बीच बढ़ते हवाई तालमेल को प्रदर्शित किया। इस खास मौके पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल ताकी हीरो मोरिता ने मेक इन इंडिया पहल की भी तारीफ की।
4: एपी सैम, इट इज अ प्रिविलेज टू बी विद यू टुडे एंड आई वुड लाइक टू शो माय अप्रिशिएशन फॉर योर वार्म वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी। I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas as an aircraft borne from indigenous defense capabilities. Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative.
3: वीर गार्जियन भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसके लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत पहुंच गए थे। अब दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख का तेजस लड़ाकू विमान को साथ में उड़ाना साफ तौर पर भारत जापान के बीच बढ़ते विश्वास को जता रहा है। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्कू लड़ाकू विमान LCA तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है, तो वही जापान का लड़ाकू विमान F-2 और C-2 परिवहन विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है।
4: Dear Guardian is the second bilateral fighter exercise between our services. More importantly, it marks the first ever deployment of the Kokujetai fighters to India. We believe that advanced training deepens mutual understanding, strengthens trust, and enhances practical cooperation.
3: दोनों देशों की वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही है। अभ्यास के अंतिम चरण में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण रहा।
5: General Morita, the chief of the Japan Air Self Defense Force, who has taken time out to join us as a distinguished visitor in this exercise, that itself makes this exercise much, much higher level. Thank you. Thank you for sending your team here. And I am sure they will take back some happy memories. And we will continue to have these exercises at regular intervals.
3: दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। इसका मकसद ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों में समन्वय को मजबूत करना है। अभी तक हुए इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर चुके हैं। ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक के लिए आयोजित किया गया है। वीर गार्जियन 2026 सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी सीख, बेहतर इंटर ऑपरेबिलिटी और वायु योद्धाओं के बीच दोस्ती को मजबूत करने वाला अहम कदम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: ये कहता है
1: कि भाग्य
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।
2: हाजरी पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।

नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। देश में यूं तो उत्सवों का मौसम चल रहा है, लेकिन आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे शौर्य के उस उत्सव की जिसकी छटा देश में जमीन से आसमान तक अगर आप देखेंगे तो नजर आएगी। बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान के रण तक वीरों की गर्जना देखने को मिल रही है। भारत की सेना इस समय अलग अलग मोर्चों पर धुआंधार युद्धाभ्यासों में जुटी हुई है। देखिए, तीन तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर है भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति की, भारत में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शुमार हो गया है, आगे बढ़ चला है, जिनके पास कम लागत में लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाले ड्रोन बनाने की क्षमता है। भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया। वहीं पर एक और तस्वीर राजस्थान से ही निकलकर आई है। जोधपुर में भारत और जापान पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। दोनों देशों के वायुवीर अपनी अपनी क्षमताओं के उनको परख रहे हैं और आपसी साझेदारी को और बेहतर बना रहे हैं। तीसरी तस्वीर है भारत और अमेरिका के बीच हो रहे युद्धाभ्यास की। भारत और अमेरिका के बीच देश के दो अलग अलग क्षेत्रों में युद्धाभ्यास लगातार जारी है। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का जबरदस्त परिचय दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास 2004 से होता आ रहा है, लेकिन पहली बार जो है ये युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। और आखिर क्या वजह है कि एक युद्धाभ्यास के लिए दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों को चुनाव उनका किया गया और दोनों देशों के लिए क्यों इतना महम है ये युद्धाभ्यास, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जाबाज देश के दो छोरों पर हुंकार भर रहे हैं, और इस हुंकार में अब की बार साझेदार है वो सेना जिसके साथ अब तक भारत ने सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ, एक अभ्यास उत्तराखंड की औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। 15 से 28 सितंबर की तारीखों के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के लगभग 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों को आजमाया जा रहा है, जिनमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभ्यास के जितना ही खास इसका नाम भी है। अब चूंकि तैयारी वाकई युद्ध के लिए है, अभ्यास वाकई युद्ध जैसे हालात में ऑपरेशन रेडीनेस के लिए है, तो जो काम है सीधे सीधे वैसा ही नाम रखा गया है। बिना शब्दों के हेर फेर के भारत अमेरिका की साझा वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास 2026।
1: भारतीय सेना यूं तो लगातार कई देशों के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करती है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका युद्ध अभ्यास बेहद खास है और इसीलिए इसे खास नाम युद्ध अभ्यास दिया गया है। यानी दुनिया की जब दो सर्वश्रेष्ठ सेनाएं मिलती हैं और एक साथ अपने रण कौशल को बांटती हैं, तो वाकई में ये दिखाता है कि कैसे उस देश की दो सेनाओं के बीच के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। इस बार युद्धाभ्यास न सिर्फ रेगिस्तान में हो रहा है बल्कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर भी हो रहा है, जहां औली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर और अलग अलग तरह की स्किल्स को भारत और अमेरिका के जाबाज साझा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर तमाम अलग अलग एक्शन और ड्रिल्स कर रहे हैं, रियल टाइम वॉर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और किस तरह से किसी भी युद्ध में इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाता है, ये युद्धाभ्यास में बखूबी देखा जा रहा है।
0: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तक

0: तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है, तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लीयरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेन डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है, यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल। जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना। क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड, विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली LSE यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। पहली बार दो अलग भूभागों पर एक साथ हो रहा अभ्यास भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सेना को एक ही समय में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर संभावित खतरों से एक साथ निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये युद्धाभ्यास दिखाता है कि क्वाड देशों में भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी बेहद मजबूत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है, जो न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करेगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास है, तो वहीं पर जोधपुर में भारत और जापान के सैनिक हवाई युद्धाभ्यास वीर गर्जन 2026 में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, MKI और राफेल के साथ साथ जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। 22 सितंबर तक चलने वाला यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, ऑपरेशन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में किस तरीके से मददगार होगा, आपको पहले ये बताते हैं।

वीरों की धरा है, वीरों का आसमान है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में यह शौर्य की उड़ान है,

0: जोधपुर एयरबेस इन दिनों हिंदुस्तान और जापान के बीच हवाई ताकत की बेहतरीन साझेदारी का गवाह बन रहा है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2026 में भारत की वायुसेना अपनी ताकत परखने के लिए जापान के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में रविवार 20 सितंबर को ऐतिहासिक मौका तब आया जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल ताकी हीरो मोरिता ने जोधपुर एयरबेस पर एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी।
1: जापान की एयरफोर्स पहली बार अपने फाइटर्स के साथ भारत में एक एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन कर रही है। वीर गार्जियन इसलिए खास है क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक राजस्थान में किया जा रहा है, और जोधपुर के आसमान में जब भारत और जापान के फाइटर्स एक साथ उड़ान भर रहे हैं तो ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ है। इतना ही नहीं, जापान के एयर चीफ और भारत के एयर चीफ ने एक साथ एक सॉटी की, भारत के तेजस विमान को उड़ाया और ये दिखा दिया कि भारत के कौशल के साथ साथ भारत में बना हुआ भारत का अपना फाइटर भी बेहद खास है।
0: उड़ान के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मुख्य पायलट की भूमिका निभाई, जबकि जापानी वायुसेना प्रमुख ट्विन सीटर तेजस में सह पायलट के रूप में शामिल हुए। ये उड़ान न केवल भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी, बल्कि ये उड़ान भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता पर जापान के भरोसे का प्रतीक भी बनी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकी हीरो मोरिता ने एलसीए तेजस की तारीफ की।
2: आई एम ग्रेटफुल फॉर द इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई ऑन द तेजस एज एन एयरक्राफ्ट बॉम्ब फ्रॉम इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज। Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
0: दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ओर से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच मुख्य रूप से दो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। दोनों देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन नाम से, जबकि वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास वीर गार्जियन नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों युद्धाभ्यास समय समय पर भारत और जापान में बारी बारी से होते हैं। अब तक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कुल 7 बार आयोजित हो चुका है। इसका 7वां संस्करण इसी साल 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था, जबकि वायुसेनाओं की वॉर एक्सरसाइज वीर गार्जियन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में जापान के हायाकुरी एयरबेस पर आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के अलावा सुखोई 30 एमकेआई और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं जापानी वायुसेना ने अपने F-2A और कावासाकी C-2 जैसे विमानों के साथ शिरकत की है। युद्ध जैसे हालात में दोनों वायुसेनाएं अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। हालांकि यह अभ्यास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। 22 सितंबर तक जोधपुर में चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। इसीलिए दोनों वायु सेनाएं जोधपुर में अब तक कई तरह के हवाई अभियानों और वार एक्टिविटीज का अभ्यास कर चुकी हैं। दोनों वायु सेनाओं के पायलट और कमांडरों ने आधुनिक युद्ध तकनीकों, एडवांस्ड ऑपरेशनल मिशन और संयुक्त मिशन प्लानिंग पर काम किया है। इसमें दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की ऑपरेशनल टैक्टिक्स को समझा ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर काम किया जा सके। हवाई युद्धाभ्यास के अलावा दोनों देशों के तकनीकी और इंजीनियरिंग दलों के बीच भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें विमानों के रखरखाव, कठिन मौसम में इंजीनियरिंग सहायता और एयरोस्पेस सेफ्टी सुनिश्चित करने की बेस्ट तकनीकों को साझा किया गया, ताकि वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल में जुटी है, अपनी तैयारियों को परख रही है, तो वहीं युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये

0: अभ्यास भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करेंगे तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की। वायुसेना जल्द ही इस साल का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। अब से कुछ ही दिनों में जोधपुर में होने

0: आपको बता दें कि देखिए ऑपरेशनल तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय वायुसेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तब ये युद्धाभ्यास जो है दो चरणों में हुआ था। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में जबकि दूसरा राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर आयोजित हुआ था। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अब एक बार फिर से हमारे वायुवीर तैयार हैं दुनिया भर की वायुसेनाओं का स्वागत भारत के आसमान पर करने के लिए। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का अवसर मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका भी मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। तो ये तो थी बात युद्धाभ्यासों में अपने रण कौशल को परखने की, निखारने की। लेकिन अब आपको भारत की बढ़ती डिफेंस क्षमताओं की एक शानदार झलक भी दिखा देते हैं। 20 सितंबर 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए काल स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। वो ड्रोन है जो काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और टारगेट्स को तबाह करने में सक्षम है। इसकी खूबियों की अगर हम बात करें तो देखिए काल की रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक है। ये 7 से 8 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम तक है, यानी ये 50 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये भारत की अपनी लंबी दूरी की मानव रहित मारक क्षमता के विकास में अहम उपलब्धि है। चूंकि अब लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन आधुनिक युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, इसी को देखते हुए काल को विकसित किया गया है। ये भारत की लंबी दूरी की अनमैंड स्ट्राइक क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्यों खास है काल और क्यों है इसकी खासियत, इस पर और जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा।
1: रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लगातार ड्रोन्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत का अपना पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन काल तैयार हो चुका है। काल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी कि वो दुश्मन को बहुत दूरी से मार सकता है और वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत में आईजी ड्रोन्स द्वारा बनाए गए काल की क्षमताएं एक बार फिर एक परीक्षण में साफ दिखाई दी जो पोखरण में किया गया। ये 50 किलो का पेलोड लेकर दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। इससे पहले भी लगातार काल के अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं, अलग अलग टेरेन्स में इसे परखा जा रहा है और इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है।
0: तो भारत की हवाई स्ट्राइक क्षमता को मजबूती देने आ चुका है। चलिए बढ़ती क्षमताओं वाली गुड न्यूज के बाद अब आपको एक झलक वायुवीरों के शौर्य की भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वीकेंड वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम के एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया और इस शो में वायु सेना के जाबाजों ने अपने जानदार और शानदार करतबों से सबका दिल जीत लिया।

आसमान को तिरंगे के रंगों से नहलाने वाली ये तस्वीरें यूपी के मेरठ से आई हैं। मेरठ के आसमान पर 19 और 20 सितंबर को भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने यहां पर हैरतअंगेज करतब दिखाए। टीम ने मेरठ के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेरठ के मोहिउद्दीनपुर के न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आयोजित एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉक MK-132 विमानों की गड़गड़ाहट सुन

0: कर लोग रोमांचित हो उठे। शो के दौरान 9 हॉक मार्क 132 फाइटर जेट्स पर सवार पायलट्स ने महज 5 मीटर की दूरी पर रहते हुए जमीन से लगभग 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर कई शानदार मैन्यूवर पेश किए। जिसमें सूर्य किरण टीम के सिग्नेचर बैरल रोल और डायमंड जैसे फॉर्मेशन शामिल थे। सूर्य किरण टीम के हर स्टंट ने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। सूर्य किरण टीम ने अपने फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक दिखाई। मेरठ का आसमान केसरिया सफेद और हरे रंग के धुएं से रंगा हुआ था। ये सटीकता, अनुशासन और टीम स्पिरिट का अनोखा प्रदर्शन था। आपको बता दें कि ऐसा एक शो करने के लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलट्स को 6 से 8 महीने के कठिन अभ्यास से गुजरना होता है। सूर्य किरण टीम अलग अलग मौकों पर ऐसे एरोबेटिक शोज का आयोजन करती रहती है। बता दें कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम सारी दुनिया में विख्यात है। इसका गठन 1996 में किया गया था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम को SKAT यानी स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है। ये टीम अब तक दुनिया भर में सैकड़ों रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। सूर्य किरण टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक मार्क 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपने जानदार कर्तव्य दिखाती है। बात अगर टीम की करे तो इस टीम में कुल 13 पायलट्स हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट ही एक शो में भाग लेते हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के लिए साल में 2 बार पायलट्स का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम में 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है। एरोबेटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का अनुभव होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। मेरठ में हुए एयर शो में सूर्य किरण टीम की वही शानदार साझेदारी नजर आई। वायुसेना के इन जावाजों ने अपने साहस से एक बार फिर सबको यकीन दिला दिया कि क्यों इस टीम का ध्येय वाक्य सदैव सर्वोत्तम है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने रोमांचक कर्तव्यों से मेरठ और सारे देश का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टोरी।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ स्टोरी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: नन्हे कदम मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदन कानन जू से आई ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं, क्योंकि देखिए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 5 नन्हे ओरांगुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा बात हो रही है जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे। गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि अब इनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो गई है बिल्कुल और फीडिंग ठीक चल रही है और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां फिर से वापस लौट आई। नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास फोकस किया जा रहा है।
3: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है, साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है, दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन 5 नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदन कानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी 5 का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदन कानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, यानी इन नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये 5 ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी फूट फूट कर रोने लगे। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को सकुशल बचाने का है ये वीडियो। क्या है सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव का नतीजा 14 सितंबर को आया। खास बात यह है कि डिडवाना कूचमन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के कुछ वार्ड्स में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को महज एक एक वोट मिला है। अब इसी को जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, कहा यह जा रहा है कि यह व्यक्ति बीजेपी का प्रत्याशी है जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने से फूट फूट कर रोने लगा। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
6: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र चर्चा का विषय बन गए, जब नतीजे के बाद पता चला कि जिस वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां उन्हें सिर्फ एक वोट मिला। कैलाश चंद्र ने डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के वार्ड 13 से चुनाव लड़ा था। अब इसी चुनाव नतीजे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी रोने लगे। वीडियो पर लिखा है, राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, अपने घर वाले भी नहीं दिए वोट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि व्यक्ति बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की क्योंकि खबरों की बाढ़ में जरूरी है कि हमें जिस फोटो वीडियो पर संदेह हो हम उसका फैक्ट चेक कर लें, आप तक सही और सच्ची खबर हम पहुंचाएं। तो वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसे गौर से देखा और सुना भी। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो एक शब्द सुनने को मिला, मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूं और मेरे साथ ऐसा क्यों। ये सुनकर हमें ऐसा लगा कि शायद ये मामला किसी पार्टी के टिकट वितरण से जुड़ा हुआ हो सकता है और टिकट नहीं मिलने पर ये शख्स दुखी होकर रोने लगे। इसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वीडियो वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स की राजस्थानी बीजेपी से संबंध है या फिर नहीं। और सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को सिर्फ एक ही वोट मिला। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि वीडियो में जो शख्स रोते हुए दिख रहे हैं वाकई वो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद है या फिर नहीं, जब हमने इसे खंगाला तो ये साफ हुआ कि वायरल हो रहे वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका राजस्थान बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद वार्ड नंबर 12 के मतदाता हैं, जबकि चुनाव में उन्होंने बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाके वार्ड नंबर 13 से मैदान में उतारा था। उनके साथ कार्यकर्ता घूम जरूर रहे थे लेकिन किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया। जबकि वायरल वीडियो में जो शख्स को बीजेपी नेता बताया जा रहा है उसकी सही बातों को सुनने में ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं मिलने की वजह से दुखी है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो में दिख रहे शख्स बीजेपी नेता नहीं है तो फिर इस शख्स की पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल कि अगर वायरल हो रहे वीडियो का संबंध राजस्थान से है तो इसके बारे में कहीं भी किसी आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें 8 जून 2026 को बिहार के एक लोकल न्यूज चैनल के यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि मीडिया के सामने रोते हुए नजर आ रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिवचंद्र राम है जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के तमाम पदों से इस्तीफा भी देने की घोषणा कर दी थी। इससे यही स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो का राजस्थान में हुए हालिया निकाय चुनावों से कोई वास्ता नहीं।
8: हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था।
7: इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 8 जून 2026 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार निधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने नामांकन किया था। इसके बाद आरजेडी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की नाराजगी सामने आई। बतौर रिपोर्ट शिवचंद्र राम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाने का वादा किया था लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी की गई। पड़ताल के दौरान हमें 9 जून 2026 को एक न्यूज़पेपर के फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया यही वीडियो मिला। इस पोस्ट में भी बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने रोते हुए ये व्यक्ति आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हैं, जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। पोस्ट में आगे बताया गया है कि शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान किया था लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। वायरल पोस्ट में राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को एक वोट मिलने का दावा किया गया है। हमने इस दावे की भी पड़ताल की। इस संबंध में हमें 14 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली।
6: रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले की परबतसर नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को महज एक वोट मिला था। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को वार्ड नंबर 13 से सिर्फ एक वोट मिला था। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस की हिना खानम को 376 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रसीद खां को 195 वोट मिले। हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणामों को चेक किया। यहां परबतसर नगर पालिका के चुनाव परिणाम में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र के नाम के सामने एक वोट दर्ज है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से साफ है कि राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को एक वोट मिलने का दावा सही है, लेकिन वायरल वीडियो का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिव चंद्र राम है, जो बिहार में एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के बाद जून 2026 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए नजर आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भावनात्मक संदेश के साथ इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
7: रेलवे ट्रैक में फंसे हाथी के बच्चे को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। बचाव कर्मी तुरंत एक्शन में आते हैं और हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के बच्चे के पैर को बाहर निकाल देते हैं।

0: के कैप्शन में लिखा है, रेलवे ट्रैक पर फंसा हाथी का पैर, लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। रेलवे ट्रैक पर एक हाथी का पैर फंस गया। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाई और हाथी को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है और इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आती हुई भी दिखती है। बचाव कर्मी हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के पैर को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने के बाद हमें कई ऐसी गलतियां नजर आई जो आम तौर पर असली वीडियो में देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी के बच्चे का पैर लोहे की भारी पटरी के आर पार ऐसे धंसता है और बाहर फिसलता है मानो पटरी लोहे की ना होकर रबड़ की हो। बचाव कर्मी जिस हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग कर रहे हैं वो पटरी पर बना कोई वास्तविक दबाव या फिर ग्रिप बनाए हाथी का पैर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा हाथी का पैर निकलने के बाद उस पर चोट या फिर खरोंच का कोई भी निशान नहीं दिखता है। ट्रैक पर हाथी का बच्चा फंसा हुआ है, पीछे से एक ट्रेन चली आ रही है, लेकिन इस दौरान कोई भी ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोकने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि जब रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को बचाया जा रहा है तो फिर ट्रेन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। हमारा दूसरा सवाल ये कि आसपास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं लेकिन ये सारे पेड़ पौधे स्थिर देखने को मिल रहे हैं, इनमें कोई भी हरकत देखने को क्यों नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल सीधा ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में इस घटना से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये वीडियो मौजूद हो। हालांकि इस दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मिले जिसमें यही वीडियो मौजूद है और उन पर AI कंटेंट का लेबल लगा हुआ है। इसके बाद पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को स्कैन किया। हाइव के एनालिसिस में इस वीडियो के AI से बने होने के करीब 96% 4% संकेत मिले। इसी तरह हमने एक दूसरे AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद ली और वायरल वीडियो के की फ्रेम्स को चेक किया। इसने की फ्रेम्स को 94% AI संभावित बताया। हमने वायरल वीडियो को डीप फेकोमीटर पर भी चेक किया। इस टूल के 5 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। साफ है हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। रेल के पटरियों के बीच फंसे हाथी के बच्चे का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और इन्हें पसंद भी किया जा रहा है।
7: क्लासमेट्स का रियूनियन लोगों का ध्यान खींच रहा है। कई साल पहले जिस स्कूल में वो साथ पढ़ते थे उसी जगह पर वो 5 दशक यानी 50 साल बाद दोबारा एक साथ नजर आए। पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर बचपन की यादें ताजा की। उम्र भले ही काफी बढ़ गई हो, लेकिन एक दूसरे से मिलने की खुशी में वही पुरानी दोस्ती और अपनापन दिखाई दिया। स्कूल की इमारत, गलियां और क्लासरूम को देखकर उनके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक साफ नजर आई। शायद उनके लिए ये सिर्फ स्कूल वापस आना नहीं था, बल्कि अपने बचपन के इस दौर में लौटना था जिसे उन्होंने कभी अपने दोस्तों के साथ जिया था।
6: हनुमान जी साहब दे दो, इनसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना उतारे।
7: हनुमान अंश के डायलॉग पर बच्चे ने नीम करोली बाबा के किरदार की क्यूट नकल की। कम्बल ओढ़ कर बच्चे की शानदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन ने यूजर्स का दिल जीत लिया। बच्चे की मासूमियत और उसकी कॉपी करने की कोशिश लोगों को काफी पसंद आ रही है।
6: अरे हमें तो हनुमान जी साहब दे दो, इनसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना उतारे।
7: बच्चों को खिलौने मिल जाए तो वह घंटों खेलते रहते हैं, लेकिन इस बच्चे का खेल थोड़ा अलग है। ये बच्ची किसी महंगे खिलौने के साथ नहीं, बल्कि दो मेंढकों के साथ खेलती नजर आ रही है। खास बात ये है कि बच्ची को इन मेंढकों से जरा भी डर नहीं लग रहा। वह बड़े आराम से उनके साथ मस्ती करती दिखाई देती है। वह कभी उन्हें हाथ से छूती है तो कभी उनके आसपास घूमकर अपनी मस्ती में लगी रहती है। सबसे हैरान करने वाली बात बच्ची का कॉन्फिडेंस है। आमतौर पर मेंढक देखते ही कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन इस बच्चे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके सामने कोई ऐसी चीज है जिससे उसे डरना चाहिए। वह तो उन्हें अपनी खिलौने की तरह लेकर बैठी है।

सफर के दौरान एक थकी हुई माँ रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए चाय वाले ने जो किया उसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल एक महिला अपने बीमार बच्चे का गोरखपुर से इलाज कराकर ट्रेन से वापस लौट रही थी। महिला बुरी तरह थक चुकी थी और उसका छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। माँ के पास उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और वह बेबस नजर आ रही थी। ट्रेन के उसी डिब्बे में पटना के रहने वाले एक साधारण चाय विक्रेता राजा बाबू चाय बेच रहे थे। उन्होंने जब उस थकी हारी माँ और लगातार रोते बच्चे को देखा तो उनका दिल पसीज गया। बच्चे का ध्यान भटकाने और उसे चुप कराने के लिए राजा बाबू ट्रेन के गलियारे में ही नाचने लगे। ये देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और नाचते हुए चाय वाले को देखकर मुस्कुराने लगा। ये नजारा देख ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने भी ताली बजाकर चाय वाले की इस दरियादिली की सराहना की।

एनर्जेटिक अंकलों ने सिखाया जिंदगी जीने का असली तरीका। भाग दौड़ की जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है। पार्क के बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई पप्पी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पप्पी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पप्पी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।

अक्सर लोग दिन भर की भागदौड़ और थकान मिटाने के लिए सैलून जाकर सुकून भरी मसाज करवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई जानवर, वो भी बंदर नाई की कुर्सी पर आराम से बैठकर बॉडी मसाज लेने लगे तो क्या होगा। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बंदर अचानक से किसी नाई की दुकान में दाखिल होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज उसका मूड पूरी तरह से रिलैक्स करने का था। वह बिना किसी डर या झिझक के सीधे सैलून की कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया। उसके हाव भाव और शरीर की ढीली पोजीशन ये चीख चीख कर कह रही थी कि उसे आज बस जमकर मसाज चाहिए। बंदर के इस अनोखे अंदाज को देखकर नाई भी हैरान रह गया, लेकिन उसने बंदर को भगाने के बजाय उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। नाई ने बड़े प्यार से बंदर की बॉडी मसाज करना शुरू कर दिया। बंदर आंखें बंद करके इस मुफ्त के स्पा ट्रीटमेंट का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है। नाई भी पूरी शिद्दत से उसकी मालिश करने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से आई इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसमें टाइगर का बेहद प्यारा अंदाज देखने को मिला है। टाइगर के नन्हे बच्चे एक छोटे से पानी के गड्ढे में मस्ती करते दिख रहे हैं। पानी काफी कीचड़ भरा है, लेकिन शावकों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। कोई आधा पानी में डूबा है तो कोई कीचड़ में लेट कर आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में उन्हें अपना पर्सनल स्विमिंग पूल मिल गया हो। इन सबके बीच मादा टाइगर पानी से थोड़ी दूर सतर्क होकर बैठी है और बच्चों की हरकत पर नजर रख रही है। एक पल में वो पानी की तरफ झुकती भी है जैसे पानी पी रही हो या बच्चों का हाल पूछ रही हो।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
6: बात करते हैं जोधपुर में भारत जापान के संयुक्त हवाई अभ्यास की, जिसमें दोनों देशों के वायुवीर तो अपने कौशल का प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत और जापान के एयरफोर्स चीफ भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। जापान के वायुसेना प्रमुख ने मेक इन इंडिया पहल को लेकर भी अपनी खुशी जताई। 9 सितंबर से जारी इस एक्सरसाइज का आयोजन मंगलवार 22 सितंबर यानी कल तक के लिए किया गया है।
7: ये दो देशों की साझा ताकत है, भारत और जापान के वायु योद्धाओं की ताकत। ये एक साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में 9 सितंबर से चल रहे वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ भी पहुंचे, और यहां दोनों ने भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भी भरी। जोधपुर के आसमान में तेजस की इस उड़ान की गूंज दुनिया तक पहुंचने वाली रही। इस उड़ान ने भारत और जापान के बीच बढ़ते हवाई तालमेल को प्रदर्शित किया। इस खास मौके पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल ताकी हीरो मोरिता ने मेक इन इंडिया पहल की भी तारीफ की।
8: एपी सैम, इट इज अ प्रिविलेज टू बी विद यू टुडे एंड आई वुड लाइक टू शो माय अप्रिसिएशन फॉर योर वार्म वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी। I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas as an aircraft borne from indigenous defense capabilities. Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative.
7: वीर गार्जियन भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसके लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत पहुंच गए थे। अब दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख का तेजस लड़ाकू विमान को साथ में उड़ाना साफ तौर पर भारत जापान के बीच बढ़ते विश्वास को जता रहा है। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्कू लड़ाकू विमान LCA तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है, तो वही जापान का लड़ाकू विमान F-2 और C-2 परिवहन विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है।
8: Dear Guardian is the second bilateral fighter exercise between our services. More importantly, it marks the first ever deployment of the Kokujetai fighters to India. We believe that advanced training deepens mutual understanding, strengthens trust, and enhances practical cooperation.
7: दोनों देशों की वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही है। अभ्यास के अंतिम चरण में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण रहा।
9: General Morita, the chief of the Japan Air Self Defense Force, who has taken time out to join us as a distinguished visitor in this exercise, that itself makes this exercise much, much higher level. Thank you. Thank you for sending your team here. And I am sure they will take back some happy memories. And we will continue to have these exercises at regular intervals.
7: दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। इसका मकसद ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों में समन्वय को मजबूत करना है। अभी तक हुए इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
6: मुंबई में लालबाग शाहराजा के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुन्दर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे, अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन, हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। देश में यूं तो उत्सवों का मौसम चल रहा है, लेकिन आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे शौर्य के उस उत्सव की जिसकी छटा देश में जमी से आसमान तक अगर आप देखेंगे तो नजर आएगी। बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान के रण तक वीरों की गर्जना देखने को मिल रही है। भारत की सेना इस समय अलग अलग मोर्चों पर धुआंधार युद्धाभ्यासों में जुटी हुई है। देखिए, तीन तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर है भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति की। भारत में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शुमार हो गया है, आगे बढ़ चला है, जिनके पास कम लागत में लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाले ड्रोन बनाने की क्षमता है। भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया। वहीं पर एक और तस्वीर राजस्थान से ही निकल कर आई है। जोधपुर में भारत और जापान पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। दोनों देशों के वायुवीर अपनी अपनी क्षमताओं के उनको परख रहे हैं और आपसी साझेदारी को और बेहतर बना रहे हैं। तीसरी तस्वीर है भारत और अमेरिका के बीच हो रहे युद्धाभ्यास की। भारत और अमेरिका के बीच देश के दो अलग अलग क्षेत्रों में युद्धाभ्यास लगातार जारी है। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का जबरदस्त परिचय दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास 2004 से होता आ रहा है, लेकिन पहली बार जो है यह युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। और आखिर क्या वजह है कि एक युद्धाभ्यास के लिए दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों को चुनाव उनका किया गया और दोनों देशों के लिए क्यों इतना महम है ये युद्धाभ्यास, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। मैदान जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, भारत के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जाबाज देश के दो छोरों पर हुंकार भर रहे हैं, और इस हुंकार में अब की बार साझेदार है वो सेना जिसके साथ अब तक भारत ने सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ, एक अभ्यास उत्तराखंड के औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। 15 से 28 सितंबर की तारीखों के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के लगभग 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों को आजमाया जा रहा है, जिनमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभ्यास के जितना ही खास इसका नाम भी है। अब चूंकि तैयारी वाकई युद्ध के लिए है, अभ्यास वाकई युद्ध जैसे हालात में ऑपरेशन रेडीनेस के लिए है, तो जो काम है सीधे सीधे वैसा ही नाम रखा गया है। बिना शब्दों के हेर फेर के भारत अमेरिका की साझा वॉर एक्सरसाइज को नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास 2026।
1: भारतीय सेना यूं तो लगातार कई देशों के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करती है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका युद्ध अभ्यास बेहद खास है, और इसीलिए इसे खास नाम युद्ध अभ्यास दिया गया है। यानी दुनिया की जब दो सर्वश्रेष्ठ सेनाएं मिलती हैं और एक साथ अपने रण कौशल को बांटती हैं, तो वाकई में ये दिखाता है कि कैसे उस देश की दो सेनाओं के बीच के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। इस बार युद्धाभ्यास न सिर्फ रेगिस्तान में हो रहा है, बल्कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर भी हो रहा है, जहां औली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर और अलग अलग तरह की स्किल्स को भारत और अमेरिका के जाबाज साझा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर तमाम अलग अलग एक्शन और ड्रिल्स कर रहे हैं, रियल टाइम वॉर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, और किस तरह से किसी भी युद्ध में इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाता है, ये युद्धाभ्यास में बखूबी देखा जा रहा है।
0: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है, तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लियरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेन डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना, क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली एलएसी यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। पहली बार दो अलग भूभागों पर एक साथ हो रहा अभ्यास भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सेना को एक ही समय में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर संभावित खतरों से एक साथ निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये युद्धाभ्यास दिखाता है कि क्वाड देशों में भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी बेहद मजबूत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है, जो न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करेगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास है तो वहीं पर जोधपुर में भारत और जापान के सैनिक हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और राफेल के साथ साथ जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल है। 22 सितंबर तक चलने वाला यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, ऑपरेशन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में किस तरीके से मददगार होगा, आपको पहले ये बताते हैं।

0: वीरों की धरा है, वीरों का आसमान है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में यह शौर्य की उड़ान है। जोधपुर एयरबेस इन दिनों हिंदुस्तान और जापान के बीच हवाई ताकत की बेहतरीन साझेदारी का गवाह बन रहा है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2026 में भारत की वायुसेना अपनी ताकत परखने के लिए जापान के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में रविवार 20 सितंबर को ऐतिहासिक मौका तब आया जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर एयरबेस पर एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी।
1: जापान की एयरफोर्स पहली बार अपने फाइटर्स के साथ भारत में एक एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन कर रही है। वीर गार्जियन इसलिए खास है क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक राजस्थान में किया जा रहा है, और जोधपुर के आसमान में जब भारत और जापान के फाइटर्स एक साथ उड़ान भर रहे हैं तो ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ है। इतना ही नहीं, जापान के एयर चीफ और भारत के एयर चीफ ने एक साथ एक सॉटी की, भारत के तेजस विमान को उड़ाया और ये दिखा दिया कि भारत के कौशल के साथ साथ भारत में बना हुआ भारत का अपना फाइटर भी बेहद खास है।
0: उड़ान के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मुख्य पायलट की भूमिका निभाई, जबकि जापानी वायुसेना प्रमुख विन सीटर तेजस में सह पायलट के रूप में शामिल हुए। ये उड़ान न केवल भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी, बल्कि ये उड़ान भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता पर जापान के भरोसे का प्रतीक भी बनी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकेहिरो मोरिता ने एलसीए तेजस की तारीफ की।
2: आई एम ग्रेटफुल फॉर द इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई ऑन द तेजस एज एन एयरक्राफ्ट बॉम फ्रॉम इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज। Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
0: दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ओर से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच मुख्य रूप से दो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। दोनों देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन नाम से, जबकि वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास वीर गार्जियन नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों युद्धाभ्यास समय समय पर भारत और जापान में बारी बारी से होते हैं। अब तक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कुल 7 बार आयोजित हो चुका है। इसका 7वां संस्करण इसी साल 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था, जबकि वायुसेनाओं की वॉर एक्सरसाइज वीर गार्जियन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में जापान के हायाकुरी एयरबेस पर आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के अलावा सुखोई 30 एमकेआई और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं जापानी वायुसेना ने अपने F-2A और कावासाकी C-2 जैसे विमानों के साथ शिरकत की है। युद्ध जैसे हालात में दोनों वायुसेनाएं अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही हैं। हालांकि यह अभ्यास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। 22 सितंबर तक जोधपुर में चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। इसीलिए दोनों वायु सेनाएं जोधपुर में अब तक कई तरह के हवाई अभियानों और वार एक्टिविटीज का अभ्यास कर चुकी हैं। दोनों वायु सेनाओं के पायलट और कमांडरों ने आधुनिक युद्ध तकनीकों, एडवांस्ड ऑपरेशनल मिशन और संयुक्त मिशन प्लानिंग पर काम किया है। इसमें दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की ऑपरेशनल टैक्टिक्स को समझा ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर काम किया जा सके। हवाई युद्धाभ्यास के अलावा दोनों देशों के तकनीकी और इंजीनियरिंग दलों के बीच भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें विमानों के रखरखाव, कठिन मौसम में इंजीनियरिंग सहायता और एयरोस्पेस सेफ्टी सुनिश्चित करने की बेस्ट तकनीकों को साझा किया गया। ताकि वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल में जुटी है, अपनी तैयारियों को परख रही है, तो वहीं युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करेंगे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। वायुसेना जल्द ही इस साल का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। अब से कुछ ही दिनों में जोधपुर में होने वाली इस एयर कॉम्बैट ड्रिल का नाम ऑपरेशन तरंग शक्ति है। आपको बता दें कि देखिए ऑपरेशनल तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। ये तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले साल 2024 में भारतीय वायुसेना ये मेगा युद्धाभ्यास कर चुकी है। तब ये युद्धाभ्यास जो है दो चरणों में हुआ था। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में जबकि दूसरा राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर आयोजित हुआ था। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अब एक बार फिर से हमारे वायुवीर तैयार हैं दुनिया भर की वायुसेनाओं का स्वागत भारत के आसमान पर करने के लिए। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों

0: मेल बनाने का मौका भी मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। तो ये तो थी बात युद्धाभ्यासों में अपने रण कौशल को परखने की, निखारने की, लेकिन अब आपको भारत की बढ़ती डिफेंस क्षमताओं की एक शानदार झलक भी दिखा देते हैं। 20 सितंबर 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में बने स्वदेशी लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन काल का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए, काल स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। वो ड्रोन है जो काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और टारगेट्स को तबाह करने में सक्षम है। इसकी खूबियों की अगर हम बात करें तो देखिए, काल की रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक है। ये 7 से 8 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम तक है, यानी ये 50 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये भारत की अपनी लंबी दूरी की मानव रहित मारक क्षमता के विकास में अहम उपलब्धि है। चूंकि अब लॉन्ग रेंज वन वे अटैक ड्रोन आधुनिक युद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, इसी को देखते हुए काल को विकसित किया गया है। ये भारत की लंबी दूरी की अनमैंड स्ट्राइक क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्यों खास है काल और क्यों है इसकी खासियत, इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा।
1: रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लगातार ड्रोन्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत का अपना पहला लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन काल तैयार हो चुका है। काल की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी कि वो दुश्मन को बहुत दूरी से मार सकता है और वो भी पूरी सटीकता के साथ। भारत में आईजी ड्रोन्स द्वारा बनाए गए काल की क्षमताएं एक बार फिर एक परीक्षण में साफ दिखाई दी, जो पोखरण में किया गया। ये 50 किलो का पेलोड लेकर दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ। इससे पहले भी लगातार काल के अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं, अलग अलग टेरेन्स में इसे परखा जा रहा है और इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है।
0: तो भारत की हवाई स्ट्राइक क्षमता को मजबूती देने आ चुका है। चलिए, बढ़ती क्षमताओं वाली गुड न्यूज के बाद अब आपको एक झलक वायुवीरों के शौर्य की भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वीकेंड वायु सेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम के एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया और इस शो में वायु सेना के जाबाजों ने अपने जानदार और शानदार करतबों से सबका दिल जीत लिया।

आसमान को तिरंगे के रंगों से नहलाने वाली ये तस्वीरें यूपी के मेरठ से आई हैं। मेरठ के आसमान पर 19 और 20 सितंबर को भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने यहां पर हैरतअंगेज करतब दिखाए। टीम ने मेरठ के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेरठ के मोहिउद्दीनपुर के न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आयोजित एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉक MK-132 विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर लोग रोमांचित हो उठे। शो के दौरान 9 हॉक Mark 132 फाइटर जेट्स पर सवार पायलट्स ने महज 5 मीटर की दूरी पर रहते हुए जमीन से लगभग 100 से 200 फीट की ऊंचाई पर कई शानदार मैन्यूवर पेश किए। जिसमें सूर्य किरण टीम के सिग्नेचर बैरल रोल और डायमंड जैसे फॉर्मेशन शामिल थे। सूर्य किरण टीम के हर स्टंट ने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। सूर्य किरण टीम ने अपने फॉर्मेशन में तिरंगे की झलक दिखाई। मेरठ का आसमान केसरिया सफेद और हरे रंग के धुएं से रंगा हुआ था। ये सटीकता, अनुशासन और टीम स्पिरिट का अनोखा प्रदर्शन था। आपको बता दें कि ऐसा एक शो करने के लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलट्स को 6 से 8 महीने के कठिन अभ्यास से गुजरना होता है।

0: सूर्य किरण टीम अलग अलग मौकों पर ऐसे एरोबेटिक शोज का आयोजन करती रहती है। बता दें कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम सारी दुनिया में विख्यात है। इसका गठन 1996 में किया गया था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम को SKAT यानी स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है। ये टीम अब तक दुनिया भर में सैकड़ों रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। सूर्य किरण टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक Mark 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपने जानदार कर्तव्य दिखाती है। बात अगर टीम की करे तो इस टीम में कुल 13 पायलट हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट ही एक शो में भाग लेते हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के लिए साल में 2 बार पायलट का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम में 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है। एरोबेटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का अनुभव होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। मेरठ में हुए एयर शो में सूर्य किरण टीम की वही शानदार साझेदारी नजर आई। वायुसेना के इन जावाजों ने अपने साहस से एक बार फिर सबको यकीन दिला दिया कि क्यों इस टीम का ध्येय वाक्य सदैव सर्वोत्तम है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने रोमांचक कर्तव्यों से मेरठ और सारे देश का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शो।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: नन्हे कदम मासूम शरारतें और चेहरे पर लौटती चंचलता। नंदन कानन जू से आई ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं, क्योंकि देखिए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 5 नन्हे ओरांगुटान अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे उन 2 बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा बात हो रही है जो गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे। गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि अब इनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो गई है बिल्कुल, और फीडिंग ठीक चल रही है, और इलाज के साथ साथ इनकी बदमाशियां फिर से वापस लौट आई। नन्हे मेहमानों की सेहत सुधारने के लिए डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर चीज पर खास फोकस किया जा रहा है।
2: ये तस्वीरें देखकर नंदकानन जू में हर चेहरे पर इत्मीनान है। नंदकानन जू के क्वारंटीन सेंटर में अब नन्हे ओरंगुटान पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 बच्चों की सेहत को लेकर चिंता ज्यादा थी, क्योंकि ये दोनों गंभीर एनीमिया से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनका व्यवहार सामान्य है, एक्टिविटी नॉर्मल है और फीडिंग भी ठीक चल रही है। साथ ही इनकी बदमाशियां भी बढ़ गई हैं। फिलहाल तो ओरंगुटान के इन बच्चों की डाइट पर खास नजर रखी जा रही है। दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और अब इनके खाने में भाप में पकी गाजर और बीन्स भी शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि फीड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए और ठोस खाना भी डाइट का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, इन ओरंगुटानों की एक्टिविटी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। क्वारंटीन सेल में रस्सियां और सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि ये बच्चे एक्टिव रहें, खेलें और धीरे धीरे सामान्य व्यवहार में लौटें। शनिवार को विशेषज्ञों की टीम ने भी इन बच्चों की जांच की। विशेषज्ञों ने फीडिंग, हेल्थ केयर और आगे की देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी। इन 5 नन्हे ओरंगुटान को रेस्क्यू किए जाने के बाद नंदन कानन जू के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसमें 3 नर और 2 मादा हैं। मेडिकल जांच के दौरान सभी 5 का वजन और तापमान भी रिकॉर्ड किया गया। वन विभाग के अधिकारी, वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं। नंदन कानन के विशेषज्ञों के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, यानी नन्हे मेहमानों के इलाज से लेकर इनकी डाइट और एक्टिविटी तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। वहीं ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये 5 ओरंगुटान ओडिशा के जंगलों तक पहुंचे कैसे। फिलहाल तो इसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संदिग्ध मामला मानते हुए जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में शाहरुख खान ने लगाई हाजिरी, पत्नी और बेटी सहित बप्पा की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से पूजा अर्चना। सूरत में समुंदर के बीच टापू पर विराजमान भगवान का जन्म, नाव पर सवार होकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भक्त, मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत दुर्गम मुश्किल। 20 सितंबर तक बंद रहे टिहरी का सुरकंडा देवी रोपवे अगले 10 दिनों तक का होगा सालाना मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण, श्रद्धालुओं को पैदल ही चढ़नी होगी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐतिहासिक आयोजन, मेहमानों के ठहरने खाने पीने का व्यापक इंतजाम, राष्ट्रपति की मौजूदगी में जुटेंगे फिल्मी सितारे। 28 सितंबर से जोधपुर में शुरू हो रहा वायुसेना का सबसे बड़ा ग्लोबल युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति में कई देशों की वायुसेना होंगी शामिल, 11 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। जापान में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला रग्बी टीम तैयार, कोलकाता में जर्सी का हुआ अनावरण, चीन हांगकांग और मलेशिया के साथ पूल बी में है टीम इंडिया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, इन्हें शेयर कर देते और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी फूट फूट कर रोने लगे। क्या है सच्चाई आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को सकुशल बचाने का है ये वीडियो। क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव का नतीजा 14 सितंबर को आया। खास बात यह है कि डिडवाना कूचमन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के कुछ वार्ड में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को महज एक एक वोट मिला है। अब इसी को जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, कहा यह जा रहा है कि ये व्यक्ति बीजेपी का प्रत्याशी है जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने से फूट फूट कर रोने लगा। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
6: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चंद्र चर्चा का विषय बन गए जब नतीजे के बाद पता चला कि जिस वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां उन्हें सिर्फ एक वोट मिला। कैलाश चंद्र ने डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर नगर पालिका के वार्ड 13 से चुनाव लड़ा था। अब इसी चुनाव नतीजे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान निकाय चुनाव में एक वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी रोने लगे। वीडियो पर लिखा है, राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, अपने घर वाले भी नहीं दिए वोट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि व्यक्ति बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, हमने इसकी पड़ताल शुरू की क्योंकि खबरों की बाढ़ में जरूरी है कि हमें जिस फोटो वीडियो पर संदेह हो हम उसका फैक्ट चेक कर लें, आप तक सही और सच्ची खबर हम पहुंचाएं। तो वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसे गौर से देखा और सुना भी। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो एक शब्द सुनने को मिला, मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा हूं और मेरे साथ ऐसा क्यों। ये सुनकर हमें ऐसा लगा कि शायद ये मामला किसी पार्टी के टिकट वितरण से जुड़ा हुआ हो सकता है और टिकट नहीं मिलने पर पर ये शख्स दुखी होकर रोने लगे। इसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वीडियो वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स की राजस्थानी बीजेपी से संबंध है या फिर नहीं। और सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को सिर्फ एक ही वोट मिला। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि वीडियो में जो शख्स रोते हुए दिख रहे हैं वाकई वो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद है या फिर नहीं, जब हमने इसे खंगाला तो ये साफ हुआ कि वायरल हो रहे वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका राजस्थान बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद वार्ड नंबर 12 के मतदाता हैं, जबकि चुनाव में उन्होंने बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाके वार्ड नंबर 13 से मैदान में उतारा था। उनके साथ कार्यकर्ता घूम जरूर रहे थे लेकिन किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया। जबकि वायरल वीडियो में जो शख्स को बीजेपी नेता बताया जा रहा है उसकी सही बातों को सुनने में ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं मिलने की वजह से दुखी है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो में दिख रहे शख्स बीजेपी नेता नहीं है तो फिर इस शख्स की पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल कि अगर वायरल हो रहे वीडियो का संबंध राजस्थान से है तो इसके बारे में कहीं भी किसी आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सामने क्यों नहीं आई है। इस रिपोर्ट में
7: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हमें 8 जून 2026 को बिहार के एक लोकल न्यूज चैनल के यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि मीडिया के सामने रोते हुए नजर आ रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिवचंद्र राम है, जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के तमाम पदों से इस्तीफा भी देने की घोषणा कर दी थी। इससे यही स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो का राजस्थान में हुए हालिया निकाय चुनावों से कोई वास्ता नहीं।
8: हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था।
7: इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 8 जून 2026 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य भी देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह ने नामांकन किया था। इसके बाद आरजेडी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की नाराजगी सामने आई। बतौर रिपोर्ट शिवचंद्र राम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाने का वादा किया था लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी की गई। पड़ताल के दौरान हमें 9 जून 2026 को एक न्यूज़पेपर के फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया यही वीडियो मिला। इस पोस्ट में भी बताया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने रोते हुए ये व्यक्ति आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हैं, जो एमएलसी का टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे। पोस्ट में आगे बताया गया है कि शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान किया था लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। वायरल पोस्ट में राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को एक वोट मिलने का दावा किया गया है। हमने इस दावे की भी पड़ताल की। इस संबंध में हमें 14 सितंबर को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले की परबतसर नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को महज एक वोट मिला था। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को वार्ड नंबर 13 से सिर्फ एक वोट मिला था। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस की हिना खानम को 376 वोट मिले जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रसीद खां को 195 वोट मिले। हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणामों को चेक किया। यहां परबतसर नगर पालिका के चुनाव परिणाम में वार्ड नंबर 13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र के नाम के सामने एक वोट दर्ज है। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से साफ है
6: कि राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को एक वोट मिलने का दावा सही है, लेकिन वायरल वीडियो का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति आरजेडी नेता शिव चंद्र राम है, जो बिहार में एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के बाद जून 2026 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए नजर आए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: चार रात सो नहीं पाया।
9: सोशल मीडिया पर रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर भावनात्मक संदेश के साथ इसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
6: रेलवे ट्रैक में फंसे हाथी के बच्चे को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। बचाव कर्मी तुरंत एक्शन में आते हैं और हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के बच्चे के पैर को बाहर निकाल देते हैं।

0: के कैप्शन में लिखा है, रेलवे ट्रैक पर फंसा हाथी का पैर, लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। रेलवे ट्रैक पर एक हाथी का पैर फंस गया। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाई और हाथी को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक हाथी के बच्चे का पैर रेलवे ट्रैक में फंसा हुआ दिखाई देता है और इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आती हुई भी दिखती है। बचाव कर्मी हाइड्रोलिक मशीन की मदद से रेलवे ट्रैक को हटाकर हाथी के पैर को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने के बाद हमें कई ऐसी गलतियां नजर आई जो आम तौर पर असली वीडियो में देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी के बच्चे का पैर लोहे की भारी पटरी के आर पार ऐसे धंसता है और बाहर फिसलता है मानो पटरी लोहे की ना होकर रबड़ की हो। बचाव कर्मी जिस हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग कर रहे हैं वो पटरी पर बना कोई वास्तविक दबाव या फिर ग्रिप बनाए हाथी का पैर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा हाथी का पैर निकलने के बाद उस पर चोट या फिर खरोंच का कोई भी निशान नहीं दिखता है। ट्रैक पर हाथी का बच्चा फंसा हुआ है, पीछे से एक ट्रेन चली आ रही है, लेकिन इस दौरान कोई भी ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोकने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये था कि जब रेलवे ट्रैक पर फंसे हाथी के बच्चे को बचाया जा रहा है तो फिर ट्रेन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। हमारा दूसरा सवाल ये कि आसपास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं लेकिन ये सारे पेड़ पौधे स्थिर देखने को मिल रहे हैं, इनमें कोई भी हरकत देखने को क्यों नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल सीधा ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में इस घटना से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये वीडियो मौजूद हो। हालांकि इस दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मिले जिसमें यही वीडियो मौजूद है और उन पर AI कंटेंट का लेबल लगा हुआ है। इसके बाद पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हाइव मॉडरेशन की मदद से वीडियो को स्कैन किया। हाइव के एनालिसिस में इस वीडियो के AI से बने होने के करीब 96% 4% संकेत मिले। इसी तरह हमने एक दूसरे AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट की मदद ली और वायरल वीडियो के की फ्रेम्स को चेक किया। इसने की फ्रेम्स को 94% AI संभावित बताया। हमने वायरल वीडियो को डीप फेकोमीटर पर भी चेक किया। इस टूल के 5 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो को उच्च संभावना के साथ AI जनरेटेड बताया। साफ है हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। रेल के पटरियों के बीच फंसे हाथी के बच्चे का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और इन्हें पसंद भी किया जा रहा है।
7: क्लासमेट्स का रियूनियन लोगों का ध्यान खींच रहा है। कई साल पहले जिस स्कूल में वो साथ पढ़ते थे उसी जगह पर वो 5 दशक यानी 50 साल बाद दोबारा एक साथ नजर आए। पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर बचपन की यादें ताजा की। उम्र भले ही काफी बढ़ गई हो, लेकिन एक दूसरे से मिलने की खुशी में वही पुरानी दोस्ती और अपनापन दिखाई दिया। स्कूल की इमारत, गलियां और क्लासरूम को देखकर उनके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक साफ नजर आई। शायद उनके लिए ये सिर्फ स्कूल वापस आना नहीं था, बल्कि अपने बचपन के इस दौर में लौटना था जिसे उन्होंने कभी अपने दोस्तों के साथ जिया था।
6: जिसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना उतारे।
7: हनुमान अंश के डायलॉग पर बच्चे ने नीम करोली बाबा के किरदार की क्यूट नकल की। कम्बल ओढ़ कर बच्चे की शानदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन ने यूजर्स का दिल जीत लिया। बच्चे की मासूमियत और उसकी कॉपी करने की कोशिश लोगों को काफी पसंद आ रही है।
6: अरे हमें तो हनुमान जी साहब दे दे। जिसे कहो कि आपसे किसी संत को ट्रेन से ना उतारे।
7: बच्चों को खिलौने मिल जाए तो वह घंटों खेलते रहते हैं, लेकिन इस बच्चे का खेल थोड़ा अलग है। ये बच्ची किसी महंगे खिलौने के साथ नहीं, बल्कि दो मेंढकों के साथ खेलती नजर आ रही है। खास बात ये है कि बच्ची को इन मेंढकों से जरा भी डर नहीं लग रहा। वह बड़े आराम से उनके साथ मस्ती करती दिखाई देती है। वह कभी उन्हें हाथ से छूती है तो कभी उनके आसपास घूमकर अपनी मस्ती में लगी रहती है। सबसे हैरान करने वाली बात बच्ची का कॉन्फिडेंस है। आमतौर पर मेंढक देखते ही कई लोग उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन इस बच्चे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके सामने कोई ऐसी चीज है जिससे उसे डरना चाहिए। वह तो उन्हें अपने खिलौने की तरह लेकर बैठी है।

सफर के दौरान एक थकी हुई माँ रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए चाय वाले ने जो किया उसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल एक महिला अपने बीमार बच्चे का गोरखपुर से इलाज कराकर ट्रेन से वापस लौट रही थी। महिला बुरी तरह थक चुकी थी और उसका छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। माँ के पास उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और वह बेबस नजर आ रही थी। ट्रेन के उसी डिब्बे में पटना के रहने वाले एक साधारण चाय विक्रेता राजा बाबू चाय बेच रहे थे। उन्होंने जब उस थकी हारी माँ और लगातार रोते बच्चे को देखा तो उनका दिल पसीज गया। बच्चे का ध्यान भटकाने और उसे चुप कराने के लिए राजा बाबू ट्रेन के गलियारे में ही नाचने लगे। ये देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और नाचते हुए चाय वाले को देखकर मुस्कुराने लगा। ये नजारा देख ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने भी ताली बजाकर चाय वाले की इस दरियादिली की सराहना की।

इन एनर्जेटिक अंकलों ने सिखाया जिंदगी जीने का असली तरीका। भागदौड़ की जिंदगी में तो उम्र बस एक नंबर है, असली जिंदगी हर पल को जीने में है। पार्क के बेंच पर बैठे इन एनर्जेटिक अंकलों ने जिस अंदाज में महफिल सजाई, उसे देखकर इंटरनेट की जनता खुशी से झूम उठी है। नया टेडी मिला तो इस छोटे से पप्पी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टेडी की बिलिंग हुई, पप्पी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टेडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पप्पी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पप्पी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।

अक्सर लोग दिन भर की भागदौड़ और थकान मिटाने के लिए सैलून जाकर सुकून भरी मसाज करवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई जानवर, वो भी बंदर नाई की कुर्सी पर आराम से बैठकर बॉडी मसाज लेने लगे तो क्या होगा। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बंदर अचानक से किसी नाई की दुकान में दाखिल होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज उसका मूड पूरी तरह से रिलैक्स करने का था। वह बिना किसी डर या झिझक के सीधे सैलून की कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया। उसके हाव भाव और शरीर की ढीली पोजीशन ये चीख चीख कर कह रही थी कि उसे आज बस जमकर मसाज चाहिए। बंदर के इस अनोखे अंदाज को देखकर नाई भी हैरान रह गया, लेकिन उसने बंदर को भगाने की बजाय उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। नाई ने बड़े प्यार से बंदर की बॉडी मसाज करना शुरू कर दिया। बंदर आंखें बंद करके इस मुफ्त के स्पा ट्रीटमेंट का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है। नाई भी पूरी शिद्दत से उसकी मालिश करने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से आई इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसमें टाइगर का बेहद प्यारा अंदाज देखने को मिला है। टाइगर के नन्हे बच्चे एक छोटे से पानी के गड्ढे में मस्ती करते दिख रहे हैं। पानी काफी कीचड़ भरा है, लेकिन शावकों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। कोई आधा पानी में डूबा है तो कोई कीचड़ में लेट कर आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में उन्हें अपना पर्सनल स्विमिंग पूल मिल गया हो। इन सबके बीच मादा टाइगर पानी से थोड़ी दूर सतर्क होकर बैठी है और बच्चों की हरकत पर नजर रख रही है। एक पल में वो पानी की तरफ झुकती भी है जैसे पानी पी रही हो या बच्चों का हाल पूछ रही हो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करते हैं जोधपुर में भारत जापान के संयुक्त हवाई अभ्यास की, जिसमें दोनों देशों के वायुवीर तो अपने कौशल का प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत और जापान के एयरफोर्स चीफ भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। जापान के वायुसेना प्रमुख ने मेक इन इंडिया पहल को लेकर भी अपनी खुशी जताई। 9 सितंबर से जारी इस एक्सरसाइज का आयोजन मंगलवार 22 सितंबर यानी कल तक के लिए किया गया है।
2: ये दो देशों की साझा ताकत है, भारत और जापान के वायु योद्धाओं की ताकत। ये एक साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में 9 सितंबर से चल रहे वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ भी पहुंचे और यहां दोनों ने भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भी भरी। जोधपुर के आसमान में तेजस की इस उड़ान की गूंज दुनिया तक पहुंचने वाली रही। इस उड़ान ने भारत और जापान के बीच बढ़ते हवाई तालमेल को प्रदर्शित किया। इस खास मौके पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल ताकी हीरो मोरिता ने मेक इन इंडिया पहल की भी तारीफ की।
3: एपी सैम, इट इज अ प्रिविलेज टू बी विद यू टुडे एंड आई वुड लाइक टू शो माय अप्रिशिएशन फॉर योर वार्म वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी। I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas. As an aircraft born from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative.
2: वीर गार्जियन भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त हवाई अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसके लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत पहुंच गए थे। अब दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख का तेजस लड़ाकू विमान को साथ में उड़ाना साफ तौर पर भारत जापान के बीच बढ़ते विश्वास को जता रहा है। ये मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बने हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्कू लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के अलावा सुखोई 30 एमकेआई और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है, तो वही जापान का लड़ाकू विमान F2 और C2 परिवहन विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है।
3: Dear Guardian is the second bilateral fighter exercise between our services. More importantly, it marks the first ever deployment of the Kokujetai fighters to India. We believe that advanced training deepens mutual understanding, strengthens trust, and enhances practical cooperation.
2: दोनों देशों की वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को परख रही है। अभ्यास के अंतिम चरण में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण रहा।
4: General Morita, the chief of the Japan Air Self-Defense Force, who has taken time out to join us as a distinguished visitor in this exercise, that itself makes this exercise much higher level. Thank you for sending your team here, and I am sure they will take back some happy memories, and we will continue to have these exercises at regular intervals.
2: दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। इसका मकसद ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों में समन्वय को मजबूत करना है। अभी तक हुए इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर चुके हैं। ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक के लिए आयोजित किया गया है। वीर गार्जियन 2026 सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी सीख, बेहतर इंटर ऑपरेबिलिटी और वायु योद्धाओं के बीच दोस्ती को मजबूत करने वाला अहम कदम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज सुने।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: किस उम्र में बच्चों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए? किस उम्र में बच्चों को पूजा उपासना सिखानी चाहिए और किस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारियां लेने देना चाहिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या करें संस्कार लाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी